सबको संतुष्ट करते थे और स्वयं तो ईश्वरीय प्राप्तियों से सदा ही संतुष्ट थे। हम फॉलो फादर करें, हमारे चेहरे पर संतुष्टता की झलक होनी चाहिए। संतुष्टता और प्रसन्नता हमारी बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। अगर हम भगवान को पाकर भी संतुष्ट नहीं रहते तो सोचो भला और क्या पाकर हम संतुष्ट रहेंगे। और ये भी याद रखना चाहिए, जो मनुष्य भगवान को पाकर संतुष्ट न हुआ वो कोई पदार्थ, वस्तु, वैभव, धन संपदा पाकर कभी संतुष्ट नहीं होगा। और अब की असंतुष्टता द्वापर युग से भी असंतुष्टता का अनुभव कराएगी। चाहे कुछ भी हमारे पास होगा, हम सदा असंतुष्टता की अग्नि में जलते रहेंगे, दूसरों को देखकर असंतुष्ट होते रहेंगे। इसलिए अपनी नेचर बनाएं, जो कुछ हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना पहली चीज यही है। भले ही हम आगे बढ़ें, इसका अर्थ ये नहीं होता संतुष्ट रहना माना प्रोग्रेस न करना, प्रमोशन न लेना, बिजनेस को न बढ़ाना, पढ़ाई न करना। नहीं, हम सब कुछ करें, जीवन में जो जरूरी है वो सब करते रहें और आगे बढ़ते रहें, लेकिन हमारी नेचर पूर्णतया संतुष्ट रहने की हो। जो हमारे पास है उसमें भी हम संतुष्ट, और जो हमें मिल गया है उसमें भी हम संतुष्ट। कभी कभी क्या होता है, एक मनुष्य बहुत ऊंचा टारगेट बनाता है, लेकिन अगर वो प्राप्त नहीं होता तो वो बहुत निराश हो जाता है, संपूर्ण रूप से जीवन से ही असंतुष्ट हो जाता है, निराश हो जाता है। ये गलत बात है। जीवन एक बहुत लंबी यात्रा है, इसमें यदि हम छोटी बातों में असंतुष्ट होते रहेंगे तो हमारी शक्तियां नष्ट होती रहेंगी। याद रखना है, हमारी संतुष्टता का प्रकाश सारे संसार में फैलता है और संतुष्ट मणियां प्रभु को बहुत प्रिय हैं। अब हम वस्तुएं लेकर खुश होना चाहते हैं या भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं, उसके प्रिय बन जाएं तो वो हमें भरपूर कर देता है। इसलिए आज सारा दिन हम संतुष्ट रहेंगे, दूसरों के व्यवहार से भी संतुष्ट, कर्मों से भी संतुष्ट, अपनी मेहनत से भी संतुष्ट, जहां हम रहते हैं उससे भी संतुष्ट, जो कुछ भोजन हमें खाने को मिलता है उससे भी संतुष्ट, जो पहनने को मिलता है उसमें भी संतुष्ट। कभी कभी कंपैरिजन करने की नेचर मनुष्य को असंतुष्ट कर देती है, लेकिन हमें कंपैरिजन नहीं करना है। आज ये धारणा हम बहुत पक्की करें, हमें किसी से तुलना नहीं करनी है। हमारे पास जो कुछ है वो बहुत अच्छा है, हमारा पाठ जो है वो बहुत बहुत सुंदर है। अपने पार्ट को एंजॉय करें, अपनी प्राप्तियों को एंजॉय करें, अपनी सूखी रोटी को एंजॉय करें, दूसरे की घी लगी रोटी को देखकर अपनी सूखी रोटी का आनंद गंवा न दें। तो आज सारा दिन बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे, पहुंचेंगे सूक्ष्म लोक में, बाबा के साथ, बाप दादा के साथ डांस करेंगे, हाथ मिलाएंगे, गले लगेंगे, दृष्टि लेंगे, और फिर देखो बाबा कहता है बच्चे परम धाम में चलो, वो तुम्हारे परम पिता ज्ञान सूर्य उसकी किरणों के नीचे बैठ जाओ, और हम पहुंच जाते हैं वहां। फिर वहां से वापिस बुलाता है बाबा और कहता है जाओ नीचे, वो तुम्हारा शरीर, उसमें प्रवेश करो, और मैं आत्मा उड़कर उसमें प्रवेश कर लेती हूँ, भ्रकुटी सिंहासन पर चमक रही हूँ। फिर वापिस, और इस तरह फिर बाबा कहता है जाओ परम धाम सर्वशक्तिवान की किरणों के नीचे, फिर मैं वहां चली जाती हूँ। कुछ देर बैठने के बाद बाबा कहता है वापिस, और मैं वापिस सूक्ष्म लोक में। फिर कहता है जाओ वो तुम्हारा शरीर नीचे, उसमें प्रवेश करो, मैं फिर उसमें प्रवेश कर लेती हूँ,
और फिर वापस। ये बहुत अच्छा खेल हो जाएगा। योग को इस तरह हम मनोरंजन बनाएंगे, खेल बनाएंगे और सारे दिन का आनंद लेंगे। ओम शांति।

0: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। जिस व्यक्ति के स्वभाव में ही निराशा हो, जो सदा निरुत्साहित रहता हो, वह स्वयं अपने ही विचारों के कारण केवल एक जिंदा लाश मात्र बनकर रहता है, उसे विचारों का मारा हुआ ही कहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति की आयु के कई वर्ष स्वयं कम हो जाते हैं, क्योंकि नकारात्मक मनोवृत्ति से व्यक्ति की आयु कम ही होती है। निष्क्रियतापूर्ण मनोवृत्ति का भी यही फल होता है। यह कितनी आश्चर्य की बात है कि हम संसार में स्वास्थ्य को सबसे बड़ा वरदान मानते हैं, पर हम सदा अपना स्वास्थ्य नाश करते रहते हैं। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं कि जब हम प्रसन्नता चाहते हैं, प्रसन्नता के लिए लालायित होते हैं और मन को शांति देना चाहते हैं, उसके लिए हमें उत्कंठा होती है, और हम सुखी होना चाहते हैं, उस समय हम निराशा भरे विचारों का इस प्रकार से स्वागत करते हैं कि जिस प्रकार किसी प्रिय अतिथि का किया जाता है। निराशा केवल हमारी प्रसन्नता, सुख और शांति को ही नष्ट नहीं करती है, वह हमारे उन संकल्पों को भी नष्ट कर देती है जो हमने कुछ सत्कर्मों को करने के लिए किए थे। निराशा हमारी आशाओं और आकांक्षाओं को भी पूर्णतया नष्ट कर डालती है। हमारे मन का और शक्ति का इतना घनिष्ठ संबंध है कि जिन बातों का एक पर प्रभाव पड़ता है, उसका प्रभाव दूसरे पर भी पड़े बिना नहीं रहता। यदि मन में निराशा आती है तो हमारा शरीर आलस्य से भर जाता है। जितनी भी बार हमें निराशा घेरती है, जितनी बार

निरुत्साहित होते हैं, उतने ही बार हमारे मन में निष्क्रियता आती है, उतने ही बार मन विषाक्त होता है और उतनी ही बार मस्तिष्क भी दूषित हो जाया करता है। बहुत से व्यक्ति यह नहीं समझते कि निषेधात्मक, नकारात्मक और विध्वंसात्मक विचार वह सब कुछ नष्ट कर डालते हैं जिसे हमने बड़े यत्न से रखा था, जिसके लिए बड़ी आकांक्षाएं पाली थी। लोग यह नहीं समझते कि अपनी चित्त वृत्तियों को दूषित कर अपनी ही प्रसन्नता को, अपने आदर्शों को नष्ट करते हैं और इससे हमारा जीवन बिगड़ता और नष्ट होता है। यह एक विचित्र तथ्य है कि हमारे बहुत से महान व्यक्तियों में भी निराशा के भाव थे और इसी निराशा की काली रेखा के कारण उनमें से कई मानसिक रोगों के शिकार बने और उनकी महान सफलताओं में बाधा पहुंची थी। इन सब बातों का भाव यही है कि हम निराशा से मुक्त रहें। जितना हम आशावादी बनेंगे उतना ही हम अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और सफलता पाएंगे।

का कहना है कि व्यक्ति के सम्मुख उसका उद्देश्य कितना भी ऊंचा हो, वह उसे एक न एक दिन अवश्य ही प्राप्त हो सकता है, लेकिन इसके लिए आवश्यकता है अपने उद्देश्य की, अपने उद्देश्य की ओर निरंतर बढ़ते जाने की। जिस व्यक्ति के सामने कोई उद्देश्य ही नहीं होता है, वह जीवन भर केंचुए की भांति ही रेंगता रह जाता है और अंत उसी की भांति नष्ट भी हो जाया करता है। जब आप किसी काम के लिए हाँ कहते हैं, तो आप अपने कथन अनुसार एक सच्चाई की स्थापना करते हैं, लेकिन जब कोई शब्द आपके सचेतन मन से निकलता है, तो एक प्रेरक शक्ति बनकर आपके जीवन उद्देश्य को साक्षात प्रकट करने में समर्थ हो जाता है, क्योंकि आप जो कुछ भी अपने मन में विचार करते हैं, उसे ही अपने वचनों द्वारा प्रकट भी करते हैं। जो कुछ आप अपने वचनों द्वारा प्रकट करते हैं, उसे पूर्ण करने के लिए प्रयत्न भी करते हैं। फिर कार्य कैसे

कितना भी हो, कुछ भी हो, जब उसके लिए यत्न किया जाएगा तो वह संपन्न भी अवश्य ही होगा। यही व्यक्ति कार्य को संपन्न कर सकता है जिसका यह निश्चय है कि वह उसे अवश्य ही पूरा कर सकेगा। दृढ़ निश्चय व्यक्ति को संसार स्वयं रास्ता देता है। दृढ़ निश्चय व्यक्ति जब अपने उद्देश्यों को एवं लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं तो रास्ते में रुकते ही नहीं हैं, चलते ही जाते हैं। और जहां दूसरे लोग रुक जाते हैं, जिन बाधाओं को देखकर अन्य व्यक्ति अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में ढील छोड़ देते हैं अथवा जिन बाधाओं में अटक कर अन्य लोग जाते हैं, वहीं पर दृढ़ संकल्पी व्यक्ति इन बाधाओं को पार कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। विश्वास के द्वारा आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि विश्वास सब उपलब्धियों का जन्मदाता है। विश्वास के द्वारा आपके काम करने की शक्ति दुगुनी तिगुनी ही नहीं कई गुना बढ़ जाती है। इसी के द्वारा आपकी सामर्थ्य योग्यता एवं मानसिक क्षमता विकसित एवं परिवर्धित होती है। और जितना प्रबल आपका विश्वास होगा उतने ही आपके विचार भी प्रबल होंगे। लेकिन यदि आपके विचार भी दुर्बल होंगे और तब आप जिस काम को भी हाथ लगाएंगे वह बेकार ही साबित होगा। जैसे अनेक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हर काम को केवल सतही तौर पर करते हैं, वे काम की गहराई तक नहीं पहुंचते, बल्कि यह कहा जाए तो अधिक उचित होगा कि वह काम की गहराई तक पहुंचना ही नहीं चाहते। इसका कारण यह है कि उनका विश्वास दृढ़ नहीं होता और इसीलिए वह किसी के कहने पर और कभी भी बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति यदि किसी काम को करने के लिए तैयार भी हो जाएं, तो भी अपने अशक्त विश्वास के कारण छोटा सा विघ्न आने पर भी दूर भाग जाते हैं और इस प्रकार उनका वह काम अधूरा ही रह जाता है। ऐसे व्यक्ति सदा ही अपने विरोधियों की दया पर जीवित रहते हैं, क्योंकि उन्हें जब भी चाहे कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार मोड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से अविश्वसनीय होते हैं। उनकी मति कभी भी स्थिर नहीं रहती है। उनमें किसी भी प्रकार का निर्णय करने की शक्ति का अभाव होता है और ऐसे व्यक्ति कभी भी दृढ़ निश्चयी नहीं कहे जा सकते और नहीं ऐसे व्यक्ति विश्वास पात्र हो सकते हैं।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने दोषों पर ध्यान देने की बजाय अपनी अच्छाइयों को पहचाने और उन्हें विकसित करें। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

व्यक्तिगत जीवन में ऐसे व्यक्ति भले ही कितने भी भले हों, लेकिन फिर भी उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता जिन व्यक्ति का अपना आत्मविश्वास कमजोर हो। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य उन्हें कभी भी नहीं सौंपा जा सकता। जिस व्यक्ति का विश्वास दृढ़ नहीं है, वह कोई भी महान कार्य तो कर ही नहीं सकता और न ही किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा करने में समर्थ हो सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति का विश्वास दृढ़ हो, गंभीर हो, जिसके संपूर्ण व्यक्तित्व में निष्ठा और दृढ़ निश्चय की झलक स्पष्ट दिखाई पड़े, तो वह निश्चित रूप से भरोसे का व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। उस पर एवं उसकी कार्यक्षमता पर अवश्य ही विश्वास किया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से कर्मठ तो होगा ही, प्रभावशाली भी होगा, क्योंकि वह किसी भी प्रकार की विरोधी विचारधारा से प्रभावित नहीं हो सकता। यदि आज के नव युवक को यह पता लग जाए कि दृढ़ निश्चय में और अपने उद्देश्य के लिए अपने निश्चय को दोहराते रहने में कितनी शक्ति है, तो इससे उन्हें बड़ा ही बल मिलेगा। तब वह जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वह बन सकेंगे और कर सकेंगे। तब उनकी हर आशा आकांक्षा सर्वोत्तम रूप में सफल होगी। ऐसे व्यक्ति किसी के कहने सुनने से अपने उद्देश्य को बदलते नहीं और इसीलिए उसे प्राप्त कर लेते हैं। सत्य जानिए, दृढ़ निश्चय में इतनी अटूट शक्ति रहती है कि इससे मनुष्य के जीवन में क्रांति आ जाती है। मनुष्य अपनी बहुत सी गलतियों व बुरी आदतों से छुटकारा पा सकता है और उन बुलंदियों तक जा पहुंचता है जहां पहुंचने की वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। कार्य साधारण हो या असाधारण, उसे पूरा करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है।

0: ओए रुक रुक, तो सुनाई नहीं देती? और ये पुकार है आपकी गड्डी की, तो कह रही है कि बिना पिए मेरे को चलाओ, और ये पुकार आपके बच्चों की भी हो सकती है, तो जो सलामत घर पहुंचना हो तो बिना पिए गाड़ी चलाना, समझे? चलो निकल लो अब, और हाँ हैप्पी जर्नी मेरी तरफ से अवलदार कड़क। हाँ जो आपको कहता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, और ठीक ना? ठीक।
1: ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

किसी भी प्रकार का प्रण अथवा प्रतिज्ञा अन्य कुछ नहीं है, इच्छा शक्ति का ही दूसरा नाम और इसी का दूसरा रूप दृढ़ निश्चय है। अतः जिस व्यक्ति को भी आप आज सफल अथवा महान देखते हैं, उसने पहले अपने कार्य के प्रति अपनी अटूट इच्छा शक्ति एवं दृढ़ निश्चय से ही काम लिया था, क्योंकि जिस व्यक्ति को अपने जीवन उद्देश्य पर अटूट विश्वास है, जिसकी निष्ठा एवं संकल्प अटूट हैं, जिसमें अपने कार्य को पूर्ण करने का सामर्थ्य है और जिसमें अपने रास्ते की रुकावटों को हटाने की शक्ति है, तथा जो किसी भी प्रकार की परिस्थिति अथवा वातावरण से अधिक शक्तिशाली है, वह किसी भी काम को करने में सफल होगा और अवश्य ही सफल होगा। ऐसे व्यक्ति को सफल होने से संसार की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। सफलता प्राप्ति के लिए अपनी योग्यता पर पूर्ण विश्वास होना, दृढ़ निश्चय होना एवं इच्छा शक्ति का होना बहुत आवश्यक है। तभी व्यक्ति मार्ग में आने वाली बाधाओं को लांघ सकता है, दुर्भाग्य का मजाक उड़ा सकता है और तब उसकी कार्य शक्ति और भी अधिक सुदृढ़ बन जाती है। वह महान उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही उसकी ईश्वर प्रदत्त योग्यता और शक्तियां अधिकाधिक समर्थ बनाकर एवं केंद्रित होकर उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचा देती है। अपने विश्वास को बार बार दोहराते रहने से आपके साहस में अनूठी वृद्धि होती है और साहस ही व्यक्ति के आत्मविश्वास की रीढ़ की हड्डी है। जिसके समक्ष कोई व्यक्ति इस प्रकार कहता है कि मैं इस काम को अवश्य पूरा करूंगा, तब न केवल उसका साहस ही बढ़ता है बल्कि उसका आत्मविश्वास और भी सशक्त होता है, जिससे उसके रास्ते में आने वाली रुकावटें हट जाती हैं और उसकी रचनात्मक योग्यता और अधिक प्रखर होकर उसकी ध्वंसात्मक विचारधारा को नष्ट कर देती हैं। कठिन से कठिन कार्य भी केवल रचनात्मक मनःस्थिति में ही हो सकते हैं, निषेधात्मक मनःस्थिति में नहीं। रचनात्मक मनःस्थिति कार्य शक्ति है, इसमें आक्रामक शक्ति होती है, लेकिन इसके लिए उस मनःस्थिति की आवश्यकता होती है जो इसे झेलते हुए प्रयोग में लाए, अन्यथा व्यक्ति पिछग्गू भले ही बन जाए, स्वतंत्र कार्यकर्ता कभी नहीं बन सकता। नेता और जननायक बनने की तो बात ही नहीं उठती है। स्वतंत्र कार्यकर्ता, नेता अथवा जननायक बनने के लिए अपने मन से निषेधात्मक विचारों को निकाल बाहर कर उसके स्थान पर विधेयात्मक विचारों को स्थापित करना होगा। जितने हम अपने मन में सकारात्मक विचारों को भरते जाएंगे, उतना ही हम एक सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होते जाएंगे और यही सकारात्मक ऊर्जा हमारे असंभव कार्य को भी संभव करने के लिए सक्षम होती है। और सकारात्मक विचार तभी आएंगे जब हम अपने आप को आत्मविश्वास से, अपने मनोबल से सशक्त रखेंगे और निराशा को अपने मन से दूर हटाते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में। रेडियो मधुबन पर सुनते रहिए मुस्कुरा।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री। दोस्तों, हर एक एपिसोड में हम स्वास्थ्य के कुछ अलग अलग विषयों पर प्रकाश ले रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम सहजता से स्वस्थ रहने के तरीकों को सीख लें, और बेहतर यही होगा कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा जीवन में हासिल कर सकेंगे। व्यक्ति कुछ भी साधना करना चाहता है, भले वो पढ़ाई हो, नौकरी हो, या कला के क्षेत्र में, या किसी भी क्षेत्र में कुछ भी हासिल करना चाहे, तो शरीर का स्वस्थ रहना, मन का स्वस्थ रहना आवश्यक है। इस स्वास्थ्य के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आइए आज स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए और बेहतर बनाने के लिए क्या करने की जरूरत है, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी। पेशे से एक MBBS डॉक्टर हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में इनका एक लंबा अनुभव है, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं और साथ ही भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ से आज वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जहाँ पर इनकी अनेकों पीढ़ियां लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिलाती रही हैं, जहाँ पर परिवार में ही इनके अनेक पुश्ते डॉक्टर्स का काम करते रहे हैं। डॉक्टर साहब, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, हमने इन बातों को समझा कि प्रकृति चिकित्सा के आधार से जब हम ये समझते हैं कि स्वास्थ्य के कई आयामों में हम प्रकृति के तत्वों को सही तरीके से समझकर स्वास्थ्य को सही रखने में उनका इस्तेमाल करते हैं, वहीं प्रकृति चिकित्सा कहते ही लोग ये जो बात कहते हैं कि नहीं, वहां तो भाई आप खान पान में बहुत परहेज करनी पड़ेगी, खान पान आपका बदलना पड़ेगा। कई लोग तो प्रकृति चिकित्सा के नाम से भी लोग कहने लगते हैं नहीं नहीं वहां तो खाने ही नहीं देंगे, ये भी कहने लग जाते हैं। तो इन बातों को समझा जाए कि क्या प्रकृति चिकित्सा में भोजन के प्रति धारणा क्या है, भोजन क्या है, इन चीजों को समझे।
1: प्रकृति चिकित्सा में भोजन बंद नहीं किया जाता है। हम लोग यहां पर खाने को आधा, पानी को दुगना, कसरत को तिगुना और हंसने को चार गुना कर देते हैं, जिससे आपको संपूर्ण स्वास्थ्य मिले। हम कभी भी आपका भोजन बंद नहीं करते हैं, और बंद हम तभी करते हैं जब शरीर को उसकी जरूरत हो। हम आपको पानी, नींबू और शहद देते रहते हैं। आपका शरीर अपने भोजन तंत्र से पूरी शक्ति को निकालने में सक्षम है। आप जो भोजन करते हैं वह आपका शरीर उसमें से अपने लिए जो ताकत का सामान है उसको निकाल के अपने पास रख लेता है, और यदि उसको ज्यादा मिलता है तो वो उसको मोटापे के रूप में पूरे शरीर में इधर उधर डिपॉजिट कर देता है, ये सोच के साथ कि भविष्य में कभी अगर भूखमरी होगी तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर कॉमन टर्मिनोलॉजी में या रोज की भाषाओं में समझें कि हम और आप FD करते हैं, डिपॉजिटी में उसको लॉक करते हैं, यही सोचकर कि ये हम कभी भविष्य में हमें जरूरत होगी तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। एक बड़ी सीधी बात है, आप जितना खा रहे हैं उतना अगर आप पचा रहे हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। यदि आप ज्यादा खा रहे हैं, पचा रहे हैं और ज्यादा अपने शरीर में उसको डिपॉजिट करा रहे हैं तो आप बीमार पड़ जाएंगे। प्राकृतिक चिकित्सालय हमेशा आदर्श आहार की बात करता है। अगर हम इसे एक मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में इसको यूज करें तो हम लोग बैलेंस्ड डाइट के बारे में इस्तेमाल करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सालय हमेशा शाकाहारी भोजन की बात करता है, और वो ये कहता है कि प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है जो हमें पेड़ पौधों से मिल सकता है। अगर हम इस समय मॉडर्न भोजन को देखें तो हम एक तरह से पूरे भोजन को तीन बड़े भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक वेजिटेरियन फूड, दूसरा नॉन वेजिटेरियन फूड, और अब तीसरा जो बहुत जिसका प्रचलन प्रचार प्रसार हो रहा है वो है वीगन, जिसमें वो किसी भी जानवर का दूध और शहद इसका भी प्रयोग नहीं करते। और तीनों भोजन जैसे देश काल परिस्थिति के हिसाब से एकदम ठीक है। हम चिकित्सालय में, आरोग्य मंदिर में या किसी भी प्राकृतिक चिकित्सालय में आप जाइएगा, वहां पर शाकाहारी भोजन या वेजिटेरियन भोजन के बारे में ही बात की जाती है।
0: पहले तो ये बात समझी जाए डॉक्टर साहब, जब प्रकृति चिकित्सा में भी भोजन दिया जाता है, आप ये कहते हैं कि भोजन एक व्यक्ति के स्वास्थ्य में कितनी बड़ी भूमिका अदा करता है? क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई रोटी कपड़ा मकान ये तीन बेसिक आवश्यकताएं हैं, तो लोग ये सोच लेते हैं कि भाई जो मिल रहा है उसे खा लेना चाहिए। क्या भोजन का स्वास्थ्य से कोई संबंध है? क्योंकि लोग तो यही समझते हैं कि भाई भोजन तो पेट भरने के लिए है, जो आपने खा लिया सो खा लिया। अब क्या इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम क्या खा रहे हैं?
1: मैं, आप और जितने श्रोतागण हमें सुन रहे हैं, हम सब एक कोशिका थे। हम अपने माँ के गर्भ में एक सिंगल कोशिका थे और उस कोशिका को अपनी माँ ने एकदम अच्छा भोजन अपने रक्त से अपनी कोख में रख के उसका लालन पालन करके हमको आज इस हमारे उस सिंगल कोशिका जो एक कोशिका थी उसको डिवाइड करते करते करते करते अच्छा भोजन देते देते उसी से हमारा सिर मुंह नाक दोनों हाथ दोनों पैर हमारा पेट हमारे सारे अंग बने और हम बाहर निकले। तो हमें अच्छे भोजन और स्वस्थ भोजन का जो ज्ञान है वो तो अपनी माँ की कोख से ही मिला। आप देखिए कि एक प्रेग्नेंट लेडी को कितनी चीजें मना की जाती हैं कि ये मत खाओ ये मत खाओ, बच्चे पे बुरा असर होगा। आप सोचिए भैया, वहां एक माता ने 9 महीने अपने भोजन को कंट्रोल किया और वो भोजन किया जो कि उसके बच्चे और उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा था, और उसने वो कोई भी चीज नहीं खाई जो कि उसके बच्चे के और उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं थी, भले ही उसको कितनी भी वो चीज पसंद क्यों ना हो। तो बैलेंस्ड डाइट, आदर्श आहार का जो पौधा है जो बीज है वो एक माँ की कोख में ही डाल दिया गया है। प्रकृति ने उसे माँ की कोख में ही डाला, पर हम बाहर निकले, हमने अपने आप को प्रकृति से ज्यादा कलमन समझा, तो हमको जो मिला हम वो खाते चले गए। एक इंग्लिश का बहुत फेमस प्रोवर्ब है ना, आई लिव टू ईट, सम ईट टू लिव, आई लिव टू ईट, क्योंकि मैं जीवित ही इसीलिए कि मैं अच्छा खा सकूं। तो आप को माँ की कोख में जो आदर्श आहार और जो अच्छे आहार की जो बीज आपके अंदर डाला गया है उसको प्लीज बाहर निकल के भी थोड़ा सा सजा कर संवार कर रखें। उससे आपके और आपके शरीर के लिए दोनों के लिए अच्छा होगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले इंडिया में बहुत कम थी, विद टाइम हमारा न्यूट्रिशन बेटर हुआ, विद टाइम हमारे मेडिकल सर्विसेज बेटर, तो हम अच्छा होते चले गए। हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले 40-45 साल थी वो अब बढ़कर इंडिया में 65-75 ईयर्स हो गई है। जो पहले मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट की बच्चा देते समय माँ की मृत्यु हो जा रही थी, छोटे बच्चे सरवाइव नहीं कर पा रहे थे क्योंकि माँ को पोषण ठीक से नहीं मिला था, वो सब चीजें बेटर हो गई। और वो इसलिए बेटर हो गई क्योंकि हमने अच्छा भोजन और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम जागरूक हुए, हमने उसके ऊपर काम किया और आज हम सब अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बहुत बेटर कर चुके हैं।
0: तो अब बात ये होती है कि जब भोजन अब बेहतर होने लगा है, लोग बेहतर भोजन करने लगे हैं, तो बेहतर भोजन करने की वजह से लोगों का स्वास्थ्य भी बेहतर हो जाना चाहिए। आज मजेदार बात ये अक्सर लोग देखते हैं कि नई नई बीमारियां हो रही हैं, जिन बीमारियों के बारे में जैसे मैं अपने दादाजी के जमाने में उन चीजों के बारे में पूछता था तो वो कहते थे कि ये हमारे समय की बीमारियां नहीं है, ये अभी की उपज है, ऐसा वो कहते थे। तो ये भी बात समझने की है, क्या भोजन के साथ ये बीमारी आई है या हम भोजन के प्रति सही अर्थों में जागरूक नहीं है, या सही अर्थों में स्वास्थ्य के लिए हितकारी भोजन क्या है, उसको हम कैसे डिफाइन करें?
1: भैया आपने बोला कि भोजन बेहतर हो गया है, मगर भोजन बेहतर के साथ साथ ज्यादा हो गया है। तो जो जितनी बीमारियों की हमने बात की वो अधिकतर ज्यादा भोजन करने से हुई, और पैक्ड फूड और प्रोसेस्ड फूड ने इसमें चार चांद लगा दिया। तो ज्यादा भोजन, प्रोसेस्ड भोजन, पैक्ड भोजन और इंस्टेंट भोजन, इन चार चीजों ने पूरे के पूरे हमारे पाचन तंत्र का, हमारे स्वास्थ्य का कबाड़ा निकाल दिया। तो बेहतर भोजन करिए, कम भोजन करिए और स्वस्थ भोजन करिए। हमने शुरुआत में बोला अपने भोजन को आधा कर लीजिए। अभी जितने लोग को, जो हमारे श्रोतागण सुन रहे हैं, अगर उनको कोई बीमारी हो, प्लीज आप कोई डाइटिशियन, कोई न्यूट्रिशनिस्ट, कोई भोजन के अभी सब कुछ को छोड़ दीजिए, अपने क्वांटिटी ऑफ फूड को 50% कर दीजिए। अपने भोजन में से प्रोसेस्ड एंड पैक्ड फूड को हटा दीजिए, आप देखेंगे 1 से 1.5 महीने में आप मोर देन 80% बेटर हो जाएंगे, सिर्फ इतना करने से। एक पुरानी कहावत भी है, वाणी से व्यवहार, वाणी से व्यापार, कि मतलब आपकी जिह्वा से ही व्यापार हो रहा है कि जिह्वा से व्यापार हो रहा है। और अब तो तीसरी चीज है वाणी से ही स्वास्थ्य, क्योंकि जिह्वा में ही जो चीज है उसको ही शांत करने के लिए, उसी स्वाद को शांत करने के लिए हम लोग भैया खाए चले जा रहे हैं। और इंग्लिश में एक और, मैं एक सबको एक लाइन और बोलता हूं, योर स्टमक इज नॉट अ डस्टबिन, प्लीज डोंट पुट वट एवर यू सी राइट एंड लेफ्ट, प्लीज। एक एग्जाम्पल हमेशा, मैं जब अपनी मेडिकल की पढ़ाई खत्म किया था तो डिवाइन लाइफ सोसाइटी ऋषिकेश में मैं पढ़ रहा था, और वहां जब किसी दिन 2 कटोरी मिलती थी तो इसका मतलब था किसी भक्त ने आज खीर का प्रसाद दिया है। तो मैं हमेशा उस दिन करता क्या था कि मैं सब्जी जो कटोरी में लेनी थी उसको प्लेट में लेता था, और खीर पे मैं दोनों बार टिप करता था, दोनों कटोरियों पर टिप करता था, 2 कटोरी खीर खाता था। तो वहां पद्मनाभन जी महाराज, जो वहां के डिवाइन सोसाइटी के हेड थे, उन्होंने ये देखा मेरा आचरण, 1 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते, तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोला डॉक्टर टुडे आई विल गिव यू अ फीस्ट ऑफ खीर। और उन्होंने मेरे सामने भैया 8 कटोरी खीर रखी, और कटोरी नहीं, वो टेक्निकली कटोरा था,

0: और मेरे जिह्वा पे जाए, क्योंकि कोई भी चीज गरम, ठंडा, मीठा, नमकीन, जैसे ही आपकी जीभ से पीछे जाता है उसका टेस्ट जीरो, उसका फूड जीरो, वो सिर्फ एक कैलोरी में कन्वर्ट हो जाता है। जब तक वो भोजन का सामान आपके मुंह में है तब तक वो आपको उसके बारे में संकेत, सिग्नल दे रहा है। जैसे ही वो मुंह से नीचे उतरा तुरंत उसका जो टेस्ट है वो जीरो हो गया। तो इसीलिए भैया मिताहार की बात होती है, आदर्श आहार की बात होती है, कम खाने की बात होती है। और जो कोई भी, फिर से मैं बोल रहा हूं, जो कोई भी हमारी बात सुन रहा है, जो भी चीज उसको पसंद है उसकी भी क्वांटिटी आधी कर दे तो उसके लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा।
1: बहुत ही बढ़िया चीज आपने बताई कि दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या से अगर आप गुजर रहे हैं तो पहला परिवर्तन अपने आहार में आप ये कर सकते हैं कि आप अपने भोजन की मात्रा को आधा कर दें। अगर आप चार रोटी खा रहे हैं तो दो पे ले आए, अगर आप दो कटोरी चावल खा रहे हैं तो एक पे ले आए। भोजन को आधा करके देखें और फिर देखें इसके कितने फायदे होते हैं। अनेक कहावतें मिताहार के बारे में या कम खाने के बारे में कही गई हैं डॉक्टर साहब। यहाँ हमारे यहाँ राजस्थान में ये बात कही जाती है कि कम खाओ गम खाओ, यानी अगर आप कम खाते हैं तो आपकी जिंदगी के गम भी आप खा लेते हैं, यानी जो दुख है वो भी कम हो जाते हैं, आप ये चीज सुनने को मिलती है। तो ये बात स्पष्ट होती है कि कम भोजन करने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा भोजन करने की जरूरत नहीं है, और भोजन की मात्रा में कमी लाने से भी शरीर के स्वास्थ्य को हम बेहतर कर सकते हैं। अब इस बात की भी समझ होनी चाहिए कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या आवश्यक है, क्योंकि विज्ञान के इस दौर में हम अक्सर ये शब्द सुनते आए हैं बैलेंस्ड डाइट इत्यादि। स्कूलों में पढ़ाया भी जाता है, इसका एक अच्छा चित्र भी बना के स्टूडेंट्स को स्कूल में समझाया जाता है, बच्चे प्रोजेक्ट्स भी करते हैं। तो ऐसे में क्या आहार है, क्या बैलेंस डाइट है, ये समझा जाए।
0: भोजन हमारे लिए बहुत जरूरी है, और जैसे आपने अभी कहा कि कम खाओ गम खाओ, इसी तरह एक भैया यहाँ आप मथुरा वृंदावन में जब घूमिएगा तो आपको एक लाइन सुनाई देगी, भूखे पेट न भजन गोपाला, कि मतलब भूखा पेट तो भगवान का भजन भी नहीं कर सकता, ये कहकर वहां लोग भिक्षार्थी आपसे कुछ दान मांगते हैं। तो भोजन हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपने भैया बैलेंस डाइट की बात की, अगर हम बैलेंस डाइट की बात करें तो इट इज कंसिडर्ड एज हेल्दी डाइट। जो भी भोजन हेल्दी है उसको बैलेंस डाइट बोलेंगे, और बैलेंस इसलिए क्योंकि एक तराजू को हम लोग इंग्लिश में बैलेंस बोलते हैं, तो तराजू की तरह कि उसमें राइट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फाइबर, वाटर, रफेज, ऑल इन अप्रोप्रिएट अमाउंट, मतलब जो भी भोजन के डिफरेंट चीजें हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, वो मतलब एक भरपूर मात्रा में होना चाहिए। माइक्रोफाइबर्स, रफेज, पानी, ये सब भरपूर मात्रा में होना चाहिए, और इनकी मात्रा अप्रोप्रिएट होनी चाहिए कि वो हमारे ऑप्टिमम हेल्थ, ग्रोथ, डेवलपमेंट को सपोर्ट कर सकें और हमारी बॉडी में डेफिशिएंसीज और डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकें। फिर से बोलूंगा कि सारा भोजन ऐसा होना चाहिए कि हम सशक्त रहें, अच्छे से रहें, हम अपने सारे काम अच्छे से कर सकें, और वो भोजन इतना पौष्टिक होना चाहिए कि हमारे शरीर में कोई कमी ना हो और हम किसी बीमारी से ग्रसित ना हो। ये भोजन एक बैलेंस डाइट की परिभाषा। अब ये एक इंटरनेशनल बात हो गई, एलोपैथी की बात हो गई या न्यूट्रिशनिस्ट की बात हुई, इसको हम अगर भारतीय परिवेश में इसी डेफिनेशन को या इसी चीज को करें तो बैलेंस डाइट आदर्श आहार है। वो कहता है कि भोजन की किस्म अच्छी हो, मतलब अच्छे किस्म का, अच्छे क्वालिटी का भोजन करिए, उसकी मात्रा उचित हो, मतलब वो भोजन की मात्रा जो हम ले रहे हैं वो उचित हो, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। और तीसरा वो कहता है कि खाने के बहुत सारे

0: भोजनों में आपस में मेल नहीं कराना चाहिए। तो वो ये कहता है कि आप अच्छे किस्म का भोजन उचित मात्रा में और बेमेल भोजन को ना करके करें। ये भारतीय परिवेश में इसको बोला जाता है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि खट्टे के साथ दही नहीं खानी चाहिए, इसको बेमेल माना जाता है। तो ये लोकली जो भोजन को लोग कहते हैं कि जैसे आप राजस्थान में रह रहे हैं तो शाम के समय ठंडा पीने को मना करते हैं। अच्छा, ये भैया ये तब बना था जिस जमाने में न फ्रिज था, न गैस थी, न कोई मॉडर्न इक्विपमेंट था। तो उस समय जैसा हम लोग रह रहे थे उस हिसाब से बहुत सारे भोजन के तरीके बने, भोजन को खाने का समय बना। तो वो चीज उस जमाने में अच्छी थी, तो आज भी अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो हमें उससे बहुत लाभ मिलेगा।
1: ये जो बात हम अक्सर बैलेंस डाइट में सुनते हैं कि भाई प्रोटीन की मात्रा इतनी होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होनी चाहिए, इत्यादि चीजें फैट की, ये एक बैलेंस डाइट के चार्ट के रूप में बताया जाता है। मगर प्रायः हम देखते हैं कि जब हम भोजन बनाते हैं या भोजन परोसा जा रहा है उस समय पर इस चार्ट पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो क्या इन सब चीजों का ध्यान रखना जरूरी है कि लोग भाई इतना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, हर दिन इतना प्रोटीन होना चाहिए?
0: इसका ध्यान रखने की भैया कोई जरूरत नहीं है। हम लोग किचन में, घर में भोजन बना रहे हैं, किसी लैब में कोई चीज नहीं बना रहे हैं। और आपकी माताएं, आपकी पत्नी, आपकी बहन, और वो आपके स्वास्थ्य के बारे में पूरे चिंतित हैं। वो कभी ऐसा नहीं करेंगे कि 10 ग्राम रोटी में 50 ग्राम घी डाल देंगे, एकदम नहीं। हाँ, ये राजस्थान में जब दामाद घर में आता है तो सुनते हैं कि उसको बहुत उस डाइट को सुपर इम्बैलेंस डाइट बना दिया जाता है, बट नहीं, एक क्वांटिटी में। भैया आप भोजन के बारे में आप इंडिया की ज्योग्राफी के हिसाब से भी समझिए। अगर हम भारत को एक लंबाई में खींचते हैं और चौड़ाई में खींचते हैं तो हमारे इधर नॉर्थ ईस्ट है पूरा और इधर गुजरात राजस्थान। तो नॉर्थ ईस्ट में पानी ज्यादा है, तो वहां पे चावल आया, वहां पर मेन स्टेपल डाइट चावल आई। फिर धीरे धीरे हम बंगाल से बिहार आते गए तो पानी थोड़ा कम होते गया, तो गेहूं गेहूं गेहूं गेहूं, तो फिर बीच के पोर्शन का आदमी चावल और गेहूं दोनों खा रहा। और फिर हम भैया नीचे जब हम लेफ्ट गए जहां पे राजस्थान और ये गुजरात मिला, तो वहां हम देखिए रोटी रोटी रोटी रोटी खाते चले गए। क्योंकि जैसा हमारा देश, जैसा वहां के वातावरण की व्यवस्था, जैसा वहां का लोकल अन्न, उस हिसाब का भोजन हमने किया और वही भोजन हमारे लिए सबसे अच्छा रहा। अब आपके राजस्थान में, या हम कहें हमारे राजस्थान में भैया, केर सांगरी, गट्टे की सब्जी, चूरमा, देखिए आप सिर्फ ग्रेन है, यहाँ कोई भी फाइबर की बात ही नहीं हो रही है। और अगर हम मेडिकली उस भोजन को देखें तो उस भोजन में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और फैट है। आप प्रोटीन के बारे में उसमें कहीं भी, वेजिटेरियन सोर्स में कोई प्रोटीन नहीं है। हाँ, दाल है, दाल उस प्रोटीन को पूरा कर रही है। अब आप तो लोग कहेंगे अच्छा, अरे कार्बोहाइड्रेट भी आ गया, फैट भी आ गया, प्रोटीन भी आ गया, फिर अरे यार फाइबर ही नहीं है, क्योंकि ग्रीन लीफी वेजिटेबल तो राजस्थान में थी ही नहीं। तो जब ग्रीन्स थे ही नहीं तो भैया वही दाल उसी आटे की ही, गट्टा क्या है भैया, आप जानते हैं, मैं जानता हूं कि वो एक ग्रेन से बनाया हुआ सिलेंड्रिकल चीज है जिसको हम सब्जी में खा रहे हैं। तो हमारा भारत का भोजन, मैं सबको ये बोलता हूं जो इंटरनेशनल न्यूट्रिशनिस्ट को कोट करते हैं कि ये देखिए ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, मैं सबको बोलता हूं हमारे भारत का भोजन अपने क्षेत्र के हिसाब से बहुत अच्छा था। जो उसमें थोड़ी बहुत कमी थी अब वो सब पूरी हो सकती है। अब तो राजस्थान में भी सेब मिल रहा है और बंगाल में भी सेब मिल रहा है जो पहले कहीं हिमाचल और कश्मीर में मिला करता था। तो पूरे देश में अब सब तरह के फल, सब तरह की सब्जियां मिल रही हैं। अपने क्षेत्र के भोजन को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए, हमेशा उसको सर्वोपरि रखना चाहिए, क्योंकि वो भोजन आपके शरीर के हिसाब से, आपके वातावरण के हिसाब से और उस एरिया की जो इम्यूनिटी है, उस जो वहां के बैक्टीरिया है, जो वहां की बीमारियां, उसके हिसाब से वो भोजन डेवलप हुआ। तो इसीलिए लोकल भोजन को नंबर 1, और उसके बाद अगर कोशिश हो जाए तो थोड़ा सलाद थोड़ी सब्जी उसमें जोड़ लीजिए, और मात्रा अगर कंट्रोल्ड है तो सारा भोजन ठीक है।
1: ये बहुत ही खूबसूरत सी बात आपने कही कि हम लोकल भोजन पर ध्यान दें, हमारे आसपास के वातावरण के हिसाब से वहां जो चीजें खाई जाती हैं, वहां के मौसम के हिसाब से जो चीजें उगती हैं, उन चीजों का उस भोजन शैली पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। और भी प्रश्न है मगर समय इशारा करता है कि यहाँ रुकना होगा। डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ आज की इस बातचीत से हमारे दोस्तों ने दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें समझी हैं, भोजन की मात्रा को कम रखना, मिताहारी बनना, जितना आप भोजन कर रहे हैं उस मात्रा को आधे कर लेने से आपके स्वास्थ्य में बहुत ही ज्यादा इजाफा होगा। दूसरा, जो भी चीजें आपके यहाँ लोकल अवेलेबल हैं उन चीजों पर ध्यान देना है, उस प्रकार के भोजन को जो लोकली मिलता है उनको आप खाने पीने में इस्तेमाल करें तो भी आपके स्वास्थ्य में बेहतरी होती है। दोस्तों, और भी प्रश्न अगली बातचीत में मैं पूछूंगा। आज डॉक्टर राहुल मोदी जी हमारे साथ जुड़े और हमारे इन प्रश्नों का उत्तर दिया, इसके लिए आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।
0: धन्यवाद भैया, ओम शांति।
1: दोस्तों, आज की बातचीत में जो चीजें सीखी हैं उन चीजों को आप आजमा कर देखें, भोजन को कम करके देखें, अल्पाहार पे आए, मिताहार पे आए, कम खाएं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर करके देखें कि कम खाने से आपके स्वास्थ्य में क्या लाभ हो रहा है, और आसपास जो चीजें मिलती हैं उन चीजों को, जो लोकल चीजें हैं उनकी प्रामुख्यता को बढ़ाएं। आज की बातचीत में बस इतना ही। सहज स्वास्थ्य कार्यक्रम में कल फिर होगी मुलाकात। रेडियो मधुबन पर कार्यक्रम जारी रहेंगे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8।

0: हेलो, हाँ हाँ पहुँचा दूंगा, समय से पहुँचा दूंगा।
1: ओए इधर इधर इधर, क्या पहुँचा दोगे है? कहाँ पहुँचा दोगे? मुझे तो लगता है ऐसे ही बीच रोड पे मोबाइल लेकर घूमोगे तो तुम ही ऊपर पहुँच जाओगे। सड़क क्रॉस करते समय मोबाइल जेब में रखो और जहाँ मन किया वहीं से रोड क्रॉस कर लोगे हैं? कोई ये जेबरा क्रॉसिंग क्या जेबराओं के चलने के लिए बनाई है? कोई जब भी रोड क्रॉस करना है तो जेबरा क्रॉसिंग से ही करना, क्या समझे? हाँ, मुझसे गाड़ी वाले तो क्या पैदल वाले भी नहीं बच सकते, क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: पैदल यात्री सड़क क्रॉस करते समय हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। खुशी को अब एक नए अंदाज से देख रहे हैं। खुशी यानी कि कंटेंटमेंट यानी कि स्टेबिलिटी। और अब अगर हमने उन फैक्टर्स को देखना शुरू किया है जो हमारे इस हैप्पीनेस इंडेक्स को अनस्टेबल या ऊपर नीचे करते हैं, तो बहुत सी ऐसी बातें जिन्हें हम अभी तक नेचुरल मान रहे थे और ऐसा लगता था कि इन पर हमारा कोई जोर नहीं है, वो समझ में आ रहा है कि पावर मेरे अपने हाथ में है। एक्चुअली एनी टाइम द मोमेंट आई अंडरस्टैंड, जैसे ही मुझे पता चला कि ये वो फैक्टर्स हैं जो मेरी इस हैप्पीनेस को कहीं ना कहीं मुझसे या मैं नहीं क्रिएट कर पा रहा हूँ, वो मैं अब कर सकता हूँ। जैसे ही मुश्किल सामने आती है तो उसका सोल्यूशन भी मिल जाता है। कुछ और फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: अगर हमने पास्ट को देखा सिस्टर शिवानी, अमेजिंग व्हाट वी हैव टॉक्ड एक्चुअली इन द लास्ट फ्यू एपिसोड्स इज कि पास्ट, और एक्चुअली मैंने ट्राई भी किया कर कि मैं कहीं थी और 2 घंटे के लिए ड्राइव, क्योंकि हमारे ट्रैफिक में फंसे हुए थे, आई रियलाइज्ड कि हम जो भी बात कर रहे थे या तो वो सचमुच पास्ट से जुड़ा हुआ था, उसको एनालाइज कर रहे थे, उसको देख रहे थे, या कुछ ना कुछ हम फ्यूचर के लिए बात करने की कोशिश कर रहे थे, यू नो कि हाउ इट विल बी, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो आई एक्चुअली ट्राइड, मैंने उनसे भी कहा कि लेट्स ट्राई टू रिमेन इन प्रेजेंट, एंड वी बिकेम साइलेंट।
1: देयर वाज नथिंग टू टॉक अबाउट,
0: यू नो, बिकॉज प्रेजेंट में आते ही ट्रैफिक दिख रहा था फिर सामने। So, actually, how to be in real, really in present? उस पे बात थोड़ा सा करना चाहूँगी।
1: It is very important when we are saying being in the present, कि present moment में my state of mind क्या है? होता क्या है कि जैसे ही हम past या future के बारे में सोचते हैं, पहले सोचते हैं फिर discuss करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी state of mind fluctuate होने लगती है। पास्ट की अगर कोई अनप्लेजेंट के बारे में सोचा तो हर्ट आएगी बात में, एंगर भी आ जाएगा, क्रिटिसिज्म होने लगेगी, सो वी गो लाइक दिस। फ्यूचर आएगा तो एंटिसिपेट करेंगे कि ये होगा, खुश होंगे, फिर फियर आएगा कि हो सकता है नहीं हो। तो ये बहुत सारी जो अनस्टेबल कर देती हमें, ये सारी इमोशंस ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होती जाती हैं। बींग इन द प्रेजेंट मोमेंट, इट डजेंट मीन यू कांट टॉक अबाउट द फ्यूचर, कि अगर आप बात कर रहे हो कि कल सारा दिन में हमें क्या करना है, लेकिन ये ध्यान मन की स्थिति, आई एम हैप्पी नाउ। सी व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्यूचर वी से ये होगा तो अच्छा होगा, ये होगा, यू नो, ये होगा तो बहुत अच्छा होगा, ये होगा तो बहुत खुशी होगी, और अभी ऐसे ऐसे जा रहे। यू कैन प्लान व्हाट यू वांट टू डू फॉर टुमारो, बट राइट नाउ चेकिंग कि हैप्पीनेस उस पर डिपेंडेंट नहीं है, हैप्पी तो मैं ऑलरेडी
0: हूँ,
1: अभी हूँ। नॉट कंडीशनिंग योर माइंड प्रोग्राम में, हमें पता ही नहीं चलता, हम अनअवेयर हैं कि हम अपने माइंड को कंडीशन करते जाते, जब ये होगा ना तो तुम खुश होगे, जब ये होगा तो तुम खुश, तो वो माइंड प्रोग्राम कर लेता है और वो वेट करता है कि ये होगा तो मैं खुश होऊंगा, और फिर वो डिपेंडेंसी, फिर वो फियर, ये सब आता। तो इम्पोर्टेंट है माइंड की स्टेबिलिटी को अभी देखते रहें, yes, this will happen, but my happiness is not dependent.
0: I think to somewhere what we need to do is that see मेरी अभी present में मेरी situation क्या है, you know, मेरी mental state क्या है, फिर मैं past को भी analyze कर सकती हूँ और future के बारे में भी anticipate या जो planning है वो की जा सकती है, you know?
1: लेकिन जब भी वो सब कुछ कर रहे हैं, keeping the focus on my state of being, क्योंकि सारा कुछ जो हो रहा है, सपोज हम पास्ट में भी किसी हर्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उन्होंने मुझे ऐसा कहा, ऐसा किया, आई एम ट्राइंग टू जस्टिफाई माई हर्ट, तो जस्टिफाई करने से मैं खुश नहीं हो जाऊंगी, यू नो, मुझे लगता है आई एम राइट जब मैं जस्टिफाई करती हूँ, बट आई वॉन्ट बी हैप्पी बाय दैट, आई विल हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ टू बी हैप्पी, टू बी स्टेबल, एंड वंस आई डू दैट I will not blame anyone for the hurt. Right now, my mind is still blaming other people for the hurt. And that's why I want to talk about it. I want to discuss it. The day I'm able to tell myself ki nahin, main theek hoon, main stable hoon, mujhe zarurat nahin lagegi. Kyunki main unko ab zimmewar nahin thehraungi apne dard ke liye. Mujhe ye pata hai ki ye maine kiya, maine create kiya, mujhe finish karna hai. So then I will be very stable. See, discuss karna, lekin uska result kya? हम डिस्कस करते हैं सो दैट वील फील बेटर, चलो मेरे साथ कुछ हुआ, लेट मी गो एंड टॉक टू समबडी अबाउट इट। तो बात करने से क्या हो जाएगा, मैं आपको बात करूंगी कि आपको पता है उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, फिर आप ऊपर से बोलेंगे अच्छा उन्होंने ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए
0: अच्छा,
1: था
0: तो
1: उनको
0: लेकिन
1: आपके
0: वो
1: साथ।
0: दो जने जब हों तो, और 2 घंटे हमने दिखाने, तो बात क्या करें फिर?
1: अगर आपको पास्ट की कोई बात से सीखना भी है और आप 2 जने बात कर रहे हैं, Wouldn't it be nice to discuss that what I went through when I went through this incident? मैंने क्या लर्न किया, how did I grow and how I am growing.
0: That's what I did, you know.
1: Yeah, that's okay.
0: That's what I'm saying.
1: See, that as long as pura focus apni personal internal growth ke upar hai, to usse kya hoga? Aap empowered hote jayenge. And aapki jo wo discussion hogi, agar do logon ke saath hai, aapki discussion dusre ke liye bhi empowering hai. Kai bar hume realize hi nahi hota ki jab hum ek dusre ko phone karke ya ek dusre se baat karte hue ghanton unko apni वो वाली कहानियां सुनाते रहते हैं जहां लोगों ने हमें धोखा दिया. अदर पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड समटाइम्स. एंड हम क्या कर रहे हैं, अपना दर्द अपना वो सारा हम दूसरे को भी दे रहे हैं. पहले ही सामने वाले के पास अपना शेयर ऑफ प्रॉब्लम्स है. सो शेयरिंग एंड डिस्कसिंग हर्ट एंड पेन डजंट क्रिएट एनी
0: एक्चुअली क्रिबिंग.
1: क्योंकि फिर क्या होता है, वो हर्ट डिस्कस करते करते हम अभी पेन में चले जाते हैं. दैट इज व्हेन हमने पास्ट का इमोशन प्रेजेंट में कैरी फॉरवर्ड किया, फिर आज डिस्कस किया तो वो और पक्का हो गया, फिर इसको हम कल भी डिस्कस करेंगे वो और पक्का होता जाएगा. एंड देन माई एवरी डे इज इन हर्ट. इट्स नॉट जस्ट yesterday, but it's today, then it's tomorrow, and it's every day. That's where it becomes very damaging. Because then, wo mera ek dard mein rehne ka hi sanskar banta ja raha.
0: So somewhere that is needed to be checked. So wo hum check karne lag gaye hain, aur wonderful, you know, the way it is coming out. Ki जब हम देखना शुरू करते हैं तो हमें realization होता है कि हम कर क्या रहे थे.
1: जैसे आपने देखा तब आपको रियलाइज हुआ. अभी तक तो हमें रियलाइजेशन भी नहीं थी कि हम कितना पास्ट और फ्यूचर के बारे में बात करते हैं.
0: अनदर फैक्टर व्हिच एक्चुअली आई विल से नाउ आई एम वेरी केयरफुल व्हाट आई एम गोना से इज दैट आई एम नॉट एबल टू क्रिएट दैट हैप्पीनेस. आई एम नॉट सेइंग इट टेक्स अवे माय हैप्पीनेस. इज दैट आई गेट सो स्ट्रेस्ड आउट.
1: Yeah.
0: लाइक वी आर ऑल लिविंग इन दिस एरिया, मतलब जो हमारा काम का या जिंदगी का हर रोज का, मतलब घर तक पहुँचते पहुँचते ट्रैफिक में 2 घंटे आपको लगते हैं, उस पूरे प्रोसेस में जो आपको चीज़ें वहाँ पे होनी हैं या करवानी हैं, इट्स सो स्ट्रेस्ड आउट एंड यू फील सो स्ट्रेस्ड आउट. सो व्हाट इज़ टू बी डन अबाउट दैट.
1: उसके भी हमारे कुछ बिलीफ सिस्टम्स बने हुए हैं जिनको पहले चेक करेंगे तो स्ट्रेस अपने आप वी विल बी एबल टू फ्री फ्रॉम दैट. कि पहली बात तो स्ट्रेस शब्द को ही देखें तो इट्स अ वेरी न्यू वर्ड इन द वोकैबुलरी. आई थिंक अगर हम 15-20 साल पहले जाएं तो हमारी वोकैबुलरी में ये कोई वर्ड नहीं था, स्ट्रेस वर्ड नहीं था. हम कहते थे चिंता, हम कहते थे टेंशन, लेकिन अभी तो स्ट्रेस मतलब वी आर जस्ट टेलिंग आवर सेल्फ कि हम एक स्टेप हायर होते जा रहे हैं. और ये आज हम सिर्फ कॉरपोरेट और इस सर्कल में नहीं लेकिन स्टूडेंट्स भी इस वर्ड को यूज़ करते हैं. जिस एज ग्रुप को हम कहते थे बेस्ट लाइफ, यू नो स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ एंड that's become
0: most
1: one
0: difficult.
1: Of the most difficult.
0: Most difficult. I didn't say worst,
1: yeah.
0: But yes, one of the most difficult because I'm seeing children going through so much of again stress, and it's just a thought process, you know. अपने ही thought process को ऐसे create करते हुए. Another thing which I want to ask Sister Shivani is that is it the stress we are creating, or is it like you know ऐसे ऐसे situations जो आती जाती हैं. और हमने अपने आप को कंपटीशन में डाल दिया है. मैं ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हूँ या आप?
1: ये एक स्टेटस सिंबल है आज पे. क्योंकि अगर आप स्ट्रेस में नहीं हैं, आप एकदम रिलैक्स्ड हैं, दैट मींस तो आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं.
0: क्योंकि अगर उनको क्या फर्क पड़ता है?
1: अगर कोई कुछ कर रहा है, इफ समवन इज इन द रेस एंड वो कंपटीशन में है, उसको स्ट्रेस तो होना ही होना है. एंड दैट इज व्हाई द डीपेस्ट बिलीफ सिस्टम जो है वो है कि स्ट्रेस इज नॉर्मल. ये तो नॉर्मल है,
0: ये तो होना ही चाहिए. आई एम लाइक मेरा बच्चा तो आई एम देयर देयर वाज वन मदर हु सेड शी इज नॉट इवन बॉदर्ड, शी इज नॉट इवन स्ट्रेस्ड आउट.
1: सी शी इज नॉट इवन कंसर्नड एंड शी इज नॉट इवन स्ट्रेस्ड. ये 2 अलग सेंटेंसेस हो गए. एक है कि आप केयरलेस हैं, आपके एग्जाम है, आप पढ़ नहीं रहे, आप केयरलेस हैं. लेकिन एक है आप स्ट्रेस्ड हैं. हम दोनों चीज़ों को सेम कैसे बोल सकते हैं?
0: लेकिन हम दोनों चीज़ों को एक ही मानने लग गए हैं.
1: अभी एक है कि मेरा एग्जाम है कल, मुझे पढ़ना है, पर मैं पढ़ नहीं रही, दिस इज केयरलेसनेस. तो कोई कहे कि यू आर नॉट कंसर्नड या यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट योर स्टडीज. लेकिन एक है कि मुझे इतना ज़्यादा वो यू नो दर्द ने घेर लिया है कि अब क्या होगा, कल क्या होगा, मेरे से नहीं होगा, ये तो बहुत मुश्किल है. अगर मेरा नंबर ठीक नहीं आया तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे, फ्रेंड्स क्या सोचेंगे. ये जो एक होल विशियस साइकिल ऑफ नेगेटिव थॉट्स जो हमें पकड़ लेता है, तो हम पढ़ने भी अगर बैठते
0: तो
1: हमसे पढ़ाई नहीं होती. और तब हम कहेंगे कि आई एम अंडर स्ट्रेस. एंड तब ऐसी स्थिति में हम पढ़ते भी हैं लेकिन इट डजंट रियली गो इन, क्योंकि माइंड तो मन नहीं तो पढ़ना बैठ के, तो माइंड एंड इंटेलेक्ट हैज टू सिट एंड स्टडी, लेकिन वो मन तो इस साइकिल ऑफ थॉट्स में चला गया है, तो वो उसमें कैसे जाएगा? और फिर इतना पढ़ने के बावजूद भी जो हमारी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, इट डजंट रियली हैपन दैट वे.
0: एंड देन वी से कि हमने इतना काम किया था, इतना किया था और
1: क्योंकि कितनी बार हम स्कूल में कहा करते थे कि मुझे सब कुछ आता था, यू नो, आज मुझे एग्जाम में सब कुछ आता था, लेकिन मेरे से ये केयरलेस मिस्टेक हो गई. तो केयरलेस मिस्टेक यूज टू बी अ वेरी कॉमन वर्ड, कि और वो केयरलेस मिस्टेक बाद में ऐसे लगती है कि इतना ईजी था. एंड यू समटाइम्स हैव टू आस्क योर सेल्फ, हाउ कुड आई मेक दिस मिस्टेक? मैंने सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन तो कर दिए और उसमें इतनी छोटी बात पर मैं कैसे ये गलती कर सकती हूँ? But that itself is a sign कि mind alert नहीं था. तो mind ने 2+2=4 लिखने की जगह 2+2=6 लिख दिया. मतलब ये कोई ये थोड़ी है कि मैंने पढ़ा नहीं था, ये भी नहीं है कि मुझे आता नहीं था, ये भी नहीं है कि मुझे याद नहीं, यू नो, कोई चीज़ें होती है मुझे याद नहीं आ रही उस टाइम मैंने पढ़ा था, लेकिन ये है कि सब कुछ पता होते हुए भी उस टाइम पता नहीं कैसे लिख दिया. दिस इज़ लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, लैक ऑफ अलर्टनेस, क्योंकि माइंड पे वो एंग्जाइटी, वो स्ट्रेस है. तो परफॉर्मेंस के लिए जो हम कहते हैं कि यू नो टू परफॉर्म वेल इन द एग्जाम, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू, इनफैक्ट you shouldn't be under stress, but you have to be in fact very very calm. Aajkal to sikhaya jata hai ki exam se ek din pehle be relaxed, be calm, kyunki jitna aapne kiya hai it's important ki wo aap best dekar aaye, bajaye ki aap itna upset ho jaye ki jitna kiya hai. So, lekin ye belief system bhi hum hi to bachchon ke andar dalte hain. यू नो, अगर बच्चा आराम से है, आराम से पढ़ रहा है, तो पेरेंट्स कहेंगे टेंशन नहीं है तुमको, कल एग्जाम है. क्यों? क्योंकि उनको बहुत टेंशन हुई हुई है. हमें अपने आप से पूछना होगा कि क्या हम कर रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग टू अस. इट इज़ नॉट कि एग्जाम डिफिकल्ट है. यू नो, हम क्या कहते हैं, प्रेशर बहुत है, कॉम्पिटिशन बहुत है, या सिलेबस बहुत है. इट्स नॉट दैट. आई थिंक हमने इससे ज़्यादा सिलेबस किए हुए हैं, लेकिन अभी है कॉम्पिटिशन है. लेकिन जैसे ही मैं वो कॉम्पिटिशन को एंटिसिपेट करती, मैं साथ साथ एंटिसिपेट करती इनसिक्योरिटी ऑफ इफ आई डू नॉट पास इन दैट कॉम्पिटिशन, तो मैंने तुरंत क्या क्रिएट कर लिया, फियर. फियर जैसे ही क्रिएट किया, दैट इज स्ट्रेस. फियर कोई एग्जाम देने का नहीं होता है. नो वन इज स्केयर्ड ऑफ गिविंग एग्जाम. मुझे जितना आता है आई विल गिव माई बेस्ट. फियर किस चीज का है?
0: पता नहीं जब रिजल्ट आएगा तो विल आई बी एबल टू डू.
1: अगर मैंने उतना अच्छा, सी दैट इज वाई वी से कि फ्यूचर में रहना क्यों इतना डैमेजिंग है. अगर आप अभी प्रेजेंट में हैं तो आप सिर्फ अभी के पढ़ने पर फोकस करेंगे, आपको कोई स्ट्रेस नहीं क्रिएट हो सकता. स्ट्रेस कौन सी थॉट से क्रिएट हो रहा है? अगर मेरा उतना अच्छा नहीं हुआ तो आगे क्या होगा, मुझे अगर नई एडमिशन मिला, मेरा करियर, यू नो, ऑल दोज थॉट्स, तो फिर पढ़ने में मन कैसे लगेगा? तो ये जो प्रेजेंट में रहने की आदत है, इसको अगर हम नेचुरल करते जाते, ये हमें हर एस्पेक्ट पे मदद करती है. जैसे कल आपने कहा यू वर जस्ट ड्राइविंग, तो मे बी दैट टाइम इट डिडंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस. बट अगर आप एक प्रोजेक्ट के बीच में हैं, आप एक डेडलाइन पर काम कर रहे हैं, या जैसे आपका इस तरह से एग्जाम है, कोई ऐसी चीज़ होती ना, अगर हमारे मन को प्रैक्टिस नहीं होती है, तो उस टाइम हम काम करने की बजाय हम ज़्यादा वो फ्यूचर और फ्यूचर का फेलियर ऑलरेडी देखकर वो फियर अभी क्रिएट कर देते हैं.
0: कितनी बार हम कुछ पढ़ रहे होते हैं और वो पढ़ के हम मतलब पेज के पेज पलट जाते हैं, पूरा का पूरा पेज पढ़ जाते हैं, हमें एक भी शब्द अंदर नहीं जाता.
1: दैट जस्ट शोज द पावर ऑफ द माइंड, के मन कुछ एक चीज करते हुए भी मन कुछ और सोच रहा है, क्योंकि मन को प्रेजेंट में लाने की आदत नहीं है. इसी तरह बच्चे पढ़ सकते हैं, पूरा टाइम पढ़ते रहते हैं, लेकिन आज सबसे कॉमन जो कंप्लेंट है बच्चों की, दैट इज कंसंट्रेशन. एंड देन दे वांट टू आस्क द एल्डर्स, कंसंट्रेट कैसे करें? इट्स नॉट कंसंट्रेट कैसे करें, कोई टेक्निक नहीं है, हमें किसी ने नहीं सिखाया कंसंट्रेट कैसे करना है. इट इज़ जस्ट दैट राइट थॉट्स कैसे क्रिएट करें. एंड वो राइट थॉट्स फिर सिर्फ पढ़ने के टाइम आप नहीं सीख पाएंगे. यू नो, हम क्या करते, पूरा साल तो कोई भी थॉट्स चल रहे, कैसे अभी चल
0: बोलते हैं कि बैठो 5 मिनट साइलेंस में बैठ जाओ.
1: इट वोंट हैपन.
0: प्रैक्टिस नहीं की हुई जब तक.
1: अब अगर जस्ट बिफोर द एग्जाम हम 5 मिनट साइलेंस में बैठे, तो कौन सी थॉट्स क्रिएट होंगे? वो साइलेंस में बैठते ही तो और सारी वो फियर वाले
0: तो डरने लगते हैं और भी डर रहे होते हो.
1: Yes, it won't happen that time. And that is why ये जो हम art of thinking कि किस तरह की thoughts create करने हैं, ये अगर over a period of time करते आए हैं तो ये ऐसा नहीं होगा कि stress create करें फिर stress को कैसे finish करें. लेकिन stress create होगा ही नहीं. ये स्ट्रेस का क्रिएट होने का सबसे बड़ा कारण है ये फ्यूचर को एंटिसिपेट करना इस तरह से. एंड उसमें भी जैसे एंटिसिपेट करते फेलियर को अगर देख लेते और वो हमारा अभी फियर क्रिएट कर, और जब इतना फियर यहाँ क्रिएट हो जाता तो हाउ विल यू फील. अब आप उसको वर्ड स्ट्रेस दे दो बट बी सो कि वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ थॉट्स इट मेक्स मी फील एब्सोल्युटली लो. एंड फिर वो लो फीलिंग के साथ आप प्रोजेक्ट करने बैठो या पढ़ने बैठो. How can you do well? It's not possible. The stress se lekar kai ek belief systems hai jinko agar hum check kare aur change kare aur fir kal chale apne jeevan ki yatra mein, aadha kaam to wahi ho jayega. Kyunki jaise humne kaha tension to normal hai. Just ask anybody. Aap 4 saal ke bacche se le lo and of course us senior age group tak chale jao. Tension hoti hai? Aapko kisi ko tension hoti hai? To kahenge tension to sabko hoti hai. Ye kaun sa question hai? Tension normal hai. Tension natural hai. To agar wo normal hai, to aap usko khatam karne ka prayas karenge?
0: Normal hai to hoti hai to kya karna hai usse khatam?
1: Nahin, to wo to fir normal hai. You know, let's say अगर यहाँ मेरे घुटने में दर्द नॉर्मल है मैंने बोल दिया उसको, तो फिर उस जब तक आई हैव अ रियलाइजेशन कि ये कोई चीज़ है जो अननेचुरल है, ये दर्द है, ये मेरा नेचुरल नहीं है कंफर्ट लेवल, तो मैं कुछ ना कुछ उसके लिए करूँ. लेकिन अगर मैंने स्वीकार कर लिया कि ये तो नॉर्मल है तो क्या होगा, उसी के साथ चलना शुरू कर देंगे.
0: उसके ऊपर आप बात काम ही नहीं करोगे ना, बाकी सारी चीजों पे काम करते
1: आप नहीं करेंगे. क्योंकि नॉर्मल क्या है इसका बिलीफ बहुत क्लैरिटी से चाहिए होता है. क्योंकि हम कंडीशन है कि जो चीज नॉर्मल है मतलब वो ठीक है. जैसे ही हमने किसी चीज को कहा कि ये अननेचुरल है तो हम उसके ऊपर कुछ मेहनत करते. आप घर पहुंचे, आज आपको थोड़ा सा फीवर है तो आपने देखा थर्मामीटर पे 100 है, 101 है, तो आपको मालूम है कि ये नॉर्मल नहीं है. बिकॉज यू नो दैट इट इज नॉलेज. नॉलेज है कि ये जो ट्राइंगल मार्क जहाँ बना है वो ही नॉर्मल है. वो मर्क्यूरी उससे इतना भी ऊपर होगा ना, थोड़ा सा नॉर्मल नहीं है, मुझे बुखार है, आई विल इमिजिएटली टेक मेडिकेशन एंड आई विल गो ऑन टेकिंग माई मेडिसिन आफ्टर एवरी 6 आवर्स टिल दैट मर्क्यूरी कम्स टू दैट नॉर्मल मार्क. उसके बाद अगर मुझे नहीं भी ठीक लग रहा होगा ना, थोड़ा मेरे को अभी भी लग रहा है थोड़ा फीवरिश, लेकिन अगर मर्क्यूरी थर्मामीटर में दिख गया कि ये नॉर्मल है,
0: देन आई विल नॉट टेक द मेडिसिन.
1: देन आई विल नॉट सी, दैट्स व्हाई व्हाट इज नॉर्मल इज सो इम्पोर्टेंट. आई विल टेक मेडिसिन ओनली जब तक मुझे वो पता है कि ये नॉर्मल नहीं है. अब टेंशन के लिए क्यों नहीं मेडिसिन ले रहे, क्योंकि हमने कह दिया ये ही
0: नॉर्मल है. ये तो है, ये तो आज के इस पूरे युग में.
1: तो फिर हम उसको थोड़ी खत्म करने का कोई भी प्रयास करेंगे. इसलिए पहले तो ये बिलीफ सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से शेक करना पड़ेगा कि स्ट्रेस इज नेचुरल, स्ट्रेस इज नॉर्मल, दिस इज पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ. इसको चेक करना पड़ेगा कि टेंशन कुछ भी नहीं है, इट्स अ पेन. ये एक दर्द है जो आता है मुझे बताने के लिए कि मुझे कुछ चेंज करना है.
0: एक्चुअली हम थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस को कहते हैं नॉर्मल है, क्योंकि जैसे ही वो ज्यादा होने लगता है ना, तब हमसे वो बर्दाश्त नहीं होता, तब हम उसके सोल्यूशन ढूंढते हैं. लेकिन थोड़ा
1: लेकिन तो भी हम उसके सोल्यूशन कहाँ ढूंढते हैं?
0: हाँ, वो जिस भी तरह से ढूंढ रहे होते हैं
1: कहाँ ढूंढते हैं कि ये सब ठीक हो जाए. हाँ, तब मेरा स्ट्रेस ठीक हो जाएगा. यस, दैट्स ऑल्सो वेयर आर वी लुकिंग फॉर दिस सोल्यूशन. तो वी आर लुकिंग फॉर दिस सोल्यूशन परिस्थिति के अंदर, कि परिस्थिति ठीक हो जाए, किसी भी तरह परिस्थिति ठीक हो जाए.
0: इस सिचुएशन में आपका ऐसे बिहेव करना तो नॉर्मल है, आपका स्ट्रेस में आना, मतलब एग्जाम्स आ रहे हैं तो आप स्ट्रेस्ड आउट होंगे.
1: तो फिर वही है ना, हमने अगर हम बच्चे को ये समझा सकें कि एग्जाम के टाइम पर रिलैक्स्ड रहना नॉर्मल है. कभी ये कहा कि रिलैक्स्ड रहना नॉर्मल है?
0: आई डोंट रिमेंबर.
1: या रिलैक्स्ड ही रहना है बच्चे? नहीं, टेंशन होना तो नॉर्मल है. और खुद ही इतने टेंस्ड होते हैं, खुद के फेस और बॉडी.
0: ये कहते जाते हैं कि आप रिलैक्स रहो, रिलैक्स
1: वो रिलैक्स रहो भी कैसे कहते हैं? इट इज सो,
0: और वो हम खुद इतने टेंशन में होते हैं
1: एग्जाम के टाइम पे. द होल एनर्जी इन द हाउस इज वेरी डिफरेंट.
0: नोबडी कैन कम, यू नो, उसके राहुल के एग्जाम्स है ना, तो फ्रेंड्स नहीं आ सकते, रिलेटिव्स नहीं आएंगे. इट्स लाइक अमेजिंग द वे वी क्रिएट?
1: तो एक है कि बच्चे को पढ़ना है, उसको साइलेंस चाहिए, एक अलग कमरा आप दे दो, सब कुछ कर दो, लेकिन घर में जितना हो सके वायुमंडल भी हमें नॉर्मल ही रखना पड़ेगा. जितना हम नॉर्मल रखेंगे, रिलैक्स्ड रहेंगे, तो बच्चा भी फील करेगा ना कि हाँ सब कुछ नॉर्मल तो है, मैं एक एग्जाम ही तो देने जा रहा हूँ.
0: अंदर से नहीं नॉर्मल होते ना हम,
1: वही ना, अंदर होंगे तो बाहर भी तो ऑटो. लेकिन हमने वो एग्जाम को इतना बड़ा, अब हो क्या रहा है, पहले तो फिर भी साल में एक बार एग्जाम आता था, चलो पूरा साल तो चलता, अब वो एग्जाम्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है.
0: सितंबर में आएंगे पहले फरवरी बोर्ड्स होंगे, फिर
1: वो वीकली कुछ टेस्ट होंगे, ये वट एवर. तो क्योंकि एवरी एग्जाम एंड एवरी टेस्ट इज बिकमिंग लाइक दिस, तो ओवरऑल पूरा साल ही बच्चे का कैसे बीत रहा है, जैसे कि वो एक हाई प्रेशर उसमें यू नो वर्क कर रहा है, वो माइंड के लिए बहुत डैमेजिंग है. वही चाइल्डहुड जो हमारे लिए सबसे ब्यूटीफुल पीरियड हम कहते थे, आज वही बच्चे कहते हैं कि इट इज वेरी वेरी स्ट्रेस. सीन इवन विद बच्चे जो प्ले स्कूल के लिए एडमिशन के लिए जाते हैं, स्कूल्स के एडमिशन के लिए जाते हैं, उनको कितना स्ट्रेस है. डू यू थिंक एक 3 साल का बच्चा एक स्कूल के इंटरव्यू के लिए जा रहा है, उसको भी पेरेंट्स, क्यों? क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज्यादा ये स्ट्रेस में है कि नहीं मिला तो. See, ये जो फियर क्रिएट हो रहा है वो बच्चे को उस एज से ही हम वो डेवलप कर देते कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर ये नहीं हुआ तो तुम यू आर अ फेलियर.
0: पर अब हम यहाँ पे क्या, पेरेंट अगर देख रहे हैं तो वो ये कहेंगे ब्लेम गेम यहाँ शुरू होगा, स्कूल्स ऐसे हो गए हैं, एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया है, पूरा माहौल ऐसा हो गया है, उसमें मेरे को तो करना ही पड़ेगा, अगर मैंने नहीं किया तो जिस स्कूल में मैं बच्चे को डालना चाहता हूँ.
1: हमें क्या क्या करना होगा, हमें पढ़ना होगा, पढ़ाना होगा, बहुत अच्छी तरह से तैयारी करानी होगी, उसके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना होगा. सिर्फ हमें एक चीज़ नहीं करनी होगी, फियर नहीं क्रिएट करना. वी नॉट सेइंग वी नॉट गोइंग टू स्टडी, ऑब्वियसली जो है फिर माहौल, हमें माहौल के अकॉर्डिंग अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता. स्ट्रेस वर्ड को ही अगर हम देखें तो साइंस में स्ट्रेस वर्ड को हम लेते तो स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाई रेजिलियंस. तो प्रेशर तो है ही ना बाहर. पहले तो कभी स्कूल में आई, व्हेन आई वेंट टू स्कूल आई डिडंट हैव टू गो फॉर एन इंटरव्यू. वो मेरे पेरेंट्स गए एडमिशन करा के वापस आ गए और कहा, एंड इट वाज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स ऑफ द सिटी, और कहा आपका एडमिशन हो गया, आपको स्कूल जाना है. आज वो छोटे छोटे बच्चे पता नहीं कितनी मेहनत से गुजरते. तो ठीक है, प्रेशर चेंज हो रहा है, हम बैठ कर उसके बारे में कंप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन जितना प्रेशर न्यूमरेटर है ना बढ़ता जा रहा है, डिनोमिनेटर रेजिलियंस, इनर स्ट्रेंथ, उस प्रेशर को फेस करने की मेरी अपनी आंतरिक शक्ति. मेटल शीट्स हैं, इंडस्ट्री में हम जाते हैं अलग अलग मेटल शीट्स हैं, हर मेटल शीट के ऊपर सेम प्रेशर अप्लाई किया जाता, लेकिन हर मेटल का स्ट्रेस फैक्टर अलग अलग, क्योंकि इनर स्ट्रेंथ अलग अलग. तो हम में से भी हर एक की अपनी अपनी एक आंतरिक शक्ति है, प्रेशर हर एक के ऊपर इक्वल है, लेकिन जिसकी जितनी इनर स्ट्रेंथ होगी वो उस प्रेशर को बहुत अच्छी तरह से फेस कर पाएगा. आज क्या हो रहा, प्रेशर तो बढ़ रहा है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर पर ध्यान नहीं दे रहे और फियर क्रिएट करते जा रहे, फियर
0: उसको तो वीक करते जा रहे,
1: डिनोमिनेटर घटता जा रहा है तो न्यूमरेटर बढ़ता जा रहा है, डिनोमिनेटर घटता जा रहा है,
0: ऑफ कोर्स इज इंक्रीजिंग,
1: बढ़ता जा रहा है इतना ज्यादा, एंड न्यूमरेटर इज ऑफ कोर्स इंक्रीजिंग एट अ वेरी फास्ट रेट ना, क्योंकि परिवर्तन बहुत तीव्र गति से है, लेकिन क्योंकि ध्यान नहीं रखा डिनोमिनेटर भी बहुत तीव्र गति से घटता जा रहा, and stress factor is increasing very very fast. Yes. It
0: amazing.
1: Will go beyond our control.
0: We really need to see, you know. और हम ये कहते हैं कि हमने तो अपने आप को situations के accordingly इसलिए create कर रहे हैं. You know, situations ही ऐसी हैं, तो हम अपने आप को उन्हीं के उसी के according तो तैयार करते जा रहे हैं. वो तैयारी जो बाहरी है, जो चीज़ें करनी है, वो तो ठीक है. Amazing. We always have to remember this. Stress is equals to pressure upon my inner strength. You know. तो अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शन है मेरी इनर स्ट्रेंथ पे. तो अगर मेरी इनर स्ट्रेंथ, प्रेशर को तो हमें, क्योंकि हम बाहर की चीज़ों को कुछ नहीं कर सकते, जो मेरी इनर स्ट्रेंथ है उसे मैं जितना बढ़ाती जाऊँगी, बच्चे की इनर स्ट्रेंथ को जितना बढ़ाती जाऊँगी, स्ट्रेस अपने आप कम होता जाएगा. इट्स ब्यूटिफुल.
1: एंड स्ट्रेस कम होता जाएगा, परफॉर्मेंस अपने आप अच्छे होती जाएगी. हम सिर्फ परफॉर्मेंस पर फोकस्ड हैं. जो स्टेबल होगा, कॉन्फिडेंट होगा, काम होगा, वो परफॉर्म नहीं करे अच्छा, ऐसा हो नहीं सकता. इट्स नॉट पॉसिबल.
0: वेरी ट्रू. और हम अपने आप भी देखते आए हैं कि जब हम जितना, अभी तक भी तो बच्चे 10th से पहले भी तो बच्चा पढ़ रहा होता था और वो परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहा होता था. मतलब बच्चा अपने आप अपनी बहुत सारी चीज़ें कर रहा था. तो हमें अपने आप को देखना है कि हमने एटमॉस्फेयर कैसा क्रिएट किया है, पूरा जो हमने अपने लिए जो स्ट्रेस फैक्टर है उसे कितना ज़्यादा आगे बढ़ाया है, तो वही तो फिर फ्लो होके बच्चे तक जा रहा है। सिचुएशंस, टीचर, स्कूल, लोग, सब कुछ कहते रहेंगे। वो जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है वो बढ़ता ही जाएगा। अगेन, जितना वो बढ़ेगा उतना ही मुझे अपने अंदर के आंतरिक शक्ति को, और मैंने देखा, अमेजिंग, आई नेवर रियलाइज इट, कि जितना वो बढ़ रहा था मैंने न्यूमरेटर को एक्चुअली कम करती गई हूँ मैं, क्योंकि वो मैं डरती गई, डरती गई, डरती गई। तो मुझे ना डरते हुए अपनी उस इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाना है। यू नो, इट्स एक्चुअली सो ईजी इफ़ यू लुक एट इट, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला कभी नहीं समझा था। थैंक यू सिस्टर शिवानी। लाइक आज हम एक फैक्टर पर बात कर पाए हैं, लेकिन आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स वी हैव हिट, तो इस पर आप ज़रूर सोचें। और यू नो, अभी तक का जो बिलीव सिस्टम्स पर हम जी रहे थे कि जितना प्रेशर बढ़ता जा रहा है, मैंने अपने आप को उसी हिसाब से तो मोल्ड किया है, ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो ऐसी चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। करना और किस स्थिति में मैं करूँगा, ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे। पढ़ाना भी है आपको बच्चों को, आपको सब कुछ करना है, तैयारी भी करानी है, बट किस थॉट प्रोसेस के साथ, किस स्टेज में रहकर कराना है, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लिए राजयोग में हम बार बार मेडिटेशन की बात करते हैं, इट हैज़ टू बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो अगर कोई मन में बात उठती है, कोई सवाल उठ रहा है, स्ट्रेस से जुड़े हुए आपका कोई बिलीफ सिस्टम है, आपका स्वागत। आप हमें कॉल करें या फिर आप हमें ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। स्ट्रेस से जुड़ा एक बिलीफ सिस्टम कि स्ट्रेस इज नॉर्मल, इसको आज हम बहुत अच्छी तरह से समझ पाए कि कैसे इसको नॉर्मल मान के हमने अपनी लाइफ में स्ट्रेस को बढ़ाया है। आसान सा सोल्यूशन है, एक नया बिलीफ सिस्टम क्रिएट करें, स्ट्रेस इज नॉट नॉर्मल और स्टेबिलिटी इज नॉर्मल, रिलैक्स्ड रहना नॉर्मल है। फिर देखें कि कैसे जो सोल्यूशंस निकलते हैं। थैंक यू सो मच ओम शांति, और आपसे भी विदा लेते हैं, लेकिन आने वाली कड़ियों में कुछ और बातें करेंगे। ओम शांति।

ओम शांति, नमस्कार। मैं हूँ संगीता। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अपने मन की कमजोरियों को देखना कमजोरी नहीं बल्कि साहस है, यही साहस आपको मजबूत बनाता है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो,

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: तो बच्चों, सबको समझ आ गया आज का हमारा विषय? रोहित, तुम्हें कोई डाउट तो नहीं?
1: मैम, यह आपको कैसे बताएगा, ये तो बोल भी नहीं सकता।
0: रोहित बोल नहीं सकता, परंतु ये अपनी साइन लैंग्वेज से हमें समझा तो सकता है। बच्चों, मानसिक रूप से रोहित हम सब की तरह स्वस्थ है। कर्म इंद्रियां तो बस एक साधन है, मानसिक और बौद्धिक रूप से हम सब समान हैं।
2: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बने, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं। मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
3: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आँखों से देखिए सुंदर ये संसार।

0: सिंह चौहान हमारा देश और प्रदेश और दुनिया प्रगति और विकास की दौड़ में आगे बढ़ते जाए, लेकिन मानवीय गुणों के साथ। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
1: आप रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।

0: हाय दोस्तों, नई क्रेस कार्यक्रम में आप सभी का फिर एक बार स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज विश्व दुग्ध दिवस है और महीने का पहला दिन है, 1 जून है। तो संपूर्ण विश्व में 1 जून को यह विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दूध के संबंध में ध्यान आकर्षित करना एवं दूध उद्योग से जुड़ी गतिविधियों को प्रचार प्रसार के लिए अवसर प्रदान करना है। प्रथम विश्व दुग्ध दिवस 1 जून 2000 को मनाया गया था। इस उत्सव में वर्ष दर वर्ष भाग लेने वाले देशों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। तब से पूरे विश्व भर में दूध और दुग्ध उद्योग से संबंधित क्रियाकलापों का प्रचार प्रसार में हर वर्ष ध्यान केंद्रित करने के लिए इसे मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधित क्रियाकलापों को आयोजित करने का द्वारा इस उत्सव का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। पूरे जीवन भर सभी के लिए दूध और इसके उत्पादों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है और खास संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा 1 जून का विश्व स्तर पर हर्ष मनाने के लिए विश्व दुग्ध दिवस की पहली बार स्थापना की गई है। इसे 1 जून को मनाने के लिए ही खास चुना गया था क्योंकि इस समय के दौरान बहुत सारे देशों के द्वारा विश्व दुग्ध दिवस पहले से ही मनाया जा रहा था। जी हाँ, 1 जून को वार्षिक आधार पर पूरे विश्व भर के लोगों के द्वारा विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। प्राकृतिक दूध के सभी पहलुओं के बारे में आम जनता की जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे मनाया जा रहा है, जैसे कि इसकी स्वाभाविक उत्पत्ति, दूध का पोषण संबंधी महत्व और विभिन्न दूध उत्पाद सहित पूरे विश्व भर में इसका आर्थिक महत्व। विभिन्न उत्पादों और दूध उद्योग के कर्मचारियों के भाग लेने के द्वारा कई देशों जैसे मलेशिया है, कोलंबिया है, रोमानिया है, जर्मनी है, संयुक्त अरब है, अमीरात है और अमेरिका है आदि आदि जैसे भी ये देश है, इसे मनाने की इन देशों ने पहले पहले शुरुआत की। विश्व दुग्ध दिवस के पूरे उत्सव के दौरान दूध को एक वैश्विक भोजन के रूप में केंद्रित किया जाता है। ऑनलाइन अपने वेबसाइट पर अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ के द्वारा ढेर सारे विज्ञापन संबंधी क्रियाकलापों को एक स्वस्थ और नियंत्रित भोजन के रूप में दूध के महत्व को बताना की शुरुआत की गई है। पूरे दिन प्रचार संबंधी गतिविधियों द्वारा आम लोगों के लिए दूध के महत्व के संदेश को फैलाने के लिए एक साथ काम करने के लिए उत्सव में स्वास्थ्य संस्थाओं से विभिन्न सदस्य भाग लेते हैं। दूध की सच्चाई को उनको समझाने के लिए विश्व दुग्ध दिवस उत्सव बड़ी संख्या पर असर डालता है। दूध शरीर के द्वारा जरूरी सभी पोषक तत्वों का एक बहुत अच्छा स्रोत है, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फॉस्फोरस, आयोडीन, आयरन, पोटेशियम फोलेट, विटामिन ए, विटामिन डी, राइबोफ्लाविन, विटामिन B12, प्रोटीन, स्वस्थ फैट आदि मौजूद होता है। ये बहुत ही ऊर्जा युक्त आहार है जो शरीर को तुरंत ऊर्जा उपलब्ध करता है, क्योंकि इसमें गुणवत्ता के प्रोटीन सहित आवश्यक और गैर आवश्यक अमीनो एसिड और फैटी एसिड मौजूद होता है। दूध स्वास्थ्य और पोषण संबंधी फायदों के प्रचार के लिए बाजार आदि को लक्ष्य बनाने के लिए संप्रेषण कार्यक्रम SMPRO दक्षिण अफ्रीका दूध संघ का यह संगठन है। उसके द्वारा दूध के स्क्रीन उपभोक्ताओं, शिक्षा प्रोजेक्ट सहित NGO, निजी और सरकारी स्वास्थ्य संस्था के द्वारा उत्सव के विषय वस्तु संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते और उपभोक्ताओं के बीच दूध के पोषण, स्वास्थ्य, उपभोगिता को विशेष रूप से ध्यान दिलाने के लिए प्रेस विज्ञप्ति, आर्टिकल्स, खबर आदि प्रकाशित किए जाते। बच्चों के बीच दूध के मुफ्त पैकेट वितरण करने के लिए स्थानीय स्तर पर मशहूर लोगों को मुफ्त दूध वितरण कैंप भी लगाया जाता है। बहुत सारी गतिविधियां माध्यम से ऑनलाइन राष्ट्रीय डेयरी परिषद के द्वारा मनाया जाता है। विभिन्न दूसरे कार्यक्रम जैसे परिचर्चा, प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता, खेल गतिविधियां, निबंध लेखन आदि स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और दूसरे शैक्षणिक संस्थाओं में विद्यार्थियों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वक्त हो गया है अभी समाचार प्रभात की खबरें सुनने का। तो आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मस्कराते रहो।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन से वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
2: म्यांमा के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमा भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमा के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा।
3: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जन प्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
4: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
4: वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन

0: सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
1: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं, वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
0: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं, बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। एक श्रद्धांजलि।
3: कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने 1950 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने महान संगीतकारों और गायकों, विशेष रूप से मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किए। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार शामिल है। कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। इस तुलना के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी मधुर तथा सधी हुई गायकी के लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। उनके निधन से भारतीय फिल्म संगीत का एक और स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया है।
2: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा, सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग के डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी, बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन, राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली के नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती। वो 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। कागिसोर अबाडा ने सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की। मनीष पांडे को बैकवर्ड प्वाइंट पर टिम डेविड का शानदार कैच लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। मोहम्मद सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 172 डॉट बॉल फेंकी। साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौके लगाने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 75 चौके लगाए। वैभव सूर्यवंशी को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी, 237.3 के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और 72 छक्कों के साथ सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुनीश शर्मा।
4: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपील की कि गर्मी और लू से बचने के लिए खूब पिए देसी पेय। ये खबर जनसत्ता समेत सभी अखबारों में है। पत्र आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में बने कीर्तिमानों की सराहना की है। भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू, भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त बाजार। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, मोदी सरकार के कार्यकाल में पांचवां एफटीए, पश्चिम एशिया संकट के बीच दोगुना होगा द्विपक्षीय कारोबार। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 30 जरूरी दवाओं के दाम निर्धारित करने पर हिंदुस्तान लिखता है कि इससे हड्डी, हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों को राहत मिलेगी। सुरक्षित सोशल मीडिया शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है कि भारत ने 9 से 17 वर्ष के करीब 76% बच्चे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल समय बिताने के लिए करने लगे हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है और ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता भी काफी घटती जा रही है। रोहतांग में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से राहत मिलने और हवा में सुधार पर अमर उजाला ने सचित्र देते हुए लिखा है कि उत्तर पश्चिम में भारत में आंधी तूफान और बारिश के आसार, जबकि नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली वालों की राहत वाली हवा, 2018 के बाद तीसरी बार सबसे साफ हवा दर्ज की गई। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर स्मृति शेष विशेष में राजस्थान पत्रिका लिखता है, 3000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत उन्होंने गाए। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

तनाव भी होता है, इट इज देयर इन द माइंड. और अक्सर करके देखते हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के प्रति इतनी शुभ भावना होती है कि जब बच्चों का एग्जाम्स होता ना, तो उस समय मम्मी डैडी का प्यार बच्चों के प्रति कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है. और एग्जाम के दिन में मम्मी डैडी आकर कहेंगे, बच्चा आज तेरा एग्जाम है, तो है ना, हॉर्लिक्स भी पी, बॉर्नविटा भी खा, ये भी कर, वो भी कर, है ना, उसको बहुत जबरदस्ती खिलाएंगे. शरीर को तो हमने बहुत भोजन दिया, जरूरत है उसको मन को अच्छा भोजन देने के लिए. और मन का भोजन क्या है? विचार. मन का भोजन है विचार. बहुत पुराने विचार, बासी विचार, अगर उसको बार बार हम अपने मन में लेकर आएंगे, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे मन जो है वो कमजोर हो जाता है. धीरे धीरे द माइंड विल ऑल्सो बिकम वीक. तो फ्रेंड्स, इस बात को चेक करना है कि सारे दिन में हमने अपने मन में जो विचार आ रहे हैं उसके क्वालिटी कैसी है. देखिए, सोचने की बात है, आज हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल है और हम बहुत ध्यान रखते हैं कि मोबाइल को चार्ज करना है. और जिस दिन रात को सोए और मोबाइल चार्ज करना भूल गए, तो रात के 2 बजे उठेंगे और उसको चार्ज करेंगे, क्योंकि हमको ये बात महसूस होती है कि अगर हमने मोबाइल को चार्ज नहीं किया तो शायद दूसरे दिन हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगा. उसी तरह हमें अपने मन को भी अच्छे विचार से सुबह सुबह चार्ज करना बहुत

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सबसे बड़ा ज्ञान स्वयं को जानना है। मन का मंथन करें, विचारों को शुद्ध करें और आत्मा की शांति का अनुभव करें। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम आज फिर से आपसे कहना चाहेंगे कि आज अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस भी है। जी हाँ, यह दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। यह दिवस सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय उत्सव दिवस है जो कि 1950 से मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता की और लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। रूस में आज के दिन अनाथ, विकलांग और गरीब बच्चों की समस्याओं की और विशेष रूप से लोगों का ध्यान खींचा जाता है। बच्चों को तोहफे दिए जाते हैं और उनके लिए विशेष समारोह का आयोजन भी किया जाता है। रूस में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस पहली बार 1949 में मनाया गया था। इसका निर्णय मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय महिला लोकतांत्रिक संघ की एक विशेष बैठक में किया गया था। 1 जून 1950 को दुनिया भर के 51 देशों में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस पहली बार मनाया गया और आयोजन एवं कार्यक्रम भी उसी प्रकार से विश्व में होते गए। रूस की राजधानी मॉस्को में इस दिन भांति भांति प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है जिसमें बच्चों को पुरस्कार बांटे जाते हैं, नृत्य संगीत कार्यक्रम भी होते हैं और साथ ही विभिन्न प्रदर्शनियां तथा ज्ञानवर्धक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। 2007 से अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस पर केमलिन के महाराजा चौक पर मॉस्को के स्कूल छात्रों के लिए घुड़सवार और पैदल प्रेरक की ड्यूटी बदलने के समारोह परेड भी होती है जिसमें राष्ट्रपति रेजिमेंट के सैनिक भाग लेते हैं। 2013 में क्रेमलिन अश्वारोहण विद्यालय के किशोर छात्रों ने भी समारोह में भाग लिया था। तो दोस्तों हमें भी आज अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस के ऊपर हमारे आसपास जो बाल दिख रहे हैं उनकी भी रक्षा हमें करना चाहिए। जो बाल स्कूल में नहीं जाते हैं हमें ये ख्याल रखना है कि स्कूल में कैसे जाए, उनके माता पिता को कैसे समझाए कि उन्हें स्कूल में भेजे, उन्हें भी पढ़ाई का अवसर दे, उन्हें भी आगे बढ़ने का अवसर दे। तो आज के दिन हम जरूर आसपास के बच्चों का भी ख्याल रखना है और आगे के लिए भी रखेंगे जरूर। तो चलो दोस्तों फिर से हम बता देंगे कि आप आज किन किन लोगों का जन्मदिन है उसके बारे में। जी हाँ, आज कर्णम मल्लेश्वरी का जन्मदिन है। भारत की ये प्रसिद्ध भारोत्तोलक यानी वेट लिफ्टर है। ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली ये प्रथम महिला खिलाड़ी है। अपने मजबूत हौसले और दिलेर कारनों में कल्लर मिशनरी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर त्रिगंगी की शान पर 4 चांद लगाया है। मंच कोई भी हो लेकिन जीत हर कदम पर इरादा रखने वाली वेट लिफ्टर जिंदगी संघर्ष और कामयाबी के अद्भुत कहानी की उसकी रही हुई है। 2000 में सिडनी में हुए ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी ने महिलाओं के 69 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच डाला। मल्लेश्वरी को 1995 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, फिर 96 में उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार तथा फिर 1997 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। कर्णम मल्लेश्वरी का जन्म 1 जून 1975 को भारतीय राज्य जो आंध्र प्रदेश है, हैदराबाद उसे कहला जाता है, उसमें हुआ था। उनका जन्म स्थान अंबाला वलासा हैदराबाद से लगभग 800 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। अंबाला वलासा एक छोटा सा शहर है। मल्लेश्वरी के पिता का नाम रामदास है जो रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ में कांस्टेबल है। साधारण रेलवे हेड कांस्टेबल की 4 बेटियां में से दूसरे नंबर की मल्लेश्वरी का बचपन बहुत गरीबी में बीता। बहनें बहुत सुबह ही रेल की पटरियों पर कोयला बिनने निकल पड़ती थी। मल्लेश्वरी जब केवल 9 साल की थी तब वह अपनी बड़ी बहन नरसम्हा के साथ जिम जाती थी। तब उनकी रुचि खेलों में जागृत हुई। वैसे 1989 में मैनचेस्टर में विश्व चैंपियन में तथा बीजिंग एशियन खेलों में वह भी 20 सदस्यीय टीम के साथ भाग लेने गई थी। मल्लेश्वरी की छोटी बहन कृष्णा कुमारी भी राष्ट्रीय स्तर की भारोत्तोलक है। मल्लेश्वरी का विवाह हरियाणा के यमुनानगर के राजेश त्यागी के साथ हुआ। पुणे में राष्ट्रीय खेलों में मल्लेश्वरी ने विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया।
जर्मनी में हुए विश्व चैंपियन के वह पांचवें स्थान पर रह गई। फिर अगले वर्ष बल्गारिया में विश्व चैंपियन में अपना स्तर सुधार लिया। 1995 में चीन में हुई विश्व चैंपियनशिप में जर्क मल्लेश्वरी ने 54 किलो वर्ग में नया विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए 3 स्वर्ण पदक प्राप्त किए। चीनी खिलाड़ी लॉन्ग लिप के 112.5 किलो के विश्व रिकॉर्ड को उन्होंने 113 किलो से तोड़ दिया। चैंपियनशिप की शुरुआत में ही मल्लेश्वरी और कुंजा रानी को संयुक्त रूप से विश्व में नंबर एक बताया गया था। टाइम एशिया के वेब कॉलम द्वारा मल्लेश्वरी को वर्ष के दक्षिण एशियाई चुना गया था, परंतु 1997 में मल्लेश्वरी के लिए सब कुछ इतना आसान नहीं था। उस वर्ष यूं तो उन्हें पद्मश्री मिला था, उन्होंने विवाह भी किया और खेलों से 12 महीने तक विश्राम भी लिया, परंतु उसके बाद जब वह खेलों में लौटी तो उनके परफॉर्मेंस में बहुत धीमी हो चुकी थी। हालांकि 98 के बैंकॉक एशियाई खेलों में रजत पदक ही प्राप्त कर लिया, लेकिन 1919 के एथेंस चैंपियनशिप से वह बिना कोई पदक ही लौटी। अगले वर्ष उनकी अक्षमता के बारे में कहा जाने लगा कि उनका वजन बढ़ गया है। इससे मल्लेश्वरी बहुत आहत महसूस कर रही थी और मन ही मन अपने आलोचकों को चुप कराने में के बारे में सोच रही थी। अपने प्रशिक्षक तारा लोगों के साथ प्रशिक्षण आरंभ कर दिया। उनके प्रशिक्षक को विश्वास था कि वह ओलंपिक पदक अवश्य जीतेगी। फिर उन्हें अर्जुन पुरस्कार भी मिला। विश्व विजेता राष्ट्रीय कोच श्यामलाल सालवान ने पहचाना जब वह अपनी बड़ी बहन 99 में बंगलोर कैंप में गई थी, तो इसी प्रकार से उनको विश्व चैंपियन में कांस्य पदक भी मिला, स्वर्ण पदक भी मिला। भारत में मल्लेश्वरी के लिए अनेक नगद पुरस्कारों की घोषणा भी की गई थी। इस पर मल्लेश्वरी ने कहा, जब मुझे सिडनी ओलंपिक में पदक प्राप्त हुआ तो अनेक नगद पुरस्कारों की घोषणा की गई, लेकिन जब 1994 और 1995 में विश्व चैंपियन बनी तो इस प्रकार की एक भी घोषणा नहीं की थी। मल्लेश्वरी के लिए पुरस्कारों की घोषणा आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र की राज्य सरकारों की ओर से की गई है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए फिर से हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

ओम शांति, मैं हूँ मोनिका पटेल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी जो है इसी तरह से जो है हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जो है ईश्वरीय ज्ञान जो है ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय ज्वाइन करके प्राप्त करते रहिए मेरी तरह। और सदा सदा आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।

तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम आपको फिर से बताना चाहेंगे कि आज किन किन लोगों का जन्मदिन है उनके बारे में। जी हाँ, आज अशोक कुमार जी का भी जन्मदिन है। जी हाँ, अशोक कुमार वो नहीं जो आपने सोचा होगा, अशोक कुमार जो चित्रपट में भूमिका जिन्होंने निभाई, हर एक को वही लगता है, लेकिन अशोक कुमार ये भारतीय हॉकी खिलाड़ी है, तो उनके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। आज उनका जन्मदिन है। उनका भी जन्म 1 जून को 1958 में हुआ था। और उनके खास बात यह है कि बताने वाली कि उनके पिता प्रसिद्ध खिलाड़ी ध्यानचंद, वो भी हॉकी खिलाड़ी थे, जो स्कूलों में उनके नाम से एक पाठ्यक्रम भी था, तो सुप्रसिद्ध खिलाड़ी ध्यानचंद के वो पुत्र भी हैं। अशोक कुमार ने जल्द ही हॉकी में ख्याति प्राप्त कर ली, लेकिन उनके लिए अपने पिता समान बेहतरीन प्रदर्शन करना दुष्कर कार्य था, क्योंकि ध्यानचंद तो हॉकी के जादूगर कहलाते और पिता के समान जादूगरी करना ये उन्हें बहुत बड़ा मुश्किल था। उनके लिए श्रेष्ठ प्रदर्शन एक चुनौती का समान था, लेकिन 1974 में उन्होंने अर्जुन पुरस्कार जीतकर अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी। उन्होंने अंतिम गोल लगाकर 1975 में भारत को विश्व कप दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। जी हाँ, अशोक कुमार का जन्म 1 जून 1958 में उत्तर प्रदेश में हुआ है। अशोक कुमार में बहुत कम उम्र में गेंद पर नियंत्रण व खेल में कुशलता प्रदर्शन कर खेल के विशेषज्ञों को पिता पुत्र के बीच तुलना करने को प्रोत्साहित कर दिया। उन्होंने पहले जूनियर स्कूल टीम में शामिल होकर खेलना आरंभ किया, फिर वह क्लब के लिए हॉकी खेलने लगे और उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए लगातार 4 वर्ष तक हॉकी खेली। अशोक कुमार ने 1966-67 में राजस्थान विश्वविद्यालय के लिए खेला। इसके बाद वह कलकत्ता चले गए और मोहन बागान क्लब के लिए खेलने लगे। फिर 1971 में बेंगलोर में हुई राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उन्होंने बंगाल की टीम की ओर से खेला। इसके बाद अशोक कुमार ने सीनियर फ्लाइट पर्सन के रूप में इंडियन एयरलाइंस में नौकरी कर ली और उसकी ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व कर लिया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अशोक कुमार ने सर्वप्रथम 1970 में बैंकॉक एशियाई खेलों में भाग लिया था, जिसमें भारतीय टीम पाकिस्तान से हार गई। उन्होंने 1974 में 13 एशियाई खेलों में व 1978 में बैंकॉक एशियाई खेलों में भाग लिया था। दोनों बार रजत पदक जीता। अशोक कुमार ने 2 बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। फिर 1972 में म्यूनिक ओलंपिक तथा 1976 में मॉन्ट्रियल ओलंपिक में उन्होंने भारतीय टीम की ओर से खेला और दोनों बार भारतीय टीम तीसरे स्थान पर रहकर कांस्य पदक जीत सके। अशोक कुमार ने 1978 में सिंगापुर में पेस्ता सुखा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट भी खेला है। फिर 1979 में उन्हें ऑस्ट्रेलिया में एसेंडा हॉकी टूर्नामेंट भी भारतीय टीम की उन्होंने कप्तानी की। फिर 1974 में उन्होंने ऑल एशियन स्टार्स टीम में खेला व 2 बार वर्ल्ड 11 के लिए भी चुने गए। 1971 में बार्सिलोना में हुए विश्व कप में अशोक कुमार भारत की ओर से खेले, जिसमें टीम ने कांस्य पदक जीता था। फिर 73 में एम्स्टरडम में विद्युतीय कप विश्व कप में उन्होंने भाग लिया, जिसमें टीम में रजत पदक भी हासिल किया था। उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1975 में देखने को मिला, जब क्वालपुर में विश्व कप में उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण अंतिम गोल लगाकर भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम बताएंगे आज फिर से किस प्रमुख व्यक्ति का आज जन्मदिन है। जी हाँ, आज नरगिस जी का भी जन्मदिन है। नरगिस नाम सुनते ही क्या याद आ जाता है, जो बुजुर्ग है जो पुराने हैं उनको तो नरगिस नाम सुनते ही फिल्म मदर इंडिया का नाम आ जाता है। जी हाँ, मदर इंडिया वो नाम है जो एक समय था हर एक के जुबा पर नाम आता था।
नरगिस मशहूर गायिका जन्नत बाई की पुत्री थी। यह कला उन्हें नरगिस को विरासत में अपनी माँ से मिली। जब 6 साल की थी तब नरगिस ने तलाशहक इस पिक्चर में उन्होंने भूमिका अदाई की और वो समय था 1935। फिल्म मदर इंडिया में राधा की भूमिका के जरिए भारतीय नारी को एक नया और सशक्त रूप देने वाली नरगिस हिंदी सिनेमा का महानतम अभिनेत्रियों में से एक थी, जिन्होंने लगभग 2 दशक लंबे फिल्मी सफर में दर्जनों यादगार संवेदनशील भूमिकाएं की और अपने सहज अभिनय से दर्शकों का मनोरंजक भी किया। नरगिस दत्त का जन्म फातिमा अब्दुल रशीद के रूप में 1 जून 1929 में कलकत्ता में हुआ था। हालांकि उनके जन्मस्थान के लिए विवाद के बाद कुछ लोगों का कहना है कि इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ। नरगिस के पिता तमचंद मूलचंद रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाले समृद्ध हिंदू

एवं माता जन्नत बाई एक हिंदुस्तानी क्लासिकल गायिका थी। उनके दो भाई अख्तर और अनवर हुसैन थे। नरगिस की माता भारतीय सिनेमा से सक्रियता से जुड़ी हुई थी। नरगिस ने मदर इंडिया के अलावा आवारा, सी 420, बरसात, अंदाज, लाजवंती, जोगन, परदेशी, रात और दिन सहित दर्जनों कामयाबी फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया और उनके अभिनय के चर्चे तो उस समय चारों ओर फैल गए थे। राज कपूर के साथ उनकी जोड़ी विशेष रूप से सराही गई और दोनों की जोड़ी को हिंदी फिल्मों की सर्वकालीन सफल जोड़ियों में से गिना जाता है। 1940 और 50 के दशक में नरगिस ने कई फिल्मों में काम किया था। फिर 57 में प्रदर्शित महबूब खान की मदर इंडिया ये नरगिस की सर्वाधिक चर्चित फिल्मों में रही। इस फिल्म को ऑस्कर के लिए नामित किया गया था। उनके कुछ फिल्में इस प्रकार है, अंदाज, होनहुनी, जोगन, आवारा, रात और दिन, अदालत, घर संसार, लाजवंती, परदेशी, चोरी चोरी। तो नरगिस को पद्मश्री सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिले। इनमें फिल्म फेयर पुरस्कार के अलावा रात और दिन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनय का पुरस्कार भी मिला है। तो इसी प्रकार से चलो दोस्तों आगे बढ़ते, फिर से लेते एक छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

सभी का ईश्वर जिसको है सबकी फिकर, जिंदगी की राह में मिल गया एक हम।

0: एक हम सफर।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए फिर से हम आपको बताना चाहेंगे कि आज किन किन लोगों का जन्मदिन है उनके बारे में। जी हाँ, आज राजेश्वरी गायकवाड़ जी का भी जन्मदिन है। और राजेश्वरी गायकवाड़ भारतीय क्रिकेटर है जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए खेलती है। इन्होंने 19 जनवरी 2014 को श्रीलंका के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला प्रदर्शन किया। यह दाएं हाथ से खेलने वाली बल्लेबाज है। और उनके परिचय के बारे में अगर बताना चाहेंगे तो राजेश्वरी गायकवाड़ का जन्म 1 जून 1991 को कर्नाटक में हुआ था। इनका पूरा नाम राजेश्वरी शिवानंद गायकवाड़ है। ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए खेलती है और बाएं हाथ की स्पिनर राजेश्वरी गायकवाड़ ने 4 विकेट की मदद से भारतीय महिलाओं ने तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्ट इंडीज को 15 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 3-0 से जीत लिया था। राजेश्वरी गायकवाड़ ने 19 जनवरी 2014 को श्रीलंका के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला प्रदर्शन किया था। तो हमारी जो भारतीय महिला है वो भी कोई पीछे नहीं है। कोई कहाँ अपना हुनर दिखाता है, कोई अपना कहाँ हुनर दिखाता है। तो इसी के साथ आज दूसरा जन्मदिन है बलदेव वंशी जी का। जी हाँ, हिंदी साहित्य जगत का एक जाना माना नाम है। इनका व्यक्तित्व जीवन संघर्षों की आज में तपाता अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्त डॉक्टर बलदेव वंशी ने न केवल साहित्य की विविध विधाओं में अपने कलम चलाए वरन हिंदी के प्रचार प्रसार के कार्य में भी सक्रिय भागीदारी की। बलदेव वंशी हिंदी को लेकर दिल्ली के UPSC पर चलने वाले संभवतः सबसे लंबे धरने का अहम हिस्सा रहे हैं। डॉक्टर बलदेव वंशी का जन्म 1 जून 1938 को पाकिस्तान के मुल्तान शहर में हुआ था। डॉक्टर बलदेव ने कहानियां व समीक्षात्मक लेख भी बहुत सारे लिखे। इनका मन कविता में ही सर्वाधिक रमा। अपनी कविताओं की अनूठी बिंब योजना को लेकर बलदेव वंशी खासे चर्चित रहे। अनेक सम्मानों से सम्मानित व देश विदेश की अनेक साहित्यिक यात्रा कर चुके हैं। डॉक्टर बलदेव वंशी एक लंबे समय से संत साहित्य पर कार्य कर रहे थे। आज यह उनकी विशेष पहचान बन चुका है। संत साहित्य पर उनकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई है और पाठकों द्वारा प्रशंसा भी उन्हें बहुत प्राप्त हुई है। इन दिनों आप विश्व संत साहित्य कोष की एक बड़ी योजना को लेकर भी कार्य कर रहे हैं। बलदेव वंशी का नाम आते ही सहसा भारत के संघ लोक सेवा आयोग के गेट पर भारतीय भाषाओं को उनका हक दिलाने के लिए चलाए गए दुनिया के सबसे लंबे धरने की याद आ जाती है, जिसके लिए पुष्पेंद्र चौहान और राजकारण सिंह ने पूरा जीवन समर्पित कर दिया। बलदेव वंशी इस धरने के संस्थापक अध्यक्ष रहते हुए कई बार गिरफ्तार किए गए। धरने से वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक तथा प्रख्यात कथाकार महीप सिंह जुड़े और समय समय पर प्रसाद जोशी भी धरने पर बैठते रहे। राजनेताओं में अटल बिहारी वाजपेयी, वीपी सिंह, लालकृष्ण अडवाणी और रामविलास पासवान भी उस धरने पर बैठे थे। कहने का मतलब ये बलदेव वंशी कवि लेखक के रूप में तो प्रतिष्ठित थे और भारतीय भाषाओं को भी उनका हक दिलाने के लिए उन्होंने आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई है। तो भारत में उनकी बहुत सारी कृतियां हैं, जैसे दर्शक दीर्घा है, उपनगर है, वापसी, अंधेरे के बावजूद, बगो की दुनिया, आत्मदान, कहीं कोई आवाज नहीं, टूटता हुआ तार, एक दुनिया, यह भी। तो ऐसे ढेर सारे उन्होंने किताबें लिखे हैं जो आज भी भारत में प्रसिद्ध है। तो उन्हें कई पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे कबीर शिखर सम्मान, मलोक रत्न सम्मान, दादू शिखर सम्मान, विभिन्न अकादियों में द्वारा और संस्था विशालों द्वारा भी उन्हें सम्मान मिला है और 6 पुस्तकों पर केंद्र व राज्य सरकार द्वारा भी उन्हें सम्मान मिला है। तो चलिए दोस्तों, हो गया वक्त आज यहाँ नई किरण इस कार्यक्रम को पूरा करने का। फिर मिलते हैं कल इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए लेते हैं विदाई। धन्यवाद। ओम शांति।

तो पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, पुरुषोत्तम महीना की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अर्चना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। बुजुर्गों को कभी कम नहीं आंकना, कैसे जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, अभी नव तपा चल रहा है, तो कैसे हम नव तपा में सावधानी बरतेंगे, कौन से घरेलू उपाय हम आजमाएंगे जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, जरूर आप जानेंगे। फिर खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। तो व्यंजन में मैं आपको आज बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट रेसिपी सिखाने वाली हूँ, वेस्ट में से बेस्ट। ठीक है, कैसे चीज़ों को सफल करना है, बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी आज जरूर सुनना आप। और आज का प्रश्न भी बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: हेलो सर, मैं स्वाति बोल रही हूँ आपके खाई बैंक से। सर आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है सर।
1: सावधान रहें, ये एक स्कैम कॉल है। अपना ओटीपी या एटीएम पिन किसी के साथ भी शेयर ना करें।
2: गुड मॉर्निंग आशियाना में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार है, कभी भी वरिष्ठ नागरिकों को आप कम नहीं समझना, कभी भी बुजुर्गों को कम नहीं आंकना है। कैसे? तो आइए आज के विचार का विस्तार एक दृष्टांत के साथ करना चाहूँगी। बिस्तर पर लेटी हुई 83 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने अपने 87 वर्षीय बुजुर्ग पति से कहा, सुनो जी, मैंने बस खिड़की से बाहर देखा और सोचा कि गैरेज की लाइट जल रही है, क्या आप जाकर के गैरेज की लाइट बंद कर दोगे? बुजुर्ग व्यक्ति बड़ी मुश्किल से बिस्तर से उठे, एक खिड़की खोली और देखा कि 5 या 6 चोर उसके गैरेज के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। बुजुर्ग व्यक्ति ने वहाँ से नज़दीकी पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया। हेलो, हाँ जी, देखो मेरा पता लिखिए, घर पर केवल हम दो बुजुर्ग पति पत्नी हैं, अभी 5-6 चोर हमारे गैरेज का दरवाज़ा तोड़ रहे हैं, जल्दी से पुलिस टीम भेजो। दूसरी ओर से प्रेषक की आवाज़ आई, हमने आपका पता लिख लिया है, अभी हमारे पास कोई टीम फ्री नहीं है, जैसे ही हम किसी टीम से संपर्क करेंगे मैं उन्हें आपके घर तुरंत भेज दूँगा। ये सुनकर के बुजुर्ग निराश हो गए, लेकिन दूसरी ओर चोर अभी भी गैरेज का ताला तोड़ने में लगे हुए थे। 2 मिनट बाद बुजुर्ग ने फिर थाने में फ़ोन किया, सुनो अब किसी को भेजने की ज़रूरत नहीं है, मैंने 5ों चोरों को गोली मार दी है। लाइन के दूसरी तरफ अफरा तफरी मच गई। 5 मिनट के भीतर हेलीकॉप्टर, पैरामेडिक, 3 डॉक्टर, 2 एम्बुलेंस के साथ एक पुलिस टीम बुजुर्ग व्यक्ति के घर पहुंच गई। 5ों चोरों पर जल्दी ही काबू पा लिया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में पुलिस टीम के प्रभारी बुजुर्ग के पास पहुंचे और बोले, आपने कहा था कि उन 5ों चोरों को आपने गोली मार दी, लेकिन हमने उन्हें जीवित पकड़ लिया। बुजुर्ग व्यक्ति ने उत्तर दिया, और आपने भी तो कहा था कि आपकी कोई भी टीम फ्री नहीं है, आप कैसे इतने झूठा लिए? तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, वरिष्ठ नागरिकों को कभी भी कम नहीं समझना है, ठीक है? इसलिए घर में बुजुर्गों की छत्रछाव होगी तो हम सभी सुरक्षित रहेंगे। यह आज का सुंदर सा विचार है जिस पर जरूर गौर करेंगे और सुनेंगे फिर से एक बहुत ही सुंदर गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: This is Uma Shankar Mishra, former director CBI, and you are listening to Brahma Kumari's community radio station. Radio Madhuban, keep listening, keep smiling.
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू उपाय। अभी नवतपा चल रहा है, और नवतपा में आप सभी जानते हैं कि क्या हालत हो जाती है, कितनी गर्मी लगती है। तो नवतपा के दौरान सूर्य की गर्मी बहुत ही तेज हो जाती है, इसलिए

दोपहर 12 से 4 बजे के बीच तेज धूप में निकलने से बचने की कोशिश करिएगा। और अब मैं आपको और भी सुंदर उपाय बता रही हूँ। आप क्या करेंगे, एक गिलास पानी में नींबू और थोड़ा सा मिश्री मिला करके पीजिएगा। इससे शरीर तरोताजा रहेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऐसे नवतपा ऐसी गर्मी में एक गिलास पानी में नींबू और थोड़े से मिश्री मिला करके ज़रूर पीजिएगा, शरीर तरोताजा रहेगा। दूसरा उपाय भी बहुत सुंदर है, छाछ में भुना हुआ जीरा और काला नमक डाल करके ज़रूर पीजिएगा, इससे गर्मी से राहत मिलेगी। ठीक है, तो छाछ पीनी है, छाछ में भुना हुआ जीरा का पाउडर और काला नमक ज़रूर डाल करके पीजिएगा, इससे गर्मी से राहत मिलेगी। पुदीना और धनिया का शरबत शरीर को ठंडक प्रदान करता है, तो पुदीना और धनिया का शरबत बना करके भी ज़रूर पीजिएगा। ठीक है, और क्या नहीं करना है, खाली पेट धूप में नहीं निकलना है, बहुत ज़्यादा तला भुना और मसालेदार भोजन नहीं करना है, धूप से आकर तुरंत बर्फ जैसा ठंडा पानी नहीं पीना है। तो कहा जाता है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, नव तपा की तपिश चाहे कितनी भी बढ़ जाए, यदि हम पानी परहेज और सावधानी का साथ निभाए तो स्वास्थ्य और मुस्कान दोनों सुरक्षित रह जाए। तो बस स्वास्थ्य को भी सुरक्षित रखना है तो हमारी मुस्कान तो बनी ही रहेगी। ठीक है ना, पहला सुख निरोगी काया, तो परहेज भी जरूर रखिएगा। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो नव तपा का असर आप पर नहीं होगा और आप स्वस्थ रहेंगे। ये हुए घरेलू उपाय। आइए आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर है, 12 महीनों का नाम बताइएगा हिंदी में। 12 महीने में कौन कौन से नाम आते हैं, हर महीने का नाम है हिंदी वाले, इंग्लिश वाले नहीं बताना है, हिंदी वाले नाम आपको बताना है। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और अभी यहीं पर एक अल्पविराम लेकर के पुनः रूबरू होंगे खुशनुमा जीवन में, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: जीवन में सुख चाहिए तो सुख देना सीखिए। किसी के सुख से झलने या किसी को दुखी करने से सुख नहीं मिलता। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में खुशनुमा जीवन का विषय आपके समक्ष रख चुकी हूँ। आप जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है, जो मैं फिर से दोहरा रही हूँ। 12 मास का हिंदी में नाम बताइएगा। तो प्रश्न का जवाब भी देना है, विषय को भी स्पष्ट करना है। नंबर रेडियो मधुबन का है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं, और आज के विषय में आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। आज के प्रश्न का आप जवाब भी दे सकते हैं। आज का विषय फिर से दोहरा रही हूँ, जीवन में सुख चाहिए तो सुख देना सीखिए। किसी के सुख से झलने या किसी को दुखी करने से सुख नहीं मिलता है। क्या कहेंगे आप? बहुत ही सुंदर विषय है और प्रैक्टिकल विषय है कि भाई सुखी तो सभी बनना चाहते हैं, कोई भी हो, एक्स वाई जेड, छोटा बड़ा कोई भी व्यक्ति हमेशा यही चाहता है कि बस मैं हमेशा सुखी रहूं, खुश रहूं। लेकिन ये नहीं पता होता है कि हम कैसे सुखी रहेंगे, कैसे खुश रहेंगे। किसी की खुशियां छीन करके हम कभी सुखी नहीं हो सकते, कभी खुश नहीं रह सकते, है ना। इसलिए पहली बात तो ये भूल ही जाइएगा कि किसी को खुशियाँ छीननी है। दूसरी बात ये भी है कि कितनी बार लोग सामने वाले को कमेंट करते हैं, सामने वाले को परेशान करते हैं, तो भी जब हम सामने वाले को परेशान करेंगे और फिर सोचते हैं कि हम खुश रहे, हम सुखी रहे, तो हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसलिए ये भी बात भूल ही जाइए। तीसरी बात यह है कि देखिए, लोग नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, दूसरों से घृणा करते हैं, तो कैसे भाव उत्पन्न होते हैं ये आप सभी समझते हैं ना, कि किसी को नफरत, किसी से घृणा करेंगे तो उसके पहले वो सारे जो नेगेटिव थॉट्स है वो हमारे अंदर आएंगे, तो बेचैनी किसको होगी? हमी को होगी ना। उन तक तो जब पहुंचेगी तब पहुंचेगी। चलिए हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो
1: हेलो, नमस्कार, ओम शांति। हमारी
0: हाँ जी, नमस्ते दयाराम जी, कैसे हो आप? दयाराम जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हाँ जी, बहुत ही स्लो आ रही है आपकी आवाज, बहुत ही धीमी आ रही है।
1: अभी धीमी आ रही है, अभी
0: आ रही है। अब हाँ, अभी ठीक आ रही है। तो आज
1: आवाज आ रही है।
0: आप बाहर है क्या?
1: मेरे घर से बाड़मेर की ओर जा रहा था बस में, तो अभी मेरे प्रिय भाई सुरेश भाई का मुझे कॉल आया, बताया कि बहन आ गए स्टूडियो में। और
0: जी जी, आशियाना कार्यक्रम सीधा प्रसारण है, आप कोई भी जुड़ सकते हैं। तो आज के प्रश्न का जवाब देंगे
1: जी? अभी मैंने पूरी तरह तो प्रश्न का जवाब भी नहीं सुना है, मैं बस में हूँ, तो थोड़ा पूरा कार्यक्रम सही से नहीं सुन पा रहा हूँ।
0: ठीक है, आप मैसेज भेज दीजिएगा अगर जवाब मिल जाए तो, ठीक है। और आज का विषय है, जीवन में सुख चाहिए तो सुख देना सीखिए। किसी के सुख से झलने या किसी को दुखी करने से सुख नहीं मिलता। क्या कहेंगे आप?
1: जी, बिल्कुल। तो जीवन में हम किसी के साथ रहना तो खुशी से रहना है, उसके सुख में हमें भाग लेना है, तो किसी को अपने दिल को ठेस नहीं पहुंचानी है। किसी जितना हो सके अपने सकारात्मक सोच के साथ रखे, उसके भीतर भी भरनी चाहिए हमारे। तो दीदी, मैं बात ज्यादा तो नहीं करना चाहूंगा, तो लोगों की आवाज बहुत आ रही है, बस मैं हूँ इसलिए।
0: अच्छा अच्छा, ले कोई बात नहीं, फिर भी आप जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। हाँ जी हाँ जी, जरूर, ठीक है, थैंक यू। तो ये थे दयाराम जी रामपुरा से, आप कहीं बाहर हैं फिर भी आप रेडियो से जुड़े हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं? आशियाना कार्यक्रम सीधा प्रसारण है, आप सीधे ही जुड़ सकते हैं और आज के विषय को स्पष्ट भी कर सकते हैं, आज के प्रश्न का जवाब भी दे सकते हैं। आज का प्रश्न है, 12 मास का नाम बताना है हिंदी में, और विषय बहुत ही सुंदर है, जीवन में सुख चाहिए तो सुख देना सीखिए। किसी के सुख से झलने या किसी को दुखी करने से सुख नहीं मिलता। क्या कहेंगे आप? तो जैसे कि आपको बता रही थी कि तीसरी बात, हम घृणा, नफरत, ईर्ष्या, करते हैं दूसरों से, तो हमारे अंदर उससे पहले नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तभी जा करके हम लोगों से नफरत करते हैं, घृणा करते, ईर्ष्या करते हैं, और फिर हम चाहते हैं कि हम खुश रहे, सुखी रहे। कैसे रह सकते हैं? चेहरे के भाव ही बदल जाते हैं, चेहरा हमेशा खुशनुमा दिखाई देना चाहिए। लेकिन जब हम दूसरों से नफरत करते हैं तो पहले अपना चेहरा देखिए कि हमारा चेहरा कैसा हो गया है। तो चलिए हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहेंगे। हेलो हेलो, चलिए जो भी जुड़ना चाहते हैं बात जरूर करिएगा। और वो कहते हैं कि सुख चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, जीवन में सुखी बनना है तो क्या करना पड़ेगा, अच्छे मन को रखना पड़ेगा, है ना। एक अच्छा मन होगा तभी तो हम सुखी रह पाएंगे ना। पॉजिटिव संकल्प चलने चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचे। सुखी रहने के बहुत सारे टिप्स है। हेलो
2: अजय जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुरेश भाई बोलता हूँ जटाना से, कैसे हो दीदी?
0: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो मधुबन में। हम बहुत अच्छे हैं, आप सुनाइए आप कैसे हो?
2: भी बहुत अच्छे हैं और बहुत दिनों के बाद आपसे आज बात हो रही है
0: जी।
2: तो खुश है बहुत, क्योंकि हम तो आपका इंतजार हरदम करते हैं। हम तो जो आपका कार्यक्रम तो सुनते थे, लेकिन जब तक आए वो तब तो रेडियो रिकॉर्डिंग सुनते थे, लेकिन अब तो आप आ गए हैं, लाइव कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। आज हमारा जो सभी मित्रों को भी हमने बता दिया है कि आप जरूर बात कीजिए।
0: तो जी जी थैंक यू,
2: बता दिया है और मित्र अभी धीरे धीरे सभी बात करेंगे
0: जी।
2: और बहुत अच्छे दीदी, आप कैसे हो?
0: हम एकदम अच्छे हैं भैया,
2: बस अच्छे रहना है। और आप खुशनुमा जीवन क्या बात है दीदी, मैंने नहीं सुना था।
0: हाँ जी, खुशनुमा जीवन का विषय मैं फिर से सुना देती हूँ। जीवन में सुख चाहिए तो सुख देना सीखिए। किसी के सुख से झलने या किसी को दुखी करने से सुख नहीं मिलता, क्या कहेंगे आप?
2: बिल्कुल सही बात है दीदी। कभी कभी देखते हैं ना हम किसी बहुत, कोई लोग बहुत सुखी होते हैं तो हम ऐसा कहते रहे तो बहुत सुखी है, हम दुखी है तो हम कैसे सुखी हो, ऐसे हम मन में ऐसा चिंता करके करते हैं दीदी। और दूसरों को हम नफरत करते हैं, कोई अच्छे होते तो इसको सामने हम अच्छी तरह से नहीं देख पाते, रहे भाई वो तो आगे चला गया मैं पीछे रह गया। ऐसा नहीं करना है दीदी, ऐसा नहीं करना। आज लोग ऐसा ही कहते हैं, कोई आगे जाते हैं अच्छे रहते हैं सुखी होते हैं तो दूसरा सामने वाला चिढ़ाता है, अरे ये तो कैसे सुखी हो गया, इसको हम सुखी नहीं देख सकते। कई के लोग ऐसे होते दिखती किसी का सुख नहीं देख सकते, तो ऐसा नहीं करना है। हम किसी का जो दुख बांटेंगे तो हम भी सुखी होंगे और सामने वाला भी सुखी होंगे
0: जी।
2: तो ऐसा नहीं करना है, हम सामने वाला सुखी हो तो हमको ज्यादा सुखी रहना चाहिए, चलो भाई हम भी सुखी हैं, तो ऐसा ही समझना है। कई कई बार ऐसा नफरत करते हैं लोग, ऐसा नफरत नहीं करनी है किसी के सामने
0: जी।
2: जी दीदी
0: बिल्कुल
2: जी,
0: तो
2: नमस्ते दीदी।
0: हाँ जी, बहुत बहुत आभार आपका सुरेश भाई। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से, आपने विषय को स्पष्ट करने की बहुत ही अच्छी कोशिश की है। अब आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के विषय में आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, आज के प्रश्न का जवाब भी दे सकते हैं। आज का प्रश्न है 12 मास के हिंदी में आपको नाम बताना है। आप चाहे तो व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हैं, ठीक है। और विषय बहुत सुंदर है, जीवन में सुख चाहिए तो सुख देना सीखिए। किसी के सुख से झलने या किसी को दुखी करने से सुख नहीं मिलता, क्या कहेंगे आप? हेलो हाँ जी कंचन भाई नमस्ते, जन्मदिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: आपको भी ढेर ढेर शुभकामनाएं। लेकिन आज लाइव प्रोग्राम आए तो बहुत अच्छा लगा
0: जी।
3: और मुझे तो पता नहीं था, लेकिन सुरेश भाई ने भी नहीं बताया, आपने बताया आज।
0: मैंने कहा गया सरप्राइज देते हैं कभी कभी, वो भी अच्छा लगता है।
3: हाँ जी, सब कुशल मंगल घर परिवार।
0: हाँ जी हाँ जी, सब कुशल मंगल जी।
3: कपाटन गए थे अहमदाबाद
0: जी जी जी,
3: महीना हो गए
0: काफी घूम लिया इधर उधर।
3: मैंने सोचा कि गर्मी बहुत पड़ती है तो शायद छुट्टी में नहीं होती है।
0: अच्छा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
3: हाँ ठीक है
0: जी जी, ठीक है
3: सभी कुछ।
0: हाँ जी,
3: पड़ती है तो बुजुर्गों को भी बहुत एज होता है, परेशानी होती है
0: जी।
3: और हमारे भी लग्न की सीजन जो वनवासी आदिवासी की चालू हो गई है जी, एक महीने से करीबन।
0: अच्छा,
3: तो 4 बजे सुबह में उठ जाना पड़ता है, कपड़े तैयार कर देने पड़ते हैं क्योंकि लाइट फिर शाम को तो लाइट जो बारिश और ये पवन छूटता है तो बारिश लाइट चली जाती है तो फिर काम नहीं कर पाते, तो सुबह में ही करते हैं काम।
0: जी जी जी जी,
3: ठीक है। हाँ। लग्न के सीजन पुरजोश में चालू चल रही है अभी।
0: अच्छा,
3: वनवासी आदिवासी
0: जी जी जी, बिल्कुल इन लोगों के अभी सीजन ही है जी। जो कि अभी तो भडली नवमी तक सभी के रहेगा शादी ब्याह का, अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है इसलिए 15 दिन और नहीं है शादी ब्याह, बाकी तो है ही है।
3: अभी तो 1 महीना चलेगा बहन जी, इस साल पैसे जो जो खेती का पैसे है ना
0: जी,
3: लॉट करते हैं ये लोग कपास के
0: जी,
3: तो प्लॉट दिखता है जो भरा देते हैं, जिसके पास से लेते हैं उसको एक कपास दे देते हैं, ठीक है
0: जी।
3: तो पैसे तो अभी 5वें महीने में आ जाने वाले थे लेकिन अभी बोलते हैं सभी के बीच 6वें महीने में आएंगे पैसे।
0: अच्छा,
3: तो पैसों भी ना तो ये काम कैसे होता है
0: जी जी जी,
3: वनवासी आदिवासी भाइयों
0: जी जी जी,
3: पैसे अभी देर इस साल देरी से आने वाले थे 6वें महीने में, अब आज आज से 6 महीना शुरू हुआ न
0: जी, आज 1 जून है,
3: आएंगे तो काम करेंगे शादी ब्याह का
0: जी,
3: लड़का और लड़कियों का
0: जी।
3: 1 महीने अभी चलेगा, 1.5 महीना 1 महीना अभी चलेगा
0: जी जी,
3: ऐसी परिस्थितियां है यहाँ की जो आस पास एरिया
0: जी।
3: और विषय तो मैंने सुना, विषय के बारे में बताऊ तो
0: जी,
3: संतोष कैसे रखना चाहिए, सुखी कैसे रहना।
0: हाँ जी, जीवन में सुख चाहिए तो सुख देना सीखिए, किसी के सुख से जलने या किसी को दुखी करने से सुख नहीं मिलता, क्या कहेंगे आप
3: जी। जी, मैं शॉर्टकट में थोड़ा बताता हूँ कि भाई संतोष ही नर सदा सुखी
0: जी,
3: जीवन में किसी का ये देख के ये नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, इसके पास
0: जी
3: हमारे पास कुछ कुछ नहीं है और के पीछे पड़ जाते हैं लोग, कोई के, किसी के पास कुछ होता है तो इसके कैसे इसे कैसे पाड़े
0: जी,
3: पैर पकड़ लेते हैं लोग, तो ये नहीं करना चाहिए
0: जी।
3: अभी क्या है कि भाई संतोष रखना चाहिए जीवन में, हमें इसे प्रभाव में कुछ किया है तो इसको मिला है, ठीक है
0: जी,
3: जन्म में तो हमें भी कुछ करेंगे, ऐसी हरकतें नहीं करेंगे तो हमें भी मिलेगा, ऐसा भाव रखना चाहिए, संतोष रखना चाहिए जीवन
0: जी।
3: इतना मैं तो थोड़ा जानता
0: जी जी,
3: बोला।
0: हाँ जी, और आज के प्रश्न का जवाब देंगे,
3: क्या है नहीं सुना बेटी
0: आज का प्रश्न है।

0: बारह मास का हिंदी में नाम बताना है, 12 महीनों का।
1: तो अप्लाई में बताऊंगा भाई।
0: ठीक है, चलिए, बहुत बहुत आभार कंचन भाई।
1: हाँ ठीक
0: बाकी
1: है।
0: सभी अच्छे हैं ना? स्वास्थ्य बढ़िया?
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बेटी आई थी अभी 10 दिन, यहाँ मेरे वेकेशन था ना,
0: जी
1: तो मामा के घर जाना है, दो बेटे हैं तो बोलते थे, तो सभी आए थे, तो कल गए, आज
0: जी
1: वो वस्ती के हमारे गुजरात में तो चालू हो गया है वस्ती गणतंत्र,
0: जी राजस्थान
1: जलाई
0: में भी
1: हो
0: चल रहा
1: गई।
0: है जनगणना।
1: हाँ जनगणना तो
0: जी
1: चालू हो गया है आज से, तो वो गए कल आए थे,
0: अच्छा
1: अभी शाम को गए सभी।
0: जी
1: ठीक है, सभी कुशल मंगल है बे।
0: अच्छा, चलिए, बहुत बहुत आभार आपका।
1: हाँ जी बे, थैंक यू, सभी दोस्तों को आपको नमस्कार। आपके लिए
0: जी, तो ये थे कंचन भाई मंडाली से। आपने भी विषय को अच्छा स्पष्ट किया है। आइए अब यहाँ पर एक अल्पविराम लेकर के पुनः इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है। कैसे हम छोटी छोटी बातों को अगर इग्नोर करते हैं, जीवन से निकाल फेंकते हैं, तो हमारे जीवन में खुशियाँ बनी रहती है, और छोटी छोटी बातों में अगर हम उस पर गौर करते हैं तो तनाव में आ जाते हैं। तो कैसे इन छोटी छोटी बातों को आप अपने जीवन से निकालोगे, तो बहुत ही सुंदर विषय है। जीवन में सुख चाहिए तो सुख देना सीखिए। किसी के सुख से जलने या किसी को दुखी करने से सुख नहीं मिलता। हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं। हेलो।
3: हेलो, नमस्ते दीदी, ओम शांति। आपको और सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। सुरेश भाई दानेरा से।
2: हाँ जी, नमस्ते सुरेश भाई, कैसे हैं आप?
3: बस दीदी अच्छे हैं। बहुत बहुत दिनों से बात हो रही है, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है दीदी। और प्रोग्राम तो रोज सुनते थे
2: जी,
3: तो लाइव में जुड़ने का कुछ और ही मजा है।
2: ये तो सही कहा आपने जी।
3: अच्छे विषय पर अच्छे विचारों के साथ जो लोग हमें सुने, तो हमें भी अच्छी प्रेरणा और हमारे जीवन में कुछ न कुछ अच्छाई जरूर आएगी।
2: जी बिल्कुल
3: जी जी जी जी। और विषय भी बहुत अच्छा लेके आए हैं, और जो प्रश्न का जवाब तो मैं देने की कोशिश करूंगा मैसेज के जरिए।
2: जी जी जरूर।
3: तो दीदी मैं पहले ये बताओ कि अच्छे विचारों के साथ हम रहना चाहिए दीदी, ताकि हमारे अंदर कोई ऐसा विचार ही न आए कि किसी को दुख पहुंचाना है। और वो अच्छे विचार कहाँ से आए कि हम एक अच्छी तरह से साफ सुथरा जीवन, आध्यात्मिक के साथ, अच्छे लोगों के साथ और अच्छे माहौल में साथ रहे, तो ना तो हम किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं और ना कोई हमें तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं दीदी।
2: जी बिल्कुल।
3: बात रही दीदी ये कि कोई सुखी इंसान है तो जैसे दोस्तों ने बताया ना कि टांग खींचने की कोशिश करते हैं, अरे टांग नहीं खींचनी, उससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि चलो ये सुखी इंसान है, कोई धनी है या किसी भी चीज से जो सुखी है, तो हम क्यों नहीं हो सकते। हमें भी भगवान ने जो अमूल्य जीवन शरीर सब दिया है, तो हम क्यों उनको गिराने की कोशिश करते हैं, या जितने हम गिराने की कोशिश करें इतने मेहनत क्यों नहीं कर लेते उनके साथ चलने की, या उससे भी आगे बढ़ जाने की कोशिश करते। तो मेरा ख्याल है कि हमारे जीवन में सब जो सुखी धनी व्यक्ति को मिलता है इस संसार में, जो हमें भी मिलता है, नजरिया लोगों का होना चाहिए कि कैसे रहना है और क्या करना है। और कोई फायदा नहीं किसी को दुख पहुंचाने का, सिर्फ सुख को पहुंचाइए। अगर कोई हम किसी को सुख देते हैं और वो लोग हम दुखी देखना चाहते हैं या दुख देते हैं, तो उसके कर्म पर छोड़ देना चाहिए हमें, और उनके जैसा नहीं बनना चाहिए। अगर उनके जैसे बनेंगे ना, तो ना तो उन जैसों में और हमारे में कुछ फर्क ही नहीं रहेगा, तो फिर इंसान और इंसानियत ही नहीं रहेगी दीदी।
2: जी बिल्कुल दीदी बिल्कुल।
3: हाँ। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा सभी रेडियो मधुबन लिसनरों को, और कोई सुन भी रहा है तो और भी ऐसे विषय और इस विषय को बताइए कि दुख देने से बजाय सुख लेने की कोशिश करिए और सुख देने की कोशिश करिए। अगर चलो हमारे जीवन में कलयुग है तो ऊंचा नीचा रहेगा, तो ये कष्ट किसी भी प्रकार का झेलने की ताकत रहनी चाहिए। और सिर्फ एक ही स्लोगन है कि विचार अच्छे रखो दीदी। जी दीदी
2: जी
3: जी, नमस्ते नमस्ते
2: जी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार सुरेश भाई। तो ये थे सुरेश भाई दानेराव से। आपने भी विषय को बहुत अच्छा स्पष्ट किया है। आपने बताया है कि हमेशा उच्च और श्रेष्ठ विचार रखने चाहिए। बिल्कुल, विचार तो सबसे पहले मन के अंदर उत्पन्न होते हैं, है ना। तो पॉजिटिव सोचेंगे तो खुशियाँ बनी रहेगी। हेलो,
4: हाँ नमस्कार दीदी, पालमपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ।
2: हाँ जी नमस्ते फिरोज भाई, कैसे हो आप?
4: बस एकदम मस्ते हैं
2: जी।
4: रेडियो मधुबन परिवार को आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, और कंचन भाई और साबिर भाई के जो जन्मदिन है तो जन्म
2: और आपका भी आज जन्मदिन है, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं।
4: थैंक यू।
2: हमेशा खुश रहिए और इसी तरह रेडियो से जुड़ते रहिए। सभी श्रोता बंधुओं के प्रति हम शुभकामना रखते हैं, सभी खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जी
4: नहीं, सही सही बात है जी। आपका तो पूछो ही मत।
2: अच्छा,
4: सभी के ऊपर मालिक जो राम राम नजर रखता है, ऐसी आपकी भी राम नजर है सभी श्रोता भाइयों पे।
2: जी तो आज के विषय के बारे में क्या कहेंगे आप? आज का विषय है जीवन में सुख चाहिए तो सुख देना सीखिए। किसी के सुख से झलने या किसी को दुखी करने से सुख नहीं मिलता।
4: सही बात जी। नहीं बोली है कि के, के, के, के सुख के सब साथी दुख का न कोई, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुख के अंदर भी साथ देना चाहिए और दुख के अंदर भी साथ देना चाहिए। और किसी का सुख देख के अपने को ये नहीं करना कि नहीं मालिक उसको दिया कल अपने को भी देगा, उसको दिया तो अपने को भी मदद करेगा, तो ऐसा होना चाहिए अपने मन में। और किसी को दुख देख के भी, किसी को दुख देते हैं तो फिर भी अपने को पछताना वारा होता है
2: जी।
4: भाई इसको दुख दिया चलो भाई, फिर दूसरे दिन जाके फिर माफी मांगने का आए, ऐसा क्यों बोलने का अपने को
2: जी।
4: हाँ
2: चलिए बहुत सुंदर। और आज के प्रश्न का जवाब देंगे आप? 12 महीनों का आपको नाम बताना है हिंदी में।
4: और नाम बताना है के वो कार्तिक महाफागन चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन और भादो और आसो।
2: अजी दो नाम रह गए, 10 बताए आपने। कोशिश करिएगा आ जाएगा, नहीं तो आप मैसेज के द्वारा भी जवाब दे सकते हैं। ठीक है
4: जी।
2: तो बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई, पुनः आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
4: थैंक यू। जल्दबाजी में थोड़ा और दो नंबर रह गया।
2: जी वो आप याद करिए आ जाएगा। ठीक है
4: जी।
2: हाँ जी वो फिर भी आप जवाब दे सकते हैं। तो ये थे फिरोज भाई, आपने भी विषय को बहुत अच्छा स्पष्ट किया है। आज हमारे बहुत सारे श्रोता बंधुओं का जन्मदिन भी है तो बहुत ही खुशी का दिन है, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और आज का विषय यही है कि जीवन में सुख चाहिए तो सुख देना सीखिए। किसी के सुख से झलने या किसी को दुखी करने से सुख नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो जो हमें चाहिए उसका क्या करना पड़ेगा? पहले हमें देना पड़ेगा। चाहिए की लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होती, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन चाहिए से पहले जो भी चाहिए आप दीजिएगा, दूसरों को दीजिएगा, आपको भी मिल ही जाएगा। वो कहते हैं ना तेरे भाने सबका भला, तो हम किसी को देना सीखेंगे तो वो वाइब्रेशंस वायुमंडल में फैलेंगे और लौट करके हमारे पास ही आएंगे। कहते हैं ना क्रिया की प्रतिक्रिया होती ही है, अच्छा देंगे तो अच्छा मिलेगा भी। इसलिए सुख चाहिए अच्छी बात है, सभी सुखी रहना चाहते हैं, सभी निरोगी रहना चाहते हैं, सभी यही सोचते हैं, लेकिन बस हमें इतना सा ध्यान देना है कि जो हमें चाहिए वो हमको सभी को देना है। ठीक है, तो चेहरा हमेशा खुशनुमा रखिएगा, अच्छे देखिए। जैसे सबसे पहले बताया था कि विचार अच्छे होना चाहिए, है ना। तो विचार अच्छे होंगे तो चेहरे की मुस्कुराहट बनी रहेगी, मुस्कुराहट को देख करके हर कोई खुश होगा कि ये बंदा हमेशा खुश रहता है। चलिए पहले हम अपने श्रोता बंधु से बात करेंगे। हेलो
4: जी, पालमपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ।
2: हाँ जी फिरोज भाई।
4: कार्तिक माघसर पोष महा फागण चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादरो आसो।
2: ठीक है फिरोज भाई, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिरोज भाई ने अच्छी कोशिश की है, और पूरा ही जवाब दिया है, तो आप भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फिरोज भाई ने जवाब दे दिया तो अब हम क्यों देवे। अरे आप भी बोल के बताइए ना, आपको याद है तो बोलिएगा, और अच्छी बात है ना, स्पीड बनी रहेगी, है ना, और भूलेंगे भी नहीं, दोहराने से कभी भूलते नहीं है। तो विषय आज का यही है कि कोई सुखी है तो उससे जलना नहीं है, ईर्ष्या नहीं करनी है। आजकल ज्यादातर ऐसा ही होता है। हेलो,
5: हाँ दीदी नमस्ते, सुरेश भाई बोलता हूँ जेठानाथ से, क्योंकि मैं भी रह गया था हमारे मित्रों का नाम देने के लिए जन्मदिन का
2: जी।
5: तो मैं बताऊँ दीदी, हमारे बहुत पुराने, पहले तो हमारे बहुत पुराने मित्र थे डॉक्टर जय हरदी भाई इकबाल भट्ट वाले
2: जी,
5: तो इसका भी जन्मदिन है। दूसरा हमारे जयराम भाई जोशी, वो धारूसन से थे, उसका भी जन्मदिन किए। और हमारे और मित्र है साफिर भाई, बहुत पुराने मित्र, सब शुरुआत हुई तब का, उसको भी हमारे मित्र ताफी भाई को भी जन्मदिन की शुभकामनाएं। और हमारे मित्र कंचन भाई मंडाली वाले, उसका भी जन्मदिन है। तो ये सभी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। और एक मित्र रह गया हमारे, जो राधनपुर वाले हमारे रमेश भाई था, वो भी, इसका भी जन्मदिन था। और हमारे और एक सिपोर वाले, सिटपुर वाले हमारे भूपत सिंह, उसका भी जन्मदिन है। तो हमारे सभी सारे मित्र को हमारी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। सभी हमारे मित्र खुश रहे, आनंद में रहे और हर दम मुस्कुराते रहे, ऐसी हम शुभकामना देते हैं हमारे सभी मित्र को। दीदी नमस्ते
2: जी, बहुत बहुत आभार। अच्छा है आपने सभी का नाम सुना दिया। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से। आप देखिए, पुराने सभी श्रोता बंधुओं का नाम सहित आप जानते हैं और उनका जन्मदिन है ये भी आपको पता है, कितनी अच्छी बात है। तो इसीलिए हम कह रहे थे कि हमारे बहुत सारे श्रोता बंधुओं का जन्मदिन है, तो हमने आपके लिए गीत भी बनाया जो हम कार्यक्रम के अंत में बोलेंगे। लेकिन अभी विषय की बात चल रही है कि कैसे हम अपने जीवन को खुशनुमा बना सकते हैं और कैसे हम दूसरों को सुखी देख करके जलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के सुख को देख करके जलते हैं, वो कहानी जग जाहिर है। आप सभी जानते हैं कि एक बार एक व्यक्ति बहुत ईश्वर को याद कर रहा था, भगवान ने कहा कि मैं आपसे बहुत खुश हूँ, वरदान मांगो, क्या चाहिए आपको। तो उसने कहा कि भाई मेरे पड़ोसी की एक आंख फूट जाए। भगवान ने कहा अच्छा, लेकिन पहले से ही उन्होंने शर्त रखी थी कि भाई सोच समझ करके मांगना, जो भी मांगो, दूसरों के लिए एक मांगोगे तो डबल आपको मिलेगा। तो फिर बोलो आपको क्या चाहिए, तो बोले पड़ोसी की एक आंख फूट जाए। बोले अच्छा, तो पड़ोसी की एक आंख फूटेगी तो आपकी दोनों ही फूटेगी, है ना। तो दूसरों के सुख से हमें नहीं झलना है। अच्छी बात है ना, कोई सुखी है तो चलो खुश होना चाहिए कि चलो दुनिया में कोई तो सुखी है। तो दूसरों के सुख को देख करके जब हम खुश होते हैं ना, तो ईश्वर उन पर खुश होता है और जो भी परिस्थितियां आई होती है वो टल जाती, वो चली जाती है और एक दिन हम भी इसी तरह सुखी हो जाते हैं। इसलिए हमेशा दूसरों को सुख दो। सुख देने में ऐसा नहीं कि अब सुख कैसे दूँ, भाई मीठी वाणी से बात करिएगा, किसी से प्रेम से आप व्यवहार रखिएगा, किसी की हेल्प कर लीजिएगा छोटी मोटी, और कम से कम किसी को हम वो कहते हैं ना कि बहुत खुशियां नहीं दे सकते, तो किसी को दुख मत दीजिएगा, किसी की बातें मत करिएगा, निंदा मत करिएगा, कमेंट मत कसिएगा, ईर्ष्या मत रखिएगा और घृणा मत करिएगा, तो भी आप सुखी रहेंगे, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव सारे निकल जाएंगे ना हमारे जीवन से, तो हम सुखी ही है। इसलिए इन बातों को हावी मत होने दीजिए, इन जो नेगेटिव बातें हैं ना, इनका प्रभाव अपने जीवन में मत पड़ने दीजिए, तो हम सुखी ही है और सुखी रहेंगे। अगर पड़ भी गया है तो उनको जल्दी से निकालिए, तो हमारा जीवन सुखी रहेगा, खुशनुमा बन जाएगा। तो यही खुशनुमा जीवन का राज है। और आइए आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, 12 मास का आपको नाम बताना है हिंदी में। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आप आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। आप चाहे तो व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा भी भेज सकते हैं। और अब सभी के जन्मदिन के लिए सुनेंगे एक प्यारा सा बर्थडे सॉन्ग और उसके बाद पुनः लौटते हैं, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण मंगल, शूद्र का चरना, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में इस समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वेस्ट में से बेस्ट आज आपको सिखाऊंगी और सीजनेबल रेसिपी। ठीक है, तो पधारी आशियाना के किचन में पेन और डायरी लेकर के, ठीक है, सामग्री लिखिएगा। आज मैं आपको गुठली की सब्जी बनाना सिखा रही हूँ। कैरी, जो मीठी पकी हुई कैरी जिसका हम आम भी कहते हैं, ठीक है, तो आम तो हम खाते ही है, ठीक है, छिलका फेंक देते हैं, गुठली फेंक देते हैं और जो अंदर से पल्प निकलता है वो हम सभी खाते हैं, उसका जूस भी बनाते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन गुठली हम फेंक देते हैं, तो वो वाली गुठली फेंकनी नहीं है। कैसे सब्जी बनाई जाती है मैं ज़रूर सिखाऊंगी, लेकिन हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो
1: रमेश भाई, बोलो राधनपुरी बहन।
0: ओ नमस्ते रमेश भाई, केम छो? रमेश हाँ, जन्मदिन नी तमने बहु बहु मुबारकबाद, केम छो?
1: मजामां बेन,
0: तबियत सारी ने? बहु दिवस पछी जोड़ाया तमे।
1: तबियत बिल्कुल सारी,
0: बहु दिवस पछी जोड़ाया। बधा मजामां?
1: बधा मजामां बेनो, आनंदमां।
0: ओके,
1: तो तबियत सारी सारी?
0: जी जी, बहु सरस। आजे जन्मदिन छे तो शु तमे आजे खास करवाना छो?
1: आज तो आनंद करू छू ने, पेड़ के साये बैठा, लीप का साये।
0: अच्छा, हाँ हाँ, सरस
1: ना। कभी कभी करता रहता हूँ।
0: अच्छा, चलो बहुत अच्छा है,
1: ठीक है
0: जी। बहुत बहुत आभार आपका और पुनः आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि हम गुठली फेंक देते हैं, तो उन गुठली को फेंके नहीं, ठीक है। आप जूस बनाने के लिए केरी काटते हैं ना, तो काटने के बाद आप क्या करेंगे, जो अंदर से गुठली निकलते ना उसके पल्प सारा निकाल दीजिए, फिर धुलाई करके धूप में सुखा दीजिए। जब ये सूख जाए तो इनको फोड़िएगा, फोड़ने के बाद अंदर से और गुठली निकलेगी। अब वो गुठली जो निकलेगी उनको आप काटिएगा, ठीक है, थोड़ा सा बारीक काटना है, बहुत मोटे मोटे पीसेस नहीं करने हैं, ठीक है, थोड़ा बारीक काटिएगा। काटने के बाद अब आप क्या करेंगे, बहुत जने क्या है उबाल करके सब्जी बनाते हैं इन गुठली को, लेकिन अगर आप बारीक काटते हैं तो उबालने की ज़रूरत नहीं। और ताज़ा गुठली है, जैसे आपने आम खा लिया, ठीक है, आम खाने के बाद उसको सुखा दिया और एक दो दिन में ही आप सब्जी बना रहे हैं, तो फिर उसको आपको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। तो बारीक काट लिया, सामग्री में आप और ले लीजिए, हरी मिर्च ले लीजिए, राई लेना है, जीरा लेना है, सौंफ लीजिएगा और मेथी लीजिएगा, धनिया पाउडर लेना है, नमक लीजिएगा और हरी मिर्च, मीठा नीम, हरा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ठीक है। तो ये सामग्री है। तो बनाने का तरीका आपको सिखा रही हूँ, आप इन गुठली को बारीक काट लीजिए, कट गई। अब आप क्या करेंगे, कढ़ाई रखिए गैस पर, तेल डालिएगा कढ़ाई में, तेल गर्म हो जाए तो राई जीरे का छोक लगाइएगा। राई जीरे का तड़का लगाने के बाद ये साथ में आप सौंफ भी डाल दीजिएगा और फिर आप मेथी को थोड़ा सा कूट करके डालिएगा, ठीक है, अध कचरी करके डालना है आपको, साबुत मेथी नहीं डालनी है, ठीक है, ये भी डाल दीजिएगा। ये जब थोड़ा सा मसाला पक जाए तो हींग पाउडर डालिए, उसके बाद आप हरी मिर्च डालिए, मीठा नीम डालिए, ठीक है, और अब आप नमक डालिएगा। नमक डालने के बाद हल्दी पाउडर भी डाल दीजिएगा और ये गुठली जो बारीक काट रखी है वो भी डालिएगा। डालने के बाद अच्छी तरह हिला करके अब आप एकदम आँच को आपको स्लो ही रखना है, ठीक है, धीमी आँच पर फिट ढक्कन ढक के इसको थोड़ा सा सीजने दीजिए। जब ये थोड़े से चढ़ जाए उसके बाद ढक्कन हटा करके लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर डाल करके हिला करके फिर से 2 मिनट धीमी आंच पर पकाइए, उसके बाद गैस बंद कर दीजिए। ऊपर से आप हरा धनिया डाल सकते हैं। तो ये बन गई गुठली की सब्जी, बहुत स्वादिष्ट। मसाला थोड़ा सा तेज डालेंगे तो आपको अचार की तरह लगेगा और मसाला थोड़ा कम डालेंगे तो सब्जी की तरह लगेगी। अब आप पर छोड़ा है कि आप कैसा खाते हैं, ठीक है, लेकिन इनको वेस्ट नहीं जाने देना है। ये जो गुठली है ना, B12 हमारे जिसके भी B12 की कमी होती है या कमी हुई है तो उनकी पूर्ति करेगा, B12 बढ़ाएगा, ठीक है, और फायदा ही फायदा है, तो ज़रूर आप इन गुठली की सब्जी को बना करके इसका आनंद ज़रूर लीजिएगा। और जो भी हम सात्विक चीज़ बनाते हैं तो अपने इष्ट देव को भोग ज़रूर लगाइएगा। कहते ना, भोग लगाने से भोगनाएँ भागती है, इसलिए अपने इष्ट देव को भोग लगाने के बाद ही आप भोजन करिएगा। तो इस तरह आप और भी कोई सब्जियां सीखना चाहते हैं, कोई भी रेसिपी सीखना चाहते हैं, तो आप फोन कॉल्स करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, आपको 12 मास का नाम बताना है हिंदी में। ठीक है, जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर आप मैसेज भी भेज सकते हैं। और अब फिर से सुनेंगे एक गीत, उसके बाद पुनः रूबरू होंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: इसे पी जा।
1: ये क्या है माँ जी?
0: ये काढ़ा है, इसे पीते ही तेरा गर्भपात हो जाएगा।
1: नहीं माँ जी, अब बस, मैं और गर्भपात नहीं होने दूंगी। इससे पहले भी आपने मेरी बच्ची की जान ली है, इस बार मैं आपको यह पाप नहीं करने दूंगी और ना ही इस पाप को मैं स्वयं करूंगी।
0: जुबान चलाती है, एक तो पोता दे न सकी, ऊपर से जुबान चलाती है। पोते के आस में बैठी हूँ, न जाने कब मेरी आँख बंद हो जाए।
2: क्या हुआ माँ, क्यों गुस्सा कर रही है, क्या बात है?
0: ये महारानी काढ़ा पीने से इनकार कर रही है।
1: मैं ये काढ़ा पीकर अपनी बच्ची की अब और हत्या नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बच्ची को नहीं मरने दूंगी। लड़का लड़का सुन सुन कर मैं तंग आ गई हूँ, मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए, वो भी जीवित।
2: माँ ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी बहू, बस अब बंद करो ये जानलेवा खेल, मुझे भी बच्ची ही चाहिए। मुझे लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता, आज के दौर में तो लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा सफलता पा रही हैं। बस अब बंद करो ये खेल, सब बराबर ही तो हैं आज।
1: भ्रूण हत्या करना मतलब आप स्वयं अपनी बेटी की हत्या का अपराध कर रहे हैं। क्या आप जल्लाद हैं? आप जल्लाद हैं? आप जल्लाद नहीं ना?
3: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही हैं, काफ़ी अच्छे रहे हैं, सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करेंगे। उनके बहुत ही अच्छे दिए हैं, नव तपा चल रहा है, किस तरह सावधानियां बरतेंगे, कैसे आप किन चीज़ों को आजमाएंगे वो सब आपने जाना है। फिर खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें हुई, वो भी बहुत ही अच्छी हुई। हमारे बहुत सारे श्रोता बंधु जुड़े हैं, मैं उनका नाम भी सुनाऊँगी अभी। और रेसिपी में जो आपको गुटली की सब्जी बनाना सिखाया है, ज़रूर बना करके खाइएगा, ठीक है। और आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर था, 12 महीनों का नाम हिंदी में आपको बताना है। तो देखिए जवाब दिया है, मैं पहले नाम बताना चाहूँगी। सही जवाब दिया है नीलम राठी आबू रोड से। फिर अलका जी काबरा कपासन से, सुरेश भाई जोटाना से, दयाराम भाई लाखनी से, कंचन भाई मंडाली से, फिरोज

भाई पालनपुर से। सुरेश भाई आपने जवाब नहीं दिया है, विषय में जुड़े हैं दानेराव वाले। फिरोज भाई ने सही जवाब दिया है। प्रवीणा जी मुंबई से आपने भी सही जवाब दिया है। तो आप सभी के लिए पहले मैं ढेर सारी तालियां बजाना चाहूंगी। तो आज के प्रश्न का जवाब मैं सुना रही हूँ। 12 महीनों के नाम हिंदी में, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। तो ये नाम आप सभी ने सुनाए हैं जो सही है, और आप सभी विषय में भी जुड़े और विषय को भी स्पष्ट किया, इसके लिए ढेर सारी तालियां। आज का मीठा मोती भी सुनाना चाहूंगी, बहुत ही सुंदर है। किसी भी रिश्ते या इंसान से दुख पूछने का मतलब यही है कि हमारा उस रिश्ते या इंसान से लगाव बहुत गहरा है। अब मैं आपको जन्मदिन के मुबारकबाद गीत के द्वारा देना चाहूंगी। हमारे बहुत सारे श्रोता बंधुओं का जन्मदिन है, तो आप सभी के लिए गीत बनाया है मैंने। तो आप लेंगे गीत का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM। मारा श्रोता बंधु रो आयो जन्मदिन, बधाई हो सगलाने। मारा श्रोता रो आयो जन्मदिन, बधाई हो सगलाने, बधाई हो सगलाने, बधाई हो सगलाने, बधाई थे सगलाने। मारा श्रोता बंधुरो आयो जन्मदिन, बधाई हो।

बंस रोज जुड़ो हो था कि नजरिया ले में उतार बधाई हो सगला ने। मारा श्रोता बंधुरो आयो जन्मदिन।

0: आप हो रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम हिंसा को नो स्मार्ट संस्थान के सहयोग से। वैसे तो ये कार्यक्रम पहले भी आप सभी ने सुना था, लेकिन इस बार कुछ नए विषय और बदलाव की बातों को लेकर आए हैं हम आपके बीच। दोस्तों, अक्सर हम घर परिवार में लड़का लड़की को लेकर बहुत सारी बातें करते हैं। लड़का ये करे, लड़की वो करे, लड़की हो तो ये पहनेगी, लड़का है तो ये खेलेगा। हमारी सोच और नजरिए के अनुसार हम अपने बच्चे और समाज को भी ढलते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या हमने कभी उनकी आवाज सुनने की कोशिश की? चलिए दोस्तों, आज उन आवाजों को सुनने की कोशिश करते हैं। उन आवाजों में हमारी अपनी आवाज भी कहीं छुपी हुई तो नहीं है?

0: हूँ।
1: ए मीना, जा भाई ने बुला, यो तगारो तो कन छत पे रखन आवे।
2: माँ, भाई की कटे जरूरत है, ला मैं राखे ना हूँ छत पे।
1: अरे तू रेवा दे बेटा, तू छोरी है, अत्रो वजन थारा सु कोनी तो की।
2: अरे माँ, ये छोरा और छोरी काई होवे, देख मैं उठा ली दियो वजन।
1: ध्यान सु बेटा।
3: मजबूत बने बचपन सबका, शक्ति है स्वरूप बेटियों का।
4: दो सखियां आपस में बात कर रही हैं, किस तरह की बातें कर रही हैं, आइए इसी कड़ी में आगे सुनते हैं।

0: ते जागी।
1: सीमा, अरे काई वो जो थने आखी रात जागनो पड़ियो और चिंता वालो गीत भी गा रही, उदास भी लाग रही है। बोल सीमा, बोल काई भी हो सीमा।
0: ए मीना, मैं तने कई बताऊं, मारा घर वाला मन आगे पढ़वा ही ना दे रहा। अब मैं कई करूं, मन तो ठाक होनी पड़ रही, तू इस बता मीना, अब मैं कई करूं।
1: सीमा, ये बात तो वास्तव में चिंताजनक है, पर देख सरकार की योजना के अनुसार अपने साइकिल मिली, जो माने भी दादाजी दादी जी घर वाला सब मना कर दी दो कि या तो छोरिए इन्हें साइकिल चलावा कोनी देनी, पर मैं मारे वास्ते आवाज उठाई और जिद करी साइकिल चलावा की, तो देख ले मारे लिए कतरो आसान वे गयो साइकिल लेन, स्कूल जानो आनो घर रा दूसरा काम करना। आज मारा दादा दादी जी मने साइकिल चलाता देख कतरा खुश होवे। सीमा, आपने लिए तो आपने ही बोलनो पड़ी, आगे तू समझदार है।
0: थैंक यू मीना, अब मारा समझ में आ गई कि मारा का ही करना है।
2: जीवन के हर मोड़ पर नारी देती है परीक्षा, कोई रोके ना उसे लेने से अच्छी शिक्षा।
3: अक्सर हम खेल के बारे में सोचते हैं, लड़का ये खेलेगा लड़की ये खेलेगी, तो कहीं यहाँ पर भी इस तरह की बातें तो नहीं हो रही है? सुनते हैं।
1: मम्मी मम्मी, मारे टूर्नामेंट है, मैं क्रिकेट में भाग ले रही हूँ।
4: मीना, तू और क्रिकेट? अरे कोई छोरी वालो गेम पसंद कर, यो तो गेम छोरा को है, एड़ा उछल कूद करवा वाला गेम आपने को नहीं खेलनो, समाज में बाता हो जाई।
5: अरे मीना की माँ, क्रिकेट में काई बुराई है? अरे भाई, अपने मिताली राज ने देख लो, राजस्थान की पहली महिला क्रिकेटर रह चुकी है, आपने मीना भी किकाऊ कम कोनी है। जा बेटा जा, खेल तू पूरी छूटे।
1: थैंक यू पापा।
2: लड़का हो या लड़की, दोनों को है खेलने का समान अधिकार।
3: बेटा और बेटी के प्रति कैसी सोच होती है हमारी, तो आइए हम देखते हैं माँ बेटी बेटे के बीच किस तरह की बातें हो रही है।
4: अरे राहुल बेटा, आज मारी तबियत ठीक कोनी, थोड़ो सो सूप बना दे तो।
6: माँ तू मीना न बोला पे, मारती एरो कम नहीं वे, मैं सो रहा हूँ।
4: बेटा मीना अबानू ज आराम करवा गई है, और यो छोरा छोरी कहीं लगा रखियो, जा फटाफट सूप बना, मारे दवा लेनी है।
6: ठीक है माँ।
4: मने मीना का साथ साथ में राहुल ने भी घर को हर काम सिखानो पड़ी, ताकि काल का दिन मारी बहू का जीवन में कहीं भी समस्या नहीं आवे।
2: भूख सभी को लगती है, यह जग जाहिर है, फिर भी महिला ही खाना बनाएगी, ये कैसी लाचारी है।
7: तो बच्चों, अब इस तरह से आप लोगों ने जान लिया होगा कि जेंडर क्या होता है और सेक्स क्या होता है। एक प्रश्न का मुझे जवाब दो कि आदमी और औरत में क्या अंतर होता है।
8: मैडम, आदमी कमान लावे, लुगाया तो घर को काम करे।
9: मैडम, आदमी पंचायत में बैठे और औरत बच्चा ने संभाले।
10: मैडम, औरत बच्चा ने जन्म देवे और पिता पालन करवा में मदद करे।
7: शाबाश बच्चों, आप सभी ने उत्तर देने की अच्छी कोशिश की है। आज के समय में तो औरतें भी पंचायत में बैठती हैं, सरपंच भी बनती हैं, औरत नौकरी भी कर रही है तो घर परिवार भी संभाल रही है, पुरुष खाना भी बनाते हैं तो बच्चों को भी संभालते हैं, तो ये सारे काम महिला और पुरुष बराबरी से करते हैं, इसलिए हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जो कार्य करते हैं उसे जेंडर कहते हैं, और महिला और पुरुष की शारीरिक बनावट में जो अंतर है उसे सेक्स कहते हैं।
2: नर हो या नारी, दोनों को है जीवन जीने का अधिकार, दोनों के ही शरीर की बनावट में होता है अंतर।
3: दोस्तों, आपने मुलाकात की हमारी बहादुर मीना से। इस नाटक से स्पष्ट होता है कि महिला और पुरुष की शारीरिक बनावट में अंतर होता है, ना कि उनके कार्य में। आइए जेंडर और सेक्स को बेहतर तरीके से समझते हैं आज की हमारी जेंडर एक्सपर्ट वीथिका जी से। दोस्तों, वीथिका जी यादव एक मानवाधिकार कार्यकर्ता है, जिन्होंने मानव तस्करी, गुलामी, लैंगिक अधिकारों और यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य के मुद्दों पर काम किया है। वह लव मैटर्स इंडिया की कंट्री हेड है, जो सभी लिंग और कामुकता के लिए प्यार, सेक्स और रिश्ता के बारे में जानकारी प्रदान करती है। चलिए सुनते हैं वीथिका जी से कि वह क्या कहती है जेंडर और सेक्स के बारे में।
11: तो जब हम सेक्स की बात करते हैं तो हम अधिकतर जो है जो हमारे बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो हमारा शरीर है, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, तो जब हम सेक्स के बारे में बात करते हैं तो वो सिर्फ वो उस चीज के आपके शरीर के जो अंग हैं, जो आपके बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको रेफर करता है। और इसमें आपके जो आपके शरीर पे जो बाल हैं, जो आपके स्तन हैं, जो भी आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपका यूट्रस है, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो सब कुछ आते हैं। और वही जब हम सेक्स की बात करते हैं तो वो जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जनरली उनको यूज करा जाता है, उनका इस्तेमाल करा जाता है पुरुष और स्त्री के शरीर को अलग अलग तरीके से समझने में। नॉर्मली क्या होता है कि हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को जन्म के दौरान ही एक सेक्स असाइन करा जाता है, और वो सेक्स असाइन करा जाता है इस बेसिस पे कि उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। और जो उनके शरीर, जो शरीर के जो अंग जो महिलाओं के होते हैं, अगर वो उनके साथ पैदा होते हैं तो उनको लड़की बोला जाता है, और जिनके अंग लड़कों वाले होते हैं उनको लड़का बोला जाता है। लेकिन जरूरी ये समझना है कि जो हम उनको सेक्स असाइन कर रहे हैं जब उनका जन्म हुआ है, जो लिंग हम उनको दे रहे हैं, वो उससे विपरीत उनको महसूस कर सकते हैं जब वो बड़े हों, जिसको हम बोलते हैं कि बाइनरी से हटके जो जहाँ पे हम इंटरसेक्स की बात करते हैं, माना मानने की जो व्यक्ति जन्म में जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पुरुष के थे, हो सकता है कि वो बड़े होके महिलाओं जैसा महसूस करे, और उसी तरह से महिला जो है पुरुष जैसा महसूस करे। जब हम जेंडर की बात करते हैं तो उसमें हमारा समाज, हमारी साइकोलॉजिकल, हमारा जो कल्चर है, हमारे कल्चरल जो रोल्स हैं, जो हमारी बिहेवियर है, जो हम हमसे अपेक्षाएं रखी जाती हैं, जो सोशल नॉर्म्स हैं, चाहे मेल को लेके, फीमेल को लेके, या किसी और जेंडर आइडेंटिटी को लेकर, उसको हम जेंडर में डालते हैं। क्योंकि जेंडर, जहाँ पे सेक्स जो है वो आपके फिजिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके देखा जा रहा है, वहां पे जेंडर जो है वो सिर्फ बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता है, बिकॉज ये एक तरह से एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। ये जो समाज ने एक जो ढांचा बनाया हुआ है जेंडर को, उसके मुताबिक देखा जाता है। क्योंकि अधिकतर जब हम समाज की जब बात करते हैं तो ट्रेडिशनली ये देखा गया है कि एक पुरुष और एक महिला की एक बहुत ही बाइनरी अंडरस्टैंडिंग है जेंडर को लेकर। लेकिन जेंडर जो है वो सेक्स से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसको, उसका अनुभव भी लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि

0: अलग अलग हैं। कुछ लोग जो जो ट्रांसजेंडर हैं उनका जेंडर आइडेंटिटी जो है वो उससे विपरीत है जो उनको सेक्स जन्म के टाइम उन्हें दिया गया। बहुत सारे जब आजकल जिन टर्मिनोलॉजी की बात बहुत ज्यादा हो रही है जिसमें हम जेंडर फ्लूइड होने की बात करते हैं या फिर जेंडर क्वेयर होने की बात करते हैं, ये वो वाली आइडेंटिटीज हैं जो अपने आप को केवल पुरुष और महिला वाले सेक्शंस में नहीं देखते हैं, लेकिन कुछ अलग अपने आप को अपना जेंडर जो है वो अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। तो सेक्स जहाँ पे बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक आपका आपका शरीर की जो बनावट है जो आपके शरीर के अंग हैं उनको लेकर ज्यादा रेफर करा जाता है, वहीं जेंडर जो है वहां पे समाज का, कल्चर का, हमारी सोच का, हमारे बिहेवियर का रोल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो इन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इसकी डाइवर्सिटी को, विपरीतता को हम समझ सकें, क्योंकि बहुत सारे जो लेबल्स हैं वो सेल्फ आइडेंटिफाइड लेबल्स हैं, जो एक्सप्रेशंस हैं, और उसके लिए हमारे समाज में बहुत ज्यादा जगह नहीं है। तो जेंडर सिर्फ पुरुष और महिला वाला जेंडर नहीं होता, जेंडर उसके बियॉन्ड भी होता है।
1: दोस्तों, अभी हमने सुना विथिका जी को। उम्मीद करते हैं कि आप भी जेंडर और सेक्स के बीच के अंतर को बेहतर समझ सके होंगे। लेकिन दोस्तों, कार्यक्रम अभी भी बाकी है। आरजे उषा आए और गीत ना गाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, हम लेते हैं आपसे विदाई, फिर मिलेंगे अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए 107.8 FM पर सुनते रहिए रेडियो मधुबन को और कहिए
2: सुनो समझो चुप्पी तोड़ो और कहो हिंसा को नो।

0: है, गोलमाल है, गोलमाल है।
1: घर का सारा काम महिलाएं करती है, फिर भी बाहर निर्णय की जरूरत पड़ती है तब कहते हैं तुम घर संभालो।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

सुनेगा ये जहां कहेंगे जो हम सुनेगा ये

0: मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड और दोस्तों इस कार्यक्रम में आप मिलते हैं नई नई प्रतिभाओं से, उनसे मुलाकात भी करते हैं और एक संगीत के सफर पे भी चलते हैं हम साथ साथ। वैसे दोस्तों हम जानते हैं संगीत के कितने प्रकार हैं और आजकल तो इंटरनेट के माध्यम से हर चीज जैसे एक क्लिक पर ही उपलब्ध है, लेकिन संगीत आधारित किस पर होता है अगर ये सोचा जाए तो भाई ये समझ में तो आने में देर नहीं लगेगी कि बिना कविताओं के बिना शब्दों के संगीत अधूरा है। तो इसीलिए आज जिनसे हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं वो शब्दों को बहुत बखूबी पिरोती हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें बहुत सरलता से शब्दों में कविताओं के रूप में वो व्यक्त करती हैं। रिया हमारे साथ आज मौजूद है स्टूडियो में सांझ बाबा साहेब घुगे जी, जो कि बीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट है, इंग्लिश लिटरेचर इकोनॉमिक सोशियोलॉजी उनके मेजर सब्जेक्ट्स है। उन्होंने 3 किताबें भी लिखी हैं इतनी छोटी सी उम्र में और नेशनल लेवल की पब्लिक स्पीकर भी हैं। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। सांझ आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: सबसे पहले तो हमारे जो लिसनर्स हैं मैं चाहूंगी उनके लिए एक बार थोड़ा आप अपने शब्दों में भी अपना परिचय दें।
1: ओके, सो हेलो एवरीवन, मैं सांझ घुगे हूँ एंड मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है कि मैं रेडियो मधुबन के साथ जुड़ रही हूँ और उसके जरिए आप सभी से मुझे बातचीत करने का मौका मिल रहा है। सो आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स रेडियो मधुबन फर्स्ट ऑफ ऑल एंड अ ह्यूज एंड स्पेशल थैंक यू टू परमात्मा फॉर ब्लेसिंग एंड शॉवरिंग मी विद सच ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और रूहानी यात्रा पे आपको लेके जाने का मैं प्रयास करूंगी थ्रू पोएटिक वर्ड्स एंड इंटरेक्शन। सो आई होप कि आप सब एंजॉय करें।
0: सांझ, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी क्योंकि आपने 3 किताबें लिखी हैं, है ना, उनमें से एक तो मेरे सामने है अभी जिसका नाम है बियॉन्ड लाइफ अ ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी। इसके अलावा ये आपकी 3री किताब है,
1: राइट?
0: इससे पहले 2 किताबें किस बारे में लिखी हैं आप?
1: मैंने जब फर्स्ट बुक लिखी थी दैट टाइम आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड एंड दैट वाज अ पीरियड ऑफ लॉकडाउन। एक्चुअली मैंने जब मेरी फर्स्ट बुक लिखी थी तो फिर वो मैं जब 10th में थी तब लिखी थी एंड उस वक्त लॉकडाउन चल रहा था, बिकॉज ऑफ विच मेरी 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड्स तो कैंसिल हो गए थे। सो आई वॉज लाइक वेरी डिसहार्टेड, मुझे बुरा लग रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत बहुत ज्यादा मेहनत की थी, बहुत पढ़ाई की थी और फिर मेरी एग्जाम्स कैंसिल हो गई तो मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था, मैं थोड़ी उदास हो गई थी। सो व्हाट माय फादर सजेस्टेड इज मी इज कि मेरे पापा ने कहा कि तू क्या कर, तू एक किताब लिख डाल, बिकॉज उन्हें पता था कि मुझे लिखना बहुत पसंद है।
0: अच्छा,
1: यस। तो फिर मैं पहले से जैसे जैसे मुझे कोई थॉट्स क्लिक करते थे मेरे माइंड में, मैं उन्हें तुरंत लिख देती थी। तो मैंने उस वक्त क्या किया, जो भी मेरे पास मेरे जो थॉट्स थे मैंने पेजेस पे लिखे हुए थे उन्हें गैदर किया एक साथ एंड देन उनको थोड़ा और एलैबोरेट किया एंड इसके साथ जन्म हुआ मेरी पहली किताब का जिसका नाम था अ सिंगल लाइफ द गाइड फॉर अ बेटर लाइफ।
0: अच्छा।
1: एंड उस वक्त लॉकडाउन चल रहा था जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, तो फिर लॉकडाउन में तो जैसे कि सब कुछ बंद चल रहा था तो फिर इसलिए मैंने ऑनलाइन पहले पब्लिश किया एज ए ई बुक और फिर उसके बाद मैंने हार्ड कॉपी भी उसकी पब्लिश कराई प्रिंट करके एंड देन वो मैंने लॉकडाउन में 700 कॉपीज सोल्ड किए ऑनलाइन ही। एंड देन सेकेंड बुक मैंने लिखी थी जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी, उसका नाम था बोधि एनलाइटन थाई सेल्फ ऑन द वॉयज लाइफ। सो दैट आई रोट व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड एंड उसका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है हमें, लोगों को सबको बहुत पसंद आई। एंड मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब एक्चुअली यू नो जब आपकी बुक किसी को हेल्प कर जाती है, बिकॉज जैसे कि मेरा जॉनर ही सेल्फ हेल्प है, आई राइट मोटिवेशनल बुक्स दैट्स नॉन फिक्शन, तो फिर मुझे बहुत सारे लोगों ने आके मुझे

0: बताया पर्सनली कि जो जैसे मुझे जो छोटे थे या फिर मेरे एज के जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे उन्हें बहुत पसंद आया. उन्होंने मुझे आके बताया कि इसका हमें बहुत हेल्प हुआ है, इससे हमें बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला है, एंड उसने हमें सच में ये बुक पढ़ के हमें सच में मोटिवेशन फील हुआ है. सो ये सब मैंने जब सुना तब मुझे अंदर से ऐसा फील हुआ कि यस, मेरा जो पर्पस था वो फुलफिल हो गया है.
1: क्या बात है. अच्छा सांच, मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मैं जानना चाहती हूँ और बुक के बारे में. लेकिन हमारा जो प्रोग्राम है वो बहुत ही संगीत का है ना और कविताओं का प्रोग्राम है. आज एक्चुअली कविताओं का बन गया है. तो क्योंकि आप लिखते हैं पोएट्री भी, तो क्या आप हमारे लिसनर्स के लिए कुछ आपका लिखा हुआ पढ़कर सुनाएंगे?
0: जरूर. मुझे पोएट्री लिखना बहुत पसंद है और मेरी लिखने की जर्नी ही पोएट्री से शुरू हुई थी.
1: अच्छा, शुरुआत मतलब वहां से हुई.
0: yes.
1: जो आगे जाके बुक तक पहुंची.
0: यस,
1: वंडरफुल.
0: तो मेरे पास बहुत कविताएं हैं और मैं यूजुअली इंग्लिश में लिखती हूँ, लेकिन मैंने हिंदी में भी लिखा था लास्ट ईयर. मैंने कुछ कविताएं हिंदी में लिखी थी, तो उसमें से मैं एक पेश करना चाहूंगी.
1: जरूर.
0: तो इसका शीर्षक है, मेरा प्यारा शिव है आया. मनुष्य जीवन के हैं पांच स्वरूप, ज्योति बिंदु बन परम रूप. तो देवता दूजा लक्ष्य अथवा पूज्य स्वरूप है बेहद पूजनीय. तो ब्रह्मा जीवन है ज्ञान का भंडार, तथा फरिश्ता बन करना है सबका उद्धार. ज्ञान का सागर प्रेम और आनंद में समाया, ले बिंदु का आकार मेरा प्यारा परमात्मा है आया. मीठे बच्चे सिकिलदे बच्चे बोल, निस्वार्थ प्रेम करना सिखाया. अनगिनत राज खोल, खुद को खुद से है मिलाया. मेरा प्यारा भोला शिव है आया, मेरा प्यारा भोला शिव है आया.
1: सो स्वीट, बहुत ही सुंदर आपने जो बात कही. मुझे लगता है आपको जैसे परमात्मा से बहुत कनेक्ट महसूस होता है हमेशा.
0: जब मैं योग में बैठती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है.
1: वो अनुभव आपने लिखा
0: जी.
1: ये कब लिखी थी आपने, मतलब कब लिखा आपने?
0: 2024 में लिखा था, दिसंबर 2024 जब मैं बाबा मिलन के लिए आई थी.
1: अच्छा, जब आप यहाँ पे आए तब आपने लिखा. ओके, तो आपके मन में जब कोई भावनाएं आती हैं तो आप उनको लिख देते हैं
0: जी,
1: है ना, चाहे पोइट्री के फॉर्म में हो चाहे किताबों में आपके नो कोटेशंस वगैरह भी आपने लिखे हैं बहुत सारे. तो जैसा आपने पहले कहा था सांझ की आपने सेल्फ हेल्प बुक्स लिखी है, तो थोड़ा बताएंगे सेल्फ हेल्प बुक्स क्या होती है?
0: जी जरूर. सेल्फ हेल्प का अर्थ ये है कि ऐसे किताब जो पढ़कर आपको कोई हेल्प मिले उससे. देखिए, अभी सेवा करने का या फिर हेल्प करने के अनेक अनेक तरीके होते हैं, तो उसमें से एक किताब भी है. और फिलहाल इन 21st सेंचुरी ये जो सेल्फ हेल्प बुक है या फिर मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल बुक्स है, ये बहुत ट्रेंडिंग चल रही है. अच्छा. अगर हम बाकी के ऑथर्स को भी देखें, इंटरनेशनल ऑथर्स जैसे कि जय शेट्टी है, तो फिर उनके बहुत सारे नॉन फिक्शन या फिर सेल्फ हेल्प बुक्स है which are doing very very good in the market and people are liking that a lot.
1: अच्छा.
0: Yes, क्योंकि आज का समय ऐसा है जिसमें लोगों को help चाहिए कुछ तो भी, and it is not possible कि हर बार हर कोई counselor के पास जा सके. बहुत से लोगों को नहीं पसंद counselors के पास जाना. तो ऐसे समय में I think कि books पढ़ के वो खुद खुद की help कर ले.
1: अच्छा.
0: Self help, खुद खुद की help करना.
1: That's wonderful. तो आपने जो पहली बुक लिखी, क्योंकि कोविड का समय था, बहुत मुश्किल समय था सबके लिए, अपनों से दूर थे, हेल्थ की गारंटी नहीं थी और बहुत चीजें हो रही थी जिसमें खुद को हम हेल्पलेस महसूस कर रहे थे कि हम कुछ नहीं कर पा रहे. तो ऐसे में मोटिवेशन कहाँ से आया, बिकॉज मोटिवेशन लॉस हो रहा था उल्टा.
0: yes.
1: तो आपने वो क्या तरीका ढूंढा ऐसा, या कुछ आप ऐसे शेयर करना चाहेंगे, मे बी टिप्स या एनीथिंग जो आपने उसमें मेंशन की?
0: यस, जैसे मैंने आप बताया मुझे पोएम लिखना बहुत पसंद था. तो फिर मेरी उस बुक की शुरुआत ही फर्स्ट पेज ही पोएम से शुरू होती है.
1: ओके.
0: तो वो पोएम थी, आई स्टिल रिमेम्बर, उसका टाइटल था ओ लाइफ.
1: ओ लाइफ,
0: यस. तो मैंने लाइफ के बारे में लिखा था. तो फर्स्ट चैप्टर या सिंगल लाइफ था, पोएम थी ओ लाइफ. तो उसमें उस पोएम का मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: क्योंकि वो तो इंग्लिश में थी, तो उसमें मैंने ऐसा लिखा था, लाइफ को मैंने एक एंटिटी मतलब एक लिविंग पर्सन बोल के अज्यूम किया था. ओके. मतलब इसे सोचा कि लाइफ है. सब लोग बोलते मुझे लाइफ बहुत अच्छे से जीनी है, पर लाइफ है क्या एग्जैक्टली? तो फिर मैंने उसमें लिखा था कि ओ लाइफ, आप कहाँ हो? मैं आपको कहाँ ढूंढ सकती हूँ? मुझे आप दिखते क्यों नहीं हो? क्या आप ऊपर हो, नीचे हो, मेरे लेफ्ट में हो, राइट में हो? मुझे पता नहीं आप कहाँ हो, लेकिन आप हो. क्या मैं आपको बुर्ज खलीफा पे ढूंढ सकती हूँ? क्या आप कहाँ हो, मुझे नहीं पता. क्या आप थोड़ी देर रुक नहीं सकते मेरे लिए? ओ लाइफ व्हाई कांट यू वेट फॉर मी, क्या आप रुक सकते हो मेरे लिए? लाइफ आपके पास पॉज बटन है क्या? अगर आपके पास पॉज बटन होता तो शायद ही जब मेरे बहुत सुंदर पल रहते थे लाइफ के तब मैं आपको पॉज कर सकती थी. पर लाइफ अब हो कहा, वेयर आर यू, वेयर आर यू ओ लाइफ, अब हो कहा. और फिर उसमें एक चैप्टर ये भी था, फोकस एंड बिलीव. तो उसमें मैंने लिखा था कि आपका जो भी एम है लाइफ में उस पर आप पूरा फोकस कीजिए और बिलीव रखिए खुद के ऊपर. सो फोकस एंड बिलीव, इस मंत्रा से यू कैन कॉन्क्योर व्हाटएवर यू वांट.
1: आपको लगता है आपकी लाइफ में इस मंत्रा ने बहुत काम किया है?
0: Yes, अभी भी कर रहा है एक्चुअली, बिकॉज आई थिंक कि अगर हम लाइफ में हमारे जो गोल्स है, जो एम्स है, उस पर फोकस रहेंगे और खुद पे विश्वास रखा तो सब कुछ संभव है.
1: That's wonderful. कोई ऐसी चीज है जो आपको लगा हो कि ये थोड़ी मुश्किल थी अचीव करनी लेकिन आपने किया? थोड़ा मुश्किल सवाल है, मैंने आपको तुरंत तुरंत पूछ दिया.
0: एक्चुअली अब तक तो ऐसा नहीं हुआ है, शायद आगे जाके हो सकता है और मे बी नॉट, आई डोंट नो. बट एज आई सेड, आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड आई बिलीव दैट आई कैन डू एवरीथिंग. तो आई होप कि ऐसा समय तो कभी ना आए, बट लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल अगेन.
1: नहीं, लेकिन ये बहुत वंडरफुल बात है. देखिए, हम लोग के पास एम होते हैं और कई बार हमें वो बहुत मुश्किल लगते हैं, लेकिन शायद आपके पास विश्वास इतना है कि आपको कोई चीज मुश्किल नहीं लगती.
0: मुझे फेथ भी बहुत है परमात्मा में कि नहीं, जो भी मुझे चाहिए या फिर जो भी मैं मन से अगर मैं कुछ विश करूं तो फिर वो जरूर पूरा होगा.
1: दैट्स वंडरफुल. ये मुझे लगता है बहुत पॉजिटिविटी लेके आता है लाइफ में. दैट्स ग्रेट. सांझ, आप कोई और अपनी पोयम लिखी हुई हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करेंगे?
0: जरूर. ओके, ये आई गेस सबको बहुत पसंद आएगी, तो ध्यान से सुनिएगा.
1: जरूर.
0: इसका शीर्षक है एक कदम है बढ़ाना.
1: एक कदम है बढ़ाना
0: जी. ईर्ष्या तथा द्वेष की अग्नि को असीम प्रेम की शीतलता से है मिटाना. गुस्से के ज्वाले को शक्ति के सागर से है सहलाना. परमात्मा की ओर एक कदम है बढ़ाना. एक कदम है बढ़ाना. एक कदम है बढ़ाना. तेजस्वी किरणें धारण कर जग को है उजालना. जिंदगी के उलझनों से न डर. परमात्मा की ओर एक कदम है बढ़ाना. एक कदम है बढ़ाना. एक कदम है बढ़ाना. तू है शक्ति, तू ही शिव शक्ति. परमात्मा से मिलन मना. स्व के गुणों को है निहारना. परमात्मा की ओर एक कदम है बढ़ाना. एक कदम है बढ़ाना. एक कदम है बढ़ाना.
1: ये एक कदम कई बार बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो कदम बढ़ाया. तो कहते हैं ना कि आप पहला कदम बढ़ाते हैं और जैसे आपका आधा काम हो गया. ये तो कहावतें मशहूर है, लेकिन जो आपने बात कही अपनी कविता के माध्यम से कि अपने को भी कई बार हम ऐसे सोच लेते हैं ना कि मेरे अंदर ये कमी है, ऐसा है, वैसा है, और हम वो कदम नहीं ले पाते. क्या आपके मन में था जब आपने ये लिखा?
0: नहीं, मेरे मन में ऐसा तो नहीं था कि मेरे अंदर कुछ कमियां हैं या फिर मैं कदम ना बढ़ाऊं. बट यस, कुछ काउंटर पार्ट्स थी जिनके वजह से मुझे लग रहा था कि मैं बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं. आई वाज इन अ डायलेमा, लाइक कंफ्यूजन स्टेट में, बट देन फाइनली नहीं, वो सब कुछ साइड में रख के अगर हम लोग थोड़ी बहुत जो चीजें हैं जो हमें दूर ले जा रही है उनको अगर साइड में रखे तो फिर देर आर सो मैनी पॉजिटिव थिंग्स. देर इज अ होल विंडो. देन अगर हमने एक बार वो विंडो के बाहर देख लिया, एक कदम बढ़ा लिया, देन इट इज लाइक वेरी ब्यूटीफुल.
1: ओके,
0: तो आप तो मैंने तो अपना एक कदम बढ़ा लिया है, क्या आप सब बढ़ाएंगे?
1: हाँ, ये अच्छा सवाल है. तो जब आप कविता लिखते हो तो क्या सोचते हो उस वक्त? मतलब कि मैं, आप सोचते हो कि अभी मुझे लिखना है या कभी रैंडम थॉट आता है आप लिखना शुरू करते हो?
0: ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पोएट्री इज एक्चुअली अ फ्लो ऑफ थॉट. यस, तो फिर आई मीन आई कैनॉट फोर्स माई सेल्फ टू राइट. मैं खुद को फोर्स नहीं कर सकती कि सांझ अब तुझे बैठना है, तुझे पोएम लिखनी है, दिस इज योर टाइटल, यू हैव टू राइट दिस. नो, वो फिर पूरा कॉर्पोरेट टाइप ऑफ हो जाता है. तो आई कैनॉट फोर्स माई सेल्फ, बट येस, जो फ्लो ऑफ थॉट्स है या फिर जो पोएट्रीज या फिर जो आइडियाज मुझे आते हैं ना, वो अचानक से सडनली क्लिक होते हैं. नाउ इट माइट बी ड्यू टू द सराउंडिंग समटाइम्स और एल्स ड्यू टू सर्टन, कोई मैंने कोई इंसिडेंट देख लिया, तो फिर वो देख के मुझे स्ट्राइक होता है, तो देन आई जस्ट राइट इट डाउन. मैं वो लिख लेती हूँ और फिर जैसे मैंने ये बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि मैंने अगर दो लाइन लिखी या फिर एक पैराग्राफ लिखा ना, तो आगे का ऑटोमेटिकली आते जाता है. एंड इवन दो मैं जो वर्ड्स वगैरह भी यूज करती हूँ पोएट्री में, वो ऑटोमेटिकली राइम हो जाते हैं. ये मुझे बहुत मैजिकल लगता है कभी कभी, बट दैट इज द मैजिक ऑफ पोएम्स आई थिंक.
1: दैट इज ट्रू. राइटिंग

0: हमको, है ना, संतुष्ट हैं हम।
1: आजकल सब लोग खुशी बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन खुशी एक्चुअली हमारे अंदर ही है, हमें बस उसे बढ़ाना है, बाहर लाना है।
0: मतलब ये अदर वे राउंड।
1: यस, मैंने एक बहुत ही अच्छा एक थॉट पढ़ा था एक ऑथर का, सो वो ये था कि इन ऑर्डर टू सी यू नीड टू क्लोज योर आईज। मुझे बहुत टच कर गया।
0: सो नाइस, सो डीप।
1: यस,
0: है ना, तो कितना सोचने वाली बात है कि आपको देखने के लिए आपको आंखें बंद करने की जरूरत है।
1: जी
0: हाँ, ये आप सोचने वाली बात है। मुझे लगता है श्रोताओं आप भी सोच सकते हैं कि आंखें बंद करके ऐसा क्या दिखेगा जो दिख नहीं पा रहा हमें। और सच में कभी कभी वो जर्नी बाहर की नहीं अपने अंदर की होती है, जिसे हम बाहर करने का प्रयास कर रहे होते हैं, तो तभी कभी कभी खो जाते हैं। चलिए, फिलहाल ऐसी बातें तो बहुत, मुझे लगता है जब आप पोएट को पढ़ते होंगे या किसी को सुनते होंगे, आपको भी कोई ना कोई लाइन जरूर पसंद आई होगी। अगर आई है तो हमें आप मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि है 9414151415, यानी कि 9414151415। सांझ, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, है ना, पब्लिक स्पीकर भी हैं। ये जर्नी कैसे शुरू हुई स्पीकिंग की, या फिर आपने थोड़ा सा इस जर्नी के बारे में बताइए।
1: एक्चुअली मैं जब स्कूल में थी, सो दैट टाइम आई वाज वेरी एक्टिव, मुझे एंकरिंग करना बहुत पसंद था और मुझे चांस भी मिला, मुझे मेरे टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया था, मुझे चांस दिया एंकरिंग करने का हमारे एनुअल फंक्शन में एंड ऑल। तो उसके बाद तो तब से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ स्टेज के लिए। और हमारा तो जैसे एनुअल गैदरिंग बहुत बड़ी रहती थी, देयर यूज्ड टू बी 2,000 to 3,000 क्राउड ऑलमोस्ट, तो उनके सामने मैंने एंकरिंग की थी, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बिल्डअप हो गया था मेरा, लैंग्वेज पे कमांड भी मेरी अच्छी थी। फिर उसके बाद में देन आई वाज इन फर्स्ट ईयर, सो दैट टाइम आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू अबाउट लाइक आई गॉट टू नो अबाउट दिस BCS, दैट इज भारतीय छात्र संसद।
0: अच्छा।
1: यस, जो महाराष्ट्र में होता है पुणे में।
0: अच्छा।
1: और वहां पर पूरे भारत से अलग अलग कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटीज से स्टूडेंट स्पीकर्स आते हैं।
0: अच्छा।
1: तो वो सिलेक्शन का एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है एक्चुअली। पहले हमें हमारा एक 3 मिनट का वीडियो बना के अपलोड करना पड़ता है स्पीच का, फिर उसमें से वो कुछ बच्चे सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद वहां पर जाकर एक्चुअली लाइव में इंटरव्यू लेते हैं वो हमारा, वहां पर भी हमें हमारी स्पीच बोलनी पड़ती है, एंड देन एंड ओनली देन दे सेलेक्ट ओनली 24 स्टूडेंट स्पीकर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। यस, तो फिर वहां पर सब लाइक जम्मू से लेके कन्याकुमारी, फ्रॉम राइट फ्रॉम ईस्ट लाइक आसाम एंड अप टू गुजरात, हर एक स्टेट से वहां पर स्टूडेंट्स आए थे।
0: ओके।
1: यस, सो दे सेलेक्टेड 24 स्टूडेंट स्पीकर्स एंड आई वाज वन ऑफ देम, लाइक आई रिप्रेजेंटेड महाराष्ट्र इन दैट।
0: क्या बात है, कितनी प्राउड फीलिंग हो रही है।
1: एंड मेरा टॉपिक भी बहुत अच्छा था, शायद आपको पसंद आए इसलिए मैं टॉपिक बताना चाहूंगी, AI एंड सोशल मीडिया पावर और पिटफॉल, ये मेरा टॉपिक था।
0: ओके।
1: मतलब जो AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया है, तो फिर इससे हमें इसकी वजह से मतलब ये पावर है या एक गड्ढा है जिसमें हम गिरते जा रहे हैं।
0: और आपको क्या लगता है, क्या है?
1: मैंने तो इसमें एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव रख के बताया था, क्योंकि जैसे कि आज हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, दिस इज द एज ऑफ इंफॉर्मेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो फिर यहाँ पर पूरी तरह से सोशल मीडिया फिर AI से दूर हो जाना इज नॉट द सोल्यूशन, बट यस, दोनों का बैलेंस करके अगर हम चले तो इट इज गुड। जैसे एक शेक्सपियर का कोट है, सुपरफ्लुइटी कम सूनर बाय वाइट हेयर बट कॉम्पिटेंसी लिव्स लॉन्गर, इसका मतलब कि कोई भी चीज को अगर हम लिमिट में यूज करेंगे तो इट इज वेरी बेनिफिशियल, वो बहुत अच्छी प्रूव होती है, लेकिन अगर उसी चीज का हम लोग बहुत ज्यादा उपयोग करेंगे तो फिर वो हमारे लिए घातक हो सकती है। तो वैसे ही सोशल मीडिया का अगर हम लिमिटेड अपने काम के लिए और अच्छे काम के लिए यूज करेंगे तो फिर इट इज अ चेरी ऑन द टॉप, सोने में सुहागा, लेकिन अगर हमने उसका ओवर यूजेज किया तो फिर वो उसके एडवर्स इफेक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो यस, तो मेरे स्पीच में मैंने एक सोल्यूशन भी दिया था सबको कि माइंडफुलनेस के बारे में भी मैंने बताया था। पहले तो मैंने बताया कि हमारा ब्रेन इज अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, तो अगर हम लोग ओवर यूज करेंगे सोशल मीडिया का तो फिर उससे क्या होगा, हमारे ब्रेन पे वो कैसे अफेक्ट करेगा, ये मैंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद मैंने सोल्यूशन ओरिएंटेड मेरी स्पीच बनाई, जिसमें मैंने बताया कि आप लोग अगर माइंडफुलनेस मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर आप ये बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे।
0: माइंडफुल मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: यस,
0: क्योंकि उसके बिना हम अति में चले जाते हैं, और अति तो वैसे भी कहा जाता है किसी चीज की अच्छी नहीं होती, है ना, क्योंकि बहुत अच्छी चीज है उसकी भी अति करते हैं तो नुकसान करती है। मुझे लगता है हमारे पूर्वज और हमारे घर घर में हमने ये बातें सुनी है
1: जी,
0: तो बहुत इम्पोर्टेंट है।

0: आज भी रेलेवेंट है। जैसे आपने बताया आपकी पब्लिक स्पीकिंग जर्नी यहाँ से शुरू हुई, इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे क्योंकि मुझे लगता है बहुत हमारे युवा है जो साथी जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं। दोस्तों आप भी सोचिए, कई तरह की अपॉर्चुनिटीज आपके आसपास भी होंगी जो हम कभी सोचते हैं कि कॉलेज के बाद शायद उनको करेंगे, लेकिन आज से शुरू करेंगे तो और आपके लिए जीवन में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने वाली है। ये हमें सांझ से भी जानने को मिला। तो सांझ, कोई और आपकी पोएट्री जो आपको बहुत पसंद हो, ऐसी दिल के करीब कोई है?
1: हाँ, ये वाली मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली, क्योंकि इस पोएम में मेरा खुद का नाम भी है।
0: Yes. क्या बात है।
1: मेरा नाम सांझ है और सांझ का मीनिंग है संध्या, इवनिंग।
0: ओके,
1: यस। तो इसमें मैंने उसका भी उल्लेख किया है, थोड़ा डीप है वो, तो हम समझते हैं। इसका टाइटल है, ढलती है सांझ मधुर वाणी से तेरी, दुनिया को तू राह दिखाए, राह चलते राही को भी तू अपना बनाए, सृष्टि का ये अद्भुत चक्र तू चलाए, कर्म के हिसाब किताब समझाए, रूहानी राह तू दिखलाए, हम बच्चों को तू अपना बनाए, समय चक्र का खेल है निराला, सतयुग का सुवर्ण सफर है सुहाना, राम राज्य लाएगा युग त्रेता, द्वापर में होगा खेल द्यूत का, युगो युगो की है ये कहानी, शक्तियां मनुष्य की है ढलती, कल की अवतार कलयुग लाए, संगम युग का सीमित है समय, अंधेरी रात का संदेशा लाए, ढलती है सांझ, एक सुनहरी सतयुगी सुबह लाए, ढलती है सांझ।
0: क्या बात, क्या बात, बहुत ही सुंदर आपने, मतलब एक जैसे जर्नी बताई सृष्टि की, आपने बात की बहुत बड़ी बड़ी बातें की। तो आपको जब भी कोई इस तरह की बात लगती है कि हाँ बहुत भगवान से जुड़ी है, ईश्वर से जुड़ी है, तो क्या आप उसे पोएट्री में उतारने का प्रयास करते हैं?
1: जी, ये वही प्रयास था।
0: हाँ।
1: जो शायद मैंने तो पूरा प्रयास किया है इसको सफल बनाने का, लेकिन आप जरूर बताइए आपको पसंद आई होगी तो।
0: जी, और बहुत सुंदर लिखी है आपने, है ना, बहुत कई बार। और कविता एक ऐसा माध्यम है मुझे लगता है जो हम बड़ी बड़ी बातें शायद सिर्फ सुनकर समझ नहीं पाते, वो कुछ शब्दों का इस प्रकार से लिखा जाता है उन्हें। तो सांझ, हम आपसे बात कर रहे थे, आपने पब्लिक स्पीकिंग की जर्नी वहां से शुरू की, फिर उसके बाद क्या हुआ? मतलब आपने, क्योंकि नेशन वाइड आपने है ना एड्रेस किया है, तो वो आगे कैसे बढ़े या क्या आपने उसके बाद कदम उठाए?
1: वो जो स्टेज था वो बहुत बड़ा था BCS का, है ना, इतना बड़ा स्टेज दिया, उतना करेज दिया, बिकॉज वहां पर 10,000 to 15,000 पब्लिक एंड ऑल यूथ, एंड हमारे साथ, लाइक मेरे साथ स्टेज पे वहां पर बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी बैठे हुए थे। तो वंस अगेन आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड परमात्मा को, उन्होंने मुझे इतना करेज दिया, उतनी शक्ति दी कि मैं इतने सारे 10,000 to 15,000 पब्लिक थी वहां पे, मैक्सिमम यूथ, उनके सामने खड़े रह के इतने अच्छे से।
0: बहुत बड़ी बात है इतने लोगों के सामने बोलना, बहुत बड़ी बात है। आपको डर नहीं लगा?
1: नहीं, एक्चुअली हमारे अंदर जब हम स्टेज पे जाते हैं दो टाइप के फीलिंग्स रहते हैं, एक एक्साइटमेंट, एक फियर, राइट? तो अगर फियर की क्वांटिटी ज्यादा रही तो डर लगता है, लेकिन मेरे अंदर एक्साइटमेंट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी जिसने फियर को ओवरलैप कर लिया, तो इसलिए आई थिंक मुझे डर तो नहीं लगा। आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड।
0: क्या बात है, इतने सारे लोगों के बीच में बोलने के लिए बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए, है ना, और यूथ के सामने स्पेशली बोलने के लिए शायद, क्योंकि तो बहुत जल्दी देखते हैं कि आप अच्छा बोल रहे हो क्या, नहीं बोल रहे हो क्या हुआ।
1: और वहां पर तब लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर, लाइक मेघालय लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर थॉमस संगमा जी भी प्रेजेंट थे, उनके द्वारा मुझे ट्रॉफी भी मिली, उनके द्वारा सम्मान हुआ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उससे एक और थोड़ा करेज बिल्डअप हुआ, आई मीन कॉन्फिडेंस और लेवल अप हो गया। फिर उसके बाद आई स्टार्टेड टेकिंग पार्ट इनटू लॉट मेनी कॉम्पिटिशंस, एलोक्यूशन कॉम्पिटिशंस, लाइक स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, जो डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वो भी। और अभी रिसेंटली यूथ फेस्टिवल हुआ था 2025-26, तो फिर उसकी जर्नी मेरी शुरू हुई थी सितंबर में। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल राउंड हुआ, I came first in that, then I got qualified for the central like round, like universities आए थे हमारे ही district से, तो फिर उसमें भी I got selected and I got qualified once again, फिर finally अभी recently last month में जो हुआ था that was zonals, तो उसमें center zone का वो पूरा competition था, वहाँ पे all the universities from Maharashtra, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, इतने यूनिवर्सिटीज आए थे, सो उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया. नाउ आई एम गोइंग टू नेशनल्स विद गॉड्स ग्रेस. अब नेशनल्स मेरी होगी यूथ फेस्टिवल की चेन्नई में इन मार्च.
0: इसमें आप किस बारे में बोल रहे हो?
1: इसमें अभी टॉपिक एक्चुअली हमें पता नहीं रहता है. हमें कंपटीशन के एक दिन पहले टॉपिक मिलता है.
0: ओ,
1: देन हमें प्रिपेयर करना पड़ता
0: है. एक ही दिन में?
1: जी, एक ही दिन में.
0: अच्छा, और आपने किस बारे में बोला था जब ये तीनों स्टेट्स के?
1: अभी जो रिसेंट का हुआ था सेंटर जोन का हमारा, तो उसमें मेरा टॉपिक था स्वदेशी 2.0, बिल्डिंग सेल्फ रिलायंट विकसित भारत.
0: ओके,
1: यस. तो स्वदेशी सेल्फ रिलायंस पे था ये. अच्छा हुआ. बहुत
0: कुछ मेन पॉइंट्स आप बता सकते हैं क्या क्या आपने कवर किया?
1: जी, मैंने एक्चुअली जो शुरुआत थी वो मैंने रविंद्रनाथ टैगोर जी से की थी, कि जैसे वो एक सभा ले रहे थे और उसमें उन्होंने बताया था कि स्वदेशी का अर्थ उन्होंने समझाया था.
0: अच्छा.
1: तो स्वदेशी का ये अर्थ नहीं है कि हम फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करें या फिर उन्हें जलाए, रास्ते पे जलाए एंड ऑल. सो दैट इज नॉट व्हाट वी हैव टू डू. हमें क्या करना है, हमें जो इंडियन इंडस्ट्रीज है उनके ऊपर ट्रस्ट दिखाना है. क्योंकि जब हम हमारे खुद के होममेड इंडस्ट्रीज पे ट्रस्ट दिखाएंगे तभी जाके हम उन्हें एक्सेप्ट कर पाएंगे और हम उन्हें यूज कर पाएंगे. और जितना ज्यादा हम स्वदेशी अपनाएंगे उतना ज्यादा आई गेस ग्रोथ होगी इंडिया की.
0: बिल्कुल.
1: सो स्वदेशी मतलब फॉरेन गुड्स को जलाना या बॉयकॉट करना नहीं है. स्वदेशी मतलब खुद के गुड्स को अपनाना.
0: हाँ, मतलब जो भारत में बन रहा है ना, वो उस पर विश्वास रखना, उसको इस्तेमाल करना, उनको बढ़ावा देना.
1: जी,
0: बहुत सुंदर. जैसे आपकी तो बहुत सारी मतलब चीजें हैं, आपको अगर मैं ये जानना चाहूँ आप क्या करना चाहते हो फ्यूचर में?
1: या
0: एक यू नो एक सवाल होता है कि क्या करना है.
1: जी, मुझे एक्चुअली बहुत सारी चीजें करने का मन में है. मुझे सब कुछ करना है, लेकिन जैसे हमारे गोल्स फिक्स्ड रहते हैं तो वैसे ही मेरे भी गोल्स फिक्स्ड हैं. मुझे एक बहुत ही रिनाउंड ऑथर बनना है, राइटर बनना है.
0: जो तो आपने कब से शुरू कर दिया जर्नी इसके लिए आपने?
1: तो उसी के पाथ पे मैं अभी चल रही हूँ एंड मैं जरूर रिनाउंड ऑथर बनूंगी. एंड इसके साथ साथ आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर UPSC.
0: अरे वाह, क्या बात.
1: यस,
0: That's wonderful. मुझे लगता है ये तो बहुत ही बड़ा और बहुत इम्पोर्टेंट गोल है.
1: जी,
0: और UPSC की पढ़ाई भी आसान नहीं होती है, बहुत टफ होती है ना. वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स माना जाता है उसको.
1: जी,
0: तो उसमें तो बहुत मेहनत करनी होती है.
1: हाँ,
0: बहुत पढ़ाई.
1: और मेरा एक बहुत ज्यादा मन से सपना है, इट्स काइंड ऑफ ड्रीम दैट आई एम लिविंग फॉर कुछ सालों से. तो वो ये है कि मुझे इंग्लिश लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट है. मुझे वो पढ़ना बहुत अच्छा लगता है एंड मुझे रिसर्च में भी बहुत इंटरेस्ट है. मुझे बहुत अच्छा लगता है रिसर्च करते हुए. तो यस, तो मेरा ये सपना है कि मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मेरी PhD कंप्लीट करूं. बिकॉज ऑक्सफोर्ड इज द लाइक बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर इंग्लिश लिटरेचर इन द होल वर्ल्ड. एंड वहाँ की लाइब्रेरी तो इतनी बड़ी है, वहाँ पे ओरिजिनल वर्क्स रखे हैं. तो मुझे वो जरूर पढ़ना है.
0: चलिए, हम बहुत सारी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ कि आपके सारे सपने पूरे हो और बहुत अच्छे और कंस्ट्रक्टिव और बहुत ऐसे सपने हैं मुझे लगता है जिनसे समाज को भी फायदा होगा ना, चाहे वो किताबें हो, चाहे आपका UPSC का एग्जाम हो, है ना, चाहे इंग्लिश लिटरेचर की बात है. तो नॉलेज तो हमेशा काम आती है. तो वंडरफुल वंडरफुल ड्रीम्स आपकी हैं और हमारे श्रोताओं की तरफ से भी ऑल द वेरी बेस्ट आपको. सांच, और क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर की बात हुई है और आप इंग्लिश में भी लिखते हैं, तो क्या कोई इंग्लिश पोएट्री आप हमारे श्रोताओं को सुना सकते हैं?
1: जी जरूर, आई वुड लव टू डू दैट.
0: भाषा तो भाई एक ऐसा माध्यम है जिसे समझ में आता है, लेकिन मुझे लगता है पोएट्री को समझने का आज हम प्रयास करेंगे.
1: जी, तो मैंने एक कविता लिखी थी रेन के ऊपर, बारिश पे.
0: बारिश पे, क्या बात है.
1: तो मैं वो सुनाना चाहूंगी. इसका नाम है अ सोनेट ऑन रेन. तो ये एक शेक्सपियरियन सोनेट है. शेक्सपियरियन सोनेट एक टाइप है पोएट्री का जिसमें चार पैराग्राफ्स होते हैं विद फोर लाइंस एंड एक एंडिंग में एक कॉपलेट रहता है, मतलब टू लाइंस ओनली. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ शेक्सपियरियन सोनेट.
0: ओके,
1: तो फिर दिस इज अ सोनेट ऑन रेन. द रेन हैज कम विद मिस्टिकल वंडर्स रिजुविनेटिंग द लाइव्स ऑफ सम इज द रेन शावरिंग फ्रॉम ईयर्स. The rain sliding down drop by drop seemed silver and straight, clattering upon the rooftop and bustling through the gate. The trees giggling and swaying in glee, The squirrels and them playing in full sway. The time has come to bathe me. The time has come for the rain to play. I could smell the alluring trance of mud, and the gentle breeze veiled me as the petals of a bud.
0: Kya baat hai? तो रेन को जैसे आपने यू नो क्रिएट किया अपने माइंड में, ऐसा लग रहा है कि यू नो बारिश हो रही है और वो पड़ रही है और वो ड्रॉप ड्रॉप है ना गिर रही है,
1: जैसे हम सीन देख सिल्वर सिल्वर दिखता है ना जब गिरती है तो स्ट्रेट और सिल्वर टाइप दिखता है.
0: राइट, बिल्कुल. और बहुत सुंदर तरीके से आपने व्यक्त किया वो अनुभव जैसे, है ना, क्रिएट किया.
1: जैसे बारिश होती है तो हमें तो खुशी होती ही है, लेकिन नेचर को भी उसके साथ बहुत खुशी होती है. जैसे ट्रीज एकदम ऐसे ऐसा लगता है कि वो डांस कर रहे हैं, खेल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और ट्रीज के ऊपर स्क्विरल्स रहती है, वो भी खेल रही है मस्त मस्त, एकदम एंजॉय कर रही है.
0: अच्छा, ये कब लिखा था आपने?
1: I don't remember this, मुझे याद नहीं, बिकॉज़ मैं बहुत लिखती
0: कॉलेज में.
1: नहीं नहीं, कॉलेज में लिखा.
0: कॉलेज में लिखा है. ओके, तो आप कब से लिख रहे हो, मतलब कब आपने शुरू किया था पोएट्री लिखना?
1: सेवेंथ स्टैंडर्ड.
0: सेवेंथ स्टैंडर्ड
1: जी.
0: ओके, फर्स्ट टाइम आपने कब लिखा था
1: जी?
0: और उसके बाद से आप हमेशा लिखते रहते हैं?
1: यस.
0: ओके, अच्छा, आपके पेरेंट्स क्या सोचते हैं आपके लिखने के बारे में, या फिर आपकी जो ये आप आज बुक्स लिख रहे हैं, या फिर आपने जैसे पहले कहा कोविड के टाइम पे आप कहीं ना कहीं इश्यूज दिखते रहते थे, इस बारे में क्या सोचते हैं?
1: मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा ही बहुत सपोर्ट किया है, एंड दे आर वेरी सपोर्टिव, एंड आई थिंक कि उनका एक बैकबोन टाइप सपोर्ट है मेरे लिए, इसलिए मैं आज इतना कुछ कर पा रही हूँ. जैसे आपके सामने अभी मेरी बुक है अभी, तो जो आप देख सकते हैं, तो फिर मेरी मॉम ने भी इसमें मेरी बहुत हेल्प की है, जैसे कि इसका जो फाइनेंस है वो पूरा मम्मी ने किया है. तो आई एम ग्रेटफुल कि उन्होंने मुझ में इतना विश्वास दिखाया एंड मुझे सपोर्ट कर रहे हैं. एंड मेरे पापा जिन्होंने मुझे अ सिंगल लाइफ लिखने के लिए मोटिवेट किया था, सबसे पहले उन्होंने बताया था कि आप लिखिए, पब्लिश कीजिए. तो उनसे मैं मोटिवेट हुई और फिर मैंने लिखा, मतलब मैंने हिम्मत दिखाई वो लिखने की, एक कदम बढ़ाया मैंने मेरा.
0: एक कदम बढ़ाया आपने
1: जी. तो सबसे पहले तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माय फादर, एंड आई एम ऑफ कोर्स श्योर कि वो भी जहाँ से भी मुझे देख रहे होंगे उन्हें जरूर खुशी हो रही होंगी,
0: क्योंकि उनका मोटिवेशन ही आपको लाइफ में आगे लेके जा रहा है. डेफिनेटली. एक और चीज पूछनी है मुझे, क्योंकि जब हम लाइफ में होते हैं बहुत बिजी होते हैं, स्कूल में भी कॉलेज में भी, यू नो, एग्जाम्स, देयर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन, उसके बीच में आप लिखने के लिए तो स्पेस चाहिए, टाइम चाहिए, तो वो कैसे आप निकालते हो?
1: मुझे ना एक दिस इज लिटिल बिट क्या कह सकते हैं, मजेदार बात है ये कि जब भी मेरी एग्जाम्स रहती थी तब भी मुझे कुछ ना कुछ सोचता था लिखने के लिए. क्योंकि एग्जाम्स के लिए जब हम पढ़ाई करते तो इट्स ऑब्वियस कि आज बाज में बहुत शांति रहती है घर में, एंड हमारा माइंड तब बहुत फोकस्ड रहता है, बिकॉज इट्स लाइक कि कल परसों पेपर है, हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं पूरे फोकस के साथ, एंड देन तब शांत रहते था, माई माइंड यूज टू बी फोकस्ड, तो फिर तभी मुझे थॉट्स आते जाते थे, एंड आई वॉज लाइक अरे यार मेरी एग्जाम है मुझे पढ़ना है तो मैं पढ़ाई करूँ या ये पोएम लिखूँ. बट देन नहीं, मैं लिख लेती थी तब तुरंत और फिर साइड में रख देती थी. फिर एक बार मेरा मन सेटिस्फाई हो गया पोएम लिखे कि आई वाज यूज्ड टू स्टडी, लाइक कंटिन्यू विद माय स्टडीज अगेन.
0: अच्छा, मतलब उसके बीच में आप टाइम निकालते कि पहले ये हो जाए उसके बाद. लेकिन मुझे लगता है उसके पीछे ये भी राज है कि आप रेगुलरली पढ़ते हो, आप हमेशा से तैयारी रखते हो
1: जी.
0: नहीं तो केवल एग्जाम के वक्त आप एग्जाम के वक्त तो टेंशन हो जाती है. नहीं तो अरे
1: मैं बहुत पहले से मेरी तैयारी शुरू करती हूँ एग्जाम्स की. एंड मैं तो मान के चलती हूँ कि एग्जाम्स को भी हमने सेलिब्रेट करना चाहिए.
0: ओके,
1: यस, बिकॉज एग्जाम इज अ काइंड ऑफ अ फेस्टिवल. जैसे हम देखते हैं हम लोग गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करते हैं, नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं, वो फेस्टिवल रहता है 8-9 दिन का. वैसे ही एग्जाम्स भी रहते हैं, 8-9 दिन तो चलती ही एग्जाम्स हम सबके, तो फिर हम लोग भी उससे, हम लोग एग्जाम्स को भी वैसे फेस्टिवल की तरह क्यों ना सेलिब्रेट करें. और अगर जब हमें पता है कि हमें पढ़ना ही है, एग्जाम्स देने ही है, तो खुशी खुशी पढ़े. अच्छा, और एक्स्ट्रा समझ में आ जाएगा.
0: हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन कई बार उस चीज का स्ट्रेस हो जाता है ना कि कितने नंबर आएंगे, दोस्त ने कितना पढ़ लिया, मैंने कितना पढ़ लिया.
1: नहीं, मुझे इसका स्ट्रेस नहीं आता, बिकॉज सबसे पहले तो मैं दूसरों के साथ कभी कंपेयर किया ही नहीं है मैंने, ना ही अब तक नहीं किया और आगे भी नहीं करूंगी. मैं सिर्फ खुद के ऊपर फोकस करती हूँ और खुद से मेरी कॉम्पिटिशन रहती है कि मुझे लास्ट एग्जाम में कितने मार्क्स थे उससे ज्यादा मुझे अगले एग्जाम में लाना है. तो इससे हमारा सेल्फ ग्रोथ होती है.
0: इतनी सारी पॉजिटिविटी आपके अंदर कहाँ से आई?
1: जब से परमात्मा से कनेक्शन जुड़ा है तब से वो तो पॉजिटिविटी भरते ही जा रहे हैं,
0: मतलब आपके अंदर मिलता ही जा रहा है आपको। और ये वाली जो बात आपने कही, क्या मतलब परमात्मा के मिलने से क्या फर्क पड़ता है लाइफ में, या एक बिकॉज आप बहुत यंग है और यूजुअली ये माना जाता है कि आपको भगवान को याद करना है तो उसकी उम्र आएगी, आप थोड़ा यंग लाइफ तो एंजॉय करने के लिए होती है, है ना, उसके बाद ठीक है जब हमारे पास टाइम होगा तो हम भगवान को बैठ के याद करेंगे, भजन गाएंगे, सब करेंगे। और यूथ के लिए तो लगता है कि नो अभी तो टाइम है कि हम थोड़ा पार्टी करें, थोड़ा यू नो घूमें फिरें, थोड़ा टाइम स्पेंड करें। तो आप इस डायरेक्शन में कैसे, मतलब आपको लगता है क्या मिलता है ऐसा, या फिर क्या फिर भगवान के साथ जो कि ये सब नहीं कर सकते हैं, परमात्मा के साथ पार्टी नहीं होती।
1: फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू बिगिन बाय सेइंग कि जो बड़ों का थिंकिंग प्रोसेस है वो उनकी जगह पे सही है, यूथ्स जो सोचते वो अपनी जगह पे सही है, बट मुझे पर्सनली क्या लगता है कि भगवान से मिलन मिलाने का या परमात्मा से कनेक्ट करने का कोई एज नहीं रहता। ओके, बिकॉज जैसे मंदिर है तो फिर मंदिर में तो छोटे छोटे बच्चे भी जाते हैं, भगवान से प्रे करते हैं, तो तब तो हम एज नहीं देखते, तो यहाँ एज क्यों देखे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई एम अ राजयोगा मेडिटेशन प्रैक्टिशनर, तो उसमें मैंने ये सीखा है कि राजयोगा का अर्थ क्या है। यहाँ पर मैं थोड़े समय में बताना चाहूंगी राजयोगा अर्थात क्या। राज मतलब सुप्रीम, मतलब जो बड़ा है, राज। ओके, एंड योग, योग यानी तो कनेक्शन। तो जैसे हमें पता है हम आत्मा है, अ सोल, तो एक सोल की, आत्मा की सुप्रीम सोल से कनेक्शन, दैट इज इन सिंपल टर्म्स राजयोगा। तो फिर जब मैं ये करती हूँ तो आई इमेजिन कि लॉट ऑफ पॉजिटिव रेज आर फॉलिंग अपॉन मी, मेरे ऊपर बहुत सारी परमात्मा की पॉजिटिव किरणें पड़ रही है, मुझ में शक्ति आ रही है, पावर आ रही है, मेरे आत्मा के जो गुण है लव, पावर, पीस, प्योरिटी, ब्लिस, नॉलेज, हैप्पीनेस, वो सब इंक्रीज हो रहे हैं। तो ऐसे जब मैं सोचती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, यानी कनेक्शन फील होता है।
0: ये बहुत अच्छी आपने बात की।
1: एंड दूसरा, जैसे आपने कहा कि यूथ को अभी आजकल पार्टीज वगैरह करना है, तो आई डोंट डिनाई दैट, उनको करना है तो वो जरूर करें, लेकिन एक बार उन्होंने ये भी अनुभव जरूर करना चाहिए कि परमात्मा से जब हम लोग एक मिलन कनेक्शन जोड़ते हैं या फिर जब योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें एक सही राह दिखने लगती है एंड हमारे गोल्स क्लियर होने लग जाते हैं, फिर ऑटोमेटिकली उनका माइंड भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। एंड मेरी जो ये मैंने बुक लिखी है रिसेंट, बियॉन्ड लाइफ अ ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी, तो उसके पीछे का रीजन ही वो है लिखने के लिए कि जैसे हम अभी देख रहे हैं यूथ कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंड इंडिया में स्पेशली, इंडिया में तो मैक्सिमम पॉपुलेशन यूथ की है, 27-28 पॉपुलेशन एंड परसेंट पॉपुलेशन इन इंडिया इज यूथ पॉपुलेशन,
0: इंडिया इज अ यंग कंट्री।
1: यस, तो फिर यूथ को स्पेसिफिकली एक सही राह दिखाने के लिए शायद उनको पसंद आ जाए और उनको कुछ यू नो कनेक्टिविटी महसूस हो, पॉजिटिविटी महसूस हो, एंड उसके द्वारा उनको बेनिफिट हो जाए, उनका माइंड परिवर्तन हो जाए, तो दैट्स व्हाट माय पर्पस इज।
0: ओके, तो ये जो आपकी किताब है जिसका नाम है बियॉन्ड लाइफ अ ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी,
1: जी,
0: इसको किसे पढ़ना चाहिए?
1: जो सीक्वेंस है इसमें 14 चैप्टर्स, तो आई वुड सजेस्ट गो विद द सीक्वेंस। सबसे पहला चैप्टर ही है द पर्पस।
0: ओके,
1: तो हमारे लाइफ का पर्पस क्या है, मैंने वो उसमें मेंशन किया है। लाइक मैंने ये नहीं बताया कि आपका पर्पस ये है, आपको ये करना है, इट्स अ सेल्फ हेल्प बुक, तो आप ये पढ़िए और आप खुद आपके लाइफ का पर्पस ढूंढिए।
0: ओके, कौन पढ़ सकता है इसे, मतलब बच्चों के लिए है, यूथ के लिए है,
1: 15 अबव एवरीवन।
0: अच्छा, ओके, और ये कहाँ मिलती है, ये कहाँ उपलब्ध है आपकी बुक?
1: ये अमेज़न पे उपलब्ध है। Amazon पे आप सर्च कर सकते हैं Beyond Life by Sanj Gogi and you'll get it.
0: तो आपकी तीनों बुक्स उपलब्ध हैं वहाँ पे?
1: जी।
0: Okay. एक बार नाम बता देंगे तीनों का?
1: Yes. The first one was A Single Life, The Guide for a Better Life, Bodhi, Enlighten Thyself on the Voyage, Life, and this is the most recent one, Beyond Life, A Transforming Journey.
0: तो मुझे लगता है बहुत अच्छी किताब, अगर आप चाहते हैं पढ़ना सेल्फ हेल्प किताबें इस जॉनर में और आप पढ़ते रहते हैं तो भी कुछ नया कंटेंट है आपके लिए, नहीं पढ़ते हैं और तो भी शायद शुरुआत कर सकते हैं। और बहुत सुंदर सुंदर किताबें आपने भी पढ़ी हैं, है ना, आप बता रहे थे, तो आपको पढ़ने का भी शौक रहा है हमेशा से?
1: दिस इज अगेन अ लिटिल कंट्रास्टिंग थिंग, मतलब थोड़ा कंट्रास्टिंग है ये, क्योंकि मुझे पढ़ने से ज्यादा लिखना पसंद है पहले। अच्छा। से ही तो मैं स्कूल में वगैरह थी तब तो मैं बस ज्यादा बुक्स वगैरह नहीं पढ़ती थी, मैं बस स्कूल की जो किताबें थी वो बहुत अच्छे से पढ़ती थी, मेरा नॉलेज परफेक्टली सेट था. लेकिन अभी अभी जैसे मैं कॉलेज में आई, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर,

0: तब से मैंने पढ़ना ज्यादा शुरू किया है, मुझे पसंद आने लगा है पढ़ना।
1: ओके
0: जी,
1: तो मुझे लगता है हमने बहुत ढेर सारी बातें करी हैं आपसे, लेकिन जाते जाते मैं एक दो चीजें आपसे रिक्वेस्ट करूंगी। एक, आप जो यूथ आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे, और दूसरा हम आपकी जाते जाते एक और प्यारी सी पोएम जरूर सुनेंगे।
0: जरूर। सो दिस इज फॉर ऑल द यूथ इफ यू आर लिसनिंग टू मी। मैं जब अभी यहाँ पर मधुबन में हूँ एंड यहाँ पर योग करते हुए मुझे एक बहुत ही अच्छा थॉट क्लिक हुआ था, तो वही मैं आप सबको सुनाना चाहूंगी, विच इज डिविनिटी इज द न्यू वे ऑफ लाइफ, सो लेट अस ऑल हेड ऑन अ डिवाइन पाथ।
1: ओके, डिविनिटी इज द न्यू वे ऑफ लाइफ,
0: राइट।
1: ओके, ये क्यों आपके मन में आया थॉट?
0: मैं बस ऐसे बैठी हुई थी एंड आई वाज थिंकिंग कि जब हम लोग एक रूहानी राह पे चलते हैं, व्हेन वी आर फॉलोइंग अ डिवाइन लाइक डिवाइन वेज इन लाइफ, सो दैट टाइम हमें खुशी महसूस होती है, सेटिस्फैक्शन फील होता है, मन की शांति प्राप्त होती है, सब कुछ अगर हमें इसमें मिल रहा है तो फिर हम लोग क्यों इतना ज्यादा भागी या गुस्सा करे या फ्रस्ट्रेट हो कोई।
1: तो किसी भी रास्ते पे हम चलते हैं, चाहते तो यही चीजें हैं
0: जी,
1: और यहाँ आपने कहा ये ऑटोमेटिक मिल रहा है
0: जी।
1: तो स्पिरिचुअलिटी को कई बार हम समझते हैं कि एक तरह के कपड़े पहनना या एक समय पे कुछ करना या फिर एक जगह जाके ही कुछ करना है, लेकिन जैसा आपने कहा इट इज अ वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का तरीका है
0: जी। एंड डिविनिटी या स्पिरिचुअलिटी हमें ये नहीं बोलता है कि आप लोग आपके जो भी डेली के कार्य है या फिर जो भी आप कर्म करते हैं उससे दूर हो जाए।
1: हाँ, ये कभी भी नहीं बोलता है।
0: yes.
1: बल्कि उसको और आपके लिए और आनंदमय बना देगा और इंटरेस्टिंग
0: करना है टू ग्रो इवन मोर।
1: हाँ, ऐसा नहीं कि एक घंटा स्पिरिचुअलिटी बाकी लाइफ अलग।
0: हाँ, exactly.
1: वो दोनों एक ही चीजें हैं। सो
0: एंड इसकी सबसे ज्यादा जरूरत तो अभी यूथ को है, अगर उनको सच में ग्रो करना होगा तो।
1: हाँ, ग्रो तो करना है जीवन में। तो सान, जाते जाते आपकी कोई पोएट्री ऐसी जो आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करें, जो आप चाहें इस थॉट के साथ वो थोड़ी देर रहे।
0: ओके, श्योर। सो मेरे इस पोएम का नाम है स्प्रिंग। विंटर्स, जैसे कि विंटर्स खत्म होने के बाद स्प्रिंग आने वाला है, तो ये स्प्रिंग पोएम शायद आपको पसंद आ जाए। विंटर्स आर गॉन, गॉन आर द कोल्ड विंड्स, नाउ प्रिवेल्स द ब्लूमिंग ट्रीज, decent and warm are the currents, waves rejoicing in glee, birds cheer and flee, dancing through the blooming trees, the time is set, set for a transformation, winters to summers is the spring in notion, blending the seasons, mending for reasons, are the springs that flourish even. Thank you.
1: इसको थोड़ा सा समझा सकते हैं आप क्या बोला?
0: जरूर। तो इसमें मैंने ये बताया है कि अभी विंटर्स चले गए हैं और विंटर्स की जो कोल्ड हवाएं है, ठंडी हवाएं, वो भी उसके साथ चली गई विंटर्स के साथ, और अभी हम देख सकते हैं ट्रीज को, वो ब्लूम हो रहे हैं, और जो करंट्स है मतलब जो हवाएं है वो अभी वार्म है और बहुत ही खुशनुमा है, प्लीजेंट है, और जो वेव्स है हवाएं वो भी बहुत खुशी से झूल रही है, एंड बर्ड्स बहुत चीयरफुल है, बहुत हंस रहे हैं और फ्लाई कर रहे हैं इधर उधर क्लाउड्स में अगर आप देखें तो, एंड ट्रीज डांस कर रहे हैं, और अभी टाइम आ गया है ट्रांसफॉर्मेशन का, विंटर्स से समर्स का। विंटर्स और समर्स में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको बीच में जो समय रहता है उसे हम स्प्रिंग बोलते हैं, तो ये स्प्रिंग अभी नोशन में है, मतलब वो अभी चल रहा है, एंड स्प्रिंग का काम ही ये है दो सीजन्स को वो ब्लेंड करता है, और उसके पीछे भी एक रीजन है कि अचानक से सडन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ठंडी से गर्मी, तो फिर शायद लोग बीमार गिरने लगे या फिर वो सूट ना करे एटमॉस्फेयर, तो इसलिए बीच में स्प्रिंग रहता है जो न्यूट्रल होता है थोड़ा, और इसी के साथ स्प्रिंग अभी फ्लरिश हो रहा है।
1: सो नाइस, एक तो आपने बहुत ही सुंदर तरीके से उसे एक्सप्रेस किया, यू नो अगेन वो आपने जो शब्द कहे ना हम देख पा रहे हैं जैसे अपने मन में वो, और दूसरी बात ये कितनी अच्छी बात आपने कही ट्रांसफॉर्मेशन, नेचर भी ख्याल रखता है ना, नेचर भी ऐसे बना है कि एकदम से दो सीजन सच में सर्दी और गर्मी आ गए एक के बाद एक, तो मुश्किल हो सकती है, परेशानी हो सकती है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ये भी एक जर्नी
0: जी
1: ना अपने आप में महत्वपूर्ण है, कभी कभी हमें लगता है चेंज तुरंत हो जाए।
0: यस, एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज एक्चुअली वेरी नेसेसरी इन आवर लाइव्स,
1: बहुत जरूरी।
0: यस, तो इसी के साथ एक थॉट मुझे याद आया, एक कोट याद आया, मैंने पढ़ा था, चेंज इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ अ लाइफ एंड वी मस्ट अडॉप्ट दिस चेंज.
1: चेंज को अडॉप्ट करना है और चेंज को समय भी दीजिए और चेंज के साथ थोड़ा रहिए. और कभी कभी लगता है हम निराश जल्दी हो जाते हैं ना, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लेते हैं ना और तुरंत ही पूरे होते बड़े निराश हो जाते हैं, लेकिन समय दीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन को टाइम दीजिए. चलिए फिलहाल तो वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का दोस्तों, मुलाकात करेंगे मधुबन अनप्लग के अगले एपिसोड में. अगर आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं रेडियो मधुबन के नंबर पर जो कि है 9414151415, यानी कि 9414151415. सांझ आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके विचार सुन के, और यू नो एक विश्वास भी होता है कि हाँ भाई भारत का भविष्य बहुत अच्छा है क्योंकि हमारे यूथ कितने पॉजिटिव है ना, कितने फुल ऑफ एनर्जी है, तो वो भी आपने कायम रखा और इतनी सारी सुंदर सुंदर कविताएं भी हमें पढ़कर सुनाई, आपकी किताबों के बारे में भी हमें बताया, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर.
0: थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत बहुत अच्छा लगा. आई गॉट अ न्यू स्पिरिट कमिंग ऑन दिस रेडियो टुडे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, एक नया एक्सपीरियंस मैंने अनलॉक किया आज. थैंक यू.
1: थैंक यू सो मच दोस्तों आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए. फिलहाल वक्त हो गया इजाजत लेने का, रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.

0: यार हम सफर दोस्तों अपनो समाज कार्यक्रम रे मायने रेडियो मधुबन ने सुनवा वाला सगला श्रोताओं ने के सीजिन कर रहा गाना गाना राम राम गणी खम्मा ने जय माता दी। आप सुन रहे हो ब्रह्मा कुमारी रो सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन, सुनता रहो मुस्कुराता रहो। श्रोता बंधुओं कार्यक्रम रे मायने आपो अपने समाज रे माय कई कुरीतियों वे है उन्होंने कम करवा वास्ते समाज रे लोगों की बात करो हो, अने अलावा अपने समाज में लोगों में जागृति लावा वास्ते रेडियो मधुबन रो एक प्रयास है, और अपने भारत देश में कई जातियों वे है उन्होंने का रीति रिवाज वे है उन्होंने का वेशभूषा परंपरा जो भी उन्होंने रिवाज वे है उन्हें बारे में हर समाज रा लोगों की बात करो हो, और वे उन्होंने जो रिवाज है आप तक पहुंचावारी कोशिश करो कि कण समाज में का रिवाज है। अन्य अलावा अपने समाज में कई समाज सेवी वे है तो उन्होंने का तजुर्बा वे है उन्होंने का अनुभव वे है वे भी आप तक लावारी कोशिश करो हो। उन्होंने भी होबलेन कोई बीजो जो बंधु है वो ही के समाज सेवा रो कार्यक्रम करवा रो या समाज सेवा रा कार्य करे तो अपने अच्छो लागे तो रेडियो मधुबन रो एक प्रयास है। तो श्रोताओं आज अपो हर बार इतरे एक नवी जाति रे बारे में उन्हें रिवाज है उन्हें बारे में आपो बात करोला, और आज अपो लुनियापुरा में आया हूँ। लुनियापुरा में दीपचंद जी भाटी साहब और उन्होंने पुत्र है एच के भाटी साहब, तो आज वनौती आपो प्रजापति समाज रे बारे में जानकारी लेवला। तो सबसे पहला आपो अनोरो परिचय लो हो और रेडियो मधुबन में अनोरो स्वागत करो हो। तो दीपचंद जी भाटी साहब आपरो रेडियो मधुबन में स्वागत है, और एच के भाटी साहब आपरो भी रेडियो मधुबन में स्वागत है, और रेडियो मधुबन रा सगला श्रोताओं रो भी स्वागत है। तो भाटी साहब मु आपने पूछू कि आप लुनियापुरा में कतरा साल ती रहो और आप रो थोड़ा परिचय अपने श्रोताओं ने दो।
1: मारो जन्म अटे लुनियापुरा में हुआ तो और अटे उम्र थी बचपन थी सटे मतलब छोटा बचपन सब यही गुजारा है
0: जी।
1: और
0: लगभग कतरा साल हुआ
1: मारी उम्र हुई है 76 वर्ष
0: जी।
1: और
0: तो लुनियापुरा में आप जनटेम रेवा आया तो आपके पिताजी भी अटिस्ट रहता पहला या बारगोम थे आया?
1: हमारे पिताजी बारगोम थे आया था
0: जी,
1: बालराई थे आया था पाली डिस्ट्रिक्ट,
0: बालराई
1: पाली डिस्ट्रिक्ट में
0: जी।
1: और हमारे पिताजी अजय मतलब हमारे मदर ही नहीं थी
0: जी, जी।
1: दादी और पिताजी आए थे।
0: तो बनौर व्यवसाय का तो
1: बनौर वो रेलवे में सर्विस करता था।
0: अच्छा रेलवे में सर्विस कन पोस्ट माते थी
1: टिन एंड कॉपर स्मिथ।
0: अच्छा तो आपकी पढ़ाई अबरोड में हुई है?
1: मैं 10वीं पास आबू रोड रेलवे स्कूल की दी है
0: जी,
1: और बीएससी की दी है ब्यावर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज थी।
0: आप ब्यावर वन टाइम गया, आबू रोड में कॉलेज नहीं थी सिरोही जिला में?
1: कटे नहीं थी।
0: अच्छा
1: सन 56 री बात है,
0: सन 56 रे में एरिया में कटे कॉलेज नहीं थी
1: सिरोही में थी, आर्ट्स थी खाली साइंस नहीं थी। हाँ
0: तो आप साइंस थी
1: बीएससी की दी है
0: बिल्कुल। श्रोताओं आपो एच के भाटी साहब थी भी परिचय लो। हाँ भाटी साहब आप बताओ कि आप वर्तमान में क्या करो रिया?
2: मोबाइल वर्तमान में अपने तलेटी माते एक कंपनी है मॉडर्न इंसुलेटर लिमिटेड
0: जी,
2: वन्ने मैं सीनियर जॉइंट वाइस प्रेसिडेंट हूँ प्रोडक्शन में
0: जी।
2: बटे किलन डिपार्टमेंट है
0: जी,
2: इंसुलेटर बटे पाके ऑटोमेटिक सिस्टम है
0: जी,
2: कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम है
0: जी जी,
2: 12 भट्टिया वटे
0: जी,
2: ऑटोमेटिक सब इंसुलेटर वन पाके ऑटोमेटिक तरीका थी 12 आवे
0: जी,
2: वन कंपनी में हमारे सीनियर जॉइंट वाइस प्रेसिडेंट तरीके काम कर रही हूँ।
0: आप बटे कतरा साल से सर्विस कर रही हैं?
2: मैं बटे 1987 10 फरवरी 1987 थी बटे लागो तो पढ़ाई करें जोधपुर थी पढ़ाई करें आई हो
0: जी,
2: ने पसे बटे लागो तो बटे इस बार मैं लगातार बटे इस काम कर रही हूँ। आज मैंने 29 साल हुआ लगभग।
0: 29 साल पहले आपने का पोस्ट थी, आज का पोस्ट है बटे?
2: 29 साल पहले मैं बटे सुपरवाइजर तरीके लागो तो
0: जी,
2: वनेश डिपार्टमेंट में
0: जी
2: सुपरवाइजर तो ना, आज वनेश डिपार्टमेंट रो हेड हूँ, सीनियर जॉइंट वाइस प्रेसिडेंट हूँ
0: जी,
2: ने डिपार्टमेंट हेडिंग करूँ किलन लोडिंग ने किलन ऑपरेशन प्रोजेक्ट हारू हमारे अंडर में है बटे।
0: पढ़ाई कटा हुई थी किधर?
2: मैं जोधपुर थी डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में किधर था।
0: अच्छा
2: वनने बाद में मास्टर डिग्री बटा थी अपने बम्बई महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी थी ली दी है।
0: अच्छा
2: इंजीनियरिंग में अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में।
0: तो अटे भी कोई बड़ी कॉलेज थी अन एरिया में आसपास?
2: मास्टर डिग्री वास्ते अटे तो कोई कॉलेज नहीं थी
0: जी,
2: जरे मु डिप्लोमा करवा को जरे राजस्थान में खाली 4 जगह कॉलेज थी
0: जी,
2: एक तो जोधपुर में
0: जी,
2: एक थी अपने बीकानेर में
3: जी,
2: कोटा में ने उदयपुर में
3: जी,
2: उदयपुर में ही खाली एग्रीकल्चर ने इस थी
3: जी,
2: ने एक अटे जयपुर में
3: जी,
2: बाकी कटे कॉलेज नहीं थी। हमें तो एक एक शहर में नब्बे नब्बे हो कॉलेज हुई
3: जी,
2: है
3: जी, जी,
2: तो हमें तो कॉलेज कोई यू नहीं है, पढ़ाई रू यू नहीं है भाई, बस पढ़ाई कोई वैल्यू अतरी वा नहीं रही।
0: सोताओ एस के पाटी साहब भी अपने बारे में बताया कि वे मॉडर्न इंसुलेटर में सर्विस करे है और 29 साल से सर्विस करे, एक सुपरवाइजरी पोस्ट में आते सर्विस ज्वाइन की दी थी और आज अपने अच्छी ग्रोथ करें, अपने काबिलियत दिखाए कंपनी ने, कंपनी वाला उन्होंने सीनियर ज्वाइंट वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट में आते आज भी आसीन है। तो दीपचंद जी बाटी साहब थी पूछो हो कि भाई प्रजापति समाज रा रिवाज जो है, तो सबसे पहले आप समाज में बच्चा रो जन्म हुए तो क्या आप समाज में रिवाज हुए वन बारे में आप बताओ।
1: बच्चा रो जन्म वे
3: जी,
1: जन्म वे तो इसने वरने मतलब कोई गुटकी वुटकी दिए ने
3: जी,
1: ठीक है
0: गुटकी कौन दिए?
1: हाँ कोई भी गुटकी अन्य भुआ बीजी कोई भी दिए
0: जी। अन्य अलावा का कार्यक्रम
1: उसके अन्य अलावा होली माते
3: जी
1: ढूंढ वे,
0: होली माते ढूंढ वे,
1: हाँ ढूंढ वे
0: ठीक है। ढूंढ रो कार्यक्रम कन तरीका थे आप मनाओ?
1: ढूंढ में रो है के गैरिया आवे
3: जी,
1: वे वर्णन ढूंढे जाए
0: जी, वन अलावा चलो गैरिया होली रे बीजी दिन ढूंढवा आपता भाई या होली दिन आवे
1: होली होली जले वरने
0: बीजे दिन
1: बीजे धारे आवे धूरेड़ी धारे
0: ठीक है।
1: हां ने पसे बाद में लेडीज वगैरह हैं बच्चन ले
0: अच्छा,
1: ने होली थोन जाए ने बटे
0: कंटेम जाए
1: बेपारो
0: पूछ जाए के 12 बजे बाद में जाए
1: 12 बजे बाद में
0: अच्छा,
1: होली थोन जाए ने बटे उन्होंने अच्छा। देखो होली रहे चारे दे फेरवे
0: तो फेरा जो खवावे है वो कौन लेन खवरावणी ने कौन उठाया मतलब
1: वो तो बच्ची उठावे।
0: तो एच के पाटी साहब ने पूछो आप बताओ इन बारे में आपने कितनी जानकारी है।
2: तो बच्चों जब अपने विवाह पुटी होली पहली होली आवे के उनने हैंग बहन बेटियों ने बीजी ने हैंग ढूंढ लेने आवे
3: जी,
2: घरे अपने आवे फंक्शन करे ने सब कपड़ा लेना आवे
3: जी, जी।
2: कोई बालूरू लेना आवे कोई
0: बालूरू मतलब का
2: है? बालूरू मतलब वो है के पूरा उन सोरा रे होना चौंदी रे हैंग जेवर ने बीजा सब लेना आवे
0: कपड़ा लत्ता
2: सब
0: पौसे ही चीज मतलब
2: पौसे ही चीज लेना आवे
0: बच्चों रे जेवर भी आ जाए
2: जेवर ही
0: आवे बालूरू।
2: हां बालूरू वरना मां बाप रे वरना कपड़ा लेना आवे
0: पूरा परिवार है
2: पूरा परिवार ने कपड़ा लेना आवे
0: अच्छा
2: ने वरना बुआ लेना आवे बालूरू
0: वरना बुआ जी से लेना आवे
2: बुआ जी लावे
0: तो एक बुआ लाग जत्री बुआ हैंग लावे
2: हैंग लावे वे
0: अच्छा
2: हैंग बुआ मले ने या तो करे
0: अच्छा अच्छा
2: मोटो मलिन करे ज्यादा खर्चो है तो
0: ठीक ठीक
2: नहीं तो एक एक करे है तो एक एक करे जेरे बुआ रे मतलब अपने उन्हें कैपेसिटी
0: तो मतलब आप पास बुआ ने उन्होंने
2: बहन ने हवाई में दियो
0: जी जी
2: ये रिवाज है
0: तो अने ढूंढ मनावे क्यों

0: ढूंढ तो यू है के वो एक परंपरा है, एक याददाश्त है के मनक रागे के अन ढोलिए ओलिए ढूढियो तो
1: अच्छा
0: के वन ओलिए ढूढियो तो
1: अच्छा हां
0: ओलियो रे 2 महीनो पहला के ओलियो रे 2 महीनो बाद के यू होली मतलब एक माध्यम रागे
1: हां
0: ने मारवाड़ी में वन मतलब थोड़ो वो ध्यान रे वण
1: अच्छा नहीं गणित को मनक के होली माते बहन जानी जो बच्चा ढूंढावना
0: जरूर हां होली माते बहन नहीं जानी चाहिए होली का जो है
1: जी
0: एक अपने पहला ने लेने मतलब बच्चा ने
1: अच्छा
0: ले होली का बड़ी पीती ने पहला जो है रही था
1: हां
0: हां तो होली का ने पसे पहला दिन मतलब भगवान रा भगत था तो होली का ने आशीर्वाद पसे मिली होता अच्छा। और हिसाब से उन्होंने होली रो आशीर्वाद लेना जरूरी है, फेरा लेवा थी बच्चों कभी बीमार नहीं हुए
1: अच्छा। मतलब बुरी कोई अरे माते नजर नहीं
0: माते नजर नहीं, नहीं लागे अच्छा। वो नहीं हुआ बच्चा स्वस्थ रहे और हिसाब से रिवाज है।
1: तो श्रोता अपने एस के पाटी साहब उन्होंने ढूंढ रहा रिवाज बताए है पर और अपो उन्होंने समाज रे बारे में जानकारी लेवला पर आपको एक छोटो छोटे ब्रेक लो हूँ और आप कटे मत जाजो और अपने पाटी साहब ने चाय मन में आई है तो चाय पीन मो थोड़ी देर बाद पास आऊँ ब्रेक के बाद में फिर आपो प्रजापति समाज के बारे में जानकारी लेवला।

0: ब्रेक रे बाद में ओपन समाज कार्यक्रम रे मायने रेडियो मधुबन रा सगला श्रोताओं रो स्वागत है अने अपने मेहमान एस के पाटी साहब और दीपचंद जी पाटी साहब रो भी स्वागत है। तो प्रजापति समाज रे बारे में रीति रिवाज रे बारे में बात कर रहा था, बताया कि ढूंढ किकन मनावी जी है और बच्चा रा जन्म वेद का रिवाज वे है। अन्य अलावा हमें आपको एस के पाटी साहब ने पूछू हूँ कि भाई के आपने समाज में रिश्ता वे तो वन थोड़ी का प्रक्रिया है वन बारे में बताओ किकन आप समाज में रिश्ता रिकार
1: मोरे प्रजापति समाज में
0: जी
1: मैं कुमार मोरे
0: क्या कुमार आप
1: मैं बोडा कुमार हूँ।
0: बोडा
1: एक तो मारू कुमार वे एक बोरा कुमार वे एक पूर्वीय कुमार वे।
0: अच्छा तो मारू कुमार बोडा में अंतर का तीनों में
1: मारू कुमार तो ए अपने कड़िया कौम में ज्यादा करे।
0: अच्छा
1: ने मैं लोग बोड़ा कुमार माटी रो धंधो करो।
0: अच्छा माटी रो मतलब मटका बनावा
1: मटका ने ईट ने
0: अच्छा
1: नलिया ने
0: पेलाइस
1: बनावता।
0: हाँ।
1: साक माते
0: ठीक है
1: साक वे तो मोरे
0: चाक मतलब बोल चाक
1: बोल चाक कुमार रो।
0: अच्छा
1: वन माते नाल उतारता
0: ठीक है
1: कोड़ाइया उतारता
0: नाल मतलब कावे
1: नाल अपने नलिया आवता पहला
0: अच्छा गोल नाल
1: गोल नाल बनावे
0: काटन आता करता
1: काटन पछे तीन भाड़ फाड़ी बदी वणनी।
0: अच्छा
1: ने पछे वा नाल जमावता ऊपर।
0: अच्छा
1: पण में एक बूंद पानी नी टपक तो वा नाल तो हमें बंद हुई हमें आरसीसी वेवा ढुका हमें अंगई
0: ठीक है
1: नाल वोंदरा बीजा फोड़े वाने गणे नुकसान वेणी साती नाल कोई बनावतो नहीं हमें ईटो धंधम पड़िया है
0: मु होबले आपने समाज में बोडा कुमार वे नाक नी और तो विदा ना
1: मोरे नी विदावता मारू कुमार विदावे।
0: अच्छा
1: मोरे नाक नी विदावता
0: अनो कारण का
1: आ एक श्रुति प्रथा है।
0: अच्छा
1: मतलब नाक विदाई हो तो मतलब बोड़ा कुबार नहीं कहवी जाए।
0: अच्छा
1: नाक नहीं विदाई हो तो मतलब बोड़ा
0: ठीक है
1: ओई सो है ना नाक विदावे के
0: हाँ।
1: वे मारू कुबार कहवी जाए।
0: अच्छा
1: तो आप श्रुति प्रथा है मोरे समाज में नाक नहीं विदावती लेडीज लोग कोई नाक नहीं
0: तो मतलब कोई एरी परंपरा मतलब कोई एरो अनो कारण
1: आप पहचान है एक तरह
0: पहचान
1: है
0: श्रुति बड़ा बोड़ा।
1: हाँ
0: अच्छा
1: शुरू की एक पहचान बनी हो रही है कि भाई एक मोरे कातरी हुए
0: कातरी यार मतलब कब है
1: कातरी हुए पहचान हुए के ए बड़ा कुबार है कातरी पीतल हुए।
0: अच्छा मतलब पीतल को
1: पीतल पहचान है कड़ो
0: चूड़ी है
1: कड़ो।
0: अच्छा
1: चूड़ी से
0: पाटलो
1: टाइप वे वो पीतल रुवे
0: वो हर नारी
1: हर नारी पहनना पड़े मोरे हर नारी पहनना पड़े बारे जाए तो वंदी छा पड़े के यार कुबार बड़ा कुबार है।
0: अच्छा वो
1: पहचान
0: हाथ में वो कड़ो पेरे
1: कड़ो पेरे
0: बड़ा कुबार कुमार में वंदी
1: खास पहचान है वैस।
0: अच्छा
1: बीजू नहीं पहनते
0: जी तो मैं पूछूंगा आपरे हमें समाज रे रिश्ता रे बारे में आपने पूछिए तो वन्ने बारे में समाज में रिश्ता किकण वे
1: समाज में रिश्ता मोरे एक बहुत कुरीति ने कुरिवाज है
0: जी
1: आटा आटा रो
0: आटा साटा पड़ता
1: है आटा साटा पड़ता मोरे घनी है
0: आटा आटा बारा मतलब नो मतलब बताओ
1: आटा आटा मतलब है होमे वाली घरती लड़की लावो
0: जी
1: ने वटा दी मोरे घरती लड़की बणन दियो
0: जी
1: और सोरो वटे वे
0: हां
1: बणन दीदी ने बणाड़ा दी लाई।
0: अच्छा
1: तो वण में का है के अत्री आ कुरीति है के मान लो एक घर में गड़बड़ वे
0: थोड़ी बड़ा
1: दे घर टूटे
0: एक घर में परेशानी आवे तो भी घर
1: घर तो आ आटा आटा दे मुदो पड़ियो लिखे हूं आज
0: जी, जी
1: तो मुंह ने बिल्कुल
0: जी
1: मे लोग पसंद ही नहीं करता
0: जी
1: मोरे घर में कोई आटू आटू में है ही नहीं आज।
0: अच्छा मतलब आज आप रो के बारे मतलब आज थोड़ा जो शिक्षित हुआ मन
1: हाँ।
0: तो थोड़ा अन चीज ने फूटन होकर लिया है
1: हाँ।
0: और अन तरफ कम ध्यान दे रिया
1: मतलब
0: और पहला जो मनकता है अन प्रथा ना ज्यादा मानता और अन्न बगैर अपना रिश्ता वेता
1: ही नहीं है। हमें जन्ने बाबड़े चार लड़की हो वे
0: जी जी
1: वो रिश्ता कटे सोरो नहीं वे तो रिश्ता की कटवाई।
0: अच्छा
1: चार लड़का वे
0: कटाती
1: लावे
0: एवज में लड़की देनी जरूरी
1: जरूरी है कोई भाई बंद आजकल कोई देता नहीं
0: जी।
1: आज जो प्रथा है वनने कारण आज समाज रे माए
0: जी
1: कई लड़का मोरा जे कुवारा फर रिया।
0: अच्छा आप रो जो
1: अति गलत है
0: है या अटा कोई आपनो की
1: मोर परगनो है परगनो है अटा
0: आपरो पटारो एरिया कतरो है
1: मोरे 24 परगनो 24 परगना आज परगना
0: 24
1: परगना केवी जे परगना तो 28 32 परगना हुआ पाया।
0: अच्छा
1: पण 24 परगना इस केवी जे।
0: अच्छा
1: वो जो एरिया मोरे भीतरोड परनो के
0: भीतरोड भीतरोड मतलब अन्नो का मतलब बोरसी टकोना मु हर समाज में देखियो
1: ओ भीतरोड मतलब वो एरिया ठेडा दी थाबियोड़ो है।
0: अच्छा
1: हैंग ओ एरिया है जो सिरो रोड एरिया है अन एरिया ने भीतरोड के

0: ब्रेक रे बाद में अपना समाज कार्यक्रम रे मायने रेडियो मधुबन रा सगला श्रोताओं रो स्वागत है अने एस के पाटी साहब अने दीपचंद जी पाटी साहब रो भी स्वागत है। प्रजापति समाज रे मैं और का रिवाज है हमें आप पूछो हों तो सबसे पहला पाटी साहब ने पूछूँ कि पाटी साहब आपने समाज में शादी हुए तो दहेज रो कतरो रिवाज है आज समाज में दहेज प्रथा एक कुरीति है तो आपने समाज में अन्नो प्रचलन है या नहीं है?
1: मौर्य समाज रे में दहेज प्रथा रो बिल्कुल स्थान नहीं है
0: जी।
1: दहेज प्रथा मौर्य समाज में बिल्कुल कट्ठे ही भी चालू नहीं है
0: जी।
1: हाँ एक बहुत अच्छा कार्यक्रम मौर्य समाज रा है बंधु लोग किदु है
0: जी
1: वो समाज में सामूहिक लगन चालू की दू है मोरे सिरोई में हॉस्टल बनाई है।
0: अच्छा।
1: पूरे समाज रहेंग मलक मलेन समाज रहा बहुत अच्छा अच्छा अच्छा डॉन दाता है
0: जी।
1: खिमजी प्रजापति
0: रिछड़ी वाला
1: अच्छा। मने बहुत अच्छो मोरे अध्यक्ष है
0: अच्छा, जिला अध्यक्ष
1: जिला अध्यक्ष है समाज रहा मने बहुत अच्छी मेहनत की दी है ने बाकी एक सिरोई रा लखमा जी है
0: जी।
1: एक अपने अहमदाबाद थी अपने किशन जी आवे है
0: अच्छा।
1: ए लोग काफी मेहनत करे
0: जी।
1: ने हेमंत पहला हॉस्टल रो जो चालू की दू थू
0: जी।
1: वो मारे फादर श्री दीपचंद जी भाटी
0: जी।
1: ने श्रीमान शंकर जी अपने सिरोई वाला
0: जी
1: कुंडलवाल
0: अच्छा।
1: वे ने एक लखमो जी
0: जी
1: ने एक अपने अटला छगन जी मार साहब ने एक मावल वाला सोग जी
0: अच्छा।
1: ने सब मले ने बहुत अच्छा कार्यक्रम चालू की दू थू ने वो हॉस्टल आज मोरे बहुत बढ़िया बनी पी है करोड़ों रुपये की हॉस्टल हुई पी है। हमें दहेज प्रथा जो है वनने बारे में आपने मुँह कहूँ कि दहेज प्रथा मोरे बिल्कुल चालू नहीं है ने सामूहिक लगन हाँ। जो है वह करना चालू किया है वटे इस हॉस्टल में
0: जी।
1: ने बहुत अच्छी तरह थी कराए ने अब गया 11 जोड़ा 21 जोड़ा पढ़ना ही था
0: जी।
1: ने जन्ने जन्ने समाज जन्ने जन्ने डोनेशन जन्ने दीदू वो अपने तरफ थी कने टंकी दीदी कने का दीदू कने का दीदू वो जरूर दीदा है
0: ठीक है
1: पर वह दहेज प्रथा नहीं कहलाती
0: नहीं, नहीं,
1: वो समाज की तरफ थी डोनेशन है गरीब परिवार ने
0: जी।
1: वह गरीब परिवार ने सामूहिक लगन में हैंग एक हर का वह वटे हैंग और कोई गरीब नहीं है कोई अमीर नहीं है अमीर गरीब का वह अमीर गरीब तो जन्ने हाथ पोग नहीं है गए वो गरीब है
0: पन्ना में जरा आप जिकन हाँ। मेलो आप रे समाज में अलग ही शादी करो आप जिकन सेपरेट
1: हाँ,
0: तो सेपरेट आप बच्ची ने देन मेलो
1: सेपरेट शादी करो जरा बच्ची रे खाली एक तो अपने कंटी
0: जी
1: कराओ बनने
0: जी
1: एक कंदोरो
0: अच्छा
1: ने बाकी कौन हो रहा
0: जी जी
1: बाकी कोई बनने नहीं ने एक खाली एक कपड़ा देन मेलो बाकी बनने हाथ कोई देन नहीं मिलता है
0: बहुत अच्छा रिवाज
1: वो बनने खाली बच्ची रहे गहना जरूर बनने बच्ची रहे दियो
0: जी।
1: बाकी मैं कोई दवाई कोई रुपया देता नहीं कोई कोई देता नहीं
0: जी
1: यू यू बच्चीन पर नावेन मिलो
0: तो सोता हूँ आज महंगाई रे दौर में हर समाज में मैं देखूँ देश प्रथा बहुत बड़ा एक कुरीति रो रूप लीदो है और अन्य कारण कई जगह आज बच्चियों अन्न शिकार बनी है और अत्याचार अंति हुआ है पर अनोरे समाज में देखवा में आयो है कि बिल्कुल देश प्रथा रो स्थान बिल्कुल नहीं है मतलब दहेज अनोर नीत लेता है और नीत देता है और अनोर समाज में सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें और एक कार्यक्रम चालू की दो है कि भाई एक सामूहिक विवाह तो वन में छोटो मोटो गरीब अमीर सब वन में निकले जाए वो सबसे मोटो एक कदम है जनती कणी ने कोई जोर नहीं आवे और आराम से भले एक घर में चार बच्चे हुए तो भी उन्हें शादी आराम से हो जाए तो बहुत अच्छो कदम है और समाज रे बारे में और समाज रे लोगों ने अपने धन्यवाद दो और समाज रे जो भी उच्च अधिकारी है तो उन्होंने मोइस कहूँ कि भाई के वो बहुत अच्छा आपरो कदम है और अंति ही केन बीजा समाज भी मुद कहूँ ने देश प्रथा ने बिल्कुल जीरो कर दे बिल्कुल ख़त्म करवा की कोशिश करे हमें बहुत और लास्ट में पूछूँ हूँ भाटी साहब ने अपने कन्ने मृत्यु भेजा है अपने समाज रम में तो वरना थोड़ा सा का रिवाज है 12 दिन और गंगा प्रसाद बताओ
1: मौर्य समाज में हेमती मोटी कुरीति या को मृत्यु करनी वे जाए बाप गरीब हटे मृत्यु वे जाए कन्ने भी हटे वे जाए तो जनदारे एक दर लाश बालवा जाए
0: जी
1: अपने वंदारे मनक आवे है
0: जी
1: आवे ने पसे कोई बाल ला नहीं जावे तो बटे सो खानू बनावे मनक लावे बाराती आगती पागती घरती खानू लावे
0: जी
1: वे पसे जी में जाए
0: अच्छा
1: पसे पास तीन दारो पुटी हाँ। कातरिया राखे बाल उतारे
0: मतलब का है
1: कातरिया मतलब है बाल कतरावना
0: अच्छा
1: है कातरिया
0: कातरिया के
1: बस
0: तो अने लोकाई करें क्या
1: लोकाई पसे पास ही बारह दारे

0: तो वर्ण में यू है के कात्रिय दारा यत्रा रात्रा मन गावे
1: जत्रा कात्रिय आदन नाव तीसरा आदन
0: हाँ
1: अत्रा आत्रा भाषा
0: पाछा वो गरीब कोई घर वे बापड़ो गरीब घर वे
1: जी
0: वो तो पसे वो धोवी जे पुसपा
1: अच्छा
0: हैंग मन को वो खानो वंदारे करनु
1: जी
0: पासु बार मु थापे वंदारे पासु आणु प्रसादी वे या कोई अच्छो घर वे तो प्रसादी करे
1: जी
0: नहीं तो बार मु थापे वंदारे पासु तो तीन वेला वन घरे मनक हैंग आवे मूर्ति भोज तो मु यू कहू जन्ने घर में मौत हुई है
1: सही बात
0: वो तो आपड़ो कतरो दुखी है
1: अच्छा
0: अल्ले वन्ने होमुस अपने प्रोत्साहन देनो चाहिए वन्नी जगह हैंग जाएं वटे वेन वटे वन वटे जी मनुन करनु आ समाज की हेमत ही मोटी कुरीति है अन कुरीति ने
1: अपने
0: समाप्त करनी
1: चाहिए
0: अन के मृत्यु भोज मृत्यु भोज सभा बंद करनु चाहिए
1: हर समाज में मु देखो आजकल बंद हुआ जीन का समाज देखो घना समाज है सब चीज के बंद है
0: मोरे यात्रा चालू है
1: समाज में चालू है
0: घणो हुआ तो घणो
1: तो
0: बाबरो कोई गरीब घर है
1: जी
0: कोई गरीब घर है कोई विद्वान घर है कोई का है कोई का है तो वरना थेपड़ा ही पकावे
1: जी जी
0: एरा मोरा पंच है
1: जी तो मारे केवारो मतलब है गरीब ठको है गिरी जीम जी में देसी घी
0: देसी घी में घी में थोड़ी सी कोई कमी आई भी है तो वरने बापड़ा ने पासू थोकड़े दिए
1: ओबरे केरो रिवाज है
0: केरो रिवाज है
1: और रिवाज गलत मरियो वरने तो दुख घर में वातावरण हुआ है और वो एक देसी गिरी समाज वाला जिम में कतरो खराब रिवाज यू नहीं कहते खराब है आपने जो परंपरा है में थोड़ा सुधार लावा की कोशिश करो मुन्नी कह रही हूँ भाई आपने रिवाज खराब
0: आया मले चाय पी ने का
1: आप बस आपने समाज वाला थोड़ा एक्टिव वेला तो अनमें थोड़ा सा सुधार लावे
0: है समाज ने एक्टिव वेणु जरूरी है युवाओं ने एक्टिव वेणु जरूरी
1: और आज जो युवा वर्ग है
0: ने एक्टिव वेणु जरूरी है मारो इस कहणो है कि सब युवा मले और खत्म करे है के आप जाओ वर्ण प्रोत्साहन दियो वर्ण सांत्वना दियो
1: ठीक है
0: ना कि वर्ण अटे जाए ना बे बेन आराम थी वटे घी ने गोल ने खाओ और कोई
1: मतलब अगर कोई गंगा प्रसाद ही करना चाहे तो
0: गंगा प्रसादी तो गंगा प्रसादी में तो हेरू है हरिद्वार ने बीजा जाए ना वे
1: जी
0: तो पसे गंगा प्रसादी बनने इच्छा थी करे
1: वो
0: सक्षम वे
1: सक्षम
0: तो लोग करे
1: खर्च
0: तो गेट टुगेदर गंगा प्रसादी तो करे तो कम से कम 5 लाख रुपया खर्च हुए
1: क्या बात करो
0: हाँ
1: जी
0: 5 लाख रुपया तो साइज है वो अपने मर्जी थी कोई करे क्या
1: तो ठीक है
0: बनने प्रेशर
1: विसर्जन करे
0: अस्थियों तो हरिद्वार करे
1: हरिद्वार करेला तो गंगा प्रसादी वनी करनी पड़े
0: तो करनी पड़े हेरू नहीं
1: अच्छा
0: हेरू नहीं वो तो खत्म की दू
1: अच्छा वो सिस्टम खत्म है
0: पहले हरिद्वार जाता गए
1: हाँ
0: तो गंगा प्रसादी करनी पड़ती
1: तो 4-5 लाख खर्चना
0: हरिद्वार जा नहीं सकता था
1: थोड़ा आप बदलाव आया है प्रसादी भले अस्थि विसर्जन वे जाए गंगा जी में तो भी कोई प्रसादी करे या नहीं करे
0: इच्छा है
1: बहुत बढ़िया बात है
0: और ठीक है
1: जी
0: जननी इच्छा वे गए वो इस करे
1: जी
0: तो भाई सक्षम वे वो तो करे तो एक तरह का गेट टुगेदर है
1: जी
0: हैंग मले पावट है
1: अच्छा
0: वो अच्छू है
1: ठीक है
0: लेकिन वो अपनी इच्छा थी जबरदस्ती प्रेशर गाले गए तो वो तो समाज की पूरी थी के भी जवाब असल बच्चों पढ़ावा आरू करे
1: तो प्रजापति समाज के बारे में आज सब रीति रिवाज आपको हुनिया हो हमें आपको समय भी वे रही है तो अपने दीपचंद जी भाटी साहब ने कहूँ कि भाई के आज आपने रेडियो माता यात्रा मन खोबले रिया है तो आपने कैरो लागे रही है और समाज रे वास्ते का संदेश है
2: देखो समाज रे वास्ते सुधार जरूरी है
1: जी
2: क्योंकि समाज बहुत बैकवर्ड हाले रही है फूटे हाले रही है
1: जी, जी।
2: ने आजकल कंप्यूटर युग में
1: जी
2: समाज वही पुरानी रीति रिवाज ने वे मतलब पंचायती ने वन चक्कर में रहे
1: जी।
2: तो थोड़ा अगर खुद सुधार लावे तो ज्यादा अच्छी रही ला
1: जी।
2: बाकी तो ठीक है बाकी तो जो परिपाटी हले रही है वह हालती रही
1: जी।
2: और अरो है के वह मतलब कोई का करी कोई कोई ठा नहीं पड़ता हाल के ठोना है थोड़ों में है मतलब है कैसे करे राखी है पंचायती चक्कर में कई का है एरो रिवाज हाल हाँ तो वन का है के जाति रो बदनामी हुए बीजू कोई नहीं है अनवैधिका है कि कुरीतियन बंद करे ने थोड़ा सिस्टम से हालता हुआ तो अपने जातीय बदनामी नहीं हुए
1: जी
2: और बात है बाकी कोई विशेष बात नहीं
1: हाँ तो सोता हूँ अपने एच के भाटी साहब ने वो पूछो हो कि भाई भाटी साहब आपने आज रेडियो माता यात्रा लोग होबले रिया है तो रेडियो रा श्रोताओं वास्ते और आपने समाज रे लोगों वास्ते का संदेश है
0: वो समाज रे वास्ते वही संदेश दो कि समाज में जितनी कुरीतियों जो आज हाल रही है वर्णित एकदम अपन युवा वर्ग ने आगे आवे ने धीरे धीरे कम करनी है एलिमिनेट करनी है तो समाज ने आगे बढ़ाना है बालिका शिक्षा
1: जी।
0: शिक्षा रे माते जोर देना है
1: जी।
0: ने शिक्षा जितनी आगे बढ़ी शिक्षा बच्चों जितनी दे उतरो समाज रो सुधारो अपने आप ऑटोमेटिक वे
1: जी।
0: हर आदमी अपने अपने घरने सुधारे तो समाज रो सुधारो वो वही बीजा सुधारवा कोशिश करी हो तो वह कदी नहीं सुधरे। खुद अपने आपने सुधारो तो ही अपने पूरे समाज को सुधारो वे, नहीं तो कदे ही सुधारो नहीं वे। अन्नारू अपने आपने सुधारो। धन्यवाद
1: श्रोताओं। अपने आज प्रजापति समाज के बारे में एच के पाटिल साहब और दीपचंद जी पाटिल साहब की बात की थी और आपने बहुत अच्छी जानकारी अपने दी है। उन्होंने समाज के बारे में कुछ अनोर समाज में बहुत अच्छा रिवाज है बीजा समाज बनिस्पत। और मारो बॉयस कहना है कि भाई के बालिका शिक्षा ने बढ़ावा देना है और समाज की कुरीतियों ने समाप्त करवा कोशिश करनी है तो युवा वर्ग ने सबसे पहला अपने आगे आवन पड़े। और अने अलावा हमें आपो समय देखते खातर आपो अपने मेहमान दीपचंद जी भाटी और एस के भाटी साहब ने विदाई दो हूँ और मुँह कैसी जिनगर अपनी वाणी ने विराम दे हूँ। अपनो समाज कार्यक्रम रे सब श्रोताओं ने रेडियो मधुबन रा सगला श्रोताओं ने गणी खामा अने राम राम। आप सुन रहा हो रेडियो मधुबन। सुनता रहो मुस्कुराता।

0: नमस्ते, मैं हूँ अलका याग्निक। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: अभी बजे हैं दोपहर के 2। एक मिनट का यह समय स्वयं को और परमपिता परमात्मा को दो।

107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.

0: कबड़ी कबड़ी कबड़ी कबड़ी कबड़ी कबड़ी कबड़ी कबड़ी कबड़ी कबड़ी कबड़ी कबड़ी कबड़ी कबड़ी कबड़ी कबड़ी।
1: अरे रे, मैं कोई कबड्डी का खेल नहीं खेल रहा, मैं तो बस मीना और उसके दोस्तों को कबड्डी का अभ्यास करते हुए देख रहा हूँ। क्या कहा, आपने भी देखना है तो ठीक है, आओ वहीं चलते हैं।
2: कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी। ओफो मीना दीदी, आपको पकड़ना तो बहुत मुश्किल है, आप तो झट से अपना हाथ छुड़ा लेती हो।
3: लल्ला, मुश्किल कुछ भी नहीं होता, देखो मैं बताती हूँ, सामने वाले खिलाड़ी को अगर उसके पैरों से पकड़ोगे तो फिर वो आसानी से खुद को नहीं छुड़ा पाएगा।
4: नहीं छुड़ा पाएगा, हार जाएगा।
2: वाह मीना दीदी, ये तो आपने बहुत बढ़िया बात बताई, अब हम कल दीपू और उसकी टीम को आसानी से हरा सकेंगे।
3: हाँ लल्ला।
2: दीदी वो
3: क्या हुआ लल्ला?
2: दीदी परसों स्कूल में बहन जी को हमारी क्लास के बच्चों से 6 का पहाड़ा सुनना है, लेकिन मैंने अभी तक वो याद ही नहीं किया, और फिर कल तो कबड्डी का मुकाबला भी है।
3: मैंने कहा ना कि मुश्किल कुछ भी नहीं होता, तुम घर जाके पूरी मेहनत से अभ्यास करो, बस थोड़ी देर में पूरा पहाड़ा याद हो जाएगा।
4: याद हो जाएगा, लल्ला नहीं घबराएगा।
3: कल 10 बजे मुकाबला है लल्ला, टाइम से आ जाना।
2: ठीक है दीदी, आ जाऊंगा।
1: और अगले दिन
3: सुमी, लल्ला तो अभी तक आया ही नहीं, लगता है उसे अभी तक 6 का पहाड़ा याद नहीं हुआ।
5: अब क्या करें मीना, 1 घंटे में तो मुकाबला शुरू हो जाएगा।
3: मैं अभी आती हूँ।
5: कहाँ जा रही हो मीना?
3: लल्ला के घर।
1: मीना दौड़ी दौड़ी लल्ला के घर पहुँची।
2: 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24।
3: लल्ला खेल शुरू होने वाला है, तुम आए क्यों नहीं? पूरा पहाड़ा याद नहीं हुआ क्या?
2: पहाड़ा तो याद हो गया दीदी, लेकिन
3: क्या हुआ लल्ला?
2: मीना दीदी मुझे भूख लगी है।
3: अरे तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है, भूख लगी है तो कुछ खा लो।
4: कुछ खा लो, भूख मिटा लो।
2: क्या खाऊं, माँ ने कुछ पकाया ही नहीं।
3: क्यों, चाची की तबीयत तो ठीक है ना?
2: माँ तो ठीक है, लेकिन मेरे छोटे भाई मुन्ना की तबीयत ठीक नहीं है, माँ उसी की देखभाल में लगी हुई है।
3: मुन्ना को क्या हुआ?
2: पिछले कुछ दिनों से उसे दस्त हो रहे हैं। अब हमारे कबड्डी के मुकाबले का क्या होगा दीदी?
3: हाँ, चाची कहाँ है?
2: अंदर कमरे में,
3: मैं उनसे मिल के आती हूँ। चाची, चाची जी।
6: कौन?
3: चाची जी मैं, मीना। नमस्ते चाची जी।
6: अरे मीना बेटी, आओ आओ।
3: चाची, लल्ला कह रहा था कि मुन्ना की तबीयत कुछ।
6: अब क्या बताऊँ मीना, इन दोनों भाइयों का इतना ध्यान रखती हूँ फिर भी।
3: चाची अगर आप कहें तो मैं भाग के डॉक्टर बाबू को बुला लाऊं।
6: हाँ मीना, ये ठीक रहेगा।
3: ठीक है चाची, मैं अभी उन्हें लेके आती हूँ।
1: मीना बहुत तेजी से दौड़ती हुई डॉक्टर बाबू के पास पहुँची और उन्हें लेके लल्ला के घर आई।
6: नमस्ते डॉक्टर बाबू।
7: नमस्ते बहन जी, क्या हुआ मुन्ना को?
6: कल रात से दस्त हो रहे हैं इसे, मुझे तो इसकी बहुत फिक्र हो रही है।
7: मुन्ना की उम्र क्या है बहन जी?
6: जी अभी 9 महीने का है।
7: आज आपने इसे खाने में क्या दिया था?
6: कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर बाबू, मुन्ने को दस्त लगे हुए हैं, और भला दस्त में कभी बच्चों को कुछ खिलाया जाता है क्या? ऐसे तो इसकी तबीयत और भी बिगड़ जाएगी।
7: ये सच नहीं है बहन जी।
6: मतलब?
7: मतलब ये कि दस्त में भी बच्चों के लिए सही खुराक मिलना बहुत जरूरी है।
6: डॉक्टर बाबू, अगर बच्चे को दस्त लगे हो तब भी उसे खिलाना पिलाना चाहिए?
7: बहन जी दस्त लगे हो तब तो और भी जरूरी हो जाता है कि बच्चों की खुराक जारी रहे आम दिनों की तरह।
6: वो क्यों?
7: क्योंकि दस्त के कारण उनके शरीर में पौष्टिक तत्वों और पानी की कमी हो जाती है, और अगर हम उन्हें कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे ही नहीं तो उन्हें इस बीमारी से लड़ने की ताकत कहाँ से मिलेगी?
3: मुझे याद आ गया डॉक्टर बाबू, एक बार जब रानी को दस्त लगे थे तो माँ ने उसे ORS के घोल के साथ साथ दलिया और खिचड़ी भी खिलाई थी।
7: हाँ मीना, सही तरीका ही यही है।
4: तरीका ही यही है, बात बिल्कुल सही है।
6: मुझे तो लगा कि दस्त में बच्चों को कुछ नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि दस्त लगे हो तो बच्चे खाना नहीं पचा पाते।
7: ऐसी बात नहीं है बहन जी, अगर बच्चे को दस्त लगे हो तो उन्हें ORS घोल के साथ साथ घर का बना हल्का फुल्का खाना भी देना चाहिए,
3: जैसे दाल, दलिया या खिचड़ी, है ना डॉक्टर बाबू?
7: बिल्कुल सही मीना। और हाँ बहन जी, बच्चे को ये खाना थोड़ी थोड़ी मात्रा में आधे एक घंटे बाद खिलाते रहना चाहिए।
6: ऐसा क्यों डॉक्टर बाबू?
7: ऐसा इसलिए ताकि उसे बीमारी से लड़ने की ताकत मिले और वो जल्दी से ठीक हो सके। ये लीजिए ORS का पैकेट, अब मैं चलता हूँ। मुझे मुन्ने का हाल बताती रहिएगा।
6: चाय तो पीती जाइए डॉक्टर बाबू।
7: आप चाय रहने दीजिए और सबसे पहले मुन्ना के लिए दाल खिचड़ी या दलिया बनाइए।
4: दलिया बनाइए, मुन्ने को खिलाइए।
2: माँ मुझे भी भूख लगी है।
6: अरे हाँ, मुन्ना के चक्कर में मैं तो भूल ही गई कि मेरा लल्ला भी भूखा होगा। और आज तो तुम्हारा कबड्डी का मुकाबला भी है ना?
2: हाँ माँ, तभी तो मुकाबला अब शुरू ही होने वाला है।
6: तुम चिंता मत करो लल्ला, मैं जल्दी से कुछ खाने के लिए लाती हूँ।
1: लल्ला की माँ ने मुन्ना और लल्ला के लिए दलिया बनाया। दलिया खा के लल्ला पहुँचा खेल के मैदान में और
3: कबड्डी का ये मुकाबला बहुत रोमांचक मोड़ पे है। मीना और दीपू की टीमें 20-20 अंक लेकर बराबरी पे हैं और अब दीपू मीना के पाले में पहुँचा।
8: कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी

0: देखा दोस्तों, जैसे मीना की सलाह मान के लल्ला ने दीपू की टीम को हराया, वैसे ही डॉक्टर बाबू की सलाह मान के लल्ला की माँ ने मुन्ना की बीमारी को दूर भगाया। चलो अब सुनते हैं मीना और मिट्ठू की एक प्यारी सी कविता।
1: जब बच्चे को दस्त लगे तो बात ये भूल न जाना,
2: समय समय पे थोड़ा थोड़ा खाना उसे खिलाना।
0: लो भाई, कविता में क्या गहरी बात सिखा गए अपने मीना और मिट्ठू। इसी बात पे हो जाए गाना।

0: अब हम बैठ जाएं और एक कहानी सुनाएं।
1: कहानी?
0: हाँ, कहानी।
1: राजा की कहानी या फिर बंदर की कहानी?
0: ना बंदर की ना राजा की, ये कहानी तो है दस्त की।
2: दस्त? ये दस्त क्या होता है?
3: जब पेट

0: मेरे पीछे दौड़ा कालू, उसके पीछे दौड़ी गुड़िया। था ना मजेदार गाना? अब आप भी वही सोच रहे हैं ना जो मैं सोच रहा हूँ, तो ठीक है, देर किस बात की, चलो मीना की क्लास में चल के कुछ खेलते हैं।
1: बच्चों आज हम खेलेंगे दिमाग लगाओ शब्द बनाओ। मैं आप सबको एक शब्द बताऊंगी और आपको उस शब्द के हर एक अक्षर से एक नया शब्द बनाना है और हर नए शब्द से जुड़ा क्या बताना है?
2: मुहावरा।
1: हाँ, तो आज का शब्द है पत्थर। तो कौन बनाएगा पहला शब्द?
3: मैं बनाऊंगी बहन जी।
1: शाबाश रानू।
3: बहन जी, पत्थर का पहला अक्षर है प और प से होता है पानी।
1: सही जवाब रानू। अब पानी से जुड़ा मुहावरा?
3: पानी पानी होना।
4: रानू, पानी तो पानी होता है।
1: दीपू, पानी पानी होने का मतलब होता है लज्जित होना, यानी शर्माना।
5: जी बहन जी, जैसे अभी दीपू पानी पानी हो रहा है।
1: चलो अगले अक्षर से शब्द कौन बनाएगा?
5: प के बाद पत्थर में आता है त और त से होता है तिल।
1: सही जवाब मोनु। और मुहावरा?
5: तिल का ताड़ बनाना, मतलब छोटी सी बात को बढ़ा देना।
1: बिल्कुल ठीक मोनू।
3: बहन जी, अगला शब्द मैं बताऊं?
1: हाँ हाँ सुमी बताओ।
3: प और त के बाद पत्थर में आता है थ और थ से होती है थाली।
1: शाबाश सुमी। और थाली से जुड़ा मुहावरा?
6: थाली का बैंगन, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके कोई सिद्धांत ना हो।
1: बहुत अच्छे कृष्णा। और अगला शब्द कौन बताएगा?
3: मैं बताऊंगी बहन जी।
1: हाँ हाँ मीना बताओ।
3: प त और थ के बाद पत्थर में आता है र और र से होती है रात।
1: सही जवाब मीना। और मुहावरा?
3: दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति करना, यानी निरंतर तरक्की करना।
1: शाबाश मीना। मजा आया ना बच्चों?
2: बहुत मजा आया जी।
0: भाई मजा तो हमें भी खूब आया, कहानी सुनी, कविता सुनी, गाना सुना और खेल भी तो खेला, मजा तो आना ही था, है ना? तो फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
7: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 1100003।

0: ओए रुका, ओए त्रिदेव, त्रिमूर्ति, ओए एक बाइक पे तीन हैं, ओए तुम लोगों को शर्म नहीं आती, ओए बाइक एक और एक साथ तीन चढ़े जा रहे हो, ओए तीन लोगों का जाना अलाउड नहीं है बाइक पे, मालूम नहीं तुमको, ओए अपनी नहीं तो इस बाइक की सोचो बेचारी तीन के बोझ की मारी।
1: सर बहुत जरूरी मैच है सर आज।
0: ओए तुम्हारे मैच की तो, वो एक बाइक पे तीन जा रहे हो और कुछ हो गया तो सीधे हमेशा के लिए क्रीन बोल्ड हो जाओगे, वो जिंदगी के स्टंप उखड़ जाएंगे। वो ये ट्रैफिक है भाई, यहाँ तो कोई फ्री हिट भी नहीं मिलती, ठोको ताली। ओए मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार सड़क।
2: याद रखें, एक बाइक पर कभी दो से ज्यादा लोग एक साथ न जाएं, यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: नटखट बंटी। दिवाली का त्योहार आने वाला था। बंटी अपने पापा के साथ पटाखे और नए कपड़े खरीदने जाने ही वाला था कि बंटू आ टपका।
4: यार बंटी बड़ा स्मार्ट लग रहा है, कहाँ जा रहा है?
5: ये बंटू बंदर जाने कहाँ से आ टपका, मुझे बाजार जाने के लिए देर हो रही है।
6: यार बंटू बस थोड़ा मार्केटिंग के लिए जा रहा हूँ, और बताओ कैसे आना हुआ?
4: बंटी क्या पटाखे खरीदने जा रहे हो?
5: अगर इसे पता चल गया तो ये साथ ही लग जाएगा।
6: नहीं बंटू, मैं घर की पुताई के लिए कुछ ही खरीदने के लिए जा रहा था।
4: यार बंटी ऐसी क्या बात है कि अंकल तुझे साथ लेकर पुताई की कुच्ची खरीदने जा रहे हैं?
6: अब मैं बड़ा हो गया हूँ और फिर घर के काम में पापा का हाथ भी बटाने लगा हूँ।
4: सच यार, तू बड़ा समझदार हो गया है, लेकिन पुताई की कुच्ची खरीदने जाने की बात जमी नहीं।
5: क्या करूँ, ये बंटू आज मेरी मार्केटिंग कैंसिल करवा कर ही रहेगा।
6: भाई मैं कुच्ची खरीदने जाऊँ या पुताई की बाल्टी, तुम्हें इससे क्या लेना देना? खैर छोड़ बात, तुझे मुझसे क्या काम है?
4: यार बंटी मेरे मन में एक सवाल है, मैं तुझसे उसका जवाब जानना चाहता हूँ।
6: जल्दी पूछ, मैं अभी तुझे चूना लगाता हूँ।
4: क्या तू मुझे चूना लगाएगा?
6: नहीं, मेरा मतलब है मैं तेरे सवाल का जवाब दूंगा। वो क्या है कि मुझे चूना पोतने की कुची लेने जाना है, इसीलिए बार बार चूना शब्द मुंह से बाहर आ रहा है।
4: तो सुन मेरा सवाल। मेरा सवाल बड़ा टेढ़ा है। कल यह सवाल मुझसे राजू ने पूछा था और मुझे आज शाम तक राजू को इसका जवाब देना है।
6: जल्दी पूछ, मुझे देर हो रही है।
4: बस तुम इस सवाल का जवाब दे दो, मैं भी राजू को चूना लगाना चाहता हूँ ताकि मैं उससे ज्यादा जीनियस कहलाऊं। बंटी यह बताओ कि बंदर के पैर में कितनी उंगलियां होती है?
6: इतनी सी बात है, तुम अपने जूते खोल कर देख लो, जवाब मिल जाएगा।
3: बंटी दौड़ कर मम्मी के पास गया और बोला,
6: मम्मी मम्मी आज मैंने फिर उस बंटू को बेवकूफ बनाकर चूना लगा दिया। मम्मी पापा कहाँ हैं? हम लोग पटाखे लेने बाजार जाने वाले थे ना।
7: तुमने ही देर कर दी, पापा तुम्हारे इंतजार करते करते शर्मा अंकल के यहाँ चले गए।
8: यानी मार्केट जाना कैंसिल?
7: बिल्कुल कैंसिल।
8: ओ नो, आज फिर टल गए फटाके।
3: और बंटी बातें बनाकर जवाब देने में इतना व्यस्त हो जाता है कि पटाके खरीदने नहीं जा पाता है।

तारों भरी ना मैंने तो दिन का दीपक जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर

ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला जिंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख

0: पड़ेगा, हंस के उस पार जाना पड़ेगा, हंस के उस पार जाना पड़ेगा।
1: हेलो चिल्ड्रन, अगेन दिस इज संदीप त्रिवेदी विथ द लेसन नंबर 6 फ्रॉम द बुक गोल्डन रेज, एंड द क्लास इज क्लास 10. The name of the lesson is today, which is, what is amiss with us? What is amiss with us? And the writer of the lesson is Mr. S. M. Goyal. So first, I am going to start with about the text. Okay. The lesson is about to learn civic sense, which we knowingly or unknowingly don't obey or follow. Writer कहते हैं बच्चों कि ये lesson इस बारे में है कि हम हमारी जो सिविक सेंस है, एक नागरिक के रूप में हमारी क्या भूमिका है, हमें क्या करना चाहिए, जो कि हम जाने या अनजाने ना तो हम मानते हैं, डोंट ओबे और फॉलो, या फिर ना ही उनका पालन करते हैं. द लेसन इज ऑल्सो वेरी मच इंस्पायरिंग. ये जो लेसन है वो बहुत ही प्रभावित करने वाला है. टू इम्प्रूव अवर बिहेवियर एंड मैनर्स, हमारा जो व्यवहार है, हमारी जो तमीज है, उसको अच्छा करने के लिए, उसको सुधारने के लिए ये लेसन बहुत जरूरी है. टुवर्ड्स अदर्स, दूसरों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, एंड आवर सेल्स, और हमारे खुद के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है. इफ वी डेवलप सिविक सेंस इन आवर सेल्स, यदि हम हमारे अंदर जो एक नागरिक के रूप में हमारी जिम्मेदारियां हैं उसका पालन अगर हम करने लग जाएं, वी कैन मेक अवर लाइफ बेटर, तो हम हमारे जीवन को और अधिक अच्छा बना सकते हैं, एंड हेल्दी, और स्वस्थ बना सकते हैं. तो ये जो है राइटर कहना चाहते हैं. अब हम, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेसन. Again, I'm telling you, the name of the lesson is, what is amiss with us? और इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे साथ क्या गलत है, कहां हम लोग गलती कर रहे हैं. What is amiss with us? क्या, वो हमें सोचने की जरूरत है, एंड वही ये लेसन हमें बताता है. इंडियन इंटेलेक्ट, इसमें पहला पॉइंट है इंडियन इंटेलेक्ट. भारतीय, एक तरह से भारतीय बुद्धिमत्ता. अवर्स इज अ नेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स. हमारा ये जो राष्ट्र है वो बुद्धिमान लोगों का राष्ट्र माना जाता है, विद्वान लोगों का राष्ट्र माना जाता है. इट इज नॉट सेट आउट ऑफ शियर पेट्रियोटिज्म. ये केवल देशभक्ति, पेट्रियोटिज्म, शियर, केवल, ये केवल देशभक्ति दिखाने के लिए नहीं कहा जाता है. Studies at home and abroad have revealed that. भारत में और भारत के बाहर, abroad मतलब विदेशों में, जो अध्ययन हुए हैं, studies जो हुई हैं, उन्होंने ये प्रदर्शित किया, यानी reveal, प्रदर्शित करना. Not long ago, a study was undertaken in the schools of Britain to find out children of which nation excelled in intelligence. ये पता लगाने के लिए कि कौन सा राष्ट्र बुद्धिमानी में सबसे आगे है, इस बात का पता लगाने के लिए इंग्लैंड के स्कूलों में ऐसा ही एक अध्ययन हुआ, जो बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, बहुत ज्यादा लंबी बात, दूर पहले की बात नहीं है. It was discovered that उसमें क्या निकल करके आया? इंडियंस वर सुपीरियर टू द नेटिव्स ऑफ अदर कंट्रीज, बाकी जो राष्ट्र हैं उनकी तुलना में, यानी ब्रिटेन में रहने वाले और जो जो दूसरे देश है चाहे वो कोई भी हो, सबसे ज्यादा सुपीरियर, अगर अद्वितीय प्रतिभाशाली अगर कोई है तो वो कौन है? इंडियंस, भारतीय है। इफ दैट इज द ट्रुथ, अगर यही सच्चाई है, वाई वी आर लैगिंग बिहाइंड अदर सुपर पावर्स, तो फिर जो दुनिया की बाकी मां शक्तियां जो हैं उनसे हम पीछे क्यों हैं? वाई देयर इज ब्रेन ड्रेन फ्रॉम अवर कंट्री टू अदर अफ्लुएंट नेशंस? क्यों अफ्लुएंट मतलब अमीर, क्यों फिर दूसरे अमीर राष्ट्रों में भारत से बौद्धिक संपदा, यानी भारत के बुद्धिमान लोग या भारत का ब्रेन, भारत का दिमाग, भारत का व्यक्ति बाहर क्यों जा रहा है? क्या जरूरत है? ब्रेन ड्रेन यानी हमारे इंटेलिजेंट, हमारी बुद्धिमानी, हमारे जो बहुत ही प्रखर बुद्धि वाले लोग हैं वो बाहर जा करके काम करें। वहां की आपने पढ़ा होगा नासा में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो ऐसा क्यों है फिर? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर हमारे यहाँ के इंटेलिजेंट लोग बाहर नहीं जाएंगे तो सोचो तरक्की किसकी होगी? हमारे देश की होगी। फिर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक, ये सारी कंपनियां कहां से निकलेंगी? भारत से निकलेंगी। Why our imports exceed our exports? क्यों हमारा import यानी आयात अधिक है और export निर्यात, अब इसका क्या मतलब हुआ? यानी बाहर से जो सामान हम मंगवाते हैं वो अधिक है और यहां से जो हम बेचते हैं वो कम है। अब बाहर से जब मंगवाएंगे तो हमें पैसा देना पड़ेगा और यहां का सामान बाहर भेजेंगे तो हमें पैसा मिलेगा, यानी हमारे देश को पैसा मिलेगा। तो जब बाहर कम जा रहा है तो पैसा भी कम आएगा और यहाँ हम ज्यादा आयात कर रहे हैं तो बाहर की जो जो देश है वहां की जो इकोनॉमी है अकॉर्डिंग टू दैट हमें उसको पे करना है। व्हाई वी लुक टू डेवलप्ड नेशंस फॉर हेल्प एंड एड, हम क्यों सहायता के लिए दूसरे जो विकसित राष्ट्र है उनकी तरफ देखते हैं? वेयर वी आर अमिस, हम कहां गलत है? हमें ये सोचने की जरूरत है। So, next paragraph mein the writer is saying that saying so does not mean our progress is not. Aage writer apni baat ko sambhalte hue kehte hain ki aisa kehne ka matlab ye nahi hai ki hamari koi progress hai hi nahi ya humne kuch kiya hi nahi hai, aisa bilkul nahi hai. The Bhakra Nangal Dam, aapne Bhakra Bandh ka naam suna hoga, Bhilai, Raurkela, दुर्गापुर स्टील प्लांट, ये जो जो नाम लिए वहां पर स्टील के जो प्लांट्स हैं, कारखाने हैं, तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर, तारापुर में जो परमाणु बिजली घर है एक्सेट्रा, ये सब हमारे प्रगति के परिचायक हैं, यानी हमने यहाँ यहाँ तरक्की की है, आर सम ऑफ अवर बिग अचीवमेंट्स, ये हमारी कुछ बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। बट लेकिन इन द ग्रैंडियर ऑफ द बिग, बड़े बड़ों की शान को देखते हुए, या हम बस यही मान करके चल जाए कि हमने ये तीन चार काम कर लिए तो बहुत बड़े हैं, द स्मॉल हैज बीन नेग्लेक्टेड, लेकिन दूसरी तरफ हम क्या करते हैं? छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं। हमारे पीएम साहब भी कहते हैं ना, प्रधानमंत्री जी, कि छोटे छोटे काम करो बड़े बड़े काम अपने आप हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, शूमेकर वॉज नॉट रॉन्ग, शूमेकर एक राइटर थे, वो गलत नहीं थे व्हेन ही captioned his best seller small is beautiful, कि उनकी जो सबसे अधिक बिक्री वाली जो बुक थी small is beautiful, छोटी चीजें ही सुंदर है। Here are few instances to show how the neglect of these small but important issues have hampered our glory. यहां पर कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं कि कैसे छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण काम जिनको हमने करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से हमारी चमक फीकी पड़ गई है, जिसकी वजह से हमारी तरक्की रुक गई है, वो कौन से काम हो सकते हैं। तो देखते हैं, इसमें सबसे पहला है सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस, सामाजिक व्यवहार और नागरिक समझ। हियर वी आर एट द लोएस्ट एब. राइटर कहते हैं यहां पर हम सबसे नीचे पावदान पर हैं. इट मे बी अ जर्नी, या तो हम कहीं किसी यात्रा में हों और अ वॉक, या कहीं हम ऐसे ही घूमने गए हों. अ फीस्ट और अ फेयर, या तो किसी हम भोजन पर गए हों या किसी मेले में गए हों. अ मीटिंग और अ गैदरिंग, या तो हम किसी सभा में हैं या फिर किसी जो जरूरी मीटिंग होती है उसमें है. अ सीरियस स्टडी और अ लेजर आवर, या तो हम बहुत गंभीर कोई अध्ययन कर रहे हैं या फिर खाली समय में है. मोस्ट ऑफ अस, हम में से ज्यादातर लोग एग्जिबिट क्रास इग्नोरेंस ऑफ मिनिमम बेसिक ह्यूमन डिसेंसेस. तो हम जो छोटी सी छोटी एक एक इंसान की जो आवश्यकताएं होती हैं या जरूरी बातें जो होती है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते. लेट अस सी हाउ, आओ हम देखें कि कैसे एंड वेयर और कहां वी लैक इन आवर सोशल बिहेवियर, हमारे सामाजिक व्यवहार में हम कहां पिछड़े हुए हैं. एंड कल्टीवेशन ऑफ सिविक सेंस, और नागरिक समझ को विकसित करने में हमारे अंदर क्या कमी है, कहां हम पिछड़ रहे हैं. अब यहां पर पॉइंट्स दिए हुए, इन्होंने फर्स्ट पॉइंट दिया है नॉइज पोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. पहला पॉइंट है नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन. ओके, ह्यूमन ईयर इज मेड फॉर रिसीविंग साउंड ऑफ नॉर्मल रेंज. हमारे जो कान हैं, मानव के कान, वो एक सामान्य आवाज को ही ग्रहण कर सकते हैं ऑफ डेसिबल्स, और उसकी जो इकाई होती है वो होती है डेसिबल, DECIBELS. साउंड रिसीव्ड बियॉन्ड दैट, अगर हमारी जो निर्धारित डेसिबल्स हैं उसके आगे की आवाज अगर हमारे कानों में पड़ती है, मेजर वुड नॉट ओनली बी जैरिंग बट ऑल्सो डैमेजिंग टू अवर हियरिंग सेंस ऑर्गन्स. तो हमारे जो सुनने के अंग हैं, यानी हमारे जो कान से जुड़े हुए जितने भी तंत्रिकाएं हैं, जितने भी शारीरिक व्यवस्थाएं हैं, वो सब खराब हो सकती है, उसमें नुकसान हो सकता है. हाउ मैनी ऑफ अस टेक केयर ऑफ दिस, हम में से कितने लोग इस बात का ध्यान रखते हैं, यह आप सब सोचिए. जब भी इस लेसन को पढ़े बच्चों, आप लोग सोचिए इस बारे में. इट मे बी अ टीवी प्रोग्राम, हम टीवी चलाते हैं तो क्या हम कोशिश करते हैं कि बाकी लोगों को दिक्कत ना हो, बाकी लोगों को परेशानी ना हो. हम उसकी आवाज कोशिश करते हैं इतनी तेज करें कि पड़ोसियों के घर में भी आवाज जाए. और रेडियो ब्रॉडकास्ट, अब रेडियो वीडियो तो आपने सुनना बंद कर दिया, लेकिन FM वगैरह अगर सुनते हैं तो उसकी भी वॉइस बहुत तेज, अगर कोई सड़क पर जा रहा है तो भी बहुत तेज, ताकि दूसरे को डिस्टर्ब हो. प्लेइंग अ टेप रिकॉर्डर, ये तो चलता ही नहीं है आजकल टेप रिकॉर्डर तो, और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, या फिर इस तरह का कोई भी, चाहे DJ बजा रहे हो आप, चाहे कुछ और बजा रहे हो, माइक चला रहे हो, इवन अ गॉसिप और अ चिट चैट, यहाँ तक कि जो आपस की बातचीत होती है इन अ कंपनी, एक समूह में, ऑल आर हर्ड एट अ वेरी हाई पिच. हर एक व्यक्ति बहुत ऊंची आवाज में बात करता है. वी मे बी यूज टू इट, बट व्हाट अबाउट दोस लिविंग अराउंड अस. अरे हो सकता है हमें आदत हो गई हो तेज सुनने की, है ना, यूज टू, हम इसके आदि हो गए हो, लेकिन जो हमारे आसपास के लोग हैं उनका क्या होगा, अभी उनके बारे में हमने सोचा है, बिल्कुल नहीं सोचा है. आवर नेबर मे बी अ सीरियस स्टूडेंट, हमारा पड़ोसी कोई एक बहुत गंभीर अध्ययन करने वाला विद्यार्थी हो सकता है. अ सिक पर्सन, कोई बीमार व्यक्ति हो सकता है. और अ पीस लविंग बींग, या फिर एक शांति चाहने वाला व्यक्ति भी हो सकता है. पीस, PEACE, पीस, शांति. हैव वी एवर थॉट ऑफ हिम, क्या हमने कभी इनके बारे में सोचा है, हाउ मच एगनी डू वी कॉज टू हिम और हर, कि हम उसे कितना परेशान कर रहे हैं, कभी हमने नहीं सोचा इस बारे में. द नेबर बींग अ पर्सन ऑफ कूल टेम्परामेंट, अगर बेचारा कोई ठंडा स्वभाव का व्यक्ति है, शांत स्वभाव का व्यक्ति है, डज नॉट क्वारल विद अस, हमारे साथ लड़ाई नहीं करता है. डज नॉट प्रेजेंट सिंपल इंट्रोगेटिव सॉरी नेगेटिव प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव डज नॉट क्वेरल विद अस एंड सफर्स इन साइलेंस. और वो चुपचाप सब कुछ सहन करता जाता है. द पुअर फेलो शट्स द विंडोज. वो बेचारा क्या करेगा, अपनी खिड़कियां बंद कर लेगा एंड डोर्स दरवाजे बंद कर लेगा एंड पुट्स कॉटन इन हिज ईयर्स और अपने कानों में वही रख लेगा टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ हाई पिच्ड नॉइसेस. जो तीव्र आवाजें हैं उसको रोकने के लिए वो अपने कानों में कॉटन लगा लेगा, रुई लगा लेगा. When shall we learn the simple civic sense? हम कब सीखेंगे सामान्य से सामान्य एक एक इंसान की समझदारी की बात हम कब समझेंगे? It may be a marriage ceremony या कोई शादी का फंक्शन हो और एनी अदर फंक्शन. मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ वहाँ पूरे साल भर हर महीने में कम से कम 5-6 दिन ऐसे होते हैं जब हमें डीजे के साउंड की वजह से कक्षाएं क्लासेस रोकनी पड़ती हैं. ये अगर लोगों में समझ आ जाए तो दिक्कत ही ना हो. अ रिचुअल और अ प्रेयर या तो कोई धार्मिक कार्य या कोई प्रार्थना. देयर इज जनरली अ फैशन ऑफ हायरिंग अ लाउड स्पीकर. यही होता है, एक लाउड स्पीकर लगा लेते हैं. आजकल तो गाड़ियां चल गई हैं. टू बी यूज द लाउडेस्ट बिसाइड्स एंगेजिंग अ लैंड एंड अदर मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड. कोई जमीन किसी का खाली प्लॉट पड़ा है वहां पे जाके बस शुरू कर दिए शोर मचाना. द पिच इज केप्ट सो हाई

आवाज इतनी तेज हो सकती है दैट कि सेंसिटिव बीइंग्स गेट शॉक्स। जो बेचारे कमजोर कान के लोग हैं या जो कमजोर दिल के लोग हैं उनको तो एकदम से धक्का लग सकता है। इवन द स्टोन्स और ब्रिक्स ऑफ अ बिल्डिंग मेक बिल्डिंग शेक एंड द इम्प्रेशन इज गैदर्ड दैट द बिल्डिंग मे कॉलेप्स वन डे बिकॉज ऑफ दिस। किसी दिन तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि वो डीजे की गूंज इतनी होती है कि घर की दीवारें भी ऐसे लग रहा है जैसे धक धक करती है, और मानो इतनी तेज आजकल आवाजें हो गई है कभी कोई घर गिर सकता है। द व्हीकल्स गाड़ियां अनावश्यक हम लोग हॉर्न बजाते रहते हैं, स्पेशली द ट्रक्स, खासकर ट्रक मेक लिविंग अनबियरेबल। इवन द ड्राइवर्स ब्लो द हॉर्न नॉट ओनली लाउडली बट ऑल्सो इनसेसेंटली। केवल तेज ही नहीं बल्कि लगातार हॉर्न मारते रहते हैं जबरदस्ती, एंड दैट टू ऑफन विदाउट एनी रीजन, और कई बार बिना किसी कारण। द नॉइज पॉल्यूशन कॉज्ड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सिविक सेंस। ध्वनि प्रदूषण सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि हमारे अंदर नागरिक समझ नहीं है। अगर हमारे में अंदर समझदारी आ जाए तो नॉइज पॉल्यूशन की समस्या खत्म हो सकती है। एंड केयरलेस सोशल बिहेवियर, सामाजिक व्यवहार के प्रति हम लापरवाह हैं। मार्स द सेंसिबिलिटीज ऑफ अवर पीपल एट लार्ज एंड अफेक्ट्स अवर एफिशिएंसी, और इसी वजह से हमारी जो कार्य कुशलता है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आती है। हम इतने हमारी जो संवेदनाएं हैं उसमें भी कहीं ना कहीं आती है कमी, और हमारा प्रभाव उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है दूसरों पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट, ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी जो यातायात के साधन हैं जैसे ट्रेन, बस, या शहरों में जो भी आने जाने के आवागमन के साधन होते हैं, टेम्पो वगैरह, उसमें हमारा क्या रोल रहता है, वहां पर हम कितने पिछड़े हुए हैं। ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वी ऑल ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हम सबके सब, ज्यादातर लोग हम में से जो सरकारी यातायात के साधन हैं उनसे यात्रा करते हैं, ट्रेन और बस, रेल या बस से, एंड हैव हैड मैनी बिटर एंड सैड एक्सपीरियंसेस, और हमारे बहुत सारे कड़वे और दुख भरे अनुभव होते हैं। ऑर्डरली क्यू सिस्टम एट द टाइम ऑफ आइदर परचेजिंग द टिकट्स और बोर्डिंग द ट्रेन बस, ट्रेन और बस में चढ़ते समय या फिर टिकट लेते समय आमतौर पर एक एक पंक्ति का सिस्टम होता है, लाइन की व्यवस्था होती है कि भाई लाइन में खड़े रहना है और हमारी बारी जब आएगी तभी चढ़ना है या तभी टिकट लेना है, इज रेयरली जो कि फॉलोड, बहुत मुश्किल से ही इसका पालन किया जाता है। आप सबने देखा होगा, एवरीवन इन हिज सेल्फ इंटरेस्ट, हर कोई केवल अपने बारे में, केवल अपनी रुचि के लिए फ्लोट्स द जेन्युइन राइट्स ऑफ अदर्स, दूसरों के जो अधिकार हैं उनका हनन करता है, उनको तोड़ता है। दोज हु आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइंग अ सीट, जो पहले से ही कोई सीट पर बैठे हुए हैं, वुड वेरी रिलक्टेंटली परमिट अदर्स टू सिट इवन ऑन द नेबरिंग वैकेंट सीट। अगर लोगों की अक्सर आदत होती है दो की सीट है और एक बंदा पहले से बैठा हुआ है तो वो कोशिश ये करता है कि दूसरे की भी सीट में लगभग आधी रोक लो, जितनी हो सके उतना रोक लो ताकि अगला कोई बैठे तो उसको परेशानी हो। क्या ये अच्छी बात है? भाई हमारी जितनी सीट है निर्धारित, हमें वहीं तक बैठना चाहिए, हमें उतनी ही जगह में बैठना चाहिए। When they do so, जब वो ऐसा करते हैं, they grab about half of that vacant seat also. वही बात, उसकी आधी सीट भी हम रोक लेते हैं। The thought of giving
हेल्प टू अदर, दूसरों को सहयोग करना, नीडी वंस, खासकर जो जिनको जरूरत है, रेयरली स्टेयर्स देम। बहुत मुश्किल से किसी किसी के मन में आता है कि चल यार अगर बीमार है, बुजुर्ग है तो उसको मैं सीट दे दूं। सम पीपल आर फॉन्ड ऑफ च्यूइंग बीटल्स, कुछ लोग सुपारी खाने के आदि होते हैं, विद टोबेको, तंबाकू वगैरह, दे स्पिट एंड स्पिट फ्रीक्वेंटली, लगातार बस में बैठ के, ट्रेन में बैठ के थूकते रहेंगे, ऑल अराउंड शोइंग नो रेस्पेक्ट फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी, जो जन संपत्ति है उसके प्रति कोई आदर नहीं दिखाते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि भाई ये भी तो हमारी जो है सरकार ने अगर दी है तो हम ही लोगों के लिए दिए ना। दे फॉरगेट दैट, वो ये भूल जाते हैं कि दे हैव पेड फॉर जर्नी, उन्होंने केवल यात्रा के लिए पैसा दिया है, एंड नॉट फॉर स्पॉइलिंग द ट्रेन और बस, बस या ट्रेन को खराब करने के लिए पैसा नहीं दिया हुआ है। दे थ्रो ऑल रबिश एंड लेफ्ट ओवर्स वेर एवर दे सो, वेर एवर दे सो डिजायर, जहां वो चाहते हैं वहां पे कचरा, कूड़ा, करकट, कोई भी कुछ भी खाया है उसके रैपर्स वगैरह वो फेंक देते हैं, जबकि प्रॉपरली या तो किसी पॉलीथिन में संभाल करके रखें या डस्टबिन अगर है तो उसमें डालें, लेकिन ऐसा नहीं है, वो यहाँ वहाँ कहीं भी बस कचरा करना है उन्हें। अवर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हमारा जो यातायात है, अवर रोड्स, हमारी सड़कें एंड स्ट्रीट्स, गलियाँ, अवर पब्लिक प्लेसेस, हमारे जो सार्वजनिक स्थल हैं एंड बिल्डिंग्स और सार्वजनिक जो इमारतें हैं, आर सीन littered with all sorts of stinking refuse that tells upon our health and vigor. तो ये सब जगह हमें पता चलता है कि हम लोग हमारी सार्वजनिक संपत्ति के प्रति कितने वफादार हैं, कितने समझदार हैं। हर कुछ हम गंदा करते रहते हैं, जगह जगह आप कहीं भी चले जाओ। इसीलिए स्वच्छ भारत अभियान चलाया था भारत सरकार ने, इन स्पाइट ऑफ द स्टैचूटरी वार्निंग, जो एक चेतावनी लिखी होती है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वी डू नॉट नोटिस एनी स्लम इन द सेल ऑफ सिगरेट्स और बीडीज। तो इनकी बिक्री में हमने कहीं कोई भले ही कितनी चेतावनी लिख दो, मगर बीडी और सिगरेट वगैरह की बिक्री में किसी तरह की कमी हमको देखने में नहीं मिली। द पिटीज, और सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये है, द स्मोकर्स इन दियर ओन एंजॉयमेंट, जो धूम्रपान करने वाले लोग हैं वो खुद की खुशी के लिए डो नॉट थिंक ऑफ द पीपल अराउंड देम, जो उनके आसपास लोग हैं। कई लोग तो बस में, ट्रेन में बैठते हुए धूम्रपान करते रहते हैं, तो वो अपने पास वालों का नहीं सोचते, कहते हैं कि इनका जो धुआं होता है वो खुद से ज्यादा पड़ोसी को नुकसान पहुंचाता है। समटाइम्स द सराउंडिंग्स बिकम अनफिट फॉर ब्रीथिंग, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आसपास का वातावरण सांस लेने योग्य भी नहीं है। पैसिव स्मोकिंग कॉजेज मोर हार्म, और लगातार धूम्रपान करना तो शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। सो टुडे इज इनफ, एंड टुमारो आई विल कम विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द लेसन। टिल देन, गुड बाय।

0: ये है नशे की कहानी।
1: पहला नशा, पहला खुमार,
0: कभी किसी वजह से और कभी यूं ही बेवजह।
1: किसी की याद सताए, शराब पी लेना।
0: कड़वे घूंट पीकर भी आने लगा अगर जिंदगी का मजा, तो लगता है

0: ऐसा हो।
1: जब घर वाले हुए परेशान और समाज ने ठुकराया तो लगा
2: बूढ़ी की जो पीली है चोरी तो नहीं की है।
1: और जब इस आदत को पहचान न पाने के कारण दुखी हुए परेशान हुए रोए चिल्लाए दिल टूट गया जग छूट गया

0: में पिए या दुख में धुआं उड़ाए। तंबाकू के सेवन से कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। फेफड़ों के कैंसर, लिवर कैंसर, मुंह का कैंसर, कोलन कैंसर और गर्भाशय का कैंसर होने का भी जोखिम होता है। इसलिए आप कहिए नो टू टोबैको, धूम्रपान को कहिए अलविदा
1: और कह लीजिए।
2: समीक्षा, तुम्हें पता है कुछ दिनों पहले ना बारिश आई थी, तो उस टाइम ना हम पूरे फैमिली मेंबर्स बाहर बरामदे में बैठ के चाय पकौड़ी खा रहे थे। वो तो इतना अच्छा मौसम था, मजे आ गए।
3: हाँ, कितना अच्छा मौसम होगा ना, ऐसा मेरे साथ भी होता तो कितना मजा आता ना।
1: क्या बातें हो रही हैं भाई, चाय पकौड़ी खाई जा रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है।
3: हाँ दीदी।
1: अच्छा, तो कभी कभी कोई कोई दिन इतना अच्छा होता है ना कि बड़ा मजा आता है ना।
3: हाँ।
1: हर दिन एक जैसा होता है
3: नहीं,
1: कभी कभी नहीं भी मजा आता है। चलो एक काम करते हैं, आज हम अपने बेस्ट मोमेंट्स के बारे में बात करते हैं और कुछ ऐसे मोमेंट्स जो बेस्ट नहीं थे उनके बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। कैसा फील होता है, अपने इमोशंस के बारे में बात करते हैं। तो हमारे साथ आज रेडियो मधुबन पर बच्चों की दुनिया में कौन कौन मौजूद है, पहले ये भी तो जान ले।
4: मेरा नाम राघव है, मैं 6th क्लास में हूँ।
5: और मेरा नाम जतिन है, मैं 10th क्लास में हूँ।
6: मेरा नाम पलक है, मैं क्लास 6th में हूँ।
7: मेरा नाम अनुष्का है, मैं क्लास 5th में हूँ।
8: मेरा नाम अमीक्षा है, मैं क्लास 7th में हूँ।
9: मेरा नाम रोहानी है, मैं क्लास 8th में हूँ।
10: मेरा नाम शिवांशी है, मैं क्लास 10th में हूँ।
1: ओके, तो सब बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। और भाई अगर मैं आप लोगों से, चलो पहले बेस्ट मोमेंट्स की बातें करते हैं ना, सबसे अच्छा दिन या सबसे ज्यादा मजा आया था, सबसे अच्छा लगा था, कोई ऐसा दिन याद है? वैसे तो बहुत सारे होंगे, एक नहीं होगा, बट उनमें से कोई एक जो आप आज शेयर करना चाहो, कौन बताएगा? हाँ बताओ
9: दीदी। मैं तो जब घूमने गई थी ना और मैं मनाली गई थी, तो मेरे होटल में से पूरा एकदम पहाड़ों का व्यू आ रहा था, वो सबसे बेस्ट मोमेंट था।
1: वाओ, कितना सुंदर लग रहा होगा ना।
9: हाँ, एकदम फॉगी फॉगी था, क्लाउड्स भी दिख रहे थे वहाँ।
1: हाँ, जब पहाड़ पर बादल दिखते हैं तो सच में बहुत सुंदर लगता है।
3: और दीदी मैं जब अपने गाँव गई थी ना महाराष्ट्र, तब मैंने अपनी छत से रेनबो देखा था, तो वो मेरा सबसे बेस्ट मोमेंट था।
1: ओके, वंडरफुल, रेनबो तो सच में बहुत सुंदर लगता है।
2: और दीदी मेरे को तो जब मेरी भांजी ने फर्स्ट टाइम मासी बोला था ना, वो मेरे को सबसे अच्छा मोमेंट।
1: फर्स्ट टाइम बोला था?
2: हाँ जी।
1: कितनी प्यारी सी टूटी टूटी आवाज में बोला होगा। हाँ, बच्चे प्यार से जब कुछ बोलते हैं तो वो भी बहुत अच्छा फील होता है। ओके, और कोई बताना चाहेगा? ये याद करना पड़ रहा है, अभी समय लग रहा है याद करने में।
4: दीदी मेरी भांजी मुझे मामा नहीं बोलती, सीधा नाम से बोलती है, लाभू इधर आइयो, ऐसे।
1: ओके, तो और आपका कोई बहुत अच्छा मोमेंट याद है आपको, जिसमें आपको बहुत अच्छा लगा हो? बताओ।
4: मैंने एक साथ दो रेनबो देखे थे।
1: दो रेनबो, वाओ, कहाँ?
4: मैं खेल रहा था, मैंने तब देखे थे।
1: तो आपका बेस्ट मोमेंट था लाइफ का? अभी तो बहुत सही लाइफ आगे बाकी है, अभी तक का यही था। ओके, ठीक है, दो रेनबोज तो बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम दिखाई देते हैं। चलो और कोई शेयर करेगा?
3: दीदी जब मैं महाराष्ट्र गई थी तो वहाँ पर मैं जू गई थी, जहाँ पर अलग अलग एनिमल्स थे, मगरमच्छ भी देखा था हमने, बहुत बड़ा था वो।
1: अच्छा, डर नहीं लगा उससे?
3: नहीं, वो तो अंदर था ना, एक खड्डा कर रखा था उसके अंदर था वो।
1: तो वो बहुत अच्छा लगा था आपको ना, एनिमल्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ सही बात है, एनिमल्स भी कमाल है, प्रकृति की रचना सच में।
5: और दीदी मैं अभी थोड़े टाइम पहले ही छत्तीसगढ़ गया था, और वहाँ पर सेंटर की तरफ से हम वाटर पार्क घूमने गए थे, और वहाँ पर मुझे सबसे अच्छा लगा।
1: क्या अच्छा लगा?
5: वाटर पार्क में बड़े वाली स्लाइड थी और वेव पूल था और स्लाइड बहुत सारी थी, वहाँ पे फुहारे भी थे, झरना वगैरह सब था वहाँ पे, तो वहाँ पे फुल मस्ती की हमने, खूब मजा आया।
1: अरे वाह, कोई भी बता सकते हो, जरूरी नहीं है घूमने का ही हो, कोई और अच्छा फील हुआ हो, कभी स्कूल में, कभी घर पे, वो भी बता सकते हो, कुछ भी बता, फ्रेंड्स के साथ का बता सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, जो आपका मन हो। जब आपको बहुत अच्छा लगा, कभी अच्छा नहीं लगा? कभी तो लगा होगा,
2: दोस्तों से लड़ाई होगी।
9: हाँ वही मैं भी सोच रही थी, ये क्यों नहीं बोल रही है कल इतना कूदम कूद कर।
1: बताओ बताओ
6: दीदी। एक बार मैंने मेरी बहन से शर्त लगाई थी कि लूडो में कौन जीतेगा वो 500 रुपए देगा। वो क्या हुआ, हमने दो बार मैच लगाए, दोनों में जीत गई मैं, और 2000 रुपए उसको मेरे को देने पड़ गए। उसको वो हार गई
1: दोनों बार
6: तब, मैं जीत गई
1: तब बहुत अच्छा लगा था
6: हाँ, तो उसने मेरे को 1000 रुपए दिए थे
1: ओके
6: पर दीदी वो बस टिकने वाला थोड़ी थे वापस उसने ले लिए
1: ये तो दोस्तों के साथ या भाई बहनों के साथ ऐसे हो जाता है ना
6: होता है
1: होता है ओके
2: वो कहते हैं ना पैसे हाथों की मैल होते तो पलक के हाथों से मैल उतर गई
6: पर अभी तो है ही नहीं
1: अभी तो आई और आते ही चली गई ओके और इसके अलावा जब आपने कभी फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ कुछ मोमेंट्स स्पेंड किए हो बहुत खुशी हुई हो ऐसा कोई दिन याद है घूमने वाला तो हमने शेयर किया और भी तो स्पेशल कुछ होगा बहुत सारे हैं उनमें से कोई भी शेयर कर सकता
2: दीदी मेरे पापा पहले मतलब माउंट आबू ही रहते थे और हम हरियाणा रहते थे तो एक बार मेरे बर्थडे के टाइम पे पापा ने सरप्राइज दिया था तो उस टाइम बहुत अच्छा लगा था कि हाँ रात को 12 बजे एकदम पापा आ गए सामने हम ऐसे बेड पे बैठे थे वो इतना अच्छा लगा कि हाँ एकदम ऐसे पापा कैसे आ गए तो बहुत एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते वो फीलिंग
1: नहीं ये तो बहुत स्पेशल बात है सच में जब आपके पेरेंट्स हों या आपके अपने हों अचानक से बहुत समय बाद मिलते हैं ना तो बहुत खुशी होती है
9: दीदी एक बार ना मैं क्लास में कुछ सुना रही थी और मेरी क्लास के सारे बच्चे हंस दिए तो मुझे दूसरों को खुश देखकर बहुत खुशी हुई
1: ओके
7: एक बार है ना मैं मतलब मैं बहुत नाराज थी तब मेरे नानी ने बोला कि चल कहीं घूमने चलते हैं मैं गुस्से में थी मैंने बोला मुझे नहीं जाना तो बोले क्यों मैंने बोला आपने तो गुस्से में दिलाया तो फिर मेरी नानी ने पता नहीं क्या किया फोन पे है ना मेरे भाई को फोन किया और मेरा भाई इधर आ गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा
1: सरप्राइजेस बड़े अच्छे लगते हैं ना कभी कभी ऐसे प्लेजेंट वाले जब कोई अपने घर वाले अचानक से मिल जाते हैं ओके
7: दीदी जब मैं महाराष्ट्र गई थी तो मेरी बहन थी ना तो वो एक दिन काम कर रही थी तो मेरे पास बैलून थे बहुत सारे थे तो उसमें से मैंने एक फुला के उसके कान में फोड़ दिया
1: उसके कान में फोड़ दिया अरे बाप रे जोर से चिल्लाई होगी
7: तो डर गई बोली क्या फोड़ा मैंने बोला बैलून
1: तो बहुत मजा आया था आपको शैतानी करने में भी मजा आता है
9: दीदी एक बार ना मैंने नकली सांप लिया था और लोगों पे फेंका था
1: उसमें बड़ा मजा आया था
9: उसका तो एक वीडियो भी पड़ा है मेरे पास कि कैसे एक दीदी चिल्लाई थी
1: शैतानी में तो सबको ही बड़ा मजा आता है लग रहा है मुझे
6: मैं तो ऐसे ही बैठी नहीं मतलब
5: दीदी जब मैं हरियाणा जाता हूँ ना वहाँ पे मैं अपने भाइयों के साथ मेरे बुआ के बच्चे हैं तो उनके साथ में खेलने में बहुत मजा आता है और साथ में मेरे काफी सारे दोस्त भी हैं वहाँ पे उनके साथ फुल ऑन मस्ती चलती है हमारी शाम के टाइम पे साइकिल लेके पूरे मोहल्ले में घूमते हैं हम
1: तो बड़ा मजा आता होगा
5: हाँ मस्त शाम का टाइम मस्त ठंडी ठंडी हवा चलती है तो वहाँ पे घूमने में काफी मजा आता है
1: हाँ वैसे कजिन्स के साथ सच में जब मिलना होता है और एक साथ बैठ के कुछ खेलते हैं घूमते हैं बाहर वो भी बड़े अच्छे मोमेंट्स होते हैं
5: और हम घर पे भी खूब शैतानी करते हैं
1: हम मिलके तो और
5: हाँ
1: साथ मिलके और मजा आता है ना कुछ करने में
5: और क्या
4: दीदी मेरे दोस्त ने ना हम उसके घर के मतलब हम ना उसकी छत से वो पटाखे जला के फेंक रहे थे तो ना उधर सिलेंडर फटा था उसने पटाखा जला के उसके ऊपर फेंक दिया मैंने बोला अगर सिलेंडर फट गया तो उस दिन फटा तो नहीं लेकिन
1: लेकिन
6: क्या
1: वैसे देखो मस्ती करना बहुत अच्छी बात है लेकिन ऐसी वाली मस्ती नहीं करनी चाहिए पता है कितना डेंजरस हो सकता है
4: हाँ पर जला नहीं था उसके बाद उसने
7: अगर वो जल जाता तो
1: जला तो नहीं कोई बात नहीं अपना एक्सप्रेस करने का सबका तरीका है कैसे भी आप बोल सकते हो थोड़ा रुक रुक के भी बोल सकते हो लेकिन मस्ती करने के वक्त आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि इस मस्ती से किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है ना
5: जी
1: किसी

0: आपको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? अपने घर में ही किसी का नुकसान कोई करना चाहता है क्या?
1: नहीं
0: नहीं ना, तो अपने घर वालों को तो और ध्यान रखना है कि किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा. और रिस्की, जहाँ पे डेंजर हो वहाँ अपने फ्रेंड्स का भी साथ नहीं देना है ना?
2: नहीं दिया था, वो खुद ही जला रहा था.
0: खुद ही जला रहा था ना राघव? तो राघव ने नहीं दिया. जैसे राघव ने अपने फ्रेंड का साथ नहीं दिया, वैसे और किसी को भी अपने फ्रेंड्स का साथ ऐसे डेंजरस काम में कभी नहीं देना है. क्योंकि बाद में जाके ना वो फ्रेंड ही आपको कहेगा, तुमने मेरे को क्यों नहीं समझाया, मेरे को तुमने क्यों सपोर्ट किया, तुम मेरे अच्छे दोस्त ही नहीं हो. उस समय तो लगेगा बड़े अच्छे दोस्त तो साथ दे रहे हो, बाद में कहेगा नहीं हो तुम अच्छे दोस्त, मेरे को रोका क्यों नहीं तुमने, या मेरे को ऐसे क्यों करने दिया, ऐसे क्यों साथ दिया. इसलिए कभी भी गलत काम में या रिस्की काम में फ्रेंड्स का साथ नहीं देना है, जैसे राघव ने नहीं दिया.
2: दीदी मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी दीदी ने उस दिन नया फोन लिया था, तो उसने रखा था वो पता नहीं शायद तक वॉशरूम या फिर कहीं गई थी. तो मैंने क्या किया, उस पे ऐप डाउनलोड किया और शायद तक उसकी मतलब ऐसे वो मतलब उस पे लगाया जैसे उसको कॉम्बो उड़ गई हो, और वो फोन मैंने उल्टा रख दिया. और फिर जब वो आई ना मैंने बोला बहन मेरे हाथ से फोन गिर गया, उसने फोन उठाया नहीं कहा तो पूरी डिस्प्ले गई, उसने जो मेरे को धोया मैं तो पूरी लाल हो गई. मैंने बोला फोन दे, उसने बोला ले फोन, अब क्या करना है जब पूरा तोड़ दिया. इसके बाद मैंने जब उसको हटाया डिलीट किया बोलती सो
0: मतलब ऐसा ऐसी मस्ती की कि खुद की तब खुद की हालत खराब हो गई. हाँ जतिन कुछ कहना चाह रहे हैं.
3: दीदी और जब मैं हरियाणा होता हूँ ना तो वहाँ पे सर्दियों का टाइम था, और वहाँ पे मैं और मेरे दादा दादी हम डेली खेत में जाते थे घूमने के लिए. मस्त ठंड में पूरा कोहरा होता है वहाँ पे, और हमारे घर पे गाय भैंस भी है तो वो चारा लेने जाते हैं और मैं साइकिल पे जाता हूँ. खेत में मस्त लंबी सारी सड़क है, वहाँ पे मस्त साइकिल चलाता हूँ फुल ऑन.
0: बड़ा मजा आता होगा ना?
3: बहुत मजा आता है ठंड के टाइम पे वो भी.
0: हाँ दादा दादी नानी नानी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है कई बार ऐसे ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करो तो. अनुष्का
4: जब राजयोगा किड्स था ना तो हम माउंट आबू गए थे लास्ट डे पे, तो वहाँ पर मेरे भाई एक दुकान में थे, मेरे मौसी वगैरह सब दुकान में थे. मेरे भाई ने एक नकली सांप उठा के मेरे ऊपर फेंका, मैं तो डर गई थी. फिर रात में मैंने उसी के सर पे रख दिया, बाद में उसने नीचे से झुकाया तो बोला सांप कहाँ किसने रखा मेरे सर पे.
0: वो भी डर गया?
4: नहीं मैंने तो उसके ही भाई के ऊपर नम लगा दिया.
0: बताओ जिसने प्रैंक किया उसके साथ ही प्रैंक कर दिया. अच्छा बहुत सारी मस्ती और अच्छे मोमेंट्स तो हमने बातें की, क्या कुछ ऐसे मोमेंट्स भी हुए हैं लाइफ में जो आपको बहुत बुरा लगा हो या हर्ट हुआ हो या दुख हुआ हो या आप रोए हो, आपको ऐसा लगा होगा नहीं ये नहीं मतलब अच्छा नहीं लगा, ऐसा कुछ भी हुआ है?
5: दीदी एक दिन ना ये किड्स कार्निवल चल रहा था ना, तो मैं फोन अपनी दोस्त के रूम पर रख के गई थी और मेरे पापा को बोल दिया था फोन करके कि पापा मैं ना आ जाऊंगी घर, आप फोन मत करना. लेकिन जब मैंने ये बोला तो फोन ही म्यूट पर था तो आवाज ही नहीं गई और मैंने भी नहीं ध्यान दिया. फिर मैं ना प्रोग्राम देखने गई ना, तो प्रोग्राम तो 1 बजे तक का था लेकिन 2 बज गए और खाना खाते खाते 2:30 बज गए. तो उसमें ना फिर मैं जब गई ना मोबाइल लेने, तब मैंने मोबाइल में देखा कि पापा के 26 मिस कॉल आए थे और 27वां चल रहा था. वो मैंने उठाया ना तो पापा ने बोला अभी के अभी घर पे आ तेरी चमड़ी उतार दो. तो मुझे ऐसा लगा अब तो मैं मर जाऊंगी घर जाऊंगी. तो
0: अब तो बहुत अच्छे से क्लास लगे हैं, 26 मिस कॉल बहुत होते हैं. हाँ भाई पेरेंट्स से कभी कभी ठीक से कम्युनिकेट अगर ना हो पाए घर वालों से तो वो डर भी जाते हैं ना, उनको लगता है फिक्र हो जाती है बहुत ज्यादा.
5: मेरे पापा तो एक एक मिनट पर फोन कर रहे थे इसलिए 26 कॉल हो गए थे.
0: हाँ क्योंकि उनको समझ में नहीं है ना बात आपकी, हो नहीं पाई उनको बात नहीं हो पाई तो फिर उनको लगा कि भाई नहीं आई अभी तक तो बार बार कॉल कर रहे हैं, बार बार कॉल करें कि कोई तो कॉल उठा ले.
5: वो कह रहे थे कि अगर तूने मजाक में कह रहे थे कि अगर तूने फोन नहीं उठाया होता ना तो मैंने पुलिस को कंप्लेन कर दी होती.
0: पेरेंट्स के साथ घर वालों के साथ कम्युनिकेशन ठीक रखना तो बहुत ही जरूरी है.
4: और दीदी है ना जब दीदी रेडियो का बर्थडे था ना तब है ना मतलब हम लोग सब डांस कर रहे थे ना, प्रैक्टिस कर रहे थे, तब है ना कृष्णा दीदी ने बोला था कि सुबह डांस है. मैंने बोला सुबह तो मेरी एग्जाम है. तो उन्होंने बोला कि फिर कैसे होगा, मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं फिर मैं नहीं करती. तब मुझे बहुत बुरा लगा था.
0: बहुत बुरा लगा था ना, प्रैक्टिस भी करी सब करा बट परफॉर्म नहीं कर पाए. बुरा तो लगता है बहुत, आप मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ के लिए फिर नहीं कर पाओ तो भी बुरा लगता है. लेकिन उसके बाद तो आपने कितने सारे डांस कर लिए होंगे.
4: उसके बाद तो मैंने बहुत
0: कभी कभी बुरा लगता है, लेकिन आगे आने वाली चीज उससे और अच्छी भी होती है ना, ऐसा भी होता है, क्योंकि आगे तो और मस्ती करी है आपने, मुझे पता है साथ साथ में मिलके खूब सारे डांसेस करे हैं। और किसी को शेयर करना है कोई, जिसमें आपको बुरा लगा हो, हर्ट हुआ हो, दुख हुआ हो, कोई भी ऐसी बात, और आपने उसको कैसे एक्सप्रेस किया?
1: दीदी एक बार मेरी और मेरी बहन की लड़ाई हो गई थी। वो लड़ाई तो मतलब छोटी सी बात पे हुई थी कि हाँ कि मैं ये कपड़े डालूंगी तो दूसरे कपड़े डालियो, इस बात पे लड़ाई हुई थी बस। वो बात इतनी बढ़ गई कि हाँ जा यहाँ से, तू यहाँ क्यों रह रही है, तू मेरी बहन ही नहीं है, तुझे कहीं और से लाए थे। तो फिर उस टाइम हमारी इतनी लड़ाई होगी, हमने 3-4 दिन तक बात ही नहीं करी, तब बहुत बुरा लगा था।
0: तो लड़ाई से बुरा लगा या बात नहीं हुई इससे बुरा लगा?
1: बात नहीं हुई इसलिए बुरा लगा, एक ही दिन लड़ाई हुई ना, दूसरे दिन तो फिर लड़ाई ही नहीं हुई।
0: और फिर क्यों नहीं बात करी आप दोनों ने, किसी ने शुरू नहीं किया उस टाइम में बात करना?
1: मैंने ट्राई तो करा कि हाँ मान जाए, मतलब उसको मतलब 5-4 मिनट से हाँ ले, खाना खा ले, पानी पी ले, जूस पी ले, कहती मक्खन मत लगा, करनी मेरे को तेरे से बात।
0: और फिर ठीक कैसे हुई लड़ाई?
1: फिर मैंने कहा मम्मी बोलो ना इसको, फिर कहती हाँ चला दो बात कर लूंगी।
0: हाँ कभी कभी पता है क्या, लड़ाई से ज्यादा बुरा इस चीज से लगता है कि आप उनसे, जिनसे आपके दोस्त हैं या भाई बहन है, उनसे बात नहीं कर पा रहे, इसलिए नहीं बुरा लगता कि लड़ाई हो गई है, उसने मुझे ऐसा बोला ऐसा किया, इसलिए बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो तो भाई एक बार बोल दिया, एक बार हो गया, उसमें कई बार दोनों की गलती होती है, एक जने की गलती भी नहीं होती है। बुरा इसलिए लगता है क्योंकि आप उनको याद कर रहे होते हैं, मिस कर रहे होते हैं, है ना। तो ये भी समझने वाली बात है कि बुरा लगा क्यों, उसने बोल दिया इसलिए, या मेरे को उनसे बात करने का मन कर रहा है इसलिए, है ना। और उस बुरे करने को हम कभी कभी खुद भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि अगर मन कर रहा है बात करने का तो हम जाके बात कर सकते हैं, है ना।
2: दीदी मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी प्री बोर्ड चल रही थी तो उसमें क्या हुआ, हमारा मैथ का भी पता ना, तो उसमें मेरे कम नंबर आए थे, सब बहुत बच्चों के आए थे। सर ने उस दिन मेरे को इतना डांटा, पढ़ाई पे ध्यान दे, पढ़ाई नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, और मैं मैथ में ही कमजोर हूँ, ये सर जानते हैं पूरी बात। हर एक उसमें अच्छे नंबर लेके आऊंगी पर मैथ में कभी नहीं लेके आऊंगी।
0: तो फिर बुरा लगा इसलिए?
2: हाँ
0: नंबर कमा इसलिए बुरा लगा कि सर ने डांटा इसलिए बुरा लगा?
2: वो तो सर ने डांटा तो इस वजह से बुरा लगा।
0: लेकिन सर तो आपका अच्छा चाहते होंगे ना कि नंबर आ जाए थोड़ा अच्छा, इसमें एक सब्जेक्ट की वजह से इसका परसेंटेज कम ना हो जाए, है ना, क्योंकि सब में अच्छा स्कोर करो और एक की वजह से कम हो जाए तो उससे पूरी परसेंटेज कम हो जाती है कभी कभी, है ना। तो मैं भी सर चाहती हूँ कि भाई इतनी अच्छी स्टूडेंट है, अच्छे नंबर आते हैं सब में, एक सब्जेक्ट की वजह से क्यों रह जाइए पीछे, है ना। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, बट बुरा लगता है, कोई बात नहीं, हो सकता है उसमें से कुछ नई टेक्निक्स आप सीख लो, तरीका सीख लो, तो नीचे से जाने लगे थोड़ा। चलो और किसी को शेयर करना है? किसने? हाँ अनुष्का।
6: दीदी हमारे क्लास में न्यू मैम आई, देखने में तो वो बहुत अच्छी थी, लेकिन बाद में हमको पता चला वो तो बहुत खड़ूस है, कॉपी में जो भी है ना सही होगा उसको भी गलत कर देगी। बाद में बहुत डांटी, उस टाइम मेरे भी कॉपी चेक हुई तो उसमें सही पे घेरा लगा दिया, और उस टाइम मेरे को बहुत बुरा लगा, डांटा भी था
0: जबकि सही था आपका आंसर।
6: अभी तो वो चली गई, अभी तो दूसरे स्कूल की थी इसीलिए वो।
0: अच्छा चली गई तो अच्छा लगा। चलो कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ कोई नया व्यक्ति आता है और वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट ज्यादा होते हैं ना टीचर्स, तो कभी कभी ऐसा लगता है मेरे नंबर क्यों यहाँ पे काट लिया, गोला ऐसा क्यों बना दिया यहाँ पे, ये डांट दिया इसलिए ज्यादा बुरा लगता है ना।
4: और दीदी हमारे स्कूल में एक सर है, उनका नाम श्रीधर सर है, वो है ना वो भी इसकी जो टीचर है ना उनकी तरह है, सही होगा फिर उसके मार्क्स काट देते हैं, और अगर 100 out of 100 आ रहे हैं ना तो वो फिर 90 देते, 10 marks वो बोलते हैं राइटिंग के 5 marks काटे और क्वेश्चन गलत लिखा है इसीलिए उसके 5 marks काटे।
0: अरे बाप रे ये तो बड़ी मुश्किल है भाई, राइटिंग के मार्क्स।
4: फिर जिसके 100 आते हैं ना तो वो तो बेचारा बहुत रोता है।
0: 100 आते हैं तो रोता है क्यों?
4: 100 फिर वो 90 देते हैं।
0: 100 के 90 कर देते हैं इसलिए। हाँ वैसे 100 थोड़ा कम भी होते हैं, मगर आ सकते हैं, ऐसा नहीं आ सकते हैं, लेकिन राइटिंग पे ध्यान देना तो अच्छी बात है।
3: दीदी अभी मैं MP में गया था तो वहाँ पे सुबह रूम से बाहर निकला, रूम से निकलते हुए पता नहीं क्या हुआ एकदम से ही वो हाथ लगा कुंडी में और छिल गया सुबह सुबह ही, और उसके बाद से पूरा दिन कभी पैर में लग रही है, कभी घुटने पर लग रही है, कभी अंगूठे पे, पूरा दिन लगती रही मेरे उसके बाद।

0: का किसी चीज का, है ना? तो ये तो बड़ी अच्छी बात है राघव. चलो अब हमारा वक्त हो गया है कि गुड बाय कहें अपने दोस्तों से, क्योंकि हमने कर ली हैं बहुत सारी बातें आज. और सबसे अच्छी बात यह है कि हमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी लगती हैं, बहुत बहुत अच्छी भी लगती हैं, और कई बार बहुत बुरा भी लगता है. लेकिन उसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, रोना बुरा नहीं है, किसी से कहना बुरा नहीं है, लेकिन एक्सप्रेस ज़रूर करने चाहिए अपने इमोशंस. क्या
1: दीदी, मैं हूँ ना, मतलब मेरा दोस्त, जब मैं फिफ्थ में आया था तो ना एक बच्चा था, वो मतलब वो हर बार फेल होता था. तो वो इस बार पास हो गया, तो मैम ने उसको मेरे साथ बिठा दिया कि बोला कि ये तो पूरी क्लास में किसी के समझ में नहीं आता, तुम समझ. तो वो ना मतलब ना मैंने उसको पूरा पढ़ाया, उसके बाद वो अगले दिन फिर भूल गया. और एग्जाम में वह ना वो उस क्लास में बैठा था जिस क्लास में ना मैम आंसर बता रहे थे, मतलब एक दो बच्चों को बता रहे थे, तो भी वो फेल हो गया. और फिर वो मेरा दोस्त बन गया था, इसलिए मुझे उसके लिए बुरा लगा था.
0: कभी कभी हमें दूसरों के लिए भी बुरा लगता है, दूसरों की परिस्थिति देखकर, उनके देखकर कि वो कुछ नहीं अचीव कर पाए जो वो करना चाहते थे, बुरा लगता है. तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? और राघव, अगर मान लो किसी के लिए बुरा लग रहा है तो
1: दीदी मतलब हम उसको पढ़ा सकते हैं और उनको समझा सकते हैं अगर कुछ नहीं आ रहा तो. अगर दूसरे हमारी क्लास के दूसरा बच्चा है ना, वो तो बोलते हैं कि ये पढ़ के मुझे जल्दी से सुना दे, वो समझाते नहीं है कुछ भी, तो अगर उसको समझ नहीं आ रहा होता है
0: तो हम उसको समझा सकते.
1: हम उसको समझा सकते हैं कि वो कैसे पढ़े. हमारी क्लास के दूसरे बच्चे हैं ना, बोलते हैं ये पढ़ के जल्दी से मुझे सुना दे, वो समझाते कुछ भी नहीं है, इसीलिए वो जब सुनाने जाते हैं तो उसको एक दो चीज़ें याद नहीं रहती.
0: नहीं, बहुत अच्छी बात है राघव कि आपने उसकी हेल्प करी. और ऐसे में हम ये कर सकते हैं कि हम गिव अप नहीं करें, उसको हेल्प करते रहें और उसको समझाएं और कुछ तरीके नए नए क्रिएटिव अपनाएं ताकि उसकी मदद कर सकें. लेकिन पता है, दूसरों के लिए जब हमें बुरा लगता है या फिर हम उनके, कहते हैं ना, उनके जूतों में पांव रख के सोचते हैं, तो उसे एम्पथी कहते हैं.
1: बस एक और बार एक बुरा लगा था, दो तीन बार लगा. दो बार बुरा लगा था मुझे.
0: दो बार बुरा लगा था.
1: और देखो, जब मैं पहले स्कूल में था, उसके बाद जब मैं दूसरे स्कूल में, तो पिछले स्कूल के दोस्त छूटे, फिर दूसरे स्कूल से तीसरे स्कूल में आया तो वो वाले छूटे भी, तो मुझे बहुत बुरा लगा था.
0: फ्रेंड्स को मिस करते हैं, याद करते हैं, छूट जाते हैं तो भी बुरा लगता है. तो बिल्कुल, हालांकि आजकल साइंस के साधन हैं जिससे कनेक्टेड रह सकते हैं, लेकिन आप लोग बच्चे हो तो बहुत ज़्यादा भी शायद उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं. लेकिन दोस्त हमें कभी कभी दूर के भी छूट भी जाएं तो भी क्लोज रह सकते हैं लाइफ में. चलो, बहुत सारी बातें हो गई हैं इस एपिसोड में अभी, है ना? आप लोगों ने सबने शेयर किया है, कुछ छोटा सा है तो शेयर कर दो फटाफट.
2: हाँ दीदी, छोटा सा ही मोमेंट है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग लगा, क्योंकि जब मैं हरियाणा में था तो मैं अपना हमारी छत पे ही पतंग उड़ा रहा था, तो छत पे क्या कांटे वगैरह थे, तो वो मैंने जूते पहने हुए थे, तो क्या हुआ कि एकदम से तीन चार कांटे पैर में घुस गए. बड़ा इरिटेटिंग लगा. छोटे आते ना.
0: ओके, ठीक है, सबको चोटें लगी तब बहुत बुरा लगा, ठीक है, और भी बस इमोशनली बुरा लगा. बहुत सारी बातें हैं जो हमें हर्ट करती हैं लाइफ में, देन अगेन हम उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. अपनी चीज़ों को छुपाना या अंदर रखना नहीं चाहिए, बाहर एक्सप्रेस करना, कम्युनिकेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. चलिए दोस्तों, हम भी चाहेंगे कि अगर आपको भी कभी बुरा लगा या कभी खुशी हुई तो उसको एक्सप्रेस करें, चाहे शब्दों के माध्यम से, चाहे बोल के, चाहे किसी से शेयर करके, है ना, चाहे किसी और माध्यम से, लेकिन कहें जरूर. फिलहाल चलिए लेते हैं इजाजत और करते हैं अपने नन्हे दोस्तों से गुड बाय.

0: फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए। मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: 20 जून 1899 से भगिनी निवेदिता 3 वर्षों तक यूरोप तथा अमेरिका में अपने स्कूल और आश्रम की स्थापना के लिए धन संग्रह करने के लिए घूमती रहीं।
1: इस प्रवास के दौरान निवेदिता को कई तरह के अनुभव हुए, कुछ अच्छे कुछ कड़वे। कभी कभी वे बड़ी हताश हो जाती और स्वामी जी के समक्ष अपनी व्याकुलता व्यक्त करती। स्वामी जी उन्हें समझाते और वे फिर नए उत्साह से काम में जुट जाया करती। उन्हीं दिनों स्वामी जी ने शांति शीर्षक एक काव्य की रचना की और निवेदिता को सौंपी।
2: देखो जो बलात् आती है वो शक्ति शक्ति नहीं है, वो प्रकाश प्रकाश नहीं जो अंधेरे के भीतर है, और ना वो छाया छाया ही है जो चकाचौंध करने वाले प्रकाश के साथ है। वो आनंद है जो कभी व्यक्त नहीं हुआ और अनभोगा गहन दुख है, अमर जीवन जो जिया नहीं गया और अनंत मृत्यु जिस पर किसी को शोक नहीं हुआ। ना दुख है ना सुख, सत्य वो है जो इन्हें मिलाता है। न रात है न प्रातः, सत्य वो है जो इन्हें जोड़ता है। वो संगीत में मधुर विराम, पावन छंद के मध्य यति है। मुखरता के मध्य मौन, वासनाओं के विस्फोट के बीच वो हृदय की शांति है। सुंदरता वो है जो देखी ना जा सके, प्रेम वो है जो अकेला रहे, गीत वो है जो जिए बिना गाए, ज्ञान वो है जो कभी जाना ना जाए। जो दो प्राणों के बीच मृत्यु है और दो तूफानों के बीच एक स्तब्धता है, वो शून्य जहां से सृष्टि आती है और जहां वो लौट जाती है, वही अश्र बिंदु का अवसान होता है प्रसन्न रूप को प्रस्फुटित करने का, वही जीवन का चरम लक्ष्य है और शांति ही एकमात्र शरण है।
1: जनवरी सन 1902 में निवेदिता भारत लौट आई और सरस्वती पूजा के दिन स्कूल का शुभारंभ करने का निर्णय लिया।
0: पहले के समान ही स्वामी ब्रह्मानंद और स्वामी शारदानंद ने कई मामलों में उनकी मदद की तथा उचित सलाहें दी। निवेदिता स्वयं ही आस पड़ोस की महिलाओं के पास गई और उन्हें सरस्वती पूजा में शामिल होने का निमंत्रण दिया। पूरा समारोह बड़े ही शानदार ढंग से उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। जब स्वामी जी को इस समारोह के समाचार मिले तब स्वामी जी ने स्वामी ब्रह्मानंद को लिखा,
2: निवेदिता का सरस्वती का कार्यक्रम बहुत सफल रहा, ये सुनकर बहुत खुशी हुई। यदि वो जल्द ही पाठशाला शुरू करना चाहती है तो कर सकती है।
1: निवेदिता के स्कूल का कार्य पूर्ण उत्साह के साथ शुरू हुआ। इस बार उसके साथ उसकी वृद्ध परिचायिका कुमारी बेटी आई थी। उनकी निवेदिता को बहुत मदद मिली। अप्रैल में क्रिस्टीन ग्रीनस्टाइडेल भारत आई और निवेदिता के साथ 17 बोसपाड़ा लेन में रहने लगी।
0: क्रिस्टीन का स्वभाव मधुर तथा धैर्यवान था, जबकि इसके ठीक विपरीत निवेदिता अधीर स्वभाव की तथा तुरंत ही क्रोधित होने वाली थी। विपरीत स्वभाव के बावजूद ये दोनों अच्छी दोस्त बनी रही। निवेदिता क्रिस्टीन की तारीफ करते नहीं थकती थी।
3: वो जितनी दृढ़ निश्चय है उतना ही मृदु तथा सभी के साथ मधुर व्यवहार करने वाली है। दूसरों के ऊपर अधिकार जमाने की उसे कतई इच्छा नहीं रहती। वो बहुत निष्ठावान है, उदारवादी दृष्टिकोण वाली है तथा सबके प्रति सहानुभूति रखती है। उसके विचार उदार हैं। उसके इन गुणों की जितनी तारीफ की जाए कम है। उसमें सौहार्द और विश्वसनीयता 100% है। उसका वर्णन करने का सामर्थ्य मेरी इस कलम में नहीं है। वे बहुत शांत स्वभाव वाली है, दयालु तथा सुंदर है।
1: क्रिस्टीन के आने से निवेदिता के काम का बोझ कुछ हल्का हुआ। 23 मार्च को निवेदिता ने क्लासिक थिएटर में आधुनिक विज्ञान और हिंदू मन विषय पर भाषण भी दिया। 1902 के ग्रीष्मकाल में निवेदिता क्रिस्टीन के साथ मायावती की ओर रवाना हो गई। श्री ओकाकुरा उनके साथ थे।
0: 6 जनवरी 1902 को श्री ओकाकुरा कुमारी मैकलाउड के साथ कलकत्ता पहुंचे थे और स्वामी जी से उसी दिन बेलूर मठ में मिले थे। वे जापान में होने वाले सर्वधर्म सम्मेलन में स्वामी जी को आमंत्रित करने आए थे, पर स्वामी जी ने अपने गिरते हुए स्वास्थ्य को देखकर वो निमंत्रण स्वीकार नहीं किया था। ओकाकोरा भारत में 9 महीने तक रहे। वे बौद्धों के धार्मिक स्थलों को देखना चाहते थे तथा उन जगहों को संरक्षित करने में उनकी विशेष रुचि थी। एशियाई एकता तथा देश की स्वतंत्रता के बारे में उनकी लंबी लंबी वार्ताओं ने निवेदिता को विशेष रूप से आकर्षित किया। यदि कोई भी भारत के लिए कुछ करता तो वो निवेदिता का मित्र बन जाता, और यही ओकाकोरा के साथ भी हुआ। निवेदिता से उनकी तुरंत ही मित्रता हो गई, क्योंकि वे भारत के प्रशंसक थे। बनारस से लौटने के बाद स्वामी जी के स्वास्थ्य में थोड़ा सा भी सुधार नजर नहीं आ रहा था, बल्कि उनकी तबीयत और भी खराब होती नजर आ रही थी। 11 मार्च को रामकृष्ण देव की जयंती थी, अतः मठ में दर्शनाभिलाषियों की भारी भीड़ थी। स्वामी निरंजनानंद ने स्वामी जी के दरवाजे पर कड़ी निगरानी रखी थी। वे केवल कुछ ही लोगों को स्वामी जी के दर्शन हेतु वहां जाने दे रहे थे। निवेदिता अपनी कुछ अंग्रेज सहेलियों के साथ स्वामी जी के दर्शन के लिए गईं, पर जल्द ही वापस आ गईं।
1: शनिवार 29 मार्च को मठ के मैदान में क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और निवेदिता को पुरस्कार वितरण हेतु आमंत्रित किया गया। स्वामी जी खेल प्रतियोगिता के दौरान अपने कमरे में ही थे और खिड़की से मैदान में हो रहे खेलों की प्रगति का निरीक्षण कर रहे थे। कुमारी मैकलाउड उनके पास ही खड़ी थी। अचानक स्वामी जी उनकी ओर मुड़े और बोले, मैं कभी भी 40वां साल पूरा नहीं कर पाऊंगा। ये उनका 39वां साल चल रहा था और इस तरह उनके कहे शब्द सत्य साबित हुए। यही श्रीमती बुल और कुमारी मैकलाउड की स्वामी जी से अंतिम भेंट थी, क्योंकि इसी के तुरंत बाद वे दोनों अमेरिका के लिए रवाना हो गई थी।
0: निवेदिता 26 जून को कलकत्ता पहुंची थी। स्वामी जी 28 जून को उनसे मिलने 17 बोसपाड़ा लेन गए थे। यही स्वामी जी की विदाई भेंट थी, क्योंकि उनका अंत निकट आ गया था। जून 29 को निवेदिता स्वामी जी से मिलने मठ गई। तब स्वामी जी ने कहा,
2: एक उग्र ध्यानावस्था मेरे ऊपर हावी होती जा रही है। मैं मानसिक रूप से मृत्यु का स्वागत करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूं।
1: अपने महानिर्वाण के संबंध में न जाने कितनी ही बार सूचक शब्दों में स्वामी जी ने अपने शिष्यों को बताने का प्रयत्न किया था। ये शब्द शिष्यों के कानों में पड़े जरूर, पर उनके मस्तिष्क ने इन शब्दों के अर्थों को कभी नहीं समझा। इन शब्दों की ओर उनके शिष्यों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया और ना ही उनका गूढ़ार्थ समझने की कोशिश की। उस दिन निवेदिता 3 घंटों तक स्वामी जी के साथ रही थी। बाद में उसने अपनी एक सखी श्रीमती नेल हेमन को लिखा था,
3: बुधवार सुबह में फिर मठ गई और वहां स्वामी जी के साथ सुबह 9 से दोपहर तक का समय बिताया। ओह, उस दिन वे कितने पवित्र लग रहे थे। मैं सोचती हूँ कि वे जान गए थे कि मैं अब उन्हें नहीं देख पाऊंगी। यही मेरी और उनकी अंतिम भेंट होगी। उस दिन उन्होंने मुझे कितने आशीर्वाद दिए। उनकी उस वक्त की भाव मुद्रा, उनकी तेजस्विता, पवित्रता का मैं शब्दों में वर्णन कर ही नहीं सकती। काश आगे जो होने वाला था वो मैं जान पाती जो वे जान गए थे। उनके चेहरे को देखकर मुझे लगा कि उन्हें और अधिक आराम और अधिक सेवा की जरूरत है। अतः मैंने अपने वार्तालाप में एक भी ऐसा विषय नहीं आने दिया जिससे वे उत्तेजित हो जाते, उन्हें क्रोध आ जाता। और अधिक समय तक मैं उनके पास रहूंगी तो शायद वे थक जाएंगे। ये डर भी मुझे लग रहा था। काश मैं जान पाती कि उनके सानिध्य का एक एक क्षण कितना बहुमूल्य है। पर ओह, अब तो वे विचार भी मुझे असहनीय लगने लगे हैं।
0: शुक्रवार 4 जुलाई को वे रोज से अधिक तंदुरुस्त लगे। पिछले सालों से अधिक स्वस्थ वे उस दिन नजर आ रहे थे। दोपहर तक वे मंदिर में थे। नित्यानुसार 3 घंटे तक उन्होंने छात्रों को संस्कृत पढ़ाया। जो कोई उनसे मिला सबसे बात की। शाम को वे घूमने गए।
1: उसी शाम उन्होंने निवेदिता को संदेश भिजवाया कि वे पहले की अपेक्षा बेहतर महसूस कर रहे हैं। निवेदिता ने उस रात एक सपना देखा था जिसमें उसने देखा था कि श्री राम कृष्ण देव की आत्मा दूसरी बार शरीर त्याग कर रही है। उसी दिन बड़े सवेरे ही मठ से एक संदेश वाहक आया जिसने स्वामी जी के शरीर त्याग की खबर सुनाई। निवेदिता स्तब्ध सी रह गई। उनके मन को भयंकर धक्का लगा। वे तुरंत ही मठ के लिए रवाना हुई। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि पिछली संध्या की आरती होने के बाद स्वामी जी ध्यानमग्न हो गए। करीब एक घंटे बाद वे चैतन्य हुए और फिर फर्श पर बिछे उनके बिस्तर पर लेट गए। अपने एक शिष्य को उन्होंने पंखा झलने को कहा। ऐसे ही एक और घंटा बीत गया। फिर उनका हाथ थोड़ा सा हिला, फिर दो बार दीर्घ श्वसन सुनाई दिया और फिर सब शांत हो गया।
0: दोपहर 2 बजे तक निवेदिता स्वामी जी के समीप बैठी रही तथा उनके पार्थिव शरीर को पंखा झलती रही। बाद उनका शरीर बाहर के बरामदे में लाकर रखा गया। एक नए गेरुए कपड़े का उनके शरीर पर आच्छादन किया गया और फूल मालाओं द्वारा उस पार्थिव शरीर को सजाया गया। उनकी आरती उतारी गई। उनके शरीर को उस जगह ले जाया गया जो उन्होंने अपने अंतिम संस्कार के लिए खुद ही चुनी थी। निवेदिता भी इस शव यात्रा के साथ धीरे धीरे चलकर उस नियोजित बेल के पेड़ के निकट पहुंची। जय श्री गुरु महाराज की जय, जय श्री स्वामी जी महाराज की जय के नारों से आकाश गुंजायमान हो रहा था।
1: जलती हुई चिता के पास निस्तब्ध सी निवेदिता खड़ी थी। स्वामी जी के बिस्तरे पर बिछाने वाली चादर वहां पड़ी हुई थी। स्वामी सदानंद से उसने पूछा,
3: क्या ये वस्त्र भी जला दिया जाएगा? स्वामी जी के उपयोग में आने वाली यह अंतिम वस्तु है जिसका स्वामी जी को अंतिम समय तक उपयोग करते मैंने देखा है।
0: स्वामी सदानंद ने उस चद्दर को निवेदिता को देना चाहा, पर शायद ये गलत होगा ये सोचकर उस वक्त निवेदिता ने उसे लिया नहीं। अपनी प्रिय मित्र जोसेफिन मैकलाउड की इस वक्त उसे तीव्रता से याद आई। इस कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा भी उसे दे पाती तो, ये विचार उसके मन में उभरा।
1: शाम के 6 बज गए। निवेदिता अभी भी जलती हुई चिता के निकट बैठी थी। तभी अचानक उसे लगा कोई उसकी आस्तीन खींच रहा है। वो झुककर नीचे देखने लगी। जलती हुई चिता के प्रकाश और रात के अंधियारे के बीच उसने देखा कि उसी कपड़े का छोटा सा टुकड़ा उसके पैरों के पास पड़ा है जो शायद हवा के कारण चिता से उड़कर उसके पास पहुंच गया था। वो नीचे झुकी और उसने बड़ी ही श्रद्धा से वो पवित्र अवशेष उठाकर अपने माथे से लगा लिया। इस तरह निवेदिता की ये इच्छा भी स्वामी जी ने पूरी कर दी थी।
0: 4 जुलाई को निवेदिता ने अपनी दैनंदिनी में सिर्फ 2 ही शब्द लिखे, स्वामी जी की मृत्यु। गुरुदेव की मृत्यु से उसे जो दुख हुआ था, उसके जीवन में जो कमी आई थी, उसका वर्णन करने का सामर्थ्य उसकी कलम में नहीं था और न ही उसके पास उसके लिए शब्द ही थे। पर उसके पास शोक करने के लिए समय भी कहां था। स्वामी जी के कार्य को उसे आगे बढ़ाना था। स्वामी जी के शब्द जो कुछ साल पहले उन्होंने कहे थे निवेदिता के कानों में सर्वदा गूंजते रहे।

0: शायद शरीर का ये हाड़ मांस का ढांचा पुराने कपड़ों के समान फेंकना मुझे अच्छा लगे, पर उसके बाद भी मेरा कार्य खत्म नहीं होगा। मैं संसार के हर व्यक्ति को तब तक प्रेरणा देता रहूंगा जब तक वे ईश्वर की एक रूपता के बारे में जान न लें।
1: निवेदिता जानती थी कि स्वामी जी को उसके द्वारा कार्य करवाना था, उसको ही साधन मानकर लोगों को कार्य की स्फूर्ति देनी थी। अतः उसने अपनी एक सहेली को प्रार्थनामय अंतःकरण से लिखा है,
2: प्रार्थना करो कि मुझे ईश्वर इतनी शक्ति दे, इतना ज्ञान दे, इतनी भक्ति दे कि मैं स्वामी जी के कार्यों को पूरा कर सकूं। इस वक्त इससे बड़ी शुभकामना मेरे लिए और कुछ हो ही नहीं सकती। मैं कोई और शुभकामना नहीं चाहती। स्वामी जी की मृत्यु नहीं हुई है, वे तो हर दम हमारे साथ हैं। मुझे तो उनके निर्वाण पर शोक करना भी संभव नहीं, क्योंकि मुझे उनके कार्य को आगे बढ़ाना है। प्रत्येक व्यतीत होने वाला दिन स्पष्टतः ये कह रहा है कि मुझे अपने धर्म पिता के कार्यों की जिम्मेदारी लेनी है। तुम ईश्वर से प्रार्थना करो कि मैं इस जिम्मेदारी को व्यवस्थित ढंग से निभा सकूं।
1: स्वामी जी की मृत्यु के कुछ ही दिनों पश्चात निवेदिता को एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा। एक ब्रह्मचारिणी तथा रामकृष्ण मिशन से दीक्षित होने के नाते ये जरूरी हो गया कि मिशन की नियमावली का उल्लंघन न हो। इसके लिए उसे अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं तथा राजनीतिक संबंधों को त्याग देना होगा, पर इसके लिए उसके स्वयं के विचार इस निर्णय का विरोध कर रहे थे। उसने बड़ी स्पष्टता से कहा,
2: मैं हिंदू थी और हिंदू ही रहूंगी, ये सच है, पर भारत की राजनीतिक समस्याएं भी तो ध्यान देने योग्य हैं। मुझे राजनीतिक क्षेत्र में मेरी आवश्यकता स्पष्ट दिखाई दे रही है।
3: स्वामी जी की मृत्यु के कुछ ही दिन पहले जब स्वामी जी से बेलूर मठ में वो मिली थी, तब उसने स्वामी जी से इस विषय में बात की थी। पश्चिम के दौरे पर जाने के पहले विधवा और अनाथ लड़कियों के लिए आश्रम खोलने का विचार जो उसके मन में था, उसके बारे में भी उसने चर्चा की थी। स्वामी जी ने उसी वक्त स्पष्ट रूप से कहा था कि ऐसे आश्रम भारत में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि ये आश्रम लड़कियों की भलाई की अपेक्षा बुरा ही अधिक करेंगे। तब उनकी बात का समर्थन करते हुए निवेदिता ने तुरंत कहा था,
2: हाँ ये बात ठीक ही है, पर क्या आप समझ रहे हैं कि मैं असल में आपसे क्या कहना चाहती हूँ? मैं कहना चाहती हूँ कि भारत के दूसरे प्रश्नों का यदि पहले हल ढूंढ लिया जाए तो फिर बाद में शिक्षा के प्रश्न की ओर ध्यान दिया जा सकता है।
1: स्वामी जी समझ गए थे कि दूसरे प्रश्न से निवेदिता का अर्थ राजनीतिक स्वतंत्रता है। वे गंभीरता से बोले,
0: ठीक है,
4: ठीक है
0: मार्गरेट, शायद तुम्हारा कथन सत्य हो, पर मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि मैं मृत्यु के बहुत नजदीक पहुंच चुका हूं। तब ऐसे वक्त में अपने मन को इन सांसारिक बंधनों में नहीं बांधना चाहता।
3: स्वामी जी के महानिर्वाण के बाद निवेदिता को एक दुखद परिस्थिति का सामना करना पड़ा।
1: 19 जुलाई की अमृत बाजार पत्रिका में ये समाचार जाहिर सूचना के रूप में प्रकाशित हुआ, भगिनी निवेदिता, स्वामी विवेकानंद के शोक के दिन खत्म होने के बाद हमें आम जनता को सूचना करने की विनती की गई है कि भविष्य में जो भी कार्य भगिनी निवेदिता करती हैं, वो बेलूर मठ के अधिकारों और मर्यादित सीमा के बाहर स्वतंत्र रूप से किया माना जाए। ये निर्णय बेलूर मठ के पदाधिकारियों तथा भगिनी निवेदिता के परस्पर सहमति से लिया गया है।
3: निवेदिता इसको पढ़कर बहुत ही क्रोधित हुई। 28 जुलाई को उन्होंने स्टेटमेंट के संपादक के नाम एक पत्र लिखा,
2: महोदय ये बहुत दुख की बात है कि कुछ समाचार पत्रों में कुछ गलत बातों को अप्रोक्ष रूप से मेरे ऊपर संकेत कर छापा गया है, और वो ये कि मेरे महान गुरु के महानिर्वाण के बाद मुझे रामकृष्ण संघ की अध्यक्षा बनना चाहिए, अतः इस बात के लिए मैं आपसे जवाब तलब दूर करने के लिए रामकृष्ण संघ से संबंधित कुछ व्यवस्थाओं की जानकारी आपको देना चाहती हूँ। एक, रामकृष्ण मठ का प्रधान कार्यालय बेलूर मठ हावड़ा में स्थित है तथा वहाँ की व्यवस्था की देखरेख स्वामी ब्रह्मानंद तथा स्वामी शारदानंद के संरक्षण में है। दोनों महानुभाव महान संत हैं तथा जिन्हें कभी भी मिला जा सकता है। दूसरा, संघ के दो महान संस्थापकों तथा गुज के पास धार्मिक विचारों तथा धर्मानुभूतियों का खजाना है, जिसे इन लोगों को सुरक्षित रखना है तथा वेदांतिक विचारों का प्रचार प्रसार करने का काम संघ के कार्यकर्ताओं का है। तीसरा, संघ में मेरी स्थिति एक धार्मिक जिज्ञासु तथा साधिका की रही है, जो इन वेदांतिका उपदेशों को ग्रहण करना चाहती है। मैंने ब्रह्मचारिणी की दीक्षा ली है, पर मैंने सन्यास की दीक्षा नहीं ली है। संस्कृत सीखने का झूठा दावा मैं नहीं करती। सामाजिक, साहित्यिक तथा शिक्षा कार्य में मेरे उद्देश्य को पूरा करने में मुझे मेरे गुरुजनों का सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त है, पर मैं इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हूँ। मेरे गुरु के महानिर्वाण के बाद मैं उन गुरु बंधुओं से अधिक संपर्क रखना नहीं चाहती हूँ जो कि स्त्री जाति के ना हों। मेरी दृष्टि में तो ये बात ही इतनी शोचनीय है कि ये माना जा रहा है कि हिंदू लोगों के धार्मिक जीवन की प्रगति हेतु यूरोपियन नेता की जरूरत है, जबकि स्थिति इसके ठीक विपरीत है। मुझे विश्वास है कि इस पत्र पर बहुत सारे पत्रकारों की नजर पड़ेगी। इसे व्यक्तिगत स्वीकृति मानी जाए, उत्तर की प्रतीक्षा है। मैं रामकृष्ण विवेकानंद की निवेदिता।
1: इसके साथ ही निवेदिता के जीवन का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ।
3: निवेदिता ने भारतीय कला के पुनरुत्थान के लिए अनेकों प्रयास किए थे। श्री रविंद्रनाथ टैगोर कलकत्ता कला विद्यालय के प्राचार्य थे। निवेदिता जब उनके संपर्क में आई, तब उन्होंने देखा कि श्री टैगोर भी विदेशी आदर्शों से ही प्रभावित हैं। निवेदिता से प्रभावित होकर ही कालांतर में श्री टैगोर ने भारतीय कला पद्धति को अंगीकृत किया।
1: कलकत्ता छोड़ने से पूर्व निवेदिता श्री रामकृष्ण देव के श्रेष्ठ भक्त तथा प्रसिद्ध नाटककार गिरीश चंद्र घोष से मिलने गईं। गिरीश बाबू तब अस्वस्थ थे, फिर भी वे अपने अंतिम नाटक तपोबल को पूर्ण करने में व्यस्त थे। निवेदिता ने उन्हें कहा कि वे शीघ्रातिशीघ्र नाटक पूर्ण करें ताकि वो दार्जिलिंग से आने के बाद उसे पढ़ सकेंगी, पर निवेदिता दार्जिलिंग से कभी वापस आ ही नहीं सकी।
3: शाला में जैसे ही दुर्गा पूजा की छुट्टियां शुरू हुई, निवेदिता ने दार्जिलिंग जाने की तैयारी शुरू कर दी। निवेदिता श्री माँ के घर गईं और वहाँ स्वामी शारदानंद, गोपाल माँ और योगिनी माँ से मिली।
1: 7 सितंबर, निवेदिता को अपने निर्वाण काल की अति निकटता का स्पष्ट आभास होने लगा था। मन से भी वे इसके लिए पूर्णतः तैयार थी। उन्होंने अपना एक इच्छा पत्र तैयार करवाया।
3: धीरे धीरे उनका मन गहरे चिंतन की स्थिति में लोप होने लगा और उनके मुख से अपनी प्रिय रुद्र स्तुति धीमे धीमे उच्चरित होने लगी।
2: असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलो। हे रुद्र, अपनी अस्मिता से परे हमें सदा के लिए दूर ले चलो। अपनी कृपालु मुद्रा से अज्ञान से हमारी रक्षा करो।
1: दार्जिलिंग के उस छोटे से शहर में निवेदिता की मृत्यु का समाचार बिजली की तेजी से फैल गया।
3: जैसे जैसे ये शव यात्रा आगे बढ़ती जा रही थी, लोगों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही थी।
1: दोपहर 4:15 पर निवेदिता के पार्थिव शरीर को अग्नि के सुपुर्द कर दिया गया। इस तरह श्री रामकृष्ण विवेकानंद की निवेदिता के समर्पित जीवन की कहानी यहाँ समाप्त होती है। उनकी प्रार्थना थी,
2: हे ईश्वर, गुरु का स्मरण कर मुझे निर्भयता पूर्वक जो सत्य है वो बोलने का सामर्थ्य मृत्यु पूर्व प्रदान कर। मेरे एक एक शब्द द्वारा मेरे गुरु का पवित्र, निर्मल तथा निष्कलंक जीवन प्रवाह अखंड रूप से प्रवाहित होता रहे। ताकि मृत्यु समय पर मुझे इस बात का दुख ना रहे कि मैंने उनकी आकांक्षाओं को पूर्ण नहीं किया। मैं उनके चेहरे पर फिर वही विश्वास एक बार पुनः देखना चाहती हूँ, ताकि मृत्यु से पहले मुझे ये गम ना रहे कि मैंने उन्हें निराश किया। यही मेरी प्रार्थना है।
3: और सच में ही अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने का समाधान उन्हें अंत समय में मिला।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद में।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। और आइए आज के दिन विशेष की बातें अगर मैं करूं, 1 जून पहली तारीख है, वह पहली तारीख खुश है जमाना की पहली तारीख। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आज विशेष 1 जून की बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। अशोक कुमार नरगिस मल्लेश्वरी बलदेव वंशी राजेश्वरी गायकवाड़ मक मनसुख मालविया सुरेश चंगत अंगद जी और भगवंत खुबा, इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ ही नीलम संजीव रेड्डी ख्वाजा अहमद अब्बास और वाजिद खान का पुण्य दिवस है। और आइए आज के दिन को यादगार बनाते हैं और आपको सुनाते हैं एक बहुत ही प्यारा सा विचार, स्वामी विवेकानंद की कुछ सुंदर विचार आपके लिए। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। तो चलिए ये खूबसूरत विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: अगर कहीं भी आग लगने की देनी हो जानकारी तो तुरंत कॉल कीजिए फायर ब्रिगेड के इमरजेंसी नंबर पर। डायल कीजिए 101 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए बात करते हैं 1 जून की, और बहुत ही अच्छी बातें आज से शेयर करेंगे। और अशोक कुमार जी, हाँ, ये भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं। आप सोच रहे होंगे एक्टर के बारे में बात करूँगा, नहीं, आज विशेष हॉकी प्लेयर अशोक कुमार का जन्मदिन है, और ये हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले प्रसिद्ध खिलाड़ी ध्यानचंद के पुत्र है। अशोक कुमार ने जल्दी ही हॉकी में ख्याति प्राप्त कर ली थी, लेकिन उनके लिए अपने पिता के सम्मान बेहतरीन प्रदर्शन करना बहुत मुश्किल था। उनके लिए श्रेष्ठ प्रदर्शन एक चुनौती के समान था, लेकिन 1974 में उन्होंने अर्जुन पुरस्कार जीतकर अपनी श्रेष्ठतम साबित की। उन्होंने अंतिम गोल लगाकर 1975 में भारत को विश्व कप दिलाने में अपनी विशेष भूमिका अदा की है। तो आइए ऐसे विशेष अशोक कुमार के बारे में बात करते हैं, मेजर ध्यानचंद के सुपुत्र के बाद। और आपको जानकर यकीन भी हो कि इनसे मेरी मुलाकात ज्ञान सरोवर में हुई थी, और बातचीत के दौरान इन्होंने अपना इंटरव्यू भी दिया था। बड़ा अच्छा और बहुत ही आत्मीयता से इन्होंने बात की थी। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं। अशोक कुमार का जन्म आज ही के दिन 1958 को मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। अशोक कुमार ने बहुत कम उम्र में गेंद पर नियंत्रण व खेल में कुशलता प्राप्त की थी। खेल के विशेषज्ञों को पिता पुत्र के बीच तुलना करने को प्रोत्साहित कर दिया था। पहले जूनियर स्कूल टीम में शामिल होकर खेल आरंभ कर दिया था, फिर वो क्लब के लिए खेलना शुरू कर दिया था। उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने लगातार 4 वर्षों तक हॉकी खेली। अशोक कुमार ने 1966 और 67 में राजस्थान विश्वविद्यालय के लिए खेला। इसके बाद वो कोलकाता चले गए और वहां मोहन बागान क्लब के लिए खेलने लगे, और 71 में बेंगलुरु में हुई राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उन्होंने बंगाल की टीम की ओर से खेला। इसके बाद अशोक कुमार ने सीनियर फ्लाइट पर्सनल के रूप में इंडियन एयरलाइंस में नौकरी कर ली, और उसकी ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व किया था। तो ये विशेष इनका परिचय है। आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और गीत के बाद, फिर बात करते हैं अशोक कुमार जी की कुछ उपलब्धियों के बारे में और करियर के बारे में। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफर कार्यक्रम को, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
2: अरे दिल हमारा

बड़ी मुश्किल है, हाँ बड़ी मुश्किल है, हाँ हाँ बड़ी मुश्किल है। दो दो उल्फत के बाजार होगा कैसे कारोबार, बड़ी मुश्किल है, हाँ बड़ी मुश्किल है, ओ हो बड़ी मुश्किल।

मेरी खातिर दो दो यार, मेरी खातिर दो दो यार, लड़ने मरने को तैयार। बड़ी मुश्किल है, हाँ बड़ी मुश्किल है, हाँ हाँ बड़ी मुश्किल है। एक अनार दो बीमार, कैसी उलझन में है प्यार। बड़ी मुश्किल है, हाँ बड़ी मुश्किल है, ओ हो बड़ी मुश्किल है।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट है। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूँ ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम यू वर्ड भी ये यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। चलिए बात कर रहे थे ध्यानचंद के सुपुत्र अशोक कुमार के बारे में। हॉकी के करियर की अगर बात करें तो 1970 में बैंकॉक एशियाई खेलों में इन्होंने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसमें भारतीय टीम पाकिस्तान से हार गई थी। 1974 में तेहरान एशियाई खेलों में व 1978 में बैंकॉक एशियाई खेलों में भी भाग लिया और दोनों बार रजत पदक जीता। अशोक कुमार ने दो बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया और 1972 में विशेष ओलंपिक तथा 1976 में ओलंपिक में होने वाले भारतीय टीम की ओर से खेला और दोनों बार टीम तीसरे स्थान पर रहकर कंस्य पदक जीत सकी। अशोक कुमार ने 1971 में सिंगापुर में पेस्ता सुख अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट खेला। फिर 1979 में उन्होंने पार्थ ऑस्ट्रेलिया में विशेष हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय टीम की कप्तानी की थी और 1974 में उन्होंने ऑल एशियन स्टार टीम में खेला। वो दो बार वर्ल्ड 11 में भी चुने गए और इस तरह से 1971 में बार्सिलोना में हुए पहले विश्व कप में अशोक कुमार भारत की ओर से खेलते हुए, जिसमें टीम ने कंस्य पदक जीता था, और 73 में विशेष दूसरे विश्व कप में उन्होंने भाग लिया और जिसमें टीम ने रजत पदक जीता, और फिर उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हुआ 1975 में देखने को मिला जब कोलालंपुर में हुआ विश्व कप में उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण अंतिम गोल लगाकर भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। उनके अंतिम व चौथी विश्व कप में भागीदारी अर्जेंटीना में रही जिसमें टीम छठे स्थान पर रही। खेल से रिटायरमेंट के पश्चात अशोक कुमार इंडियन एयरलाइंस हॉकी टीम व एयर इंडिया हॉकी टीम के मैनेजर अब है। तो ये रहा विशेष अशोक कुमार के बातें। आप सुना है रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को। आइए आगे बढ़ते हुए एक और गीत आपको सुनाते हैं और आशा करूंगा आप सभी को ये बातें सुनकर अच्छा लग रहा है। अगर बच्चा खेल में अच्छा कर रहा है तो उसको देखिए, निखारिए और उसको कोच के साथ जोड़कर उसे खेल में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। आप सभी, अगर आपके घर में कोई खेलने वाला है और खेलने में रुचि रखता है तो उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें आगे बढ़ाएं, है ना। तो खेल से भी अपना करियर बना सकते हैं। ऐसी शुभ आशा के साथ लीजिए एक और गीत, आपके नाम, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और ध्यानचंद के सुपुत्र अशोक कुमार जी की कहानी के बाद आइए एक और कहानी की तरफ मैं ले चलता हूँ। एक ऐसे शख्सियत के बारे में जिनके बारे में आपको बड़ा आनंद आएगा सुनकर। जी हाँ, एक्ट्रेस नरगिस के बारे में बात करते हैं अभी। जी हाँ, इनका जन्म भी आज ही के दिन विशेष हुआ था, 1 जून 1929 में। चलिए कहानी कहाँ से शुरू करें। आजा सनम मदर चांदनी मितम। चलिए यहीं से शुरू करते हैं आपके लिए। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफर कार्यक्रम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

हिंदी सिनेमा की मशहूर और मारूफ अभिनेत्री जिनका नाम रखा गया था फातिमा रशीद, पर फिल्म इंडस्ट्री ने इन्हें नाम दिया नरगिस। नरगिस जी का जन्म 1 जून सन 1929 में हुआ था और ये बात भी गौर करने लायक है कि मात्र 6 साल की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नरगिस फिल्मों में काम करना शुरू कर चुकी थीं और वो फिल्म थी सन 1935 की तलाश हक।

0: इनका जन्म कोलकाता में हुआ था। इनकी माँ जद्दन बाई एक हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर थीं और इनके पिता एक डॉक्टर थे। इनका नाम था उत्तम चंद मोहन चंद। इनके भाई अनवर हुसैन वो भी एक फिल्म एक्टर ही थे। 6 साल की उम्र में बेबी नरगिस के नाम से इन्होंने फिल्मों में कदम रखा और इन्हें सब नरगिस ही कहने लगे। और फिर 14 साल की उम्र में महबूब खान साहब ने नरगिस जी को बतौर हीरोइन लिया। फिल्म का नाम था तकदीर।
1: जिंदगी की चंद खुशियाँ ऐसी भी होती हैं जो रुपए से नहीं खरीदी जा सकती।

इनकी जोड़ी दिलीप कुमार और राज कपूर के साथ खूब जमी। चाहे वो दिलीप कुमार राज कपूर और नरगिस की अंदाज हो या फिर राज कपूर के साथ आवारा, बरसात और चोरी चोरी। ये किस्सा भी मशहूर है कि राज कपूर कब पहली बार नरगिस जी से मिले थे। हुआ यूं था कि राज साहब को नरगिस की माता जी जद्दन बाई से मिलना था और वो उनसे मिलने जब घर पहुंचे तब दरवाजा खोला नन्ही नरगिस ने, जो उस वक्त पकौड़े बना रही थी और उस कमसिन हसीना के माथे पर बेसन लगा हुआ था। राज कपूर ने यही दृश्य अपनी फिल्म बॉबी में भी इस्तेमाल किया, जब पहली बार ऋषि कपूर डिम्पल कपाड़िया से मिलने जाते हैं।

0: राज कपूर और नरगिस की केमिस्ट्री फिल्म चोरी चोरी में खूब नजर आती है।
1: ठंडी हवा के झोंके सिर्फ महसूस किया जाता है।

मदर इंडिया में इन्होंने राधा का किरदार निभाया था और इस किरदार में जवानी से लेकर बुढ़ापे तक की कहानी थी जो नरगिस जी ने बखूबी निभाया और इस फिल्म के लिए इन्हें नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया था। एक किस्सा ये भी मशहूर है कि फिल्म मदर इंडिया में सुनील दत्त का किरदार दरअसल दिलीप कुमार निभाने वाले थे, पर दिलीप साहब ने ये कहकर मना कर दिया था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि नरगिस को मैं पूरी फिल्म में माँ कहकर पुकारता रहूं, वो तो मेरी हीरोइन है। महबूब खान ने ये सजेशन भी दिया था कि हम इसे डबल रोल कर लेंगे, पिता का रोल भी आप करें और बेटे का भी, पर फिर भी दिलीप कुमार ने मना कर दिया और इस तरह से सुनील दत्त को ये फिल्म मिली। कौन जानता था कि आगे चलकर मदर इंडिया का बिरजू नरगिस से शादी कर लेगा।

हालांकि ये बात कही जाती है कि फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान भयंकर आग लगी थी जिसमें नरगिस फंस गई थी और सुनील दत्त ने उनकी जान बचाई थी। इसी वजह से नरगिस ने सुनील दत्त से शादी की, पर सुनील दत्त साहब ने इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे नरगिस बहुत पसंद थी, फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान आग जरूर लगी थी पर इस वजह से हमारी शादी नहीं हुई। हमारा रिश्ता बना जब नरगिस ने मेरे परिवार में मेरी बहन का इलाज करवाया और मुझे लगा कि ये ना सिर्फ मेरा ख्याल रख सकती है पर मेरे परिवार का भी, और तब डरते डरते मैंने नरगिस के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। 11 मार्च सन 1958 में सुनील दत्त और नरगिस विवाह के परिणय सूत्र में बंध गए और इनके तीन बच्चे हुए, संजय दत्त, नम्रता दत्त और प्रिया दत्त। संजय दत्त एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। प्रिया दत्त अपने पिता सुनील दत्त की तरह पॉलिटिक्स में हैं और बहन नम्रता की शादी कुमार गौरव से हुई। शादी के बाद नरगिस ने काम छोड़ दिया और अपना ध्यान समाज सेवा पर लगा दिया, चाहे वो स्पेस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के लिए काम करना हो या फिर दूसरे सामाजिक कार्य। नरगिस दत्त को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया था और वो पार्लियामेंट अटेंड भी किया करती थीं, पर इसी बीच उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई, उन्हें कैंसर हो गया था जिसके इलाज के लिए वो अमेरिका गईं, पर जब वो वापस आईं तब वो एक भयंकर कोमा में चली गईं। नरगिस जी की एक इच्छा थी जो अधूरी रही और वो इच्छा ये थी कि वो अपने बेटे संजय दत्त को फिल्म के पर्दे पर जरूर देखें और उसकी फिल्म रॉकी के प्रीमियर पर वो जरूर जाएं। उन्होंने ये कहा था कि मेरी तबीयत चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, मुझे व्हील चेयर पर ले जाना, पर मैं अपने बेटे को सिनेमा के पर्दे पर देखना चाहती हूँ। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिल्म रॉकी रिलीज होनी थी 7 मई 1981 को, पर उससे कुछ दिन पहले यानी कि 3 मई को नरगिस जी इस दुनिया को अलविदा कह गयी। सिनेमा में ऐसी संपूर्ण अभिनेत्री बहुत मुश्किल से मिलेगी। हिंदुस्तानी सिनेमा के इतिहास में नरगिस दत्त का नाम अमर रहेगा।

0: नमस्ते मित्रों, मैं हूं कवयित्री डॉक्टर कविता किरण और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। चलिए, अब नरगिस की कहानी आपने सुनी, इसके बाद आइए मल्लेश्वरी की कहानी आपको सुनाते हैं। भारत की बहुत ही पॉपुलर वेट लिफ्टर है। जी हाँ, एक और खिलाड़ी के बारे में बात करते हैं, वेट लिफ्टर के। वे ओलंपिक खेलों में कंस्य पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं। अपने मजबूत हौसले और दिलेर कारनामों से मल्लेश्वरी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तिरंगे की शान को चार चांद लगाया। मंच कोई भी हो, लेकिन जीत हर कीमत पर का इरादा रखने वाली इस वेट लिफ्टर की जिंदगी संघर्ष और कामयाबी के अद्भुत कहानी बताती है। 2000 में सिडनी में हुए ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ी मल्लेश्वरी ने महिलाओं के 69 किलो वर्ग में कंस्य पदक जीतकर इतिहास रच डाला। मल्लेश्वरी को 1995 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और 96 में उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार तथा 1997 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो आइए ऐसे विशेष खिलाड़ी के बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में, और आशा करूंगा कि आप सभी को अच्छा लग रहा है। और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए, खेल जगत के ऐसे महान कलाकार या महान खिलाड़ियों के बारे में जब जानते हैं तो निश्चित तौर पे आपको भी लगता होगा हमें भी खेलकर भारत का नाम, भारत का तिरंगा ऊंचा करना है। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक और गीत आपके नाम सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस, क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए बात करते हैं एक और शख्सियत के बारे में, डॉक्टर बलदेव वंशी के बारे में। जी हाँ, हिंदी जगत के विशेष व्यक्ति, हिंदी साहित्य के विशेष जाने माने राइटर और बहुत ही अच्छे जो है अलग अपनी जो है शैली के लिए जाने जाते हैं। इनका व्यक्तित्व जीवन संघर्षों की आँच में तपा था और अध्यापन कार्य में अवकाश प्राप्त करके बलदेव वंशी ने न केवल साहित्य की विविध विधाओं में अपनी कलम चलाई बल्कि हिंदी के प्रचार प्रसार के कार्य में भी सक्रिय भागीदारी निभाई। बलदेव वंशी हिंदी को लेकर दिल्ली के UPSC पर चलने वाले संभवतः सबसे लंबे धरने का अहम हिस्सा भी बने थे। तो आइए ऐसे विशेष व्यक्ति के बारे में जानते हैं, उनके जीवन परिचय से अवगत कराता हूं आपको। 1 जून 1938 को विशेष पाकिस्तान के मुल्तान शहर में इनका जन्म हुआ। बलदेव वंशी ने कहानियां और समीक्षक लेख भी लिखे पर इनका मन कविताओं में सबसे ज़्यादा रमा और अपनी कविताओं की अनूठी बिंब योजना को लेकर बलदेव वंशी खासे चर्चित रहे। अनेक सम्मानों से सम्मानित व देश विदेश की अनेक साहित्यिक यात्रा कर चुके डॉक्टर बलदेव वंशी एक लंबे समय से संत साहित्य पर कार्य कर रहे हैं और आज ये उनकी विशेष पहचान बन चुकी है। संत साहित्य पर उनकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और पाठकों द्वारा प्रशंसा प्राप्त कर चुकी हैं। इन दिनों आप विश्व संत साहित्य कोष की एक बड़ी योजना को लेकर कार्य कर रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहूँगा। भाषण आंदोलन इनका जबरदस्त था और फिर इनकी जो पुस्तकें हैं वो भी अपने आप में एक अनूठी कहानी सबको बताती। तो अपने साहित्यिक कार्य के लिए कबीर शिखर सम्मान, मूलक रत्न सम्मान, दादू शिखर सम्मान और विभिन्न अकेडमियों द्वारा, संस्थानों द्वारा, विश्वविद्यालयों द्वारा इनको सम्मानित प्राप्त है और 6 पुस्तकों पर केंद्र का राज्य सरकारों द्वारा सम्मान इनको प्राप्त है। तो ऐसे विशेष साहित्यकार की बातें आपको मैंने सुनाई। आखिरी समय की अगर बात करें तो हिंदी के वयोवृद्ध कवि जब संत साहित्य के विद्वान बलदेव वंशी का 7 जनवरी 2018 को रात दिल के दौरा पड़ने से मौत हो गई। बलदेव वंशी का एक दिन पहले ही विश्व पुस्तक मेले में गए थे और रात 8 बजे घर लौटे। उसी समय उन्हें दिल का दौरा पड़ा जिसके बाद उन्हें फरीदाबाद के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जहां उन्होंने रात 10 बजकर 20 मिनट पर अंतिम सांसें ली। बलदेव वंशी ने भारतीय भाषा आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था और हिंदी के कई संघ लोक सेवा आयोग के भवन में समक्ष कई वर्षों तक धरना दिया था। इस आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई थी। तो ये थी कुछ खास बातें बलदेव वंशी के बारे में। आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और इसी के साथ मैं आपसे चाहूंगा इजाजत। फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप खबरे रिया रेडियो मधुबन 107.8 FM खबरता रेजियो ने मुस्कुराता रेजियो
1: तेनालीरामा पात्र परिचय राजा सैंडी तेनालीरामा आकाश सुखराम वेदांत सेवक आदित्य आम आदमी शशिकांत नरेटर कृष्णा एक गरीब आदमी था नाम था सुखराम उसके बारे में यह बात फैल गई कि सुबह सुबह जो व्यक्ति उसका मुंह देख ले उसे पूरा दिन खाना नसीब नहीं होता
2: सुखराम का मुंह क्या देख लिया सारा दिन भूखा ही रहना पड़ेगा
1: बात फैलते फैलते राजा के कानों में पड़ी
2: भला ऐसा भी हो सकता है
1: राजा ने रात में सुखराम को राजमहल में बुलाया उसे भोजन करवाया और अपने सोने के कमरे में ही एक बिस्तर पर उसे सुलाया प्रातःकाल उठते ही राजा ने सुखराम का मुंह देखा सुखराम ने भी राजा को नमस्कार किया तभी गुप्तचरों ने आकर खबर दी
2: महाराज महाराज पड़ोसी राजा विजयनगर पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है
1: राजा जल्दी जल्दी नित्य कर्म से निपटे और नाश्ता किए बिना ही दरबार में पहुंचे लंबे समय तक विचार विमर्श होता रहा भोजन का समय हो गया
3: महाराज भोजन का समय हो गया
1: लेकिन राजा एक के बाद दूसरे काम में मग्न रहे सेवक फिर आया उसने डरते डरते पूछा
3: महाराज आपका भोजन
4: ठीक है मेरा भोजन नहीं ले आओ
1: सेवक भोजन की थाली लेकर आया तभी रानीवास से समाचार आया
3: महाराज महारानी की तबीयत ठीक नहीं है
1: महाराज तुरंत रानीवास में पहुंचे वहां राजवैद्य महारानी का उपचार कर रहे थे महारानी का बुखार उतरा तब दोपहर डलने लगी थी राजा बहुत विहल हो गए थे
4: आज सुबह मैंने सुखराम का मुंह देख लिया इसलिए मुझे खाना नसीब नहीं हुआ ऐसे अभागु को तो फांसी पर चढ़ा देना चाहिए
1: व्याकुल महाराज ने आदेश दिया
4: सुखराम को जेल में डाल दो और सूर्यास्त से पहले उसे फांसी पर लटका दो
1: तेनालीरामा को इस बात का पता चला
5: निर्दोष मनुष्य को फांसी लगे ये गलत है
1: तेनालीरामा जेल पहुंचे सुखराम के कान में कुछ कहा और जेल से लौट गए सूर्यास्त का समय हुआ फांसी का तख्ता तैयार हो चुका था फांसी पर जाने से पहले जिम्मेदार अधिकारी ने सुखराम से पूछा
3: मरने से पहले तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है
6: मेरी अंतिम इच्छा है कि पूरे नगर में सभी को बता दिया जाए
3: क्या बता दिया जाए
6: सुखराम अभागा है सुबह सुबह जो उसका मुंह देख ले उसे पूरे दिन खाना नहीं मिलता लेकिन महाराज तो सुखराम से भी अभागे हैं क्योंकि सुबह सुबह जो उनका मुंह देख ले उसे शाम को फांसी पर लटका दिया जाता है
1: अधिकारी को बहुत गुस्सा आया अधिकारी ने दौड़ते हुए जाकर महाराज को सुखराम की अंतिम इच्छा बताई
3: महाराज आप हुक्म करें तो उसकी यह अंतिम इच्छा पूर्ण किए बिना ही इसी समय उसे फांसी पर लटका दूं।
1: महाराज सोच में पड़ गए
4: मैंने जरूर जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय ले लिया है
1: उन्होंने सुखराम की फांसी की सजा माफ कर दी और सुखराम को बुलाकर पूछा
6: आज्ञा महाराज
4: ऐसी अंतिम इच्छा की बात तुम्हें कहाँ से सूझी
6: महाराज मुझ मूर्खों को कहाँ से सूझता ऐसा कहना तो मुझे तेनालीरामा ने सिखाया था
1: महाराज को लगा कि तेनालीरामा ने उसे कोई पाप करते हुए रोक दिया उन्होंने तेनालीरामा का आभार मानकर कहा
4: वाह तेनालीरामा आपकी बुद्धि का जवाब नहीं

0: पांच यूट्यूब वीडियो को लाइक करके पांच लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा है?
0: हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
0: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मीन्स ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
0: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं।
2: क्या बात है यार।
3: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
0: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
3: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।

0: 107.8 FM सुनते रहो मुस्कुराते रहो, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो मुस्कुराते रहो, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: नमस्ते, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। कार्यक्रम है युवा मंच, और युवा मंच कार्यक्रम के अंतर्गत मैं आरजे शुभा आप सभी का स्वागत करती हूँ, और मेरे साथ है मोनिका। मोनिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: वैसे मोनिका को आप बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं, तो आज वो क्या विषय लेकर के आए हैं सभी यूथ के लिए, उनसे ही जानते हैं। तो क्या विषय है आज?
2: जी, आज का विषय उन बच्चों के लिए जिन्होंने हाल ही में स्कूल अपना कंप्लीट किया है और वो अभी कॉलेज लाइफ में प्रवेश करने वाले हैं, उनके लिए उन्हें क्या क्या अनुभव हो सकता है, क्या प्रश्न आ सकते हैं और उनका निवारण, इन सब के बारे में हम आज देखेंगे।
1: जी, तो जब हम ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और कई भी नई जगह पे हम जाते हैं जहाँ पर भी, तो थोड़ा बहुत हमें एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या चेंजेस ज़रूरत है खुद के अंदर, और क्या क्या बच्चों को फेस करना पड़ता है, तो मोनिका जी से जानेंगे, क्योंकि आप भी स्कूल से कॉलेज गए होंगे, तो क्या एक्सपीरियंसेस आपका है, आप बताइए।
2: जी, ऐसे देखा जाता है कि कुछ बच्चे स्कूल लाइफ में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, कुछ कॉलेज में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो जो कॉलेज में कंफर्टेबल होते हैं वो इजीली मैनेज कर लेते हैं और वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन जो जिन्हें स्कूल में ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि स्कूल में एक्चुअली ज़्यादा हम डिपेंडेंट रहते हैं अपने टीचर्स के ऊपर और हमारे पेरेंट्स भी हमारा ध्यान देते हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड दूसरे साइड देखा जाए कॉलेज में हमें अपनी एडमिशन भी खुद करनी पड़ती है। तो ऐसे में कुछ बच्चे, उनके लिए कॉलेज लाइफ थोड़ा ऐसा न्यू हो जाता है और उन्हें उसको उसमें ढलने के लिए थोड़ा वक्त लगता है।
1: जी, और कई बार बच्चे नहीं ढल पाने के कारण, क्या आपने कभी एग्जांपल्स देखे हैं कि वो कॉलेज छोड़ देते हैं या फिर क्लासेस अटेंड नहीं करते, ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ती है?
2: हाँ, ऐसे कभी कभी वो छोड़ भी देते हैं। वो ज़्यादातर बच्चे स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं और उसकी वजह से उनका हेल्थ में कुछ इम्पैक्ट होता है, उनकी हेल्थ। और वैसे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें हॉस्टल में जाना पड़ता है और उन्हें घर की याद आती है और उनके मन में काफ़ी प्रश्न आते हैं कि हम क्या करें और अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम उन्हें घर की बहुत याद आती है और फिर उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बस और कुछ नहीं। वैसे
1: आपने कुछ ऐसा फील किया होगा?
2: मैंने तो मेरा उल्टा वाला रहा, जो मैंने कहा था ना कि जिनको कॉलेज लाइफ ज़्यादा अच्छी लगी है, मैं स्कूल में थी ना बहुत शायद थी, मैं बात तक नहीं करती थी, लेकिन जैसे ही कॉलेज में गई मेरा कॉन्फिडेंस लेवल पता नहीं कैसे वो रेज हो गया और मैं कॉलेज में ज़्यादा अच्छा मैंने इन्जॉय किया है और मैंने बहुत पार्टिसिपेट भी किया है। मैं तो स्कूल में ही बहुत करती थी पार्टिसिपेट, ज़्यादातर मैं सिंगिंग में करती थी, स्टेज पे परफॉर्म करती थी। एक्चुअली मैं सोचती थी मैं कभी कॉलेज में जाऊंगी, क्योंकि मैं ढल गई थी स्कूल में इस तरह से कि यार मुझे बोलना नहीं आता है, मैं क्या करूं, फ्रेंड्स कैसे बनाऊं, मुझे आता ही नहीं था। तो मैंने सोचा था कॉलेज में जाऊंगी तो एक नई शुरुआत करूंगी, और वैसे फिर मैंने वैसे किया, कॉलेज में मैंने पूरा अपने आप को चेंज कर दिया।
1: जी, तो आपने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए?
2: जी बिल्कुल।
1: तो उसका क्या फ़ायदा हुआ?
2: उसका फ़ायदा, मैं धीरे धीरे करके मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा और आज मैं पहले जैसी थी स्कूल में उसके बहुत ऑपोजिट हूँ मैं। अभी कोई भी मिले और मैं उससे बात करती हूँ और वो मुझे ये चीज़ हमेशा बोलता है या बोलती है कि ऐसे लगता ही नहीं कि आपसे पहली बार बात कर रहे हैं, तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ता,
1: कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ा,
2: कम्युनिकेशन स्किल्स सीखते गए। वो अच्छा लगता है ना, जैसे मोटिवेशन बढ़ता है तो आप सीखते जाते हो, तो वो अच्छी बात होती है।
1: और क्या आप लेकर के आए हैं हमारे श्रोताओं के लिए?
2: जी, जिन बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है उनके लिए हम देखेंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे पता करें कि क्या कारण है। ऐसे कुछ साइंस होते हैं जिससे पता चलता है, कि जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी देखना होता है कि बच्चे की जो मतलब हेल्थ है, या फिर कुछ ऐसे साइंस उसे पता चलता है कि शायद इन्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, नया एनवायरनमेंट है, स्कूल से कॉलेज में गए हैं, तो बच्चे की अगर फिज़िकल इलनेस, मतलब उसको सर दर्द कर रहा है या मतलब कुछ भी बुखार वगैरह हो रहा है या उसको बोर लगने लग रहा है ज़्यादा कॉलेज में, या फिर उसके खाने की आदतें चेंज हो रही है, ऐसी संगत भी हो जाती है ना हमारी कि बच्चे बाहर स्कूल कॉलेजेस में क्लासेस बंक करते हैं और फिर बाहर घूमने के बहाने फिर वो उनकी खाने की वो जंक फूड ज़्यादा खाते हैं तो उनकी आदतें चेंज हो जाती है और अपने फ़ोन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, टाइम पे सोते नहीं हैं और उनकी हरकतें, उनका रहन सहन, उनकी बात करने का तरीका सब चेंज हो जाता है और नेगेटिव हो जाते हैं थोड़े, उनका कंसंट्रेशन भी थोड़ा वीक हो जाता है और डिसीजन मेकिंग, उनका डिसीजन नहीं ले पाते हैं, थोड़ा कंफ्यूज रहते
1: क्योंकि
2: हैं।
1: ज़्यादा फ्रीडम मिल जाती है इसलिए।
2: नहीं फ्रीडम मिल जाती है उसमें भी और वो समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है क्योंकि वो काफ़ी अलग ही एक पड़ाव होता है हमारी लाइफ का जो हमें काफ़ी चेंज कर सकता है, तो उसको हमें अच्छे से हैंडल करना है, उसको प्रॉपरली हैंडल किया तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी होगी, अगर नहीं हैंडल किया तो हम काफ़ी बदल सकते हैं। वो एक ऐसा हमारा ट्रांजिशन पीरियड होता है और हम टीनेजर्स होते हैं ना, हम किशोर अवस्था में होते हैं तो उस टाइम हम जैसे बनते हैं वैसे पूरी लाइफ हम वैसे बने रहते हैं, तो वो बहुत
1: जी
2: इम्पोर्टेंट पार्ट होता है लाइफ का।
1: जी तो उसमें पेरेंट्स का, टीचर्स का, फ्रेंड्स का क्या रोल है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक अल्पविराम।

ओम शांति। नमस्कार, मैं हूँ संगीता। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107।

0: पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर और कार्यक्रम है युवा मंच. हमारे साथ है मोनिका और मोनिका आज बात कर रहे हैं उस विषय के बारे में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और अभी कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने स्कूल्स ख़त्म किए हैं अभी कॉलेज की ओर जा रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स भी आपने लिया होगा. किसी ने साइंस लिया होगा, किसी ने आर्ट्स लिया होगा, जो भी सब्जेक्ट्स आपने अपने चॉइस के हिसाब से आपने सिलेक्ट किया होगा. लेकिन वो जो ट्रांजिशन है स्कूल से हम कॉलेज तक जाते हैं, अपने पुराने दोस्त, अपने बचपन के दोस्तों को छोड़ करके एक दूसरे माहौल में हम जाते हैं, तो क्या चेंजेस हमें फेस करना पड़ता है, क्या चैलेंजेस हमें फेस करना पड़ता है और क्या कुछ होता है, वो जानेंगे हम मोनिका से. मोनिका, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है.
1: जी शुक्रिया.
0: जी तो क्या कहना चाहेंगे अभी आप?
1: जी एक्चुअली क्या होता है कॉलेज में, हम जब कॉलेज जाने वाले होते हैं हम पहले सोचते हैं कि किस तरह का होगा, और हमने एक्चुअली मूवीज़ भी देखी होती है. काफ़ी मूवीज़ में ऐसे दिखाते हैं कि कॉलेज लाइफ कैसी होती है, बहुत इंटरेस्टिंग दिखाते हैं और हम भी वैसे इमेजिन करते हैं. लेकिन एक्चुअली इतना ज़्यादा तो नहीं होता है. मूवीज़ में तो काफ़ी ज़्यादा दिखाते हैं ना, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होता है. और क्या होता है जब हम जाते हैं कॉलेज में, तो एक फ्रेशर्स के लिए एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें फ्रेशर्स को जो कॉलेज में ऑलरेडी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ मिलाया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है एक तरह से, और उसमें उनके साथ बातचीत होती रहती है, नए दोस्त बनते हैं, सीनियर्स होते हैं जो हमसे बड़े होते हैं उनके साथ हमारी दोस्ती बनती है जो फ्रेशर्स होते हैं उनकी. और ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, हमारे न्यू फ्रेंड्स बनते हैं, कुछ फ्रेंड्स तोड़ने वाले होते हैं, कुछ जोड़ने वाले होते हैं, अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं. और ऐसे में कुछ फ्रेंड्स छूट भी जाते हैं आगे जाके देखा जाए तो. लेकिन जो सच्चे दोस्त होते हैं ना वो सही टाइम में काम में आते हैं, ऐसे भी दोस्त बनते हैं. और वो
0: परखेंगे कैसे?
1: वो जो जिनके इंटरेस्ट हमारे इंटरेस्ट से मैच हो रहे हैं, और जो ऐसे नहीं कि ऊपर पर से तारीफ कर रहे हैं लेकिन अंदर में बहुत कुछ चल रहा है उनके, नहीं जो भी है आप सीधा बोल रहे हो अच्छी बात है. और ऐसे दोस्त बनाओ जो आपके अंदर की कमियां भी आपको बताएं. ये बात बिल्कुल मैंने सुनी है कि जो आपकी बहुत तारीफ़ करता है हो सकता है वो आपका सच्चा दोस्त नहीं है, लेकिन जो आपको अपनी आपके अंदर की कमियाँ बता रहा है वो आप सच्ची में वो आपका दोस्त है, वो आपको सुधारना चाह रहा है.
0: लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, वो आपको टीज करते हैं, आपको बुली करते हैं, आप सिर्फ कमियां बताते हैं, तो वो क्या सच्चा दोस्त है?
1: नहीं नहीं वैसा नहीं. जो आपको मोटिवेट भी करता है, जो आपको प्रोत्साहित करता है और आपको अच्छे तरीके से आपको आपकी कमियां बताता है, वो तो नॉर्मली वो सबको पता चल जाता है कि एक अच्छा दोस्त है. वो तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को ये कला होती है कि अच्छा दोस्त कैसे परखना है, अच्छा दोस्त बन सकता है कोई, तो ये तो वैसे हो जाता है, हम बना ही लेते हैं अच्छे दोस्त.
0: जी कई बार मोनिका लगता है कि हम जब स्कूल से कॉलेज जाते हैं ना, तो हम सोच के रखते हैं हम थोड़ा कूल बनेंगे, है ना, हम सारे चीज़ें ट्राई करेंगे.
1: हाँ.
0: हम थोड़ा क्लासेस बंक करेंगे, है ना, तो हम स्मोकिंग करेंगे, थोड़ा अल्कोहल लेंगे, ये सब ट्राई करना चाहिए तभी तो लगेगा कि हम कॉलेज में आए हैं. तो आप क्या कहते हो कि ऐसा एक बार करना सही है या फिर अब एक बार करते करते फंस जाते हैं स्टूडेंट्स?
1: जी जैसे कि मैंने कहा था कि एक ऐसी उम्र होती है जिसमें आदत लग जाती है किसी चीज़ की भी जल्दी, हम जैसे इस उम्र में बनते हैं वैसे हमारी पूरी लाइफ बनती है. तो स्मोकिंग और ये जो भी ड्रिंकिंग वगैरह, अल्कोहल, जो ये पीने वगैरह, ये आदतें ना ही लगे तो बेटर है. आप इस उम्र में हो जिसमें आपको पता नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, आप पहले कॉलेज कंप्लीट करो, उसके बाद आपको जो भी करना है आप करो. एक्चुअली ये सब चीज़ें नहीं करनी होती है, लेकिन आप उस उम्र में नहीं होगा आप डिसाइड कर पाओ कि क्या सही है क्या गलत है. जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें पता चलता है कि ये चीज़ें बिल्कुल गलत है. और हमारी अपब्रिंगिंग, हम ऐसे घर से आए हैं ना कि हमें सिखाया गया था बचपन से कि ये चीज़ें बहुत हानिकारक होती है. स्मोकिंग जो मतलब सिगरेट पीते हैं उससे ना बहुत नुकसान होता है. तो अगर पेरेंट्स ने अपने बच्चों को इससे अवगत कराया कि क्या क्या उसके नुकसान होते हैं और उससे ना बहुत तकलीफ़ होती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत तकलीफ़ तो क्यों तकलीफ है पढ़ना, एक अच्छी लाइफ जियो, हेल्दी लाइफ जियो, मज़े करो, अच्छे वाले मतलब अच्छी लाइफ जियो ना, तो ख़राब चीज़ों से बचो, और अच्छे आपकी अगर पढ़ाई करने की उम्र है पढ़ाई करो, और ज़्यादा बंक नहीं करने क्लासेस बिल्कुल भी। मैंने एक बार क्लास गलती से बंक कर दिया था, मेरी फ्रेंड मेरे को मैंने उसने बंक कराया, और मुझे इतना गलत लग रहा था ना, मुझे इतना इतनी देर तक और 2-3 दिन तक मुझे बुरा लगा कि मैंने क्लास बंक किया और मेरा कितना नुकसान हो गया। अब क्लास कंप्लीट करो, उसके बाद जहाँ घूमने जाना है अब घूमो, ऐसे नहीं है। कॉलेज लाइफ हमारी एन्जॉयमेंट की भी, एन्जॉयमेंट का टाइम होता है, वापस नहीं आता है वो। उसके बाद हम जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, तो एन्जॉयमेंट का टाइम भी है, लेकिन हर एक चीज़ का प्रॉपर टाइम होना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए।
0: ओके, टाइम टेबल सेट करना चाहिए आपको।
1: जी बिल्कुल।
0: तो हेल्दी एंटरटेनमेंट क्या होता है फिर?
1: हेल्दी एंटरटेनमेंट मतलब आप थोड़ा कॉलेज के बाद आपने पढ़ाई भी अगर कंप्लीट कर दी, या फिर पहले थोड़ा घूम लिया फ्रेंड्स के साथ, अच्छे फ्रेंड्स बनाने सबसे पहली बात। संगत बुरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टीनेजर लाइफ होती है किशोरावस्था, तो उस टाइम हमें अच्छी संगत बनानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है उस टाइम में। और उनके साथ आप थोड़ा सा बातचीत करो, गेम्स खेलो, जो टीनेजर्स वाली कॉलेज में हम खेलते हैं ना गेम्स, और थोड़ा पार्टिसिपेट करो, ये बहुत अच्छी बात है। कॉलेज में बहुत इवेंट्स होते हैं, गैदरिंग्स होती है, कोई सिंगिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई डांस में, कोई पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट रहता है, मतलब बहुत, जैसे कि रैम वॉक एंड ऑल, बहुत चीज़ें होती है कॉलेज में। तो स्कूल में तो स्कूल लेवल का होता है, बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड, बहुत ही लिमिटेड होता है, लेकिन कॉलेज में हमें मौका मिलता है कि हम अपना टैलेंट दिखाएं, और थोड़ा ज़्यादा फ्रैंक भी रहता है वहाँ पे। स्कूल में थोड़ा संभाल के कि नहीं, ये हमें अपनी मर्यादा में, बहुत ज़्यादा मर्यादा रहती है कॉलेज में, थोड़ी मर्यादा में हमें थोड़ा दिया जाता है फ्रीडम, तो हमें, लेकिन उसमें भी हमें अच्छा अच्छे से उसको यूज़ करना है, उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना है। अब ये सब चीज़ें करो, कितना कुछ है, हम सीख भी सकते हैं डांस में, सिंगिंग में, और कुछ हमारा, हमारे अंदर कोई टैलेंट है, हम वो दिखा सकते हैं। हम कॉलेज में पूरे दिखा दिया, तो उसमें भी हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पूरे कॉलेज में हमारा नाम हो सकता है।
0: जी, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। और क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है?
1: जी जैसे कि हमने पहले भी बुलिंग के बारे में बात की थी, कुछ बच्चे होते हैं बुलिंग के द्वारा कंट्रोल

0: जी, और क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस होते हैं कॉलेज लाइफ में जब हम स्कूल से जाते हैं तो?
1: जी कॉलेज में हम जाते हैं तो हमारे स्कूल के फ्रेंड्स भी हमारे छूट जाते हैं, कोई साइंस ले लेता है तो कोई कॉमर्स ले लेता है, तो कोई कोई तो ऐसे होते हैं कि मेरे फ्रेंड ने साइंस लिया तो मैं भी साइंस लूँगा और कॉमर्स लिया तो मैं ही, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने दिल की सुनते हैं कि नहीं मुझे यही करना है फ्यूचर में तो मैं यही लूँगा, तो उनके फ्रेंड्स छूट जाते हैं तो उन्हें थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि दूसरे स्कूल्स के बच्चे आते हैं कॉलेज में, तो काफ़ी अलग अलग स्कूल से आते हैं ना, ये मैंने भी देखा था कि तो फिर से हमें फ्रेंड्स बनाने पड़ते हैं, तो इसमें एक मुश्किल हो सकता है कि वो काफ़ी दूसरे सिटीज़ में से भी आते हैं, दूसरे शहरों में से आते हैं या दूसरे स्टेट में से भी बच्चे आते हैं, गाँव में से आते हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा नई शुरुआत करने में हम थोड़ा हिचकिचाते हैं तो वो मुश्किल होता है, और लेकिन बाद में तो वो हो जाता है मैनेज, और कभी कभी हमारी फ्रेंडशिप किसी से टूट जाती है तो हम थोड़ा निराश हो जाते हैं, लेकिन हमें समझना है कि ये तो चलता रहता है कॉलेज में ही चलता रहता है कि एक फ्रेंड बना या फिर अगर कोई छूट भी गया तो कोई बात नहीं, ये तो उम्र है, नए फ्रेंड्स बनते रहते हैं और लाइफ तो चलती रहती है, बहुत लाइफ पड़ी आगे, बहुत न्यू फ्रेंड्स बनेंगे
0: जी, तो मतलब किसी के ऊपर टोटली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए,
1: नहीं होना है और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, नए लोग मिलते रहेंगे हमें आगे, ये तो बात ये देखी है मैंने कि नए लोग मिलना वो स्टॉप नहीं होता है, आप जहाँ भी जाओगे ना आपके फ्रेंड्स बनते रहेंगे, आप जितना ज़्यादा फ्रैंक जितना खुल के आप लोगों से बात करते हो आपके नए नए फ्रेंड्स बनते जाएंगे, क्योंकि सब चाहिए होता है कि कोई होना चाहिए जिससे हम बात कर रहे हैं, सबको अच्छा लगता है, और जितना हम खुल के बात नहीं करेंगे तो सामने वाले को भी थोड़ा लगेगा कि ये बात नहीं करता है इसके साथ क्यों बात करें, तो हमें खुल के बात करना चाहिए, कॉलेज में भी ऐसे होता है कि जब तक आप बात नहीं करोगे ना तब तक सामने वाले बात आपको कंसिडर नहीं करेंगे, आपको आपके ग्रुप में नहीं लेंगे, अगर आप खुल के बात करते हो खुद हो के आपको बात करनी है, आप नए जाते हो किसी कॉलेज में, नया हमारा प्रवेश होता है ना, तो फिर हमें खुद ही बात करनी पड़ती है कि हम नए होते हैं
0: और जो शाय होते हैं बहुत,
1: हाँ उनके लिए ये है, वो उनको खुद उनके लिए यही बोलूँगी कि आप अपना आप खुद रहो, मतलब बी योरसेल्फ, जैसे हो आप वैसे रहो, और आपके अंदर जो भी क्वालिटीज़ है वो सामने रख के आप बात करो, आपके अंदर क्या टैलेंट्स है, खूबियाँ हैं,
0: थोड़ा थोड़ा आप बात कर सकते हो सबसे, है ना?
1: जी
0: थोड़ा थोड़ा खुल सकते हैं, हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास कर सकते हैं,
1: जितना नर्वस होंगे ना जितना हम सोचेंगे कि नहीं होगा फिर नहीं होता है, और जितना आप इजी लोगे ना बहुत इजी है, और आप खुल के आप भूल जाओ, अब ऐसे की सोच रहे हो कि नया कॉलेज है, वो लोग आपके जैसे ही है, वो भी एक्चुअली यही टेंशन में रहते हैं कि हम कैसे बात करें, तो सबको वही टेंशन रहता है, तो टेंशन क्यों लेना है, अब खुल के जियो, वो भी खुल के जियेंगे तो सब हो जाएगा ना, बहुत ईजी होता है वो।
0: जी तो आपस में पढ़ाई भी एक्सचेंज कर सकते हैं?
1: पढ़ाई एक्सचेंज करते हैं, नोट्स हम बनाते हैं, मिलके पढ़ाई कर सकते हैं, ग्रुप बनाते हैं बच्चे, स्कूल में तो फ़ोन अलाउड नहीं रहता है, लेकिन कॉलेज में कभी कभी
0: कोई कोई कॉलेजेस में अलाउड है,
1: कॉलेज में नहीं होता है अलाउड, जो हम लोग 11th 12th तक तो हमें अलाउड नहीं था, उसके बाद जब हम ग्रेजुएशन करते थे तब हमको अलाउ किया गया था, तो जहाँ पे अलाउड रहता है तो वहाँ पे हम ग्रुप्स बना सकते हैं, या फिर फ़ोन पे नहीं बनाया तो कॉलेज में ही मिलके आप ग्रुप बना के आप डिस्कस कर सकते हो, या फिर कुछ क्रिएटिव वे में कुछ अलग ही तरीके से आपने पढ़ाई को डिस्कस किया तो बहुत अच्छा लगता है, या फिर आप कोचिंग क्लासेस भी ज्वाइन करते हो क्लासेस में ट्यूशन्स वगैरह, तो वहाँ पे भी आपने अच्छे से किया उसको तो फिर वो अच्छे से मैनेज हो जाते हैं, वहाँ पे भी आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं।
0: जी टीचर्स का क्या रोल रहता है जब नए बच्चे कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं?
1: टीचर्स को मोटिवेट करते रहना चाहिए, और टीचर्स एनीवेज मैंने देखा है कि स्कूल से ज़्यादा कॉलेज में टीचर्स बहुत फ्रेंडली होते हैं, स्कूल की टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं, कॉलेज की बहुत ही फ्रेंडली होती हैं, और एक्चुअली यंग टीचर्स होती हैं कॉलेज में, तो हमें हमारी सुविधा के लिए मतलब वो हो ही जाता है, टीचर्स को पता है कि बच्चे कॉलेज के हैं तो उनके साथ उनकी ही भाषा में बात करना है, उनके जैसा बन के रहना है तो उनको कंफर्टेबल हो, तो टीचर्स तो एनीवेज वो मैंने तो देखा है कि टीचर्स बहुत अच्छी होती है कॉलेज में हो या स्कूल में हो, और हमें भी टीचर्स के साथ में डिस्कस करना है, टीचर्स के साथ बना के रहना है कि कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं तो उनके साथ डिस्कस करो, और टीचर्स के साथ पहचान बना के रखी ना तो बहुत काम में आता है।
0: जी अगर हम डाउट्स क्लियर नहीं करेंगे

0: तो आगे ही प्रॉब्लम्स हो सकती है जब हम स्कूल से डायरेक्टली कॉलेज में जाते हैं 11th 12th में।
1: जी, हमारी आदत बन जाती है कि हम कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। हमें कभी क्वेश्चंस पूछना बंद नहीं करना है, हमेशा क्वेश्चंस पूछते रहना है। ये आदत बहुत अच्छी है। छोटा बच्चे रहते हैं, वो हमेशा, हमने देखा होगा कि क्वेश्चंस ये क्या है, ये क्यों है, तो वो सीखते रहते हैं। और जब हम जिस पड़ाव पे हमने प्रश्न पूछना या कुछ प्रश्न करना हमने बंद कर दिया, हम ना हमारा सीखना बंद हो जाता है। और कोई बुरी बात नहीं है क्वेश्चन पूछना। अब नई नई चीज़ें सीखते जाओ। और टीचर्स को एक्चुअली अच्छा लगता है कि बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनका ध्यान है पढ़ाई में, तो पूछते
0: तो
1: रहना
0: टीचर्स को
1: चाहिए।
0: अच्छे लगते हैं, कई टीचर्स डांट भी देते हैं और कई स्टूडेंट्स या आपके फ्रेंड्स जो है ना वो आपको चिढ़ाते रहते हैं, तो उससे कैसे फेस करेंगे फिर?
1: टीचर्स डांटते तब है जब हम मस्ती करते हैं, या फिर हमने कोई कॉलेज में ये होता है कि मतलब बच्चे थोड़ी शरारत करते रहते
0: कई
1: हैं।
0: बार क्वेश्चंस पूछने पर भी डांट पड़ती
1: क्वेश्चंस
0: है।
1: क्वेश्चंस अगर बार बार रिपीट किए ना क्वेश्चंस, तो डांट देते हैं कि आपको पहले बताया था, आपका ध्यान नहीं था, तो आप ध्यान से पढ़ो, आप क्यों बार बार वही क्वेश्चंस पूछ रहे हो, तब डांट सकते हैं। वैसे क्वेश्चंस पूछने पे हाँ, वो कभी ऐसे भी डांटते हैं कि आपका ध्यान नहीं है, स्कूल क्लास में सिखाया था लेकिन आप ध्यान नहीं देते हो, तो वो लेकिन अगर क्वेश्चन बहुत डीप रहता है ना, तो वो आंसर करते हैं।
0: भले ही वो
1: लेकिन
0: डांटते हैं लेकिन आंसर्स भी दे
1: लेकिन
0: देते हैं
1: हाँ,
0: हर जगह।
1: डांट कोई बात नहीं है, डांटते कोई बात नहीं, वो तो
0: कई
1: डांटेंगे।
0: बार ऐसा होता है कि आप जो क्वेश्चन सोच रहे हो ना वो हर कोई सोच रहा होता है लेकिन हर कोई पूछने में डरता है कई
1: डरता
0: बार,
1: है
0: लेकिन उनके मन में भी वो क्वेश्चंस होता है। तो ज़रूर क्वेश्चन पूछें, तभी आपको आंसर्स भी सही से मिलेंगे, सही से आप समझेंगे तो आप और ज़्यादा मस्ती कर पाएंगे, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा ट्यूशन नहीं जाना पड़ेगा जब आप कॉलेज में ही सब कुछ समझ चुके।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: तो ये भी एक कह सकते हैं टेक्निक है कॉलेज में ही सब कुछ समझने का और पढ़ाई करने का। जी, और क्या कहना चाहेंगे?
1: जी, कभी कभी कोई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जो लड़की होती है वो गर्ल्स स्कूल में से आती है, या लड़के होते हैं, मीन्स सेपरेटली, वो एक ही मतलब, या
0: कोएड से नहीं आते हैं?
1: हाँ, वो
0: हाँ
1: मिक्स ऐसे कॉमन स्कूल से नहीं आते हैं, वो जेंडर स्पेसिफिक स्कूल से आते हैं, तो उनके लिए वो एक साथ आते हैं कॉलेज में, ये दोनों लड़का लड़की एक मतलब दोनों जेंडर्स रहते हैं ना, तो उसमें भी उनको थोड़ा मुश्किल होता है कि कैसे बात करेंगे, अगर कुछ नोट्स मांगने हैं या फिर कुछ भी होता है, फ्रेंड्स फ्रेंड्स बनते हैं तो कैसे बात करेंगे,
0: हेजिटेशन होता है।
1: हेजिटेशन होता है, तो वो स्टार्टिंग में होता है, लेकिन बाद में वो सीखते हैं, बाद में नॉर्मल हो जाता है, वो स्टार्टिंग में थोड़ा, लेकिन हमको
0: और
1: ये
0: किसी
1: नहीं
0: को
1: सोचना है।
0: क्लासमेट समझेंगे तो फिर नॉर्मली बात कर सकते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, स्टार्टिंग में होता है लेकिन बाद में वो कंफर्टेबल हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसे भी हो जाता है कि अभी टीनेजर्स में ये ज़्यादा होता है, जो किशोरावस्था में होता है, कि उनको ऑपोजिट जो
0: जेंडर
1: जेंडर
0: से
1: है
0: हाँ
1: उनकी तरफ अट्रैक्शन हो जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा टीनेजर्स में होता है ना, तो इससे बच के रहना है, क्योंकि ये उम्र है ना सीखने की है, होता है वो नॉर्मल अट्रैक्शन, वो बुरी बात नहीं है,
0: लेकिन
1: बट
0: आपको
1: उसमें
0: पॉजिटिवली चैनलाइज करना है अपनी चीज़ों को।
1: पॉजिटिवली उसको चैनलाइज करना है, उसको उसकी वजह से आपको पढ़ाई को अफेक्ट नहीं होने देना चाहिए। और आप ज़्यादा टाइम उसमें बिता रहे हो फ़ोन में और टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसकी वजह से पढ़ाई अफेक्ट ना हो, क्लासेस बंक नहीं करने चाहिए। और कभी कभी क्या होता है ना, हम गलत फ्रेंड्स बना देते हैं, गलत संगत में आ जाते हैं, तो वो गलत होता है, संभाल के रहना चाहिए। और इन चीज़ों से तो थोड़ा भी आपकी उम्र ऐसी है कि आपको बच के रहना है।
0: अगर मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि एक ही दिन की बात है बंक कर लेते हैं, कोई बात नहीं तू अकेला पढ़ाकू है क्या, है ना, ऐसे भी तो सुनने को मिलता है, फिर हम ना नहीं कह पाते, हम सोचते हैं कि अगर हम ना कहेंगे तो शायद हमारे फ्रेंड्स हमको छोड़ के चले जाएंगे, तो ऐसे सिचुएशन को कैसे फेस करना चाहिए?
1: जी, ये मैंने भी सोचा था जब मैंने आपको बताया ना कि मैंने बंक किया था, तो मैंने वही सोचा यार, मैं हमेशा इसको मना करती रहती हूँ, मेरी फ्रेंड को, आज चले जाती हूँ, नहीं तो बोलती रहती है कि यार तू इतनी पढ़ाकू है, क्या करेगी, इतना मतलब थोड़ा एक बार चलता है ना, कभी तो बंक कर लिया कर। फिर मैंने किया, वैसे मैं उसको मना करती थी कि नहीं यार, बाद में चलेंगे ना, कॉलेज के बाद में टाइम है इतना सारा, बाद में चलेंगे, तो ऐसे बोल सकते हैं।
0: जी, जब वो आपको चेंज करने की कोशिश करते हैं, बुराई की तरफ लेके जाते हैं, तो आपको अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी
1: अच्छा ही
0: चाहिए।
1: बिल्कुल नहीं छोड़नी है, हमें कोशिश करनी है कि वो भी ऐसे ना बने, अगर हमारे अच्छे दोस्त हैं वो, वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम चाहते हैं कि वो भी अच्छी राह पे चले, तो हमें भी कोशिश करनी है कि वो ऐसे ना बने. उनको इस तरह से बोलना है कि यार तूने बंक किया ना, फिर घर पे जाकर तेको कौन सिखाएगा, तेको कोई क्वेश्चंस आएंगे तो फिर क्या करेगी, ऐसे उनको बोल सकते हैं कर लेते हैं कॉलेज, उसके बाद तू जहाँ लेके जाएगी हम चले जाएंगे.
0: जी बिल्कुल. तो यहाँ पर एक अल्पविराम लेते हैं, फिर हम वापस आएंगे कार्यक्रम युवा मंच पर. आपके साथ अगर कोई घटना घटी हो इस प्रकार से जब आप स्कूल से कॉलेज में गए हों, तो आप हमें शेयर कर सकते हैं, या फिर कुछ स्टोरी आपके पास है तो भी आप शेयर कर सकते हैं 9414-1415 पर.
2: किडनी रोगी ध्यान दें, ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर माउंट आबू में नेफ्रोलॉजी जांच एवं परामर्श शिविर डॉक्टर आनंद नारायण मालू जी के द्वारा जांच एवं परामर्श. शुक्रवार दिनांक 10 मई 2024 समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक. नियमित लक्षणों वाले मरीज संपर्क करें. किडनी फेलियर, डायलिसिस मरीज, बच्चों के नेफ्रोटिक सिंड्रोम, डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, किडनी में इन्फेक्शन. वह मरीज जो लंबे समय से डायबिटीज या ब्लड प्रेशर से ग्रस्त हैं, वे इस शिविर में किडनी विशेषज्ञ से जरूर सलाह लें. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9413511888 एवं 9461307077. सरकारी बीमा योजना में डायलिसिस की सुविधा निशुल्क उपलब्ध है.
3: रेडियो पर प्रसारित किसी भी कार्यक्रम या उससे जुड़ी किसी सामग्री से समुदाय के किसी भी श्रोता को आपत्ति हो तो आप अपनी शिकायत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में दर्ज करा सकते हैं. डिप्टी सेक्रेटरी, डेप्यूटी डायरेक्टर, रूम नंबर 116, एविंग शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110001, फोन नंबर 0112388647, ईमेल prabhudat.sharma@nic.in या CISCELL-MOIB@NIC.IN.

J. Bottomul Global Hospital and Research Center, Mount Abu, Rajasthan में हृदय रोग जांच शिविर आयोजित किया जा रहा है। शुक्रवार एवं शनिवार दिनांक 10 और 11 मई 2024 सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष कुमार अग्रवाल, हृदय रोग विशेषज्ञ, MBBS, MD, DM कार्डियोलॉजी। ये सेवाएं हृदय रोग विशेषज्ञ से आप निशुल्क परामर्श ले सकते हैं। निशुल्क ब्लड प्रेशर की जांच भी होगी। वहीं पर लिपिड प्रोफाइल, TMT, 2D इको, ECG पर 30% की छूट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9413511188 या फिर 9461030707 पर। विशेष ध्यान रखें, मरीज अपनी पुरानी जांच रिपोर्ट एवं वर्तमान में चल रही दवाइयां अवश्य लेकर आएं।

0: वेलकम बैक, सुन रहे हैं आप युवा मंच और मैं हूँ आज शुभा और हम मेरे साथ हैं मोनिका जी। और मोनिका हमसे अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही है, इसके साथ साथ जो अभी स्टूडेंट्स जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं और जो पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी बात कर रही हैं कि जो ट्रांजिशन पीरियड होता है स्कूल से हम कॉलेज तक जाते हैं तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस हम फेस करते हैं, पेरेंट्स का क्या रोल है, स्टूडेंट्स का खुद का क्या रोल है, टीचर्स का क्या रोल है, फ्रेंड्स का क्या रोल है, ये सब बातें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मोनिका जी आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अंतिम मोड़ पर पहुंच चुके हैं हम, तो क्या कहना चाहेंगे आप
1: जी? जो जो बच्चे जो स्ट्रेस के थ्रू गुजर रहे हैं, जिन्हें स्ट्रेस होता है ट्रांजिशन केस में, स्कूल से कॉलेज में आने के इसमें स्ट्रेस हो रहा है, उसमें पेरेंट्स का, फ्रेंड्स का, टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम पेरेंट्स के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो पेरेंट्स को शेयर करो कि आपको कोई स्ट्रेस है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, या तो फिर अपने फ्रेंड्स के साथ जो आपके पुराने फ्रेंड्स हैं स्कूल में थे, या फिर कोई ऐसे फ्रेंड्स होते हैं ना किसी के,
0: आपके सीनियर्स, आपके बड़े हैं, या फिर कजन्स, उनसे भी
1: अपने सिबलिंग्स भाई बहन के साथ ऐसे जिससे आप अच्छे से शेयरिंग करते हो उनके साथ आप डिस्कस करो। या फिर आपके पास एक और ऑप्शन, आप टीचर्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, आपके जो कॉलेज के टीचर्स हैं उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हो, आप बहुत अच्छे से आपको गाइड करेंगे।
0: क्या आपको लगता है अच्छे दिखने के होड़ में भी बहुत सारा स्ट्रेस हम फील करते हैं कॉलेज में कि मैं अच्छी दिखूं, अच्छी लगूं, ये भी होता है कंपटीशन?
1: हाँ बिल्कुल, ये कॉलेज में होता है और हम बहुत ध्यान देते हैं कि हमें अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छे से बाल बनाने हैं और अच्छे से तैयार होके जाना है, इसमें भी हम काफ़ी ज़्यादा टाइम दे देते हैं। पर ये बिल्कुल नॉर्मल है, इट्स ओके, लेकिन उसकी वजह से ज़्यादा सोचना नहीं उसके ऊपर कि मतलब वही इम्पोर्टेंट है, अब अच्छे से तैयार होके जाओ, अच्छे से, इट्स वेरी नॉर्मल, हमारी एज है, यही तो एज है,
0: क्लीन रहना है आपको और प्रेजेंटेबल रहना है,
1: प्रेजेंटेबल रहना है,
0: लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना है,
1: स्ट्रेस नहीं लेना है ज़्यादा, किसी भी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना है। और कुछ भी अगर आपको कोई परेशानी है तो आपको डिस्कस करना है किसी ना किसी के साथ जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो। और अगर फिर भी आप खुद अपने लेवल पे अगर आप डील कर रहे हो प्रॉब्लम को तो आप शेयर तो करो ही, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम है तो आप एक नोट बना सकते हो, उसमें आप लिख सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है और इसके कारण क्या है। और सपोज़ कि मैं मतलब मेरे जो नए फ्रेंड्स जिनको मैं बनाना चाह रही हूँ फ्रेंड, वो मुझे एक अजनबी की तरह देखते हैं और वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं कर रहे, वो कारण आपको जानना है और आपको उस पर वर्क करना है, आपको उस पर काम करना है, उसको मिटाना है जो भी प्रॉब्लम है उसको।
0: कि ज़रूरी है क्या मेरे में ही वीकनेस हो अगर वो मेरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो?
1: सब में कोई ना कोई वीकनेस होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, अगर मुझ में कोई कुछ कमी है तो दूसरे में कोई और कमी होती है, तो वो हमें जानना है और ऐसे कमियाँ पूरी करते करते हम परफेक्ट बनते हैं। परफेक्ट मतलब हम आगे बढ़ते हैं लाइफ में, हम सीखते हैं,
0: मतलब खुद की कमियाँ हमें जानना है,
1: खुद की कमी जानना है, हमें सीखना है और ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। और एक बार हमने ये चीज़ को सीख लिया ना तो हम फ्रेंड्स बहुत इजीली बना सकते हैं।
0: लेकिन एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है अपनी कमी के साथ।
1: जी मैंने आपको बताया था ना, मैंने स्कूल में एक्सेप्ट कर लिया था कि मुझे बात नहीं करना आता है, मैं क्या करूं, लेकिन कॉलेज में जाके मैं इस पे ज़रूर इसको मैं इस पे काम करूंगी, तो मैंने उसको जान लिया प्रॉब्लम को और मैंने उस पे काम किया, तो उसमें मैंने सफलता हासिल
0: की। धीरे-धीरे शुरू किया होगा आपने।
1: जी बिल्कुल,
0: स्टेप बाय स्टेप
1: सफलता मिलती है, कोई भी चीज क्यों ना हो ना, आपको उसको एक्सेप्ट करना है, आपको उसको समझना है और क्या करना है, बहुत उसको अच्छे से हो जाता है वो मैनेज।
0: जी जी बिल्कुल जी, आगे क्या बताना चाहेंगे, पेरेंट्स का रोल, स्टूडेंट्स का क्या, मतलब सोल्यूशन क्या है इन सब चैलेंजेस का?
1: जी अगर बच्चे पेरेंट्स के साथ शेयर कर रहे हैं तो पेरेंट्स को उनको समझना है, बच्चों को समझना है, उनके साथ उनकी भाषा में बात करना है, बहुत फ्रैंकली रहना है, ऐसे उनको जज नहीं करना है और अच्छे से सुनना है, उनको थोड़ा स्पेस देना है वो अपनी बात एक्सप्रेस कर पाए, उनको टाइम देना है, अच्छे से उनको सुनना है और उनको डायरेक्टली बोलना नहीं कि तू गलत है, तू ऐसे क्यों करता है या क्यों करती है, उनको समझना है, उनके जगह पे रहना है, उनके फ्रेंड बन के रहना है, ऐसे हम उनको समझेंगे ना तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो, और वो ऐसी अवस्था में, देखिए किशोरावस्था में है तो चीज़ें होती है, और हमें ये एज अ पेरेंट ये एक्सपेक्ट नहीं करना है, ये आशा नहीं रखनी है कि जल्दी से चेंज हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है उसको
0: और
1: चेंज
0: टॉप
1: होने
0: करो
1: में.
0: वो भी प्रेशर नहीं होना
1: हाँ
0: चाहिए.
1: वो तो बिल्कुल नहीं होना
0: मेडिकल
1: चाहिए.
0: क्लियर करना है, IIT क्लियर करना है, JEE
1: ये
0: क्लियर
1: बहुत
0: करना
1: बड़ी
0: है.
1: चर्चा है, ये तो मतलब ये तो नहीं होना चाहिए. ये ज़्यादा जितना ज़्यादा प्रेशर करोगे ना उतना बच्चे पे नुकसान होगा. वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो जिस चीज़ में अच्छा है वो उस चीज़ में आगे बढ़ सकता है. कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई डांस में अच्छा है, कोई एक्टिंग में अच्छा है, कोई किसी चीज़ में, और हर एक बच्चा हर एक में कोई ना कोई टैलेंट होता ही है.
0: तो उसे
1: उसको
0: पहचानो
1: पहचानना
0: तो.
1: है और लगे तो आप उसके क्लासेस लगा लो. आप उसमें कितना कुछ हासिल कर सकते हो, कितनी शान मान शान हासिल कर सकते हो.
0: जी,
1: जी
0: अपॉर्चुनिटीज़ भी इंडिया में बहुत हैं. अगर आप कोई आर्ट में अच्छे हो तो उसमें आप करियर भी बना सकते हो. हालांकि करियर ऑप्शंस में आप सुनते होंगे इन चीज़ों के बारे में, आगे भी युवा मंच में हम आपको इन सभी चीज़ों के बारे में भी अवगत कराते रहेंगे, यूथ के एक्सपीरियंसेस भी सुनाते रहेंगे. जी
1: जी तो हमें पहचानना है हमारा टैलेंट क्या है, और हमें उसके लिए हमें उसमें पार्टिसिपेट भी करना है. ज़रूरी नहीं सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करनी और ज़बरदस्ती. तो आप अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गई, जो दूसरी पार्टिसिपेशन हो गया, उसमें भी पार्ट लो. और अगर आप अच्छे हो उन चीज़ में तो आप पूरी तरह से हर एक कार्यक्रम में आप हिस्सा लो, बहुत अच्छी बात है. और पेरेंट्स को बिल्कुल फोर्स नहीं करना है, बच्चे वो बच्चे के ऊपर है कि उसको क्या लेना है. उसको साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, उसको आगे जाके क्या करना है उसको अच्छे से उसके साथ डिस्कस करना है. ऐसे नहीं कि पापा ने बोला तो कॉमर्स ही लेना है, बिजनेस ही करना है, या बोला कि डॉक्टर ही बनना है. नहीं, उसका क्या इंटरेस्ट है बच्चे का, उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है. क्योंकि क्या होता है पता है आपको, कि मैंने सपोज मैंने कॉमर्स ले लिया, अगर मेरे को बोला किसी ने, मेरे पेरेंट्स तो बहुत ही फ्री थे, मेरे ऊपर छोड़ दिया था उन्होंने, लेकिन अगर मेरे को बोला उन्होंने बाय चांस कि और मैंने कॉमर्स ले लिया, फिर मैं, लेकिन मुझे इंटरेस्ट साइंस में, तो मैं चाह के भी कॉमर्स से साइंस नहीं जा सकती हूँ. कॉमर्स तो वो, और वो ना बहुत नुकसान हो जाता है फिर. और हम क्योंकि हम जो डिसाइड कर हम जो ऑप्शन लेते हैं ना, उसके बाद वो चेंज नहीं होता है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है. तो आपको जिसमें इंटरेस्ट है ना तो आप लेना. एक्चुअली मैंने कॉमर्स लिया था, तो वो मैंने अपनी मर्ज़ी से ही लिया था, लेकिन मुझे बाद में लगा कि साइंस बेटर.

0: था तो वो अच्छे से सोच के आपको लेना है डिसीजन।
1: जी जी बिल्कुल
0: और पेरेंट्स को वैसे डिस्कशन करते रहने चाहिए बच्चों के साथ, उनके उनकी भाषा में उनके साथ बात करो और उनको ऑप्शंस दो। खाने खाने में उनको ज़्यादा स्ट्रिक्ट मत रखो कि आप बाहर का खाना नहीं खा सकते, और ये आप खा सकते हो लेकिन मतलब वो भी एक मर्यादा में, घर पे बना लिया, ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रखना है बच्चों को। और वैसे उनके साथ टाइम स्पेंड करो, थोड़ा बाहर वॉक पे जाओ, और
1: उनके
0: उन
1: मन में क्या चल रहा है वो जानना बहुत ज़रूरी है।
0: जी बिल्कुल ज़रूरी है। और उनके साथ उन्हें मोटिवेशनल स्टोरीज सुनाओ, और उनको कोई मोटिवेशनल बुक्स भी आप सजेस्ट कर सकते हो बच्चों को।
1: आपको लगता है उस पीरियड में बच्चे मोटिवेशनल बुक्स और स्टोरी सुनेंगे
0: कुछ बच्चे होते हैं
1: जो
0: एक्चुअली
1: सुनते हैं?
0: जो बहुत ही सिंसियर होते हैं पढ़ाई में, और वो पेरेंट्स के साथ भी बहुत फ्री फ्रैंक होते हैं, तो ऐसे में वो पढ़ लेते हैं जो बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है जिनको, वो पढ़ लेते हैं। उनके लिए है जो एन्जॉयमेंट चाहते हैं थोड़ा, जिन्हें पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं है तो वो शायद नहीं पढ़ते ज़्यादा बुक्स,
1: जी
0: तो ऐसे में उनके लिए ये है।
1: जी तो जो शारीरिक मानसिक रूप में बदलाव हमारे अंदर हो रहा होता है उस समय, तो हमें किसी से शेयर करना चाहिए, नहीं तो अगर गलत संघ में हम चले जाते हैं उसे चेंज करना बाद में मुश्किल होता है जैसे आपने
0: हाँ
1: कहा,
0: बिल्कुल
1: तो इसके
0: जी
1: ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है।
0: हाँ। और अगर हमें समझ में आ रहा है कि हमारे फ्रेंड्स गलत है, हमारी संगत गलत है, हमें तुरंत ही उन्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनको वो क्लासेस बंक करने के लिए बोल रहे हैं। हमने उनको बोला, बहुत बार बोला कि नहीं हम नहीं बंक कर सकते हैं, और उसको समझाया फिर भी वो नहीं मान रही या नहीं मान रहा है, फिर भी अगर वो अपनी ज़िद पे अड़े हुए हैं कि बंक करना ही है तो हमें उनको छोड़ देना चाहिए। और हमें गलत मार्ग पे लेके जा रहे हैं, गलत राह पे लेके जा रहे हैं, वो स्मोकिंग कर दे और वो ड्रिंक करते, कहीं पे गलत जगह पे लेके जा रहे हैं, वो जुआ और इन चीज़ों की आदत लगा रहे हैं, तो उनको तो तुरंत छोड़ देना चाहिए। उनको समझाने का एक बार प्रयास करना चाहिए ज़रूर, लेकिन नहीं मानते तो उन्हें छोड़ दो, क्योंकि उसमें आपका बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान है।
1: जी।
0: और स्टार्टिंग में तो बहुत मुश्किल होता है, हो सकता है कोई कोई मुश्किल नहीं भी होता है, किन किन के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है, कॉलेज लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन किस किस के लिए थोड़ा सा न्यू होता है, जो स्पेशली कॉलेज जो हॉस्टल में जाते हैं ना, दूसरे सिटी में जाते हैं, गांव से सिटी में जाते हैं और उनको हॉस्टल में रहना पड़ता है, तो स्टार्टिंग में अगर आपने इसको कर लिया ना तो फिर आगे जाके कुछ नहीं है, थोड़ा स्टार्टिंग में होगा लेकिन आगे जाके बहुत ईजी होगा, और उसको बहुत अच्छे से मैनेज करना है। अगर आपने उसको अच्छे से नहीं किया तो आप आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है, उसको प्रॉपरली प्लान वे में मैनेज करना है।
1: जी बिल्कुल। तो अब वक्त हो गया अलविदा कहने का, आप अंतिम मोड़ पे क्या कहना चाहेंगे?
0: जी इसके अलावा और मतलब इसको ऐसे भी डील कर सकता है कि कैंप और आपको कैसे यूज़ करना है कॉलेज को प्रॉपरली, उसके रिसोर्सेज रहते हैं, इसको कॉलेज में एक लाइब्रेरी होती है, आप उसको अच्छे से यूज़ करो, और आपको टाइम को अच्छे से मैनेज करना है। अगर आप रात को पढ़ा, अगर आपको बेटर लग रहा है तो आप रात को पढ़ाई करो थोड़ा शाम में, और अगर आप सुबह को पढ़ना चाहते हो तो प्रॉपरली अच्छे से प्लान करके टाइम स्टडी के लिए प्रॉपर टाइम एलोकेट करो, और पढ़ाई हो गई तो उसके बाद खेल कूद और बाहर घूमना वूमना अच्छे से आप मैनेज करो, ऐसे नहीं, क्योंकि कॉलेज में बहुत टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो जाता है, बच्चे बहुत इधर उनको मतलब
1: आता नहीं है मैनेज कैसे
0: मैनेज नहीं
1: करना है,
0: करना
1: लेकिन
0: आता
1: आप
0: है
1: टाइम टेबल बना के
0: अपने
1: डिसिप्लिन तरीके से
0: एंजॉयमेंट।
1: एंजॉय कर सकते हो।
0: जी सिर्फ एंजॉयमेंट में ध्यान रहता है ना तो वो पढ़ाई का फिर छोड़ देता है, तो उसको अच्छे से मैनेज करना है टाइम को, और अच्छी हैबिट्स बनानी है, और अपनी फिजिकल हेल्थ एक्सरसाइजेस करना है, मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना है, स्ट्रेस नहीं होना है ज़्यादा, मेडिटेशन करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल, खाना अच्छा खाना है, ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना है, क्योंकि हमारे दोस्त वो हमें बाहर का खाना ये खाना है ये खाना है, नहीं आप घर से खाना बना के लेके जाओ आपकी हेल्थ ख़राब होती
1: कई
0: है।
1: बार तो खा सकते हैं,
0: कभी कभी खाना चाहिए, कभी कभी खा
1: कभी
0: सकता
1: कभी
0: है
1: खा सकते हैं
0: ठीक है
1: बच्चे।
0: उतना, लेकिन ज़्यादा ख़राब चीज़ें नहीं खानी है, क्लीन अच्छा क्लीन जगह से खाओ। और इसके अलावा अगर हॉस्टल में रह रहे हो, घर से दूर रह रहे हो, आपको घर की याद आ सकती है, तो आप ऐसा अपना अपना सराउंडिंग ऐसा बनाओ, अपना रूम होता है कि वो घर के जैसा फील हो, ऐसा खाना आप बनाओ या खाओ कि घर वाली फीलिंग आए, और ऐसे दोस्त अच्छे दोस्त बनाओ, और अपने घर वालों से भी बातचीत बनाए रखो, उनके साथ शेयर करो, अगर आप घर के बाहर रहते हो तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप उनसे दूर हो, उनके साथ सब कुछ शेयर करो। और इसके अलावा आपको काफ़ी चीज़ों से बच के रहना है, कि काफ़ी बच्चे होते हैं वो पार्टीज में लेके जाते हैं आपको, और आपको
1: गलत आदत
0: गलत जगहों पे
1: लाइक
0: गलत आदतें,
1: जी लाइक
0: ऐसे
1: ड्रग्स और बाकी
0: ड्रग्स
1: चीज़ें।
0: होती है, या फिर कभी कभी ड्रिंक्स भी वो ये करते हैं कि कुछ डाल दिया, किसी ने कुछ खाने में डाल दिया, या फिर किसी से ये चीज़ें नहीं लेनी है कभी भी नहीं, किसी ने खाने कुछ चॉकलेट दे दी या फिर कुछ कुछ कोल्ड ड्रिंक दे दी, उसमें कुछ डाल के भी वो हो सकता है ना, वो लड़कियों को स्पेशली बच के रहना है, लड़की या लड़का दोनों को बच के रहना है इन चीज़ों से। और मतलब इसके अलावा ऐसे ही कि आजकल ना ये चीज़ें होती है कहीं कहीं पे कि थोड़ा डेंजरस होता है, तो और आपको आप कॉलेज का सेफ कैंपस सिक्योरिटी रहता है, आप उनको कभी भी आपको लगता है कि कुछ गलत है तो आप उनको भी सिक्योरिटी को आप इन्फॉर्म कर सकते हो, आप उनको बता सकते हो कि आपको डरना नहीं है, कॉलेज में बहुत फैसिलिटी रहती है, तो आपको उसको यूज़ करना है। अगर कोई आपको हरेस कर रहा है, मतलब सेक्सुअली असोल्ट कर रहा है, तो फिर आप या फिर अल्कोहल रिलेटेड या फिर कुछ भी
1: आपको
0: आपको
1: टीज कर
0: ज़बरदस्त,
1: रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, तो आप कंप्लेन्स भी कर सकते हो।
0: जी बिल्कुल कमेंट, आपको कुछ गलत लग रहा है तो आपको उसको कंप्लेन करना है कभी भी टाइम पे। और आप नई चीज़ें सीखो खुद, आप कॉलेज में आप आते हो, आप खुद की एडमिशन करते हो, और आपकी बहुत सारी नई चीज़ें आपको सीखनी होती है, खुद सब करना होता है, खुद का मैनेज करना, वो चीज़ें आप सीखते हो, आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है, उसके बाद आपको अपना पैशन क्या है, आपके इस चीज़ में अच्छे हो आपको जानना है, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे बढ़ने की उम्र है, हमारी कुछ सीखने की उम्र है, तो वो ये टाइम है कि स्कूल में तो हमें पता चल ही जाता है, लेकिन ऐसी चीज़ें होती है कि अगर मुझे सिंगिंग में इंटरेस्ट है तो मैं उसके क्लासेस ज्वाइन कर लूँ और मैं पार्टिसिपेट करूँ ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं उसमें बहुत आगे बढ़ूँगी। और मैं हमें अच्छे दोस्त बनाने, जैसे कि मैंने बोला, और उसके अलावा मैं अपने टीचर्स के साथ भी अच्छा रिलेशन बना के रखना है, उनके साथ बना के अच्छी पहचान बना के रखनी है कि वो बहुत काम में आएगा, और कभी भी हेल्प चाहिए तो हमें हिचकिचाना नहीं है, कभी भी किसी तरह की हेल्प चाहिए तो हमें लेनी है, कॉलेज में बहुत फैसिलिटी होती है, और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है, हेल्थ को बहुत फोकस करना है, हेल्थ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, हेल्थ को कभी भी ये नहीं करना है
1: जी बिल्कुल
0: टेकन फॉर ग्रांटेड।
1: जी,
0: और फाइनेंशियल ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बहुत खर्चे कर लेते हैं, ये इसको मैनेज करना है, इसको बिल्कुल, ये हमें
1: पीयर प्रेशर में आके ब्रांडेड चीज़ें पहनना ये करना, तो जितना
0: हाँ
1: हमारा है जितनी योग्यता है योग्यता के अनुसार ही पैसा खर्च
0: कभी
1: करें।
0: बच्चे बंक करके क्लास बंक करके मूवीज़ देखने जाते हैं या फिर कुछ होटल्स में जाके खाना खा लेते हैं, बहुत नहीं, पेरेंट्स ने प्यार से आपको पैसे दिए आपके सुविधा के लिए और आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसे नहीं करना है ना, वो आपको इतना भरोसे से आपको भेज रहे हैं, बच्चा पढ़ाई कर रहा है, लेकिन आप ऐसे मत करो। और ख़ुद को टाइम देना है, मेडिटेशन करना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, और आप नई चीज़ें सीख रहे हो तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है कि नहीं यार हम कैसे करेंगे मैनेज, वो आप सीख रहे हो इसलिए वो बहुत अच्छी चीज़ है।
1: जी, तो आज मोनिका ने हमें बहुत सारे पॉइंट्स बताए कि कैसे आप जब स्कूल से कॉलेज के ओर जा रहे हैं तो क्या क्या चैलेंजेस है, उसे फेस कैसे करेंगे, बहुत इजी तरीके से उन्होंने कहा, और स्ट्रेस नहीं लेना है, एकदम नॉर्मल है, सब चीज़ें सबके साथ होता है, एक फ्रेंडशिप अगर टूट गया दूसरा फ्रेंडशिप हम कर सकते हैं, फ्रेंड्स बनते रहते हैं, इजी रहना है और अपनी बातें शेयर करना आना चाहिए, तभी हम ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स हो या ज़िंदगी में भी ट्रांजिशंस आते रहते हैं ना, उसे भी फेस कर सकते हैं जब हम शेयर करना सीखते हैं, और उसे नॉर्मल समझना बहुत ज़रूरी है कि ये पहले भी हो चुका है बहुत सारे लोगों के साथ, हमारे सीनियर्स के साथ और आने वाले जूनियर्स के साथ भी होगा, तो मम्मी पापा सीनियर्स और आपके सिबलिंग्स सबसे आप बात कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया,
1: यहीं पर रुकते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले कड़ी में, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए, नमस्ते।

0: पहन के निकला।
1: मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। उदित नारायण और भूपेंद्र सिंह की मीठी आवाज आपके बीच गूंज रही थी। गुड इवनिंग, नमस्ते। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में सोमवार की खूबसूरत शाम बिताने के लिए मैं मोना और मेरे साथ
2: रूहानी,
1: हम दोनों लेकर आ गए हैं आज उड़ान। तो दोस्तों, आज होगा आपके लिए इस कार्यक्रम में सवाल, साथ ही साथ होमवर्क भी। अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस कल था, पहला फर्स्ट जून था, और फर्स्ट जून एक्चुअली आज ही ये फर्स्ट जून आज है ना, तो फर्स्ट जून आज मनाया जाता है। इसी विषय पर चर्चा जरूर करेंगे, साथ ही साथ आपके लिए पूछा जाएगा आपसे आज सवाल भी, कविताएं भी लेकर आएंगे और कहानियां भी। होमवर्क भी जरूर होगा, तो हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए, सुनते रहिए,
2: मुस्कुराते रहिए
1: रेडियो मधुबन
2: 107.8 FM।

0: रुक रुक। ओ भाई साहब इधर आओ, कहाँ जा रहे हो जरा बताओ। लाल बत्ती में दिखता नहीं आपको, सामने लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं फिर भी गाड़ी पकड़े चले जा रहे हो हैं?
1: अरे हवलदार साहब, एक बार लाल बत्ती में निकल गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा।
0: ओए पहाड़ भले ही ना टूटे, लेकिन बेमतलब यमराज के रजिस्टर में एक नाम जुड़ जाएगा। ओए इसीलिए जब भी लाल बत्ती हो तो बोलो पहले आप, समझे?
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: ये तंबाकू क्या होता है?
4: अरे टिकू नहीं पता क्या? इसमें पता है लोग धुएं में अपनी फिक्र उड़ा देते। अरे गाना नहीं सुना क्या तूने?
5: हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
3: अच्छा तो फिर मेरे नंबर कम आए तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ?
4: अरे कोई भी कर सकता है, तंबाकू तो बड़ा ही कूल होता है।
6: ऐसी बातें बचपन में होती हैं, युवावस्था में या और बड़े होने के बाद भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंबाकू या धूम्रपान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि के सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। धूम्रपान करने से धमनियां कमजोर होने लगती हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक भी हो सकता है। सलाह लीजिए डॉक्टर की और हिम्मत बढ़ाइए अपनों की। रेडियो मधुबन द्वारा जानकारी जनहित में जारी।
7: वेलकम बैक दोस्तों, आज है अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस या अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस भी जिसे कह सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन और इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे। प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाने वाला ये दिवस महत्वपूर्ण भी है, जो उत्सव के तौर पर 1950 से शुरू हुआ।
8: इसका उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। रूस में आज के दिन अनाथ, विकलांग और गरीब बच्चों की समस्याओं की ओर विशेष रूप से लोगों का ध्यान खींचा जाता है। बच्चों को तोहफे दिए जाते हैं और उनके लिए विशेष समारोह का आयोजन किया जाता है।
7: एक्चुअली इसकी शुरुआत 1949 में रूस में ही हुई। उनका निर्णय था कि मॉस्को में इंटरनेशनल महिला लोकतांत्रिक संघ की एक विशेष बैठक की गई। 1 जून 1950 में को दुनिया भर के 51 कंट्रीज मिलकर अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस पहली बार मनाए और इसमें भली भांति भांति भांति के प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, बच्चों को पुस्तक बांटे जाते हैं, साथ ही साथ पुरस्कार भी, नृत्य संगीत के कार्यक्रम भी होते हैं और विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियां, ज्ञान वर्धक कार्यक्रम जरूर रखे जाते हैं। 2007 में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस पर क्रेमलिन में महागिराज चौक पर मॉस्को के स्कूल के छात्रों के लिए घुड़सवार, पैदल प्रहरियों की ड्यूटी आदि भी रखी गई। बात यही है कि बच्चों की सुरक्षा इम्पॉर्टेंट है और इससे इसके साथ इस कारण ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यदि आज बच्चे सुरक्षित रहेंगे तो कल का भविष्य भी सुरक्षित होगा। इसी के साथ साथ एक बेहतरीन गीत आप तक पहुंचाऊंगी। जब बात बच्चों की है तो कुछ ऐसा ही गाना आपके लिए होगा आज की उड़ान में। सुनते रहो,
8: मुस्कुराते रहो।

0: वेल दोस्तों, आज का सवाल सुन लीजिए।
1: राजस्थान में ऐसा कौन सा शहर है जिसे पिंक सिटी या गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है उदयपुर, ऑप्शन बी है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी है जयपुर।
0: सही जवाब जरूर देना 9414151415 पर देना। सुनते रहो,
1: मुस्कुराते रहो।

0: यूं ही चला चल राही, यूं ही चला चल। ईश्वर का प्रसाद समझकर माँ बच्चों की करती सेवा, तप त्याग निष्ठा से हमें भी बच्चे ही देंगे बुढ़ापे में मेवा।
1: माँ बच्चों की मुस्कान देख दुख में भी खुश हो जाती, वरदान समझकर प्रभु का पोषण बच्चों का कर पाती।
0: दूध पिलाकर मालिश करके गीत गाकर माँ नहलाती, केश संवार कर काजल लगाती, थपकी देकर जरूर सुलाती।
1: पिता की गोदी में चढ़कर ये बच्चे हंसते मुस्कुराते हैं, अपनी मीठी बोली से वे सभी का दिल बहलाते हैं।
0: कोई कैसे कोई अपने ही लाल को वो फेंक कूड़े में आता है, लड़का हो तो खुशी मनाते लड़की पे मातम छा जाता है।
1: कहाँ कम है लड़कियाँ भी लड़कों से हर एक कदम पर, देश दुनिया में गूंज रहा है शाबाश बेटी जियो ये स्वर।
0: फूल भी मुरझा जाता है खाके ठोकरे दर पर दर की, बच्चे अनाथ कहलाते हैं सगे माँ बाप के भी होकर भी।
1: यहाँ वहाँ की धूल फांकते अच्छा जीवन जी ना पाते, भूख गरीबी लाचारी में ही गलत दिशा में कदम बढ़ाते।
0: विद्या धन मिले बच्चों को जीवन ये खुशहाल बनेगा, सुख संपन्न यश प्रसिद्धि दुनिया में चहु और मिलेगा। इसीलिए तो कहते हैं बच्चों को एक सुरक्षित जीवन जरूर मिलना चाहिए, और बड़े जो परिवार में हैं समाज में हैं बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दे सकते हैं। और आज का सवाल पुनः एक बार और दोहराते हैं।
1: राजस्थान में पिंक सिटी या गुलाबी नगर से किस शहर को जाना जाता है? ऑप्शन ए है उदयपुर, ऑप्शन बी है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी है जयपुर।
0: सही जवाब झटपट देना 9414151415 पर देना। सुनते रहो
1: मुस्कुराते रहो।
2: प्रकृति बेटा, पृथ्वी पर तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना?
3: मुझे लोगों को प्यार से इंस्पायर और लाइफ के लिए एजुकेट करना है, ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर इस पृथ्वी को बचाए रखे।
2: इसमें तुम्हारी मदद करेंगी ये तीन चीजें। पहली टियारा ऑफ फ्लावर्स, जो तुम्हें हमेशा हैप्पी और एनर्जेटिक रखेंगे। दूसरा ये बैज ऑफ लाइफ, जो लोगों को पर्यावरण के लिए लाइफ जीवन शैली की याद दिलाएगा। जब वे प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति उनकी रक्षा करेगी। तुम ये बैज उन लोगों को भी दे सकती हो जो हमारे प्लैनेट की बेहतरी के लिए योगदान करते हैं। और तीसरा ये बैग ऑफ होप, जब भी कोई एनवायरनमेंट को हार्म करे तो तुम इसमें से इको सस्टेनेबल अल्टरनेटिव निकाल कर उसे देना।
3: ओके, अब मैं अपने मिशन पर चलती हूँ।

0: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार।
1: आप हो रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।
2: वेल दोस्तों, एक और दिग्गज के विषय पर बात करने वाले अमेजिंग जानकारी में ही, कर्णम मल्लेश्वरी। 1 जून 1975 में इनका जन्म हुआ। भारत की एक दिग्गज भारतोलक वेटलिफ्टर हैं। वो ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला हैं। उन्होंने सिडनी ओलंपिक में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 69 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रचा था।
3: कर्णम मल्लेश्वरी का जन्म आंध्र प्रदेश के श्री काकुलम जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनकी चार बहनें भी थी, वेट लिफ्टिंग उनकी चार बहनें भी जो थी

0: तो चलिए एक छोटी सी कविता उन्हीं के संकल्प, उनके जो अचीवमेंट के लिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सपनों की भारी बोझ को जिसने हंसकर थाम लिया, दुनिया की नजरों के आगे भारत का ऊंचा नाम किया।
1: सिडनी की उस पावन धरती पर लोहे की ताकत को तोला था, जब हिला देश का हर कोना, भारोत्तोलन का जादू बोला था।
0: पहली नारी बन वो चमकी जिसने ओलंपिक में पदक पाया, बेटियों की शक्ति का परचम पूरी दुनिया में लहराया।
1: कांस्य पदक की उस चमक में वर्षों का कठिन पसीना था, हार न मानने की जिद थी, गौरव से जीना था।
0: आज प्रेरणा बनी खड़ी वो हर बेटी के अरमानों की,
1: कर्णम मलेश्वरी नाम है उसका, शान हमारे हिंदुस्तान की।
0: जी हाँ, सलूट टू कर्मन मलेश्वरी। और एक बार पुनः आज का सवाल दोहराते हैं। सवाल था,
1: राजस्थान में पिंक सिटी व गुलाबी नगर से किस शहर को जाना जाता है? ऑप्शन ए है उदयपुर, ऑप्शन बी है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी है जयपुर।
0: झटपट सही जवाब दो 9414151415 पर। दो, सुनते रहो
1: मुस्कुराते रहो।

0: करता था। उसकी जनता उससे बहुत प्रसन्न रहती थी, लेकिन कुछ समय से उसके राज्य में चोरियां होने लगी। चोरों के गिरोह ने ऐसा आतंक मचाया कि लोगों को रात भर नींद नहीं आती थी। अब वो सब बहुत परेशान रहने लगे। परेशान होकर नगर के कुछ अमीर व गरीब लोग महाराज के दरबार में पहुँचे।
1: दुहाई हो महाराज, हमारा जीना दुश्वार हो चुका है। नगर में हो रही चोरियों से हमारी नींद हराम हो गई है। अगर जल्दी ही चोरों को ना पकड़ा गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे महाराज।
2: हमें राज्य में हो रही चोरियों के बारे में ज्ञात है, परंतु हमें अफसोस है कि अभी तक चोरों को पकड़ने में हमारे सैनिक सफलता प्राप्त नहीं कर सके हैं। लेकिन आप लोग विश्वास रखिए, चोर जल्दी ही पकड़े जाएंगे। आप लोग निश्चिंत होकर अपने घरों को जाइए। हम वादा करते हैं कि चोरों को पकड़ने में हम कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे।
0: इसके बाद महाराज ने बगल में ही खड़े अपने मंत्री से कहा,
2: मंत्री जी आप ऐसा कीजिए कि हमारे गुप्तचरों को चारों दिशाओं में चोरों की तलाश में भेज दीजिए। जब तक चोर नहीं पकड़े जाएंगे हमारे दिल को चैन नहीं मिलेगा।
3: जो आज्ञा महाराज।
0: महाराज की आज्ञा पाकर मंत्री जी ने अपने गुप्तचरों को चारों ओर फैला दिया। नगर के पासी के जंगल में कुछ साधु निवास करते थे। एक दिन वो साधु आपस में बात कर रहे थे।
1: साथियों, नगरवासियों के माल पर तो हमने काफी हाथ साफ कर लिया, अब मैं सही खजाना चुराना चाहता हूँ।
2: चरण सिंह, लेकिन हमारी तलाश में तो जासूस लगे हुए हैं।
1: चिंता मत करो साथियों, वो सोच भी नहीं सकते कि हम साधु के रूप में यहाँ जंगलों में छुपे हुए हैं। मैंने बहुत ही अच्छी योजना तैयार की है साथियों, लेकिन।
2: लेकिन क्या चरण सिंह?
1: मेरी नज़र राज दरबार के शाही खजाने पर है, परंतु मुझे एक बार सही खजाना और उसकी व्यवस्था देखनी होगी।
2: ये काम तो बहुत मुश्किल है चरण सिंह।
1: मेरे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है साथियों, मैं आज ही जाऊंगा और खजाना के बारे में पता लगा कर ही लौटूंगा।
0: इसके बाद वह साधु जो असल में एक चोर था, वो घूमते टहलते महाराज के दरबार में जा पहुंचा। उसने महाराज के बारे में सब कुछ पहले ही पता कर लिया था। उसे पता था कि महाराज की कोई संतान नहीं है और महाराज और महारानी इसकी वजह से बहुत चिंतित रहते हैं। जब वो महाराज और महारानी के सामने उपस्थित हुआ तो महाराज ने उससे कहा,
2: प्रणाम ऋषिवर, कहिए कैसे आना हुआ, आइए स्थान ग्रहण कीजिए।
1: हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम एक जगह पर इतना समय बिता सके। मुझे तुम्हारे कष्ट का ख्याल आया तो मैं यहाँ चला आया। मुझे पता है तुम्हारा विवाह को 10 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी तुम्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई है।
2: शायद हमारे भाग्य में संतान का सुख ही नहीं है।
1: तुम चिंता मत करो राजन, मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊंगा कि तुम्हें जुड़वा पुत्रों की प्राप्ति होगी।
2: क्या क्या कहा ऋषिवर, आप सच में ऐसा उपाय बताएंगे?
1: सुनो राजन, मुझे तुम्हारे शाही खजाने से एक स्वर्ण मुद्रा चाहिए।
2: एक क्यों? आप जितनी चाहे उतनी स्वर्ण मुद्राएं ले सकते हैं।
1: नहीं राजन, मुझे मात्र एक ही स्वर्ण मुद्रा चाहिए। मैं उस मुद्रा पर एक मंत्र पढ़कर महारानी को दूंगा, जिसे जब तक महारानी पुत्र प्राप्त न कर सके उसे अपने पास ही रखें।
2: ठीक है ऋषिवर, अभी एक स्वर्ण मुद्रा मंगवाते हैं।
1: नहीं, ऐसा कदापि मत करना राजन। किसी और के द्वारा स्पर्श की गई मुद्रा मेरे किसी काम की नहीं रहेगी।
2: मैं कुछ समझा नहीं ऋषिवर।
1: हम शाही खजाने से एक स्वर्ण मुद्रा स्वयं उठाएंगे और मंत्र पढ़कर महारानी को देंगे।
2: जैसी आपकी इच्छा ऋषिवर।
0: फिर महाराज उसे लेकर अपने साथ शाही खजाने में ले गए। वह साधु के रूप में चोर था जो बहुत प्रसन्न हुआ।
1: वाह, शाही खजाने में कितना धन है। अगर मैं इसे चुराने में कामयाब हो गया तो मेरी 7 पुस्तकों को भी चोरी नहीं करनी पड़ेगी।
0: ये सोचकर वह आगे बढ़ा और सामने से एक स्वर्ण मुद्रा उठा ली और पुनः महाराज से कहा,
1: तुम्हारे शाही खजाने की व्यवस्था तो अच्छी है बेटा, लेकिन मान लो कि अगर किसी अन्य राजा ने तुम पर आक्रमण कर दिया तो तुम इस खजाने को लेकर किस रास्ते निकलोगे?
2: आपके पीछे जो खुंटी है उसके खींचते ही एक गुप्त द्वार खुल जाता है। इस द्वार से हम खजाने सहित एक पहाड़ी की गुफा में पहुंच जाएंगे।
1: बहुत अच्छा, तुमने ऐसा उपाय सोचकर बहुत बुद्धिमानी का काम किया है, लेकिन।
2: लेकिन क्या ऋषिवर?
1: तुमने यह मुझे तो बता दिया बेटे, लेकिन किसी और को यह कभी ना बताना।
2: मेरे अलावा इस गुप्त द्वार के बारे में केवल सेनापति ही जानते हैं ऋषिवर।
1: तुम्हें इसके बारे में सेनापति को भी नहीं बताना चाहिए था।
2: वह मेरे बचपन का मित्र है ऋषिवर, वह मेरे साथ कभी भी धोखा नहीं करेगा।
1: अच्छा चलिए महाराज, मैं स्वर्ण के सिक्के पर मंत्र पढ़कर महारानी को दे देता हूँ।
2: ठीक है ऋषिवर।
0: इसके बाद साधु रूपी उस चोर ने झूठ मूठ का उसे स्वर्ण सिक्के पर मंत्र पढ़ा और महारानी को दे दिया।
1: इस मंत्र पढ़े सिक्के को अपने पास ही रखना बेटी, जब तक तुम्हें संतान की प्राप्ति ना हो जाए।
0: ठीक है मुनि देव, मैं ऐसा ही करूँगी। और फिर वह साधु अपने आश्रम में पहुँचा और अपने साथियों को बताने लगा।
1: हमें दरबार के शाही खजाने के बारे में सब कुछ पता चल गया है, हमें आज ही इस चोरी को अंजाम देना होगा।
0: और ऐसा ही हुआ। चोर चरण सिंह अपने साथियों के साथ राज दरबार में जा घुसा और सारा खजाना लूट लिया। जब अगली सुबह ये बात सारे महल में फैल गई, तो महाराज बहुत क्रोधित हुए और अपने मंत्री से बोले,
2: खजाने की सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत है कि सैनिकों से नजर बचाकर चिड़िया भी वहां तक नहीं पहुंच सकती, फिर खजाना कैसे चोरी हो गया? महाराज, शाही खजाना गुप्त द्वार से चोरी किया गया है। खजाने के गुप्त द्वार के बारे में तो मुझे और मात्र सेनापति को ही मालूम था, फिर चोरों को गुप्त द्वार के बारे में कैसे पता चला? कहीं सेनापति चोरों के गिरोह में शामिल तो नहीं है? आप क्या सोच रहे हैं महाराज? तुम हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो सेनापति जी, तुम्हारे कारण ही शाही खजाने की चोरी हुई है। शाही खजाने के गुप्त द्वार के बारे में मात्र मुझे और तुम्हें ही पता था। आप बेकार में मुझ पर शक कर रहे हैं महाराज। मैं अपनी प्यारी बेटी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि यह भेद मैंने किसी को नहीं बताया। सैनिकों, सेनापति को ले जाकर कारागार में डाल दो।
0: महाराज की इस बात को सुनकर सभी सैनिक स्तब्ध थे, लेकिन उन्होंने महाराज की आज्ञा का पालन किया और सेनापति को ले जाकर कारागार में डाल दिया। अगले दिन जब दरबार लगा तो महाराज ने घोषणा की,
2: अगर सेनापति कल तक अपना अपराध कबूल नहीं करते हैं तो कल सुबह ही उन्हें फांसी दे दी जाएगी।
0: ये खबर सेनापति की बेटी सुलेखा तक भी पहुंची कि उनके पिताजी को कारागार में डाल दिया गया है और कल उन्हें फांसी दे दी जाएगी, तो वह महाराज के दरबार आ पहुंची और महाराज से बोली,
4: महाराज क्या ये सच है कि कल मेरे पिताजी को फांसी दे दी जाएगी?
2: हाँ तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, लेकिन अगर तुम्हारे पिता ने ये बात बता दे कि खजाना कहाँ पर है तो उनकी सजा टल सकती है।
4: लेकिन महाराज जो अपराध मेरे पिताजी ने किया ही नहीं वह कैसे कबूल कर सकते हैं?
2: ऐसा क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम्हारे पिता ने यह नहीं किया है?
4: महाराज सबूत तो आपके पास भी नहीं है। आप मुझे 10 दिन की मोहलत दे दे, मैं असली चोरों का पता लगाकर अपने पिताजी पर लगाए आरोपों को झूठा साबित कर दूंगी।
2: लेकिन अगर 10 दिनों के अंदर तुम ऐसा नहीं कर सकी
4: तो आप बेशक मेरे पिताजी को फांसी दे दीजिएगा।
2: ठीक है सुलेखा, मैं तुम्हें 10 दिन की मोहलत देता हूँ।
0: महाराज की स्वीकृति पाकर सुलेखा अपने घर पहुंची और अगली सुबह होते ही असली चोरों का पता लगाने के लिए घर से निकल पड़ी। उसने 5 दिनों तक सारे नगर का भ्रमण कर डाला, लेकिन उसे चोरों का कुछ पता नहीं चला। एक दिन वो सोचने लगी,
4: मैंने सारे नगर का भ्रमण तो कर लिया लेकिन चोरों का कुछ पता नहीं चला, अब जंगल की ओर जाना चाहिए, हो सकता है चोर डर के मारे जंगल में बसे हो।
0: वो सारा दिन जंगल में भटकती रही लेकिन उसे कुछ ना मिला। जब शाम हुई तो उसे कुटिया के सामने आग जलती दिखाई दी।
4: मुझे वहाँ जाकर देखना चाहिए, वहाँ आग जलाकर कौन बैठा है, हो सकता है चोरों का गिरोह यहीं पर बसा हो।
0: यही सोचकर वो कुटिया के पास पहुँची। दरअसल वो चोर चरण सिंह और उसका गिरोह था जो साधु के भेष में बैठे थे। सुलेखा झाड़ी के पीछे जाकर खड़ी हो गई और उन सब की बातें सुनने लगी।
1: साथियों, अब हमें चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि राज खजाने से हमने इतना धन चुरा लिया है कि सारी जिंदगी आराम से बिता सकते हैं।
4: ओ तो ये साधु नहीं चोर है और वही चोर है जिन्होंने शाही खजाना चुराया है। आखिरकार मुझे खजाने के चोरों का पता चल ही गया। ये चोर बहुत शातिर है, अगर मैंने यह महाराज को बताया कि ये चोर है तो वह विश्वास नहीं करेंगे, मुझे इन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा।
0: ये सोचकर वो वहाँ से चली गई और अगली सुबह होते ही महाराज के दरबार में जा पहुँची।
4: महाराज, मैंने शाही खजाने के बारे में चोरों का पता लगा लिया है।
2: कौन है वे?
4: मुझे माफ करिए महाराज, मैं आपको उनके बारे में अभी नहीं बता सकती।
2: इसका क्या मतलब है?
4: मैं उनको रंगे हाथ पकड़ने की योजना बना रही हूँ महाराज, इसके लिए क्या आप मुझे एक शाही सराय दे सकते हैं? और मुझे सोने और चांदी के बर्तन भी चाहिए।
2: अवश्य, मैं ये सारी चीज तुम्हें अवश्य दे सकता हूँ।
4: आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज।
0: सुलेखा ने महाराज का आभार व्यक्त किया और फिर वहाँ से अपने घर आ गई। फिर वह अगली सुबह होते ही वह उन चोरों के गिरोह जो साधु के भेष में कुटिया में रहते थे उनके पास जा पहुँची।
4: प्रणाम मुनिदेव।
1: खुश रहो पुत्री, कहो यहाँ कैसे आना हुआ?
4: ऋषि वर में सेठ राजदेव की पुत्री हूँ। मेरे पिताजी बड़े नगर में व्यापार करके लौटे हैं। उनके लौटने के उपरांत हमने अपनी शाही सराय में ऋषि मुनियों को शाही दावत दी है। मैं उसका निमंत्रण देने आपके पास आई हूँ। मेरा अनुरोध है कि आप वहाँ अवश्य आए।
1: अब तुमने दावत दी है तो हम अवश्य आएंगे।
4: साधु महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सुलेखा वापस लौट आई और महाराज के शाही सराय में जाकर रुक गई और दावत की तैयारी करने लगी। अगली सुबह चोर चरण सिंह साधु के भेष में अपने साथियों के साथ सुलेखा द्वारा बताए पते पर शाही सराय पहुंचा।
4: आइए महाराज, आपका शाही सराय में स्वागत है, आपका भोजन भी तैयार है।
0: सुलेखा ने सम्मान पूर्वक उन साधु रूपी चोरों को बिठाया और सोने चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा। साधु सोचने लगा,
1: वाह, इतने सारे सोने व चांदी के बर्तन, अगर इन बर्तनों पर हाथ साफ कर लिया जाए तो कितना अच्छा होगा। मैं आज रात ही अपने साथियों के साथ आऊंगा और यह सारे बर्तन और सारा माल लूट कर ले जाऊंगा।
0: उन साधुओं ने वहां भरपेट भोजन किया और वापस अपनी कुटिया में लौट आए और इस शाही सराय में बर्तनों सहित धन लूटने की योजना बनाने लगे। उधर सुलेखा भी महाराज के पास जा पहुंची और उसने साधुओं के बारे में बताने लगी।
4: महाराज, आज रात शाही खजाने के चोर शाही सराय में भी चोरी करने के लिए अवश्य आएंगे। आप उन चोरों के लिए कड़ा प्रबंध करें जिससे वह शाही सराय से निकलकर बाहर ना जा सके।
2: ठीक है, मैं प्रबंध करवा दूंगा, लेकिन अगर वह साधु चोर ना निकले
4: तो आप मुझे जो भी सजा देंगे वह मुझे मंजूर होगी।
0: सुलेखा के विश्वास दिलाने पर महाराज ने शाही सराय के चारों तरफ सैनिकों का प्रबंध करवा दिया। उसी रात सुलेखा एक मंत्री के साथ एक कोने में छुप गई। कुछ देर बाद वो चोर जो साधु के भेष में थे वह शायद ही सराय में गुप्त तरीके से घुस गए और साधु अपने साथियों से कहने लगा,
1: साथियों, सभी सोने व चांदी के बर्तन, जो भी धन मिलता है उसे समेट लो।
0: इसके बाद साधु रूपी चोरों ने सारा सामान समेट लिया। तभी वह मंत्री सामने आ गया और सैनिकों के साथ उन सबको घेर लिया और उन्हें दरबार ले जाकर महाराज के सामने पेश किया। राजा उस साधु को देखकर हैरान हो गया और सोचने लगा,
2: अरे ये तो वही साधु है जो कुछ दिन पहले मुझसे मिलने आया था। अरे ऋषिवर, आप?
4: महाराज, यह कोई ऋषि नहीं बल्कि चोरों का सरदार है।
2: ओ, तो अब मुझे समझ आया कि शाही खजाने के गुप्त द्वार से चोरी कैसे हुई। मैंने शाही खजाने के गुप्त द्वारा के बारे में इस पाखंडी साधु को भी बताया था। पाखंडी, तूने शाही खजाना कहाँ छुपाया है? अगर तूने नहीं बताया तो तेरा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा।
1: मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, वो खजाना मेरे जंगल की कुटिया में रखा हुआ है।
2: तूने ना जाने कितनों का धन लूटा है। तू क्षमा योग्य नहीं, मात्र ही सजा ही मिलेगी। मंत्री जी, इन सभी को ले जाकर कारागार में डाल दो।
0: महाराज की आज्ञा का पालन हुआ और उन साधुओं को ले जाकर कारागार में डाल दिया गया। तो महाराज ने सुलेखा से कहा,
2: बेटी सुलेखा, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने न सिर्फ अपने पिता को सजा से बचाया बल्कि पूरे नगर को भी चोरों के गिरोहों से बचा लिया। हम इसी समय तुम्हारे पिता को मुक्त करते हैं और तुम्हें इनाम स्वरूप 100 स्वर्ण मुद्राएं देने की घोषणा भी करते हैं।

0: तो दोस्तों आज का होमवर्क,
1: वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता था। फरी कंडीपोल का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी।
0: लहासा, आज का जो होमवर्क है वो इसी के तहत है। ये व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे जिनमें कभी चीनी पलटन
1: रहा करते थे। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके थे। दुर्ग के किसी भी भाग में
0: जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं
1: और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआ छूत का सवाल ही नहीं है, पर न औरतें पर्दा ही करती थी। बहुत निम्न श्रेणी के भिक्षुकों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे।
0: नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहुएं यहाँ सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वो आपके लिए उसे पका देगी।
1: मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोड़ी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन के रख के आपको दे देगी।
0: यही बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोड़ी में चाय मत कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर
1: नमक मक्खन डालने की जरूरत नहीं होती।
0: आपको बता दें कि इस प्रकार के जो नॉर्थ जो लोग हैं, इन लोग चाय में मक्खन और नमक डालकर पीते हैं। जो नीचे के एरिया पर हैं, हम सभी चाय में शक्कर डालकर पीते हैं, पर उन लोग नमक। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने लग आया।
1: हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिकमंगे ही रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली।
0: 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिकमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे।
1: बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर भी निर्भर है। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास में दुरुस्त रखते थे।
0: तो चलिए आज का होमवर्क इतना ही। कल मिलने का वादा है, लेकिन जाने से पहले पुनः एक बार सवाल और दोहराएंगे।
1: राजस्थान में पिंक सिटी या गुलाबी नगर से किस शहर को जाना जाता है?
0: ऑप्शन है ए
1: उदयपुर,
0: बी
1: चित्तौड़गढ़,
0: सी
1: जयपुर।
0: सही जवाब झटपट देना 9414151415 पर देना। सुनते रहो,
1: मुस्कुराते रहो,
0: रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: बैक्टेरी की, इसकी तो हवाएं निकल गई। अब क्या होगा भैया?
1: सही जगह पे निकली है गोविंद, तो इसमें हवा भरवा दे।
0: अच्छा भैया।
2: वेल दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आज के सवाल का जवाब अब दे देते हैं।
3: राजस्थान में पिंक सिटी या गुलाबी नगर किस शहर को जाना जाता है? ऑप्शन ए है उदयपुर, जो कि गलत है। ऑप्शन बी है चित्तौड़गढ़, ये भी गलत है। ऑप्शन सी जयपुर, ये सही जवाब है।
2: तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल मिलने का वादा है ठीक शाम
3: 6 बजे,
2: और उड़ान से जुड़े रहिएगा। आपके कॉल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और आपके कॉल से हमें हौसला मिलता है, आपके कॉल से हमें खुशी मिलती है। तो प्लीज़ कोशिश करके हमें कॉल कीजिए, मैसेज भी कर सकते हैं 9414151415 पर। सुनते रहिए,
3: मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: रुक कोई रुक रुक रुक पीछे पीछे पीछे चल। भाई स्टॉप लाइन के आगे कहाँ जा रहा है, लाल बत्ती दिखाई नहीं देती।
1: पर हवलदार साहब जरा जल्दी निकलने के मूड में हूँ।
0: वो तो ठीक है, पर दूसरी तरफ हरी बत्ती है और उन लोगों का रुकने का मूड नहीं है। तो जब भी लाल बत्ती हो तेरी तरफ तो बोलो पहले आप।
2: गाड़ी चलाते वक्त

फिर भी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हर दिन खुद से यह सवाल पूछें, मैंने आज क्या सीखा, मैंने किसे खुश किया, मैं और बेहतर कैसे बन सकता हूं। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: दिलों में खुशी और लबों पर मुस्कान रखते हैं हम हर शाम आपके लिए थोड़ा सा आसमान रखते हैं। यूं तो दुनिया में मिलने वाले मिलते रहेंगे दोस्तों, पर हम तो आपकी हर बात सुनने के लिए अपनी जान रखते हैं। जी हाँ, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, की कैन हो, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट केवल, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर खुशी के नगमे, दिल की बातें। तो आज पहले ही हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़े, चलिए सबसे पहले बात करते हैं उनके साथ। हेलो,
1: हेलो जी, नमस्कार भाई।
0: नमस्कार भूरीलाल जी, कैसे हैं आप?
1: अरे बाद में पूछा, मेरी तूफान भी आ रहा है और बरसात भी आ रही है।
0: क्या बात है,
1: तूफान के साथ में आप भी, तूफान के साथ में आए हो और आपके साथ में हम भी जुड़े हुए हैं।
0: क्या बात है,
1: क्या संकट की घड़ी है, क्या मनोरंजन की घड़ी है।
0: अच्छा
1: इसलिए कण कण में भगवान है, ये गालाघर भेज दिए है, कण कण में भगवान है।
0: अच्छा,
1: मैं अपने भी पिया की बहन की झोगड़िया, ये गाना भी है, आज उनका जन्मदिन भी था।
0: अच्छा,
1: ये सारा काम आज हो रहा है, इसलिए ये गाना कभी टाइम मिल जाए छोड़ा देना आप, और ज्यादा बात करने में अच्छा नहीं है। हमारे इधर तूफान चल रहा है, जोरदार आवाज भी बराबर आ नहीं रही है।
0: अच्छा,
1: हाँ मैं आपसे संपर्क कर रहा हूँ, फोन के द्वारा कर रहा हूँ। हाँ, तो बस इसके साथ में मेरा बोलना और मिलना इनसे फोन से होगा।
0: चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, अपना ख्याल रखिए तूफान में और बारिश में, अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिएगा अपना।
1: पक्का पक्का मकान के अंदर हो?
0: अरे वाह, चलो बढ़िया।
1: क्या कह रहा है आपके साथ में, हमेशा के लिए जुड़ के रहना है।
0: धन्यवाद धन्यवाद भूरीलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: नहीं जुड़ के रहेंगे तो मेरा काम नहीं चलेगा।
0: यस, ये भी सही कहा आपने, ये भी सही कहा।
1: अपना हाँ टाइम निकालने के लिए कुछ न कुछ न करना पड़ेगा सर।
0: बिल्कुल,
1: अब काम को टाइम को निकालने के लिए कुछ न करेंगे तो फिर कैसे।
0: लेकिन अभी जैसे मौसम बदला है तो आज क्या करने का इरादा है, क्या कर रहे हैं?
1: मौसम के साथ में असर भी बदलेंगे, गाने भी बदलेंगे, समय भी बदलेगा, सब कुछ परिवर्तन होगा।
0: चलो बढ़िया, गुड।
1: लेकिन कोई बात नहीं, इंसान भी बदलेगा। आपकी वाणी और हमारी वाणी हमेशा के लिए अमर रहेगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम आशा करते बस यही ऐसा ही रहे,
1: ऐसा रहना चाहिए, ऐसा ही रहना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: और अपना संबंध भी, संबंध भी हमेशा के लिए बना रहना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: वाणी है सब कुछ है, वाणी नहीं है कुछ नहीं है, आवाज जब तक नहीं छोड़ा जब तक हमारा समय पास नहीं होगा। धन्यवाद सर,
0: धन्यवाद।
1: आपका समय खराब किया
0: नहीं, अरे आपके आपकी बातों के लिए तो हम है ना, अभी मैंने इसलिए तो कहा कि हम बैठे ही आपकी बात सुनने के लिए, अपनी जान रखते हैं आपकी बातें सुनने के लिए।
1: अरे जान है, जान है, शान है, शान है, बात है, सब कुछ है।
0: बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भूरीलाल जी आपका कॉल करने के लिए हमको, और कोशिश करेंगे हम आपका नगमा जो आपने हमें कहा है, हम कोशिश करेंगे आपको सुनाए। जी हाँ, तो आज तारीख 1 जून 2026, साल का छठा महीना, हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है, गर्मी थोड़ी तेजी पर है, लेकिन इसी शिवानी शाम में हम आपके दिलो दिमाग को ठंडक और सुकून पहुंचाने हाजिर हो गए। जैसे कि अभी भूरीलाल जी ने कहा कि उनकी तरफ अभी थोड़ा सा तूफान और बारिश जैसा मौसम हो रहा है। जी हाँ, यहाँ आबूर में भी शाम के समय में हल्की बादल छाए हुए थे, लेकिन गर्मी उसी जगह पे थी, गर्मी फुल थी, तेजी पे थी गर्मी। आपके जगह पे कैसा हाल मौसम हो रहा है इस वक्त, तूफान बादल बारिश जैसा है, आप हमें कॉल करके हमें बता सकते हैं। नंबर आपको पता है 9414151415, यानी कि 9414151415 पे है। चलो बढ़ते हैं आगे। कहते हैं ना दोस्तों कि खुशी को कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाजार में मिलती है, ये तो हमारे अंदर छुपी एक ऐसी नदियां है जिसे अगर हम थोड़ा सा रास्ता दे दे तो जिंदगी का हर लम्हा नगमा बन जाता है, और जब दिल की बातें अपनों के साथ बांटी जाए तो खुशी दुगनी हो जाती है। जैसे अभी अभी हमारे भूरीलाल जी ने कहा कि हम तो बैठे ही आपसे बात करने के लिए, हम तुरंत ही जैसे ही शो की शुरुआत होती है सबसे पहले उनका कॉल आता है, हमें भी इतनी ही खुशी होती है, दुगनी हो जाती है हमारी खुशी भी। इसलिए तो इस शो का नाम हमने रखा है खुशी के नगमे, दिल की बातें, जहां आप हमारे साथ बातें करते अपने दिल के साथ। चलिए आज की शाम की शुरुआत करते हैं छोटी सी पर गहरी बात के साथ। जिंदगी में हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है ना दोस्तों? आपने कभी सोचा है हम अक्सर उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है, और उन चीजों को देखना भूल जाते हैं जो ऊपर वाले ने हमें तोहफे में दी है। ये धूप, ये छांव, ये दोस्तों का साथ और सबसे बड़ी बात हमारी ये सांस है। जी हाँ, आज जब हम आप इस शो को सुन रहे हैं तो अपने दिल पर हाथ रखिए और खुद से कहिए, मैं खुश हूँ और मैं इस पल से प्यार करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, फिर से मैं दोहराता हूँ, अपने दिल पर हाथ रखिए और कहिए, मैं खुश हूँ और मैं इस पल से प्यार करता हूँ, है ना। चलिए इसी खूबसूरत एहसास के साथ आइए सुनते हैं आज का पहला नगमा जो आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाएगा। सुनिए इस नगमे को और झूमते रहिए मेरे साथ खुशी के नगमे, दिल की बातें रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

वेलकम बैक दोस्तों। आज जब हम दिल की बात कर रहे हैं तो चलिए उस जज्बे की बात करते हैं जिसे दुनिया मोहब्बत कहती है। जहाँ कभी कभी रिश्तों में एक मोड़ ऐसा आता है जहाँ एक दिल बेहद शिद्दत से धड़कता है और दूसरा उसे महज एक खेल समझ बैठता है। तब दिल से एक ही आह निकलती है, खेल समझा है अगर तो आजमा कर देख ले, खेल समझा है अगर तो आजमा के देख ले, हम जिसे कहते हैं चाहत तू निभा कर देख ले। दर्द क्या होता है रूठने और मनाने का सनम, दर्द क्या होता है रूठने और मनाने का सनम, एक दिन हमारी तरह खुद को मिटा कर देख।

0: जहां दोस्तों आज हम इस नगमे की बात कर रहे हैं, उस लफ्ज सीधे रूह में उतर जाते हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है, तुम इसको खेल समझो, तुम इसे खेल समझो हो, मगर एक दिन दिखा देंगे मोहब्बत किसको कहते हैं, मोहब्बत कैसी होती है, खास तौर पर जब हम किसी से बे इंतहा मोहब्बत करते हैं तो हमारी हर खुशी हर आंसू उन्हीं से जुड़ जाती है। लेकिन जब सामने वाले को हमारे दर्द का एहसास नहीं होता, तब दिल पुकारता है कि अगर तुम्हें भी हमसे ऐसी मोहब्बत होती तो हम ये बेरुखी, ये अपना चलन छोड़ देते। अगर हमारा थोड़ा सा भी दर्द तुम्हारा अपना होता तो हम ये दीवानापन छोड़ देते। बहुत ही प्यारे बोल है इस गाने के, लेकिन शर्त दोनों तरफ से है दोस्तों। अगर उन्हें रूठने की आदत छोड़ दी तो हम भी इस दीवानेपन को एक नया मोड़ दे देंगे। चलिए बात करते हैं हमारे कॉलर से। हेलो, शायद फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। लेकिन इसी बात पे जब हम बात कर रहे थे तो ये गाना अभी हमने जो सुना, गाने के बोल जो लिखे थे मजरूर सुल्तानपुरी जी, खयाम जी ने इसे म्यूजिक दिया था, आशा भोसले जी और मुकेश जी की आवाज़ में हमने ये गाना सुना। फिल्म थी मोहब्बत इसे ही कहते। चलिए बात करते हैं हमारे कॉलर से, फिर से एक कॉल है। हेलो
1: जी सर, नमस्ते।
0: नमस्कार सुरेश भाई, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हो?
0: बढ़िया एकदम,
1: सब भी बढ़िया है। और हमारे भूरीलाल जी आके गए, अच्छे
0: जी। भूरीलाल जी अभी जस्ट आके गए हैं, सबसे पहले उनका कॉल था।
1: जी जी जी बिल्कुल, शुरुआत की जो हमारे भूरीलाल जी ने की थी
0: जी,
1: बड़ा अच्छा लगा। और आपने जो अगले हफ्ते एक पहेली पूछी थी सर
0: जी,
1: एक ऐसी गाड़ी थी जिसमें कई ये है लेकिन पेट्रोल नहीं है, फिर भी सबको करवाती है दुनिया
0: जी,
1: ऐसा कोई पहेली थी
0: जी।
1: तो मैं हाँ, तो जरा ये दोहरा दीजिए। शायद मेरे हिसाब से उसका जो आपने पहेली का तो जो आंसर है, मुझे लगता है सपना है शायद।
0: बहुत बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने उसका, इसका जवाब सपना ही है, क्योंकि सपने ही है जो आपको बिना पेट्रोल के दुनिया के हर एक कोने तक सैर कराती है।
1: बिल्कुल
0: है ना,
1: क्योंकि कहते हैं कि हम सपने में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं
0: जी, बिल्कुल।
1: तो बिना हाँ किराए हम पहुँच जाते हैं कहीं ना कहीं।
0: बिल्कुल सही कहा, तो ये बिल्कुल सही जवाब था आपका। और दोस्तों मैं बता देता हूँ, सुरेश जी ने इसका जवाब हमें उसी दिन दे दिया था, लेकिन हम उसको रिवील करना रह गया था, बिकॉज समय हो गया था और हमने शो खत्म करना था। तो थैंक यू सो मच सुरेश जी, आपने इसका सही जवाब दिया है बिल्कुल ही
1: जी।
0: आज आपकी तरफ मौसम कैसा है?
1: मैं आपको दे दूं एक गाना, दे दूं कि शायद ये गाना आज हमारे बीच में नहीं है, हमारे जो सुमन कल्याणपुर कल उसका देहांत हो गया। सुमन कल्याणपुर का जो गाना है कि फेवरेट गाना था उसका, वो नाना करके प्यार तुम इसे कर बैठे, करना था इकरार मगर इनकार कर बैठे।
0: हाँ, ये तो सभी का फेवरेट गाना है।
1: तो वही गाना है मेरा।
0: बिल्कुल, चलिए कोशिश करते हैं हम आपका ये गाना आज प्ले करने के लिए।
1: कई फिल्मों उसने बनाई, कई गाने गए, कम से कम 3,000 गाने गाए हैं हमारे सुमन कल्याणपुर ने। जैसे लता जी की आवाज मिलती जुलती है
0: जी,
1: उसकी बहुत सारे गाने गाए हैं। और कल उसका अंतिम दिन था, तो कल हमारे बीच में थे, चले गए वो।
0: ओहो, क्या नाम बताया?
1: कई साल हो गए उसको तो, क्योंकि बहुत पुरानी जो हमारी गायिका थी।
0: नाम क्या बताया आपने उनका?
1: सुमन कल्याणपुरी।
0: सुमन कल्याणपुरी, आज हमने उनका गाना भी एक लगाया है सुमन कल्याणपुरी जी का।
1: जी जी जी, तो बस वही गाना है मेरा, जरूर सुना देना।
0: चलिए बिल्कुल कोशिश करेंगे आपका ये नगमा हम इस लिंक के बाद हम प्ले करें।
1: कई सारे गाने गाए हैं उसमें
0: जी,
1: लेकिन ये गाना सबको अच्छा लगता है और हमको भी, हमारा भी कहा ये वो गाना फेवरेट है। तो मैं आपको दो लाइन सुना दूं, शायद गाके सुना दूं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जरूर से सुनाइए।
1: नाना करके हो, नाना करके प्यार तुम इसे कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम इसे कर बैठे। नाना करके ओ, नाना करके प्यार तुम इसे कर बैठे। वो फिल्म का नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन वो गाना है सर। और चलो, हमारे सभी मित्रों को भी आपके दिन की शुभकामना, नमस्ते। वैसे तो हमारे कई सारे मित्र का जन्मदिन है
0: जी,
1: क्योंकि हम हमारे एक कंचन भाई हैं जो अम्बा जी के पास रहते हैं, हमारे मित्र है, उसका भी जन्मदिन है।
0: ओके।
1: और एक हमारे जो तफिर भाई हैं, हमारे मित्र, वो भी हमारे मित्र हैं, उसका भी जन्मदिन है। और एक हमारा जो रमेश भाई है वो राधनपुर रहते हैं, वो भी हमारा मित्र है, उसका भी जन्मदिन है आज।
0: चलो जिन जिन का भी आपने।
1: हमारे एक डॉक्टर हाँ इकबाल गढ़वाले जो हाँ हम ताबू के पास है, इकबाल गढ़ के जो हमारे एसजी भाई डॉक्टर है, उसका भी जन्मदिन है आज।
0: ओके।
1: और हमारे एक मित्र और है जो धारूसन रहते हैं पाटन के पास, वो जयराम भाई जोशी, उसका भी जन्मदिन है सर। ये हमारे पुराने मित्र हैं, जैसे रेडियो मधुबन के मित्र हैं हमारे।
0: अच्छा।
1: हाँ वो सभी हमारे मित्र हैं, तो आज सभी मित्रों का जन्मदिन है, तो हमारे तरफ से जन्मदिन की भी शुभकामनाएं। और
0: चलिए आपने
1: पुराने मित्र से सर किए रेडियो मधुबन में शुरुआत से, यानी कि जिस दिन शायद वो रेडियो की शुरुआत हुई थी उस दिन से हमारे वो मित्र बन गए हैं सभी।
0: चलो क्या बात है, जिन जिन का भी आपने नाम दिया है, जो भी हमारे रेडियो के पुराने लिसनर्स थे, आप सभी अगर अभी आज भी सुन रहे हैं तो आप सबको बहुत बहुत आपके आज के इस जन्मदिन की बधाई हो।
1: बताओ तो सर, मेरे पास कई सारे मित्रों का जो नाम है, हमारे मधुबन के लिस्ट में कम से कम मेरे पास 300 से 400 मित्र का नाम है।
0: अच्छा, मधुबन के। क्या बात है।
1: तो हाँ, क्योंकि मैं तो सभी नोट करता हूँ, और जिस पे अच्छा गाने हैं, अच्छी कोई बात आती है, मैं लिख ही देता हूँ। तो मुझे शौक है, क्योंकि मेरे पास कम से कम 10 से 15 डायरी मेरी जो रेडियो मधुबन की मैंने भर के रखी है। मेरा यादगार है जो रेडियो मधुबन, तो ये मेरी सभी का कई सारी डायरी है मेरे पास है लिखी हुई रेडियो मधुबन की, जो मुझे अच्छा गाना, अच्छी बातें, अच्छा कोई मित्र है, वो मैं सब कुछ लिख लेता।
0: क्या बात है, बहुत ही अच्छी आदत है ये आपकी। मतलब इतना आपने सभी को सजा कर रखा है, संभाल कर रखा है पुराने दोस्तों को।
1: पूरे साल एक एक दिन में कौन कौन सा जन्मदिन है हमारे रेडियो मधुबन, या हमारे कोई पुराने मित्र, कोई हमारे इतिहास में कोई हो गए, हमारे कोई पुराने, हमारे जैसे महाराणा प्रताप है, कई सारे एक्टर का नाम भी मेरे पास है।
0: क्या बात है, ये आपकी एक शौक हो गई, एक हॉबी हो गई आपको कि इस तरह से आप
1: 365 दिन का मेरे पास रिकॉर्ड है।
0: क्या बात है, वाह बहुत ही बढ़िया है सुरेश जी। तो कभी रेडियो मधुबन पे अगर
1: हो गया, इसलिए मैं नमस्ते सर।
0: नमस्कार, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच सुरेश जी। लेकिन अच्छा लगा आपने इतनी सारी बातें हमारे साथ शेयर की, और इन्होंने जो जिस तरह से बताया हमें कि ये इस तरह से सभी के चीज़ों को नोट करते हैं, देखो कितनी प्यारी बात है। जन्मदिन आज हमारे जो रेडियो के द्वारा है ना, कई तो दोस्त ऐसे होते हैं जिनको हम मनाते हैं, हम आपसे मिलते हैं, बातें होती है और दोस्त बनते हैं, लेकिन कुछ है जिनको बिना देखे रेडियो पे सुनते सुनते उन्हें अपना दोस्त बनाया, उनसे बातें की, फ़ोन कॉल नंबर मिला, बातें की, और ऐसे दोस्त बनाए, उनके बर्थडे याद रखना। तो फिर से सूरज ने जिन जिन के भी नाम लिए हैं, जो भी हमारे रेडियो के लिसनर्स हैं, उनको फिर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों चलिए सवाल आगे बढ़ते हैं पहली की तरफ। आज की हम आपसे एक पहली पूछते हैं, जल्दी से अपने नोट पेन को उठा लीजिए और सवाल सुनिए। सवाल है, एक ऐसी महान फिल्म आई थी साल 1958 में जिसका नाम था मधुमती। इस फिल्म में गाना जैसे सुहाना सफ़र और ये मौसम हसी, सुहाना सफ़र और ये मौसम हसी, और एक और गाना था आजारे परदेसी, आज भी हम सब गुनगुनाते हैं, क्या आप मुझे बताएंगे कि इस बेहद खूबसूरत फिल्म का संगीत यानी कि म्यूजिक किस महान संगीतकार ने दिया था। जी हाँ, पहली या सवाल जो है वह फिर से सुन लीजिए। एक ऐसी महान फिल्म आई थी साल 1958 में जिसका नाम था मधुमती। इस बेहद खूबसूरत फिल्म का संगीत किस महान संगीतकार ने दिया था। आपको एक क्लू दे देता हूँ, उन्हें इंडियन सिनेमा में मेलोडी किंग के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपको इसका सवाल जवाब पता है तो जल्दी से हमें फ़ोन कीजिए 9414151415 पे, यानी कि 9414151415 पर। चलिए दोस्तों, वक्त है अगले नगमे का, जो कि हमारे भूरीलाल जी ने हमें सजेस्ट किया था। हमें नगमा कहा था कि कण कण में भगवान है। जी हाँ, ये बहुत ही डिवोशनल सॉन्ग है, बहुत ही पुराना और डिवोशनल सॉन्ग है। चलिए आइए सुनते हैं सबसे पहले ये प्यारा सा नगमा, सिर्फ रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

ढूंढता है जिसे तू पत्थरों और दीवारों में, वो तो छुपा बैठा है संगीत के तारों में। ढूंढता है जिसे तू पत्थर और दीवारों में, वो तो छुपा बैठा है संगीत के तारों में। अपने भटकते हुए कदमों को ज़रा रोक कर तो देख, वो ईश्वर तो बसता है रिश्तों के पैरों में। जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी में जब हम भटकने लगते हैं तो ज़िंदगी की तलाश में यहाँ वहाँ दौड़ते हैं, तो हम अक्सर भूल जाते हैं कि उस परमात्मा का, उस ईश्वर का सबसे बड़ा पता कहाँ है। हम उस मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या गिरजाघरों में ढूंढते हैं, पर वो तो कहीं और ही मुस्कुराता है। पंडित भरत व्यास जी के लिखे और महेंद्र कपूर साहब की आवाज में सजे इस गीत के बोल सीधे हमारी आत्मा को छू जाते हैं। बोल थे, तेरे मेरे मंदिर क्या है ये भोले इंसान, मन की आंख से देख बांवरे। कितनी सच्ची बात कही है दोस्तों। गीत में समझाया गया है कि ए भोले इंसान, ये तेरा मंदिर मेरा मंदिर क्या है, ये दूरिया और बेहद भाव क्या है।

अगर देखना ही है तो जिस्म की उन आंखों को बंद कर और अपने मन की आंख से देख। जैसे ही तू अपने भीतर देखेगा, तू समझ जाएगा कि कण कण में है भगवान, कण कण में है भगवान। मन की आंख से देख मिलेंगे कण कण में भगवान। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर। ये भी हमारा एक प्यारा सा नगमा हमारे सुरेश जी ने हमें बताया अभी अभी सुमन कल्याण जी के गाए हुए बोलों में। नाना करते प्यार तुम्हें से हम कर बैठे। चलिए सुनते हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अपनी दिनचर्या का विश्लेषण करें, अपनी आदतों और कार्यों को देखें। जो आदतें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उन्हें बदलें। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: रेड लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक लेना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
2: वेलकम बैक दोस्तों। अभी हमने गाना जो सुना, जब जब फूल खिले मूवी का ये गाना, मोहम्मद रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुरी जी के आवाज़ में ये गाना था। गीतकार थे आनंद बख्शी साहब और संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। बहुत ही पुराना और बहुत ही फेमस गाना, हम सभी ने इसे बहुत बहुत बार सुना है। जब भी अंताक्षरी खेली जाती है और जब भी कोई शब्द आता है ना से या न से, सबसे पहला गाना ही ये बजता है कि नाना करते प्यार तुम्हें से कर बैठे, करना था इकरार मगर इनकार तुम्हें से कर बैठे। सॉरी, करना था इकरार मगर इकरार तुम्हें से कर बैठे। कभी कभी बोल हमारे भी आगे पीछे हो जाते हैं, कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। फिर से मैं आपके लिए वो पहली सुना देता हूँ, अगर किसी से ये पहली मिस हुआ है, आपको बताना है कि इसमें म्यूजिक, इसका संगीत किसने दिया था, संगीतकार कौन थे। फिल्म थी मधुमति। जी हाँ, एक ऐसी महान फिल्म जो 1958 में आई थी, जिसका नाम था मधुमति। इस फिल्म में कुछ गाने थे जैसे सुहाना सफर और ये मौसम हसी। जी हाँ, ऐसे इस गानों का संगीत, इसके जो संगीतकार थे, जिसने इसे म्यूजिक दिया था, वो कौन थे, उसका आपको हमें नाम बताना है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले नगमे की और। अगला जो नगमा भी है, बहुत ही प्यारा शानदार गाना। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: जब बात खुशी की हो, सुनहरे दौर की हो, और ऐसा गाना जो सुनते ही पैर अपने आप थिरकने लगे, तो दिल सच में झूम उठता है। आज हम बात कर रहे हैं साल 1951 की फिल्म अलबेले की, उस एवरग्रीन गाने की जिसे सुनकर आज भी हर उम्र के इंसान का दिल जवां हो जाता है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हमारे कॉलर से। हेलो
1: जी सर, नमस्ते।
0: नमस्कार सुरेश जी। जी
1: तो चलो, आपने जो सवाल पूछा था कि भाई वो फिल्म आई थी मधुमती
0: जी,
1: तो उसमें गाना था सुहाना सफर और मौसम उसी, तो संगीतकार कौन थे
0: जी?
1: तो सर वो तो थे सलील चौधरी। तो वो सलील चौधरी ने उसको संगीत दिया था इसमें।
0: ठीक है, चलिए आपका ये जो जवाब आपने हमें दिया है सुरेश जी, हम आपको बता दें इसका जो जवाब है सलील चौधरी, बिल्कुल सही है। आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिया है। सलील दा इसे कहते थे, सलील दा के नाम से भी इन्हें जाना जाता था, मेलोडी किंग के नाम से भी इसे जाना जाता था।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: बहुत बहुत बधाई हो सुरेश जी, आप हर बार पहली के सही जवाब।
1: लास्ट में जरूर सुना देना सुहाना सफर और मौसम, अच्छा गाना है वो।
0: बिल्कुल, आज के इस मौसम पे हम जरूर से कोशिश करेंगे आपके लिए गाना प्ले करें, सुहाना सफर। चलिए जलने से पहले ये गाना बिल्कुल प्ले करेंगे। थैंक यू सो मच। जी हाँ, क्या बढ़िया याद दिलाया सुरेश जी ने भी हमें कि ये गाना तो प्ले करना बनता है आज के इस मौसम में, जहाँ हल्की हल्की हवाएं हैं, तेज तूफान से आसार हो रहे हैं, बारिश होने के भी आसार से लग रहे हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है अगले पल में। लेकिन जी हाँ दोस्तों, अभी जो हम गाना सुन रहे थे शोला जो भड़के की जब हम बात कर रहे थे, तो अलबेला फिल्म का ये एवरग्रीन गाना जिसे सुनकर आज भी उम्र के इंसान का दिल जवां हो जाता है। कुछ शब्द है लिखे मैंने, मौसम में मस्ती है और दिल में एक जवां तरंग है। मौसम में मस्ती है और दिल में एक जवां तरंग है, जब से थामा है उन्होंने हाथ जिंदगी का हर रंग है। जब से थामा है उन्होंने हाथ जिंदगी का हर रंग है, धड़कने बढ़ने लगी है अब तो जरा सी आहट पर भी। धड़कने बढ़ने लगी है अब तो जरा सी आहट पर भी, लगता है जैसे हर लम्हा उन्हीं की चाहत के संग है। जी हाँ दोस्तों, राजेंद्र कृष्ण जी के लिखे इस गीत के बोल जितने मासूम हैं उतने ही शरारत से भरे, और जब लता मंगेशकर और खुद सी रामचंद्र जी की आवाज़ इसमें मिलती है तो जादू बिखरा जाता है। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, एक ऐसी दीवानगी जहाँ हवाओं में महक है, कदम बहके रहे हैं और दिल गुजारिश कर रहा है, ऐसे में थाम लो आके बालम मेरे। हालत ऐसे है दोस्तों कि अब अगर कोई पत्ता भी फड़के तो बिजली सी कड़के। जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, पत्ते भी फड़क रहे हैं, बिजली भी कड़कने की तैयारी में है बाहर के मौसम। अभी तो स्टूडियो में हूँ, पता नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ कहीं कहीं ऐसा ही कुछ हो रहा है, पत्ते भी फड़क रहे हैं, बिजली भी कड़क रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले नगमे की, और अगला नगमा भी बहुत ही प्यारा सा है। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीज़ें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूँ, सपोज पाँव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पाँव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे?

0: मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी। जितनी और जोर से लगेगी, दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाएं? घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज़ फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज़ इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज़ को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है। अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहाँ कुछ गिरा, यहाँ कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीज़ें गिरती गई गिरती गई गिरती गई। लास्ट कब साफ किया? और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया? कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

कहते हैं ना कि मोहब्बत से बड़ा इस दुनिया में कोई जादू नहीं होता, और जब ये जादू किसी पर चल जाता है तो जिंदगी बिल्कुल बदल सी जाती है, चेहरे पर एक अलग ही रौनक आ जाती है और दिल हर वक्त बस उस एक शख्स के बारे में ही सोचता रहता है। उनकी निगाहों का जादू कुछ ऐसा चल गया कि सोते जागते ये दिल बस उन्हीं में ढल गया। उनकी निगाहों का जादू कुछ ऐसा चल गया कि सोते जागते ये दिल बस उन्हीं में ढल गया। पूछती है ये शाम अब हमसे हमारा हाल, मगर इस नादान दिल का ठिकाना अब बदल गया। यहाँ दोस्तों, आज हम इस नगमे को लेकर आए हैं, उसके लफ्ज़ इस जादू को बेहद मासूमी से बयां करते हैं, और जादूगर प्यार के ये बता दिल मेरा क्यों तेरा हो गया। यानी जब से वो ज़िंदगी में आए तब से चेहरे की मुस्कान कभी रुकने का नाम नहीं लेती, दिल भर बस हर पल उस खुदा को शुक्रिया करता है, अदा करता है, उस जादूगर से यही सवाल करता है कि आखिर तुमने ऐसा क्या जादू किया कि ये दिल अब मेरा ना रहकर पूरी तरह से तुम्हारा हो गया। यहाँ बहुत ही प्यारा दोस्तों गाना सुन रहे थे अभी हम, और अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, तब तक आप सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM, बिकॉज अगला जो कार्यक्रम है वो है भी है सेहत स्वास्थ्य। और जैसे कि हमारे सूरज जी ने बताया कि अगला जो गाना आप बजाइए, क्योंकि सफ़र का जो हम सफ़र कर रहे हैं बिल्कुल सुहाना है, मौसम भी सुहाना है, और इस सफ़र आज के दिन के सफ़र को हम करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं फिर आपसे कल, सायोनारा।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री। दोस्तों, हर एक एपिसोड में हम स्वास्थ्य के कुछ अलग अलग विषयों पर प्रकाश ले रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम सहजता से स्वस्थ रहने के तरीकों को सीख लें, और बेहतर यही होगा कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा जीवन में हासिल कर सकेंगे। व्यक्ति कुछ भी साधना करना चाहता है, भले वो पढ़ाई हो, नौकरी हो, या कला के क्षेत्र में, या किसी भी क्षेत्र में कुछ भी हासिल करना चाहे, तो शरीर का स्वस्थ रहना, मन का स्वस्थ रहना आवश्यक है। इस स्वास्थ्य के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आइए आज स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए और बेहतर बनाने के लिए क्या करने की जरूरत है, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी। पेशे से एक MBBS डॉक्टर हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में इनका एक लंबा अनुभव है, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं और साथ ही भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ से आज वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जहाँ पर इनकी अनेकों पीढ़ियां लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिलाती रही हैं, जहाँ पर परिवार में ही इनके अनेक पुश्ते डॉक्टर्स का काम करते रहे हैं। डॉक्टर साहब, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, हमने इन बातों को समझा कि प्रकृति चिकित्सा के आधार से जब हम ये समझते हैं कि स्वास्थ्य के कई आयामों में हम प्रकृति के तत्वों को सही तरीके से समझकर स्वास्थ्य को सही रखने में उनका इस्तेमाल करते हैं, वहीं प्रकृति चिकित्सा कहते ही लोग ये जो बात कहते हैं कि नहीं, वहां तो भाई आप खान पान में बहुत परहेज करनी पड़ेगी, खान पान आपका बदलना पड़ेगा। कई लोग तो प्रकृति चिकित्सा के नाम से भी लोग कहने लगते हैं नहीं नहीं वहां तो खाने ही नहीं देंगे, ये भी कहने लग जाते हैं। तो इन बातों को समझा जाए कि क्या प्रकृति चिकित्सा में भोजन के प्रति धारणा क्या है, भोजन क्या है, इन चीजों को समझे।
1: प्रकृति चिकित्सा में भोजन बंद नहीं किया जाता है। हम लोग यहां पर खाने को आधा, पानी को दुगना, कसरत को तिगुना और हंसने को चार गुना कर देते हैं, जिससे आपको संपूर्ण स्वास्थ्य मिले। हम कभी भी आपका भोजन बंद नहीं करते हैं, और बंद हम तभी करते हैं जब शरीर को उसकी जरूरत हो। हम आपको पानी, नींबू और शहद देते रहते हैं। आपका शरीर अपने भोजन तंत्र से पूरी शक्ति को निकालने में सक्षम है। आप जो भोजन करते हैं वह आपका शरीर उसमें से अपने लिए जो ताकत का सामान है उसको निकाल के अपने पास रख लेता है, और यदि उसको ज्यादा मिलता है तो वो उसको मोटापे के रूप में पूरे शरीर में इधर उधर डिपॉजिट कर देता है, ये सोच के साथ कि भविष्य में कभी अगर भूखमरी होगी तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर कॉमन टर्मिनोलॉजी में या रोज की भाषाओं में समझें कि हम और आप FD करते हैं, डिपॉजिटी में उसको लॉक करते हैं, यही सोचकर कि ये हम कभी भविष्य में हमें जरूरत होगी तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। एक बड़ी सीधी बात है, आप जितना खा रहे हैं उतना अगर आप पचा रहे हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। यदि आप ज्यादा खा रहे हैं, पचा रहे हैं और ज्यादा अपने शरीर में उसको डिपॉजिट करा रहे हैं तो आप बीमार पड़ जाएंगे। प्रकृतिक चिकित्सालय हमेशा आदर्श आहार की बात करता है। अगर हम इसे एक मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में इसको यूज करें तो हम लोग बैलेंस्ड डाइट के बारे में इस्तेमाल करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सालय हमेशा शाकाहारी भोजन की बात करता है, और वो ये कहता है कि प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है जो हमें पेड़ पौधों से मिल सकता है। अगर हम इस समय मॉडर्न भोजन को देखें तो हम एक तरह से पूरे भोजन को तीन बड़े भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक वेजिटेरियन फूड, दूसरा नॉन वेजिटेरियन फूड, और अब तीसरा जो बहुत जिसका प्रचलन प्रचार प्रसार हो रहा है वो है वीगन, जिसमें वो किसी भी जानवर का दूध और शहद इसका भी प्रयोग नहीं करते और तीनों भोजन जैसे देश काल परिस्थिति के हिसाब से एकदम ठीक है। हम चिकित्सालय में, आरोग्य मंदिर में या किसी भी प्राकृतिक चिकित्सालय में आप जाइएगा, वहां पर शाकाहारी भोजन या वेजिटेरियन भोजन के बारे में ही बात की जाती है।
0: पहले तो ये बात समझी जाए डॉक्टर साहब, जब प्रकृति चिकित्सा में भी भोजन दिया जाता है, आप ये कहते हैं कि भोजन एक व्यक्ति के स्वास्थ्य में कितनी बड़ी भूमिका अदा करता है, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई रोटी कपड़ा मकान ये तीन बेसिक आवश्यकताएं हैं, तो लोग ये सोच लेते हैं कि भाई जो मिल रहा है उसे खा लेना चाहिए। क्या भोजन का स्वास्थ्य से कोई संबंध है? क्योंकि लोग तो यही समझते हैं कि भाई भोजन तो पेट भरने के लिए है, जो आपने खा लिया सो खा लिया, अब क्या इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम क्या खा रहे हैं?
1: मैं, आप और जितने श्रोतागण हमें सुन रहे हैं, हम सब एक कोशिका थे। हम अपने माँ के गर्भ में एक सिंगल कोशिका थे और उस कोशिका को अपनी माँ ने एकदम अच्छा भोजन अपने रक्त से अपनी कोख में रख के उसका लालन पालन करके हमको आज इस हमारे उस सिंगल कोशिका जो एक कोशिका थी उसको डिवाइड करते करते करते करते अच्छा भोजन देते देते उसी से हमारा सिर मुंह नाक दोनों हाथ दोनों पैर हमारा पेट हमारे सारे अंग बने और हम बाहर निकले। तो हमें अच्छे भोजन और स्वस्थ भोजन का जो ज्ञान है वो तो अपनी माँ की कोख से ही मिला। आप देखिए कि एक प्रेग्नेंट लेडी को कितनी चीजें मना की जाती हैं कि ये मत खाओ ये मत खाओ, बच्चे पे बुरा असर होगा। आप सोचिए भैया, वहां एक माता ने 9 महीने अपने भोजन को कंट्रोल किया और वो भोजन किया जो कि उसके बच्चे और उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा था, और उसने वो कोई भी चीज नहीं खाई जो कि उसके बच्चे के और उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं थी, भले ही उसको कितनी भी वो चीज पसंद क्यों ना हो। तो बैलेंस्ड डाइट, आदर्श आहार का जो पौधा है जो बीज है वो एक माँ की कोख में ही डाल दिया गया है, प्रकृति ने उसे माँ की कोख में ही डाला। पर हम बाहर निकले, हमने अपने आप को प्रकृति से ज्यादा कलमन समझा, तो हमको जो मिला हम वो खाते चले गए। एक इंग्लिश का बहुत फेमस प्रोवर्ब है ना, आई लिव टू ईट, सम ईट टू लिव, आई लिव टू ईट, क्योंकि मैं जीवित ही इसीलिए कि मैं अच्छा खा सकूं। तो आप को माँ की कोख में जो आदर्श आहार और जो अच्छे आहार की जो बीज आपके अंदर डाला गया है उसको प्लीज बाहर निकल के भी थोड़ा सा सजा कर संवार कर रखें, उससे आपके और आपके शरीर के लिए दोनों के लिए अच्छा होगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले इंडिया में बहुत कम थी, विद टाइम हमारा न्यूट्रिशन बेटर हुआ, विद टाइम हमारे मेडिकल सर्विसेज बेटर हुए, तो हम अच्छा होते चले गए। हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले 40-45 साल थी वो अब बढ़कर इंडिया में 65-75 ईयर्स हो गई है, जो पहले मैटर्नल मॉर्टेलिटी रेट की बच्चा देते समय माँ की मृत्यु हो जा रही थी, छोटे बच्चे सरवाइव नहीं कर पा रहे थे क्योंकि माँ को पोषण ठीक से नहीं मिला था, वो सब चीजें बेटर हो गई। और वो इसलिए बेटर हो गई क्योंकि हमने अच्छा भोजन और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम जागरूक हुए, हमने उसके ऊपर काम किया और आज हम सब अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बहुत बेटर कर चुके हैं।
0: तो अब बात ये होती है कि जब भोजन अब बेहतर होने लगा है, लोग बेहतर भोजन करने लगे हैं, तो बेहतर भोजन करने की वजह से लोगों का स्वास्थ्य भी बेहतर हो जाना चाहिए। आज मजेदार बात ये अक्सर लोग देखते हैं कि नई नई बीमारियां हो रही हैं, जिन बीमारियों के बारे में, जैसे मैं अपने दादाजी के जमाने में उन चीजों के बारे में पूछता था तो वो कहते थे कि ये हमारे समय की बीमारियां नहीं है, ये अभी की उपज है, ऐसा वो कहते थे। तो ये भी बात समझने की है, क्या भोजन के साथ ये बीमारी आई है या हम भोजन के प्रति सही अर्थों में जागरूक नहीं है, या सही अर्थों में स्वास्थ्य के लिए हितकारी भोजन क्या है उसको हम कैसे डिफाइन करें?
1: भैया आपने बोला कि भोजन बेहतर हो गया है, मगर भोजन बेहतर के साथ साथ ज्यादा हो गया है। तो जो जितनी बीमारियों की हमने बात की वो अधिकतर ज्यादा भोजन करने से हुई, और पैक्ड फूड और प्रोसेस्ड फूड ने इसमें चार चांद लगा दिया। तो ज्यादा भोजन, प्रोसेस्ड भोजन, पैक्ड भोजन और इंस्टेंट भोजन, इन चार चीजों ने पूरे के पूरे हमारे पाचन तंत्र का, हमारे स्वास्थ्य का कबाड़ा निकाल दिया। तो बेहतर भोजन करिए, कम भोजन करिए और स्वस्थ भोजन करिए। हमने शुरुआत में बोला अपने भोजन को आधा कर लीजिए। अभी जितने लोग को जो हमारे श्रोतागण सुन रहे हैं, अगर उनको कोई बीमारी हो, प्लीज आप कोई डाइटिशियन, कोई न्यूट्रिशनिस्ट, कोई भोजन के अभी सब कुछ को छोड़ दीजिए, अपने क्वांटिटी ऑफ फूड को 50% कर दीजिए। अपने भोजन में से प्रोसेस्ड एंड पैक्ड फूड को हटा दीजिए, आप देखेंगे 1 से 1.5 महीने में आप मोर देन 80% बेटर हो जाएंगे, सिर्फ इतना करने से। एक पुरानी कहावत भी है, वाणी व्यवहार, वाणी से व्यापार, की मतलब आपकी जिह्वा से ही व्यापार हो रहा है कि जिह्वा से व्यापार हो रहा है, और अब तो तीसरी चीज है वाणी से ही स्वास्थ्य, क्योंकि जिह्वा में ही जो चीज है उसको ही शांत करने के लिए, उसी स्वाद को शांत करने के लिए हम लोग भैया खाए चले जा रहे हैं। और इंग्लिश में एक और, मैं एक सबको एक लाइन और बोलता हूं, योर स्टमक इज नॉट अ डस्टबिन, प्लीज डोंट पुट वट एवर यू सी राइट एंड लेफ्ट, प्लीज। एक एग्जाम्पल हमेशा मैं, जब अपनी मेडिकल की पढ़ाई खत्म किया था तो डिवाइन लाइफ सोसाइटी ऋषिकेश में मैं पढ़ रहा था, और वहां जब किसी दिन 2 कटोरी मिलती थी तो इसका मतलब था किसी भक्त ने आज खीर का प्रसाद दिया है। तो मैं हमेशा उस दिन करता क्या था कि मैं सब्जी जो कटोरी में लेनी थी उसको प्लेट में लेता था, और खीर पे मैं दोनों बार टिप करता था, दोनों कटोरियों पर टिप करता था, 2 कटोरी खीर खाता था। तो वहां पद्मनाभन जी महाराज जो

0: के डिवाइन सोसाइटी के हेड थे, उन्होंने ये देखा मेरा आचरण, एक हफ्ते तीन हफ्ते चार हफ्ते, तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोला डॉक्टर टुडे आई विल गिव यू अ फीस्ट ऑफ खीर। और उन्होंने मेरे सामने भैया 8 कटोरी खीर रखी, और कटोरी नहीं वो टेक्निकली कटोरा था भैया। मैंने पहले बड़े चाव से खाया, दूसरा खाया, तीसरा खाया, चौथे में थोड़ा सा अनईजी हुआ, फिफ्थ में मेरा पेट दर्द होने लगा। बोले नो डॉक्टर टू मोर। मैंने कहा स्वामी जी आई विल वॉमिट। बोले दिस आई वॉन्ट टू टेल यू, वट एवर यू ईट इट शुड बी इन अ कंट्रोल्ड क्वांटिटी, देन ओनली यू विल इंजॉय दैट। एक्सेस ऑफ थिंग्स इवन इफ यू लाइक इट विल बी अ प्रॉब्लम। तो उस दिन से भैया मैंने अपने भोजन पे कंट्रोल किया, जो चीज पसंद है उसको मुंह में रख के थोड़ा घुमाता रहता हूं कि उसका स्वाद और मेरे जीवा पे जाए, क्योंकि कोई भी चीज गरम ठंडा मीठा नमकीन जैसे ही आपकी जीभ से पीछे जाता है उसका टेस्ट जीरो, उसका फूड जीरो, वो सिर्फ एक कैलोरी में कन्वर्ट हो जाता है। जब तक वो भोजन का सामान आपके मुंह में है तब तक वो आपको उसके बारे में संकेत सिग्नल दे रहा है, जैसे ही वो मुंह से नीचे उतरा तुरंत उसका जो टेस्ट है वो जीरो हो गया। तो इसीलिए भैया मिताहार की बात होती है, आदर्श आहार की बात होती है, कम खाने की बात होती है। और जो कोई भी, फिर से मैं बोल रहा हूं, जो कोई भी हमारी बात सुन रहा है, जो भी चीज उसको पसंद है उसकी भी क्वांटिटी आधी कर दे तो उसके लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा।
1: बहुत ही बढ़िया चीज आपने बताई कि दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या से अगर आप गुजर रहे हैं तो पहला परिवर्तन अपने आहार में आप ये कर सकते हैं कि आप अपने भोजन की मात्रा को आधा कर दें। अगर आप 4 रोटी खा रहे हैं तो 2 पे ले आए, अगर आप 2 कटोरी चावल खा रहे हैं तो 1 पे ले आए। भोजन को आधा करके देखें और फिर देखें इसके कितने फायदे होते हैं। अनेक कहावतें मिताहार के बारे में या कम खाने के बारे में कही गई हैं डॉक्टर साहब। यहाँ हमारे यहाँ राजस्थान में ये बात कही जाती है कि कम खाओ गम खाओ, यानी अगर आप कम खाते हैं तो आपकी जिंदगी के गम भी आप खा लेते हैं, यानी जो दुख है वो भी कम हो जाते हैं, आपको ये चीज सुनने को मिलती है। तो ये बात स्पष्ट होती है कि कम भोजन करने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा भोजन करने की जरूरत नहीं है, और भोजन की मात्रा में कमी लाने से भी शरीर के स्वास्थ्य को हम बेहतर कर सकते हैं। अब इस बात की भी समझ होनी चाहिए कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या आवश्यक है, क्योंकि विज्ञान के इस दौर में हम अक्सर ये शब्द सुनते आए हैं बैलेंस डाइट इत्यादि। स्कूलों में पढ़ाया भी जाता है, इसका एक अच्छा चित्र भी बना के स्टूडेंट्स को स्कूल में समझाया जाता है, बच्चे प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, तो ऐसे में क्या आहार है, क्या बैलेंस डाइट है, ये समझा जाए।
0: भोजन हमारे लिए बहुत जरूरी है, और जैसे आपने अभी कहा कि कम खाओ गम खाओ, इसी तरह एक भैया यहाँ आप मथुरा वृंदावन में जब घूमिएगा तो आपको एक लाइन सुनाई देगी, भूखे पेट न भजन गोपाला, कि मतलब भूखा पेट तो भगवान का भजन भी नहीं कर सकता, ये कहकर वहां लोग भिक्षार्थी आपसे कुछ दान मांगते हैं। तो भोजन हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपने भैया बैलेंस डाइट की बात की, अगर हम बैलेंस डाइट की बात करें तो इट इज कंसिडर्ड एज हेल्दी डाइट, जो भी भोजन हेल्दी है उसको बैलेंस डाइट बोलेंगे। और बैलेंस इसलिए क्योंकि एक तराजू को हम लोग इंग्लिश में बैलेंस बोलते हैं, तो तराजू की तरह कि उसमें राइट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फाइबर वाटर रफेज ऑल इन अप्रोप्रिएट अमाउंट, मतलब जो भी भोजन के डिफरेंट चीजें हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट वो मतलब एक भरपूर मात्रा में होना चाहिए, माइक्रोफाइबर्स रफेज पानी ये सब भरपूर मात्रा में होना चाहिए, और इनकी मात्रा अप्रोप्रिएट होनी चाहिए कि वो हमारे ऑप्टिमम हेल्थ ग्रोथ डेवलपमेंट को सपोर्ट कर सकें और हमारी बॉडी में डेफिशिएंसीज और डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकें। फिर से बोलूंगा कि सारा भोजन ऐसा होना चाहिए कि हम सशक्त रहें, अच्छे से रहें, हम अपने सारे काम अच्छे से कर सकें, और वो भोजन इतना पौष्टिक होना चाहिए कि हमारे शरीर में कोई कमी ना हो और हम किसी बीमारी से ग्रसित ना हो। ये भोजन एक बैलेंस डाइट की परिभाषा। अब ये इंटरनेशनल बात हो गई, एलोपैथी की बात हो गई या न्यूट्रिशनिस्ट की बात हुई। इसको हम अगर भारतीय परिवेश में इसी डेफिनेशन को या इसी चीज को करें तो बैलेंस डाइट आदर्श आहार है। वो कहता है कि भोजन की किस्म अच्छी हो, मतलब अच्छे किस्म का, अच्छे क्वालिटी का भोजन करिए, उसकी मात्रा उचित हो, मतलब वो भोजन की मात्रा जो हम ले रहे हैं वो उचित हो, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। और तीसरा वो कहता है कि खाने के बहुत सारे भोजनों में आपस में मेल नहीं कराना चाहिए। तो वो ये कहता है कि आप अच्छे किस्म का भोजन उचित मात्रा में और बेमेल भोजन को न करके करें। ये भारतीय परिवेश में इसको बोला जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि खट्टे के साथ दही नहीं खानी चाहिए, इसको बेमेल माना जाता है। तो ये लोकली जो भोजन को लोग कहते हैं कि जैसे आप राजस्थान में रह रहे हैं तो शाम के समय ठंडा पीने को मना करते हैं। अच्छा, ये भैया ये तब बना था जिस जमाने में न फ्रिज था, न गैस थी, न कोई मॉडर्न इक्विपमेंट था। तो उस समय जैसा हम लोग रह रहे थे उस हिसाब से बहुत सारे भोजन के तरीके बने, भोजन को खाने का समय बना। तो वो चीज उस जमाने में अच्छी थी, तो आज भी अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो हमें उससे बहुत लाभ मिलेगा।
1: ये जो बात हम अक्सर बैलेंस डाइट में सुनते हैं कि भाई प्रोटीन की मात्रा इतनी होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होनी चाहिए, इत्यादि चीजें, फैट की, ये एक बैलेंस डाइट के चार्ट के रूप में बताया जाता है। मगर प्रायः हम देखते हैं कि जब हम भोजन बनाते हैं या भोजन परोसा जा रहा है उस समय पर इस चार्ट पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो क्या इन सब चीजों का ध्यान रखना जरूरी है कि लोग भाई इतना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, हर दिन इतना प्रोटीन होना चाहिए?
0: इसका ध्यान रखने की भैया कोई जरूरत नहीं है। हम लोग किचन में, घर में भोजन बना रहे हैं, किसी लैब में कोई चीज नहीं बना रहे हैं। और आपकी माताएं, आपकी पत्नी, आपकी बहन, और वो आपके स्वास्थ्य के बारे में पूरे चिंतित हैं। वो कभी ऐसा नहीं करेंगे कि 10 ग्राम रोटी में 50 ग्राम घी डाल देंगे, एकदम नहीं। हाँ, ये राजस्थान में जब दामाद घर में आता है तो सुनते हैं कि उसको बहुत उस डाइट को सुपर इम्बैलेंस डाइट बना दिया जाता है, बट नहीं, एक क्वांटिटी में। भैया आप भोजन के बारे में आप इंडिया की ज्योग्राफी के हिसाब से भी समझिए। अगर हम भारत को एक लंबाई में खींचते हैं और चौड़ाई में खींचते हैं तो हमारे इधर नॉर्थ ईस्ट है पूरा और इधर गुजरात राजस्थान। तो नॉर्थ ईस्ट में पानी ज्यादा है, तो वहां पे चावल आया, वहां पर मेन स्टेपल डाइट चावल आई। फिर धीरे धीरे हम बंगाल से बिहार आते गए तो पानी थोड़ा कम होते गया, तो गेहूं गेहूं गेहूं गेहूं, तो फिर बीच के पोर्शन का आदमी चावल और गेहूं दोनों खा रहा। और फिर हम भैया नीचे जब हम लेफ्ट गए जहां पे राजस्थान और ये गुजरात मिला, तो वहां हम देखिए रोटी रोटी रोटी रोटी खाते चले गए। क्योंकि जैसा हमारा देश, जैसा वहां के वातावरण की व्यवस्था, जैसा वहां का लोकल अन्न, उस हिसाब का भोजन हमने किया और वही भोजन हमारे लिए सबसे अच्छा रहा। अब आपके राजस्थान में, या हम कहें हमारे राजस्थान में भैया, केर सांगरी, गट्टे की सब्जी, चूरमा, देखिए आप सिर्फ ग्रेन है, यहाँ कोई भी फाइबर की बात ही नहीं हो रही है। और अगर हम मेडिकली उस भोजन को देखें तो उस भोजन में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और फैट है। आप प्रोटीन के बारे में उसमें कहीं भी वेजिटेरियन सोर्स में कोई प्रोटीन नहीं है। हाँ, दाल है, दाल उस प्रोटीन को पूरा कर रही है। अब आप तो लोग कहेंगे अच्छा, अरे कार्बोहाइड्रेट भी आ गया, फैट भी आ गया, प्रोटीन भी आ गया, फिर अरे यार फाइबर ही नहीं है, क्योंकि ग्रीन लीफी वेजिटेबल तो राजस्थान में थी ही नहीं। तो जब ग्रीन्स थे ही नहीं तो भैया वही दाल उसी आटे की ही, गट्टा क्या है भैया, आप जानते हैं, मैं जानता हूं कि वो एक ग्रेन से बनाया हुआ सिलेंड्रिकल चीज है जिसको हम सब्जी में खा रहे हैं।

0: हमेशा उसको सर्वोपरि रखना चाहिए, क्योंकि वो भोजन आपके शरीर के हिसाब से, आपके वातावरण के हिसाब से और उस एरिया की जो इम्यूनिटी है, उस जो वहां के बैक्टीरिया है, जो वहां की बीमारियां, उसके हिसाब से वो भोजन डेवलप हुआ। तो इसीलिए लोकल भोजन को नंबर वन, और उसके बाद अगर कोशिश हो जाए तो थोड़ा सलाद, थोड़ी सब्जी उसमें जोड़ लीजिए, और मात्रा अगर कंट्रोल्ड है तो सारा भोजन ठीक है।
1: ये बहुत ही खूबसूरत सी बात आपने कही कि हम लोकल भोजन पर ध्यान दें, हमारे आसपास के वातावरण के हिसाब से, वहां जो चीजें खाई जाती हैं, वहां के मौसम के हिसाब से जो चीजें उगती हैं, उन चीजों का, उस भोजन शैली पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। और भी प्रश्न है मगर समय इशारा करता है कि यहाँ रुकना होगा। डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ आज की इस बातचीत से हमारे दोस्तों ने दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें समझी हैं, भोजन की मात्रा को कम रखना, मिताहारी बनना, जितना आप भोजन कर रहे हैं उस मात्रा को आधे कर लेने से आपके स्वास्थ्य में बहुत ही ज्यादा इजाफा होगा। दूसरा, जो भी चीजें आपके यहाँ लोकल अवेलेबल हैं उन चीजों पर ध्यान देना है, उस प्रकार के भोजन को जो लोकली मिलता है उनको आप खाने पीने में इस्तेमाल करें तो भी आपके स्वास्थ्य में बेहतरी होती है। दोस्तों, और भी प्रश्न अगली बातचीत में मैं पूछूंगा। आज डॉक्टर राहुल मोदी जी हमारे साथ जुड़े और हमारे इन प्रश्नों का उत्तर दिया, इसके लिए आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब का।
0: धन्यवाद, ओम शांति।
1: दोस्तों, आज की बातचीत में जो चीजें सीखी हैं उन चीजों को आप आजमा कर देखें, भोजन को कम करके देखें, अल्पाहार पे आए, मिताहार पे आए, कम खाएं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर करके देखें कि कम खाने से आपके स्वास्थ्य में क्या लाभ हो रहा है, और आसपास जो चीजें मिलती हैं उन चीजों को, जो लोकल चीजें हैं, उनकी प्रामुख्यता को बढ़ाएं। आज की बातचीत में बस इतना ही। सहज स्वास्थ्य कार्यक्रम में कल फिर होगी मुलाकात। रेडियो मधुबन पर कार्यक्रम जारी रहेंगे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: हेलो बच्चों, सपनों की सैर कार्यक्रम शुरू हो गया है क्योंकि 9:30 बज गए हैं और परी और मनी दीदी आ गए हैं।
1: हेलो बच्चों, तो आप सभी का हम दोनों दिल से स्वागत करते हैं। और बच्चों, अभी तो हम नई नई बातों की चर्चा कर रहे हैं और इस बार पता है परी, हम इस बार चर्चा करने वाले हैं हमारी प्यारी प्रकृति।
0: अच्छा मनी दीदी, बच्चों क्या आपने सोचा है कि हमें सांस लेने की हवा, पीने का पानी और खिलखिलाती धूप कौन देता है?
1: हाँ बच्चों, ये देती है हमारी प्यारी प्रकृति। तो आज हम जानेंगे कि प्रकृति क्या है।
0: मनी दीदी, प्रकृति तो यही है ना, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ।
1: हाँ परी, बच्चों को भी ये पता ही होगा, प्रकृति वह सब कुछ है जो हमें बिना पैसे दिए जीवन देती है। हवा, पानी, सूरज, पेड़, पहाड़, नदियाँ और जानवर, ये सब मिलकर प्रकृति कहलाते हैं।
0: और बच्चों, अगर सोचो हवा ना हो तो हम सांस भी नहीं ले पाएंगे, अगर पानी ना हो तो प्यासे ही रह जाएंगे, अगर सूरज ना हो तो अंधेरा ही अंधेरा होगा, और अगर पेड़ ना हो तो जीवन मुश्किल हो जाएगा।
1: तो समझा बच्चों, प्रकृति हमें हर पल कुछ न कुछ देती है, और सच कहें तो प्रकृति ही हमारी सच्ची पालनहार है।
0: बिल्कुल बच्चों, तो इसीलिए हमेशा प्रकृति का बहुत सम्मान रखना, उनको वेस्ट मत करना।
1: सही कहा। तो बच्चों, अभी कहीं जाना नहीं, अभी तो आपसे और भी ढेर सारी बातें करनी है। तो अभी हम मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद परी की प्यारी सी कहानी के साथ।
0: तो चलो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए
1: रेडियो मधुबन 107.8।

बच्चों चलो बैठो फिर से रेडियो के पास। अब बारी है कहानी की, तो चलो सुनते हैं आज की कहानी। आज परी आपको बैल और मेढक की कहानी सुनाने वाली है, ध्यान से सुनना। एक बार एक तालाब के किनारे छोटे छोटे मेंढक खेल रहे थे, तभी वहाँ एक बैल पानी पीने के लिए आया। उसने पानी पीकर जोर से डकारा। बच्चों सोचो बैल कैसे डकारता होगा। बैल के डकारने की आवाज सुनकर सभी मेंढक तो भयभीत हो गए। वे सरपट भागते हुए अपनी दादी माँ के पास पहुँचे। बच्चों मेंढक की भी दादी माँ थी, सोचो। दादी माँ ने अपने पोतों से पूछा, क्या हुआ, तुम लोग घबराए हुए क्यों हो? छोटे मेंढक ने कहा, अरे दादी, अभी एक बहुत बड़ा जानवर तालाब में पानी पीने आया था। उसकी आवाज बहुत ही तेज और भयंकर थी। बच्चों दादी माँ ने पूछा, कितना बड़ा था वो जानवर? तो नन्हे मेंढक ने कहा, अरे बहुत ही बड़ा था। दादी माँ ने अपने चारों पैर फैलाकर और गाल फुलाकर कहा, वो इतना बड़ा था क्या? बच्चों वो छोटे से मेंढक ने कहा, अरे नहीं दादी, वो तो इससे भी बहुत बड़ा था। दादी माँ ने फिर गाल पेट फुलाकर कहा, इससे बड़ा तो नहीं होगा, है ना? तो नन्हे मेंढक ने जवाब दिया, नहीं दादी, वो तो इससे भी बहुत बहुत बड़ा था। दादी माँ ने अपने शरीर को और फुलाया। इस पर वो अपने शरीर को फुलाती गई। और बच्चों आखिर क्या हुआ सोचो, आखिरकार उसका पेट फट गया और वो मर गई। देखा बच्चों, ये कहानी बताओ तो सही कि हमें क्या सीख देती है। बच्चों थोथा अभिमान विनाश का कारण होता है। दादी माँ को बहुत अभिमान था, इसलिए उसका ये हाल हुआ। तो सोच समझकर पहले जानना चाहिए कि क्या परिस्थिति है, उस अनुसार हमें उसका समाधान ढूंढना चाहिए, बिल्कुल, है ना बच्चों? तो चलो अब सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सपनों

चलो बच्चों, आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास। आज शुरू करने वाले हैं हम तेनाली रामा की अनोखी दुनिया की किताब से एक नई कहानी। और पता है इसका शीर्षक क्या है? इसका शीर्षक है स्वर्ण पिंडों की पहेली। तो चलो बिना देर किए मैं आपको ये किताब पढ़कर सुनाना शुरू करती हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पृथ्वी का कण कण हर क्षण एक नई रचना करने में मगन है। वायु सतत सन सन सन करती सृष्टि में मस्ती का संचार करती रहती है। सूर्य उदित होकर संसार को उजालों से भरता है और गतिशील होने के लिए ऊष्मा प्रदान करता है। नदियां कल कल छल छल के निनाद के साथ बहती हुई जिधर से निकलती है उधर धरती में बीज अंकुरित करने की शक्ति भरती जाती है। इनमें से कोई भी अपने कार्य का न तो मूल्य मांगता है और न कभी किसी से किसी तरह की बाधा या अड़चने आने की बात कहकर थोड़ा विश्राम करने की इच्छा व्यक्त करता है। कार्यों की निरंतरता ही जीवन की सफलता की कुंजी है। तो महाराज कृष्णदेव राय अपने सभासदों के साथ बैठे हुए थे। दरबार लगा हुआ था। तेनालीराम अपने आसन के पास खड़ा होकर बोल रहा था। उसकी बातें समाप्त होते ही कृष्णदेव राय ने अपने आसन से उठकर तालियां बजाई और तेनालीराम को गले से लगा लिया। उस समय दरबार में जीवन में सफल होने के उपाय विषय पर संभाषण हो रहा था। कई दरबारी आए और बोले, बड़ी बड़ी शास्त्रीय बातें होती रही। अंतिम वक्ता के रूप में तेनाली राम ने बहुत कम शब्दों में अपनी बातें दरबार में रखी और महाराज ने उसे विजेता घोषित कर दिया। तो बच्चों, इस तरीके से तेनाली राम ने अपनी प्रेजेंटेशन दी कि बहुत ही संक्षिप्त में उन्होंने सफलता के रहस्य को बता दिया, तो महाराज ने उन्हें विजेता घोषित कर दिया। तो ये तो आज पता चला हमें कहानी के पहले दिन में कि इस दिन तो तेनालीरामा विजेता घोषित हुआ, लेकिन क्या आगे भी कुछ और चुनौतियां मिलेंगी जिसमें क्या वो विजयी सफल हो पाएगा, क्या वो फिर से विजेता बन पाएगा? तो ये कहानी की कड़ी हम आगे फिर से शुरू करेंगे। उससे पहले चलिए हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सपनों की सैर को।

0: चलो बच्चों आ जाओ फटाफट रेडियो के पास और कर लो रेडियो का वॉल्यूम तेज, क्योंकि अब हम कार्यक्रम के अंतिम कड़ी पर आ चुके हैं। और अब पिछली कड़ी में परी ने जो सवाल पूछा था उसका जवाब भी तो जाना है ना। तो परी, पिछली कड़ी में आपने क्या पूछा था?
1: पिछली कड़ी में बच्चों हमने पूछा था पढ़ाई का साथी।

0: ज्ञान का भंडार, पन्नों में छिपा है संसार।
1: और बच्चों, इसका सही जवाब तो आप सभी ने दिया है, तो अपने लिए तो तालियां बजा ही लीजिए। सही जवाब है किताब।
0: हाँ बच्चों,
1: नॉलेज भी तो ऐसे बढ़ जाती है
0: और पढ़ना भी तो जरूरी है। तो बच्चों नोट कर लो आज की पहेली, पंख नहीं पर उड़ता है, देश विदेश में जाता है, लोगों को ले जाता है दूर, बताओ वो है कौन?
1: हाँ बच्चों, पंख के बिना उड़ता है, तो आप तो समझ जाओगे इसका सही जवाब क्या है। देश विदेश में भी सैर कराता है, तो इसका सही जवाब क्या है सोचो सोचो, और हमें 9414151415 पर वॉइस नोट और मैसेज करके भेज दो।
0: और बच्चों, भगवान को सॉरी और थैंक यू लिखना नहीं भूलना, वरना भगवान नाराज हो जाएंगे।
1: हाँ तो जल्दी जल्दी लिख लो दिल का हाल।
0: तो हम करते हैं गुड बाय, उसके पहले नींद का सफर अब शुरू हो जाए, सपनों का शहर फिर से बस जाए,
1: जो सोचो वो हकीकत बन जाए, बस ऐसे ही हर रात गुजर जाए।
0: गुड नाइट,
1: स्लीप टाइट, गुड बाय।
0: सुनते रहो,
1: मुस्कुराते रहो,
0: रेडियो मधुबन
1: 107.8 FM पर।

तो पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, पुरुषोत्तम महीना की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा आशना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। बुजुर्गों को कभी कम नहीं आंकना, कैसे जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, अभी नव तपा चल रहा है, तो कैसे हम नव तपा में सावधानी बरतेंगे, कौन से घरेलू उपाय हम आजमाएंगे जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, जरूर आप जानेंगे। फिर खुशनुमा जीवन के ढेर सारी बातें भी करेंगे। तो व्यंजन में मैं आपको आज बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट रेसिपी सिखाने वाली हूँ, वेस्ट में से बेस्ट। ठीक है, कैसे चीजों को सफल करना है, बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी आज जरूर सुनना आप। और आज का प्रश्न भी बहुत अच्छा रहेगा, तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: हेलो सर, मैं स्वाति बोल रही हूँ आपके खड़ी बैंक से। सर आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है सर।
1: सावधान रहें, ये एक स्कैम कॉल है। अपना ओटीपी या एटीएम पिन किसी के साथ भी शेयर ना करें।
2: गुड मॉर्निंग आशियाना में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार है, कभी भी वरिष्ठ नागरिकों को आप कम नहीं समझना, कभी भी बुजुर्गों को कम नहीं आंकना है। कैसे? तो आइए आज के विचार का विस्तार एक दृष्टांत के साथ करना चाहूंगी। बिस्तर पर लेटी हुई 83 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने अपने 87 वर्षीय बुजुर्ग पति से कहा, सुनो जी, मैंने बस खिड़की से बाहर देखा और सोचा कि गैरेज की लाइट जल रही है, क्या आप जाकर के गैरेज की लाइट बंद कर दोगे? बुजुर्ग व्यक्ति बड़ी मुश्किल से बिस्तर से उठे, एक खिड़की खोली और देखा कि 5 या 6 चोर उसके गैरेज के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। बुजुर्ग व्यक्ति ने वहां से नजदीकी पुलिस स्टेशन को फोन किया। हेलो, हाँ जी, देखो मेरा पता लिखिए, घर पर केवल हम दो बुजुर्ग पति पत्नी हैं। अभी 5-6 चोर हमारे गैरेज का दरवाजा तोड़ रहे हैं, जल्दी से पुलिस टीम भेजो। दूसरी ओर से प्रेषक की आवाज आई, हमने आपका पता लिख लिया है, अब अभी हमारे पास कोई टीम फ्री नहीं है, जैसे ही हम किसी टीम से संपर्क करेंगे मैं उन्हें आपके घर तुरंत भेज दूंगा। ये सुनकर के बुजुर्ग निराश हो गए, लेकिन दूसरी ओर चोर अभी भी गैरेज का ताला तोड़ने में लगे हुए थे। 2 मिनट बाद बुजुर्ग ने फिर थाने में फोन किया, सुनो अब किसी को भेजने की जरूरत नहीं है, मैंने 5 चोरों को गोली मार दी है। लाइन के दूसरी तरफ अफरा तफरी मच गई। 5 मिनट के भीतर हेलीकॉप्टर, पैरामेडिक, 3 डॉक्टर, 2 एम्बुलेंस के साथ एक पुलिस टीम बुजुर्ग व्यक्ति के घर पहुंच गई। 5 चोरों पर जल्दी ही काबू पा लिया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में पुलिस टीम के प्रभारी बुजुर्ग के पास पहुंचे और बोले, आपने कहा था कि उन 5 चोरों को आपने गोली मार दी, लेकिन हमने उन्हें जीवित पकड़ लिया। बुजुर्ग व्यक्ति ने उत्तर दिया, और आपने भी तो कहा था कि आपकी कोई भी टीम फ्री नहीं है, आप कैसे इतने झूठा लिए? तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, वरिष्ठ नागरिकों को कभी भी कम नहीं समझना है, ठीक है? इसलिए घर में बुजुर्गों की छत्रछाव होगी तो हम सभी सुरक्षित रहेंगे। यह आज का सुंदर सा विचार है जिस पर जरूर गौर करेंगे और सुनेंगे फिर से एक बहुत ही सुंदर गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: is Umashankar Misra, former director CBI, and you are listening to Brahma Kumari's community radio station. Radio Madhuban, keep listening, keep smiling.
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू उपाय। अभी नवतपा चल रहा है और नवतपा में आप सभी जानते हैं कि क्या हालत हो जाती है, कितनी गर्मी लगती है। तो नवतपा के दौरान सूर्य की गर्मी बहुत ही तेज हो जाती है, इसलिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है मेरे प्यारे श्रोता बंधु। तो नवतपा में क्या करें क्या नहीं वो आप जानेंगे। दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहिएगा। दूसरी बात, घर से निकलते समय सिर को कपड़े, टोपी या छाते से ढक करके निकलिएगा। तीसरी बात है नींबू पानी, छाछ, लस्सी, नारियल पानी और बेल का शरबत जरूर लेते रहिएगा। चौथी बात है हल्का और सुपाच्य भोजन करिएगा। पांचवी बात है खीरा, ककड़ी, तरबूज और खरबूजा जैसे मौसमी फल खाते रहिएगा। दोपहर 12 से 4 बजे के बीच तेज धूप में निकलने से बचने की कोशिश करिएगा। और अब मैं आपको और भी सुंदर उपाय बता रही हूँ। आप क्या करेंगे, एक गिलास पानी में नींबू और थोड़ा सा मिश्री मिला करके पीजिएगा, इससे शरीर तरोताजा रहेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऐसे नवतपा ऐसी गर्मी में एक गिलास पानी में नींबू और थोड़े से मिश्री मिला करके जरूर पीजिएगा, शरीर तरोताजा रहेगा। दूसरा उपाय भी बहुत सुंदर है, छाछ में भुना हुआ जीरा और काला नमक डाल करके जरूर पीजिएगा, इससे गर्मी से राहत मिलेगी। ठीक है, तो छाछ पीनी है, छाछ में भुना हुआ जीरे का पाउडर और काला नमक जरूर डाल करके पीजिएगा, इससे गर्मी से राहत मिलेगी। पुदीना और धनिया का शरबत शरीर को ठंडक प्रदान करता है, तो पुदीना और धनिया का शरबत बना करके भी जरूर पीजिएगा। ठीक है, और क्या नहीं करना है, खाली पेट धूप में नहीं निकलना है, बहुत ज्यादा तला भुना और मसालेदार भोजन नहीं करना है, धूप से आकर तुरंत बर्फ जैसा ठंडा पानी नहीं पीना है। तो कहा जाता है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, नव तपा की तपिश चाहे कितने भी बढ़ जाए, यदि हम पानी, परहेज और सावधानी का साथ निभाए तो स्वास्थ्य और मुस्कान दोनों सुरक्षित रह जाए। तो बस स्वास्थ्य को भी सुरक्षित रखना है तो हमारी मुस्कान तो बनी ही रहेगी। ठीक है ना, पहला सुख निरोगी काया, तो परहेज भी जरूर रखिएगा। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो नव तपा का असर आप पर नहीं होगा और आप स्वस्थ रहेंगे। ये हुए घरेलू उपाय। आइए आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर है, 12 महीनों का नाम बताइएगा हिंदी में। 12 महीने में कौन कौन से नाम आते हैं, हर महीने का नाम है हिंदी वाले, इंग्लिश वाले नहीं बताना है, हिंदी वाले नाम आपको बताना है। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और अभी यहीं पर एक कल विराम लेकर के पुनः रूबरू होंगे खुशनुमा जीवन में, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

जीवन में सुख चाहिए तो सुख देना सीखिए। किसी के सुख से झलने या किसी को दुखी करने से सुख नहीं मिलता। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में खुशनुमा जीवन का विषय आपके समक्ष रख चुकी हूँ। आप जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है, जो मैं फिर से दोहरा रही हूँ। 12 मास के हिंदी में नाम बताइएगा। तो प्रश्न का जवाब भी देना है, विषय को भी स्पष्ट करना है। नंबर रेडियो मधुबन का है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के विषय में आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। आज के प्रश्न का आप जवाब भी दे सकते हैं। आज का विषय फिर से दोहरा रही हूँ, जीवन में सुख चाहिए तो सुख देना सीखिए। किसी के सुख से झलने या किसी को दुखी करने से सुख नहीं मिलता है, क्या कहेंगे आप? बहुत ही सुंदर विषय है और प्रैक्टिकल विषय है कि भाई सुखी तो सभी बनना चाहते हैं, कोई भी हो, एक्स वाई जेड, छोटा बड़ा कोई भी व्यक्ति हमेशा यही चाहता है कि बस मैं हमेशा सुखी रहूं, खुश रहूं। लेकिन ये नहीं पता होता है कि हम कैसे सुखी रहेंगे, कैसे खुश रहेंगे। किसी की खुशियां छीन करके हम कभी सुखी नहीं हो सकते, कभी खुश नहीं रह सकते, है ना। इसलिए पहली बात तो ये भूल ही जाइएगा कि किसी को खुशियाँ छीननी है। दूसरी बात ये भी है कि कितनी बार लोग सामने वाले को कमेंट करते हैं, सामने वाले को परेशान करते हैं, तो भी जब हम सामने वाले को परेशान करेंगे और फिर सोचते हैं कि हम खुश

0: रहे हम सुखी रहे तो हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। इसलिए ये भी बात भूली जाइए। तीसरी बात यह है कि देखिए, लोग नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, दूसरों से घृणा करते हैं, तो कैसे भाव उत्पन्न होते हैं? यह आप सभी समझते हैं ना कि किसी को नफरत, किसी से घृणा करेंगे तो उसके पहले वो सारे जो नेगेटिव थॉट्स है वो हमारे अंदर आएंगे, तो बेचैनी किसको होगी? हम ही को होगी ना। उन तक तो जब पहुंचेगी तब पहुंचेगी। चलिए, हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो
1: हेलो, नमस्कार, ओम शांति। हमारी
0: हाँ जी, नमस्ते दयाराम जी, कैसे हो आप? दयाराम जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हाँ जी, बहुत ही स्लो आ रही है आपकी आवाज, बहुत ही धीमी आ रही है।
1: अभी धीमी आ रही है, अभी आ रही है।
0: हाँ, अभी ठीक आ रही है। तो आज
1: आवाज आ रही है।
0: आप बाहर है क्या?
1: मेरे घर से बाहर में की ओर जा रहा था बस में, तो अभी मेरे प्रिय भाई सुरेश भाई का मुझे कॉल आया, बताया कि बहन आ गए स्टूडियो में। और
0: जी जी, आशियाना कार्यक्रम सीधा प्रसारण है, आप कोई भी जुड़ सकते हैं। तो आज के प्रश्न का जवाब देंगे
1: जी? अभी मैंने पूरी तरह तो प्रश्न का जवाब भी नहीं सुन रहा है, मैं बस में हूँ तो थोड़ा पूरा कार्यक्रम सही से नहीं सुन पा रहा हूँ।
0: ठीक है, आप मैसेज भेज दीजिएगा अगर जवाब मिल जाए तो, ठीक है। और आज का विषय है, जीवन में सुख चाहिए तो सुख देना सीखिए। किसी के सुख से झलने या किसी को दुखी करने से सुख नहीं मिलता, क्या कहेंगे आप?
1: जी, बिल्कुल। तो जीवन में हम किसी के साथ रहना तो खुशी से रहना है, उसके सुख में हमें भाग लेना है, तो किसी को अपने दिल को ठेस नहीं पहुंचानी है। किसी जितना हो सके अपने सकारात्मक सोच के साथ रखे, उसके भीतर भी भरनी चाहिए हमारे। तो दीदी, मैं बात ज्यादा तो नहीं करना चाहूंगा, तो लोगों की आवाज बहुत आ रही है, बस मैं हूँ इसलिए।
0: अच्छा अच्छा, ले कोई बात नहीं, फिर भी आप जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। हाँ जी हाँ जी, जरूर, ठीक है, थैंक यू। तो ये थे दयाराम जी रामपुरा से, आप कहीं बाहर हैं फिर भी आप रेडियो से जुड़े हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं? आशियाना कार्यक्रम सीधा प्रसारण है, आप सीधे ही जुड़ सकते हैं और आज के विषय को स्पष्ट भी कर सकते हैं, आज के प्रश्न का जवाब भी दे सकते हैं। आज का प्रश्न है, 12 मास का नाम बताना है हिंदी में, और विषय बहुत ही सुंदर है, जीवन में सुख चाहिए तो सुख देना सीखिए। किसी के सुख से जलने या किसी को दुखी करने से सुख नहीं मिलता, क्या कहेंगे आप? तो जैसे कि आपको बता रही थी कि तीसरी बात, हम घृणा, नफरत, ईर्ष्या करते दूसरों से, तो हमारे अंदर उससे पहले नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तभी जा करके हम लोगों से नफरत करते हैं, घृणा करते, ईर्ष्या करते हैं, और फिर हम चाहते हैं कि हम खुश रहे, सुखी रहे। कैसे रह सकते हैं? चेहरे के भाव ही बदल जाते हैं, चेहरा हमेशा खुशनुमा दिखाई देना चाहिए, लेकिन जब हम दूसरों से नफरत करते हैं तो पहले अपना चेहरा देखिए कि हमारा चेहरा कैसा हो गया है। तो चलिए, हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहेंगे। हेलो हेलो, चलिए, जो भी जुड़ना चाहते हैं बात जरूर करिएगा। और वो कहते हैं कि सुख चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, जीवन में सुखी बनना है तो क्या करना पड़ेगा? अच्छे मन को रखना पड़ेगा, है ना? एक अच्छा मन होगा तभी तो हम सुखी रह पाएंगे ना। पॉजिटिव संकल्प चलने चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचे, सुखी रहने के बहुत सारे टिप्स है। हेलो
2: अजय जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुरेश भाई बोलता हूँ जटाना से, कैसे हो दीदी?
0: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो मधुबन में, हम बहुत अच्छे हैं, आप सुनाइए, आप कैसे हो?
2: भी बहुत अच्छे हैं, और बहुत दिनों के बाद आपसे आज बात हो रही है
0: जी।
2: तो खुश है बहुत, क्योंकि हम तो आपका इंतजार हरदम करते हैं, हम तो जो आपका कार्यक्रम तो सुनते थे, लेकिन जब तक आए वो तब तो रेडियो को रिकॉर्डिंग सुनते थे, लेकिन अब तो आप आ गए हैं, लाइव कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। आज हमारा जो सभी मित्रों को भी हमने बता दिया है कि आप जरूर बात कीजिए, तो
0: जी जी थैंक यू
2: बता दिया, और मित्र भी धीरे धीरे सभी बात करेंगे
0: जी।
2: और बहुत अच्छे दीदी, आप कैसे हो?
0: हम एकदम अच्छे हैं भैया,
2: बस अच्छे रहना है। और आप खुशनुमा जीवन क्या बात है दीदी, मैंने नहीं सुना था।
0: हाँ जी, खुशनुमा जीवन का विषय मैं फिर से सुना देती हूँ। जीवन में सुख चाहिए तो सुख देना सीखिए। किसी के सुख से झलने या किसी को दुखी करने से सुख नहीं मिलता, क्या कहेंगे आप?
2: बिल्कुल सही बात है दीदी। कभी कभी देखते हैं ना हम, किसी बहुत कोई लोग बहुत सुखी होते हैं तो हम ऐसा कहते रहे ये तो बहुत सुखी है, हम दुखी है, इसको हम कैसे सुखी हो, ऐसे हम मन में ऐसा चिंता करते हैं दीदी। और दूसरों को हम नफरत करते हैं, कोई अच्छे होते तो इसके सामने हम अच्छी तरह से नहीं देख पाते, रहे भाई वो तो आगे चला गया मैं पीछे रह गया, ऐसा नहीं करना है दीदी, ऐसा नहीं करना। आज लोग ऐसा ही कहते हैं, कोई आगे जाते हैं अच्छे रहते हैं सुखी होते हैं तो दूसरा सामने वाला चिढ़ाता है, अरे ये तो कैसे सुखी हो गया, इसको हम सुखी नहीं देख सकते। कई के लोग ऐसे रहते दिखते किसी का सुख नहीं देख सकते, तो ऐसा नहीं करना है। हम तुम किसी का जो दुख बांटेंगे तो हम भी सुखी होंगे और सामने वाला भी सुखी होंगे,
0: जी
2: ऐसा नहीं करना है। हम सामने वाला सुखी हो तो हमको ज्यादा सुखी रहना चाहिए, चलो भाई हम भी सुखी हैं, तो ऐसा ही समझना है। कई कई बार ऐसा नफरत करते हैं लोग, ऐसा नफरत नहीं करनी है किसी के सामने।
0: जी
2: जी दीदी
0: बिल्कुल
2: जी,
0: तो
2: नमस्ते दीदी।
0: हाँ जी, बहुत बहुत आभार आपका सुरेश भाई। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से, आपने विषय को स्पष्ट करने की बहुत ही अच्छी कोशिश की है। अब आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के विषय में आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, आज के प्रश्न का जवाब भी दे सकते हैं। आज का प्रश्न है 12 मास के हिंदी में आपको नाम बताना है। आप चाहे तो व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हैं, ठीक है। और विषय बहुत सुंदर है, जीवन में सुख चाहिए तो सुख देना सीखिए। किसी के सुख से झलने या किसी को दुखी करने से सुख नहीं मिलता, क्या कहेंगे आप? हेलो, हाँ जी कंचन भाई नमस्ते, जन्मदिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: आपको भी ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। काफी दिनों के बाद आज लाइव प्रोग्राम है तो बहुत अच्छा लगा
0: जी।
3: और मुझे तो पता नहीं था लेकिन सुरेश भाई ने भी नहीं बताया, आपने बताया आज,
0: मैंने कहा गया सरप्राइज देते हैं कभी कभी वो भी अच्छा लगता है।
3: हाँ जी, सब कुशल मंगल घर परिवार।
0: हाँ जी हाँ जी, सब कुशल मंगल जी।
3: कपाटन गए थे अहमदाबाद,
0: जी जी जी,
3: महीना हो गए
0: काफी घूम लिया इधर उधर।
3: मैंने सोचा कि गर्मी बहुत पड़ती है तो शायद छुट्टी में नहीं होती।
0: अच्छा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है,
3: तबीयत ठीक है।
0: जी जी ठीक है,
3: सभी कुछ
0: हाँ जी
3: पड़ती है तो बुजुर्गों को भी बहुत एक होता है, परेशानी होती है
0: जी।
3: और हमारी भी लग्न की सीजन जो वनवासी आदिवासी की चालू हो गई है जल्दी, एक महीने से करीबन।
0: अच्छा,
3: तो 4 बजे सुबह में उठ जाना पड़ता है, कपड़े तैयार कर देने पड़ते हैं क्योंकि लाइट फिर शाम को तो लाइट जो बारिश और ये पवन छूटता है तो बारिश लाइट चली जाती है तो फिर काम नहीं कर पाते, तो सुबह में ही करते हैं काम।
0: जी जी जी जी
3: ठीक है। लग्न के सीजन पुरजोश में चालू चल रही है अभी।
0: अच्छा,
3: वनवासी आदि
0: जी जी जी बिल्कुल, इन लोगों के अभी सीजन ही है जी। जो कि अभी तो भड़ली नवमी तक सभी के रहेगा शादी ब्याह का, अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है इसलिए 15 दिन और नहीं है शादी ब्याह, बाकी तो है ही है।
3: अभी तो 1 महीना चलेगा बहन जी, इस साल पैसे जो खेती का पैसे है ना
0: जी
3: लॉट करते हैं लोग, कपास के
0: जी,
3: तो क्लॉथ बिकता है जो भरा देते हैं, जिसके पास से लेते हैं उसको एक कपास दे देते हैं, ठीक है
0: जी।
3: तो पैसे तो अभी पांचवे महीने में आ जाने वाले थे, लेकिन अभी बोलते हैं सभी के भी छठे महीने में आएंगे पैसे।
0: अच्छा,
3: तो पैसों भी ना तो ये काम कैसे होता है
0: जी जी जी जी जी जी जी।
3: ऐसे अभी देर इस साल देरी से आने वाले थे छठे महीने में, अब आज आते छठा महीना शुरू हुआ
0: जी, आज फर्स्ट जून है,
3: आएंगे तो ये काम करेंगे शादी ब्याह का
0: जी,
3: लड़का और लड़कियों का
0: जी।
3: तो एक महीने अभी चलेगा, एक डेढ़ महीना एक महीना अभी चलेगा
0: जी ने? जी,
3: ऐसी परिस्थितियां है यहाँ की जो आस पास एरिया
0: जी।
3: और विषय तो मैंने सुना, विषय के बारे में बताऊ तो
0: जी,
3: संतोष कैसे रखना चाहिए, सुखी कैसे रहना।
0: हाँ जी, जीवन में सुख चाहिए तो सुख देना सीखिए, किसी के सुख से जलने या किसी को दुखी करने से सुख नहीं मिलता, क्या कहेंगे आप
3: जी। जी, तो मैं शॉर्टकट में थोड़ा बताता हूँ कि भाई संतोष ही ना सदा सुखी
0: जी,
3: जीवन में किसी का ये देख के ये नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए
0: जी।
3: हमारे पास कुछ कुछ नहीं है और पीछे पड़ जाते हैं लोग, कोई किसी के पास कुछ होता है तो इसके कैसे इसे कैसे पाड़े
0: जी,
3: पैर पकड़ लेते हैं लोग, तो ये नहीं करना चाहिए
0: जी।
3: अभी क्या है कि भाई संतोष रखना चाहिए जीवन में, हमें इसे प्रभाव में कुछ किया है तो इसको मिला है, ठीक है
0: जी।
3: तो हमें भी कुछ करेंगे, ऐसी हरकतें नहीं करेंगे तो हमें भी मिलेगा, ऐसा भाव रखना चाहिए, संतोष रखना चाहिए जीवन
0: जी।
3: इतना मैं तो थोड़ा जान
0: जी जी
3: बोला, ठीक है
0: हाँ जी। और आज के प्रश्न का जवाब देंगे,
3: क्या है नहीं सुना मैंने।
0: आज का प्रश्न है, 12 मास का हिंदी में नाम बताना है, 12 महीनों का।
3: तो ऑफलाइन में बताऊंगा भाई,
0: ठीक है चलिए, बहुत बहुत आभार कंचन भाई। बाकी सभी अच्छे हैं ना, स्वास्थ्य बढ़िया?
3: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बेटी आई थी अभी 10 दिन यहाँ, मेरे वेकेशन था ना
0: जी,
3: तो मामा के घर जाना है, दो बेटे है तो बोलते थे तो सभी आए थे, तो कल गए
0: जी।
3: आज वो वस्ती के हमारे गुजरात में तो चालू हो गया है वस्ती गणतंत्र
0: जी, राजस्थान में भी चल रहा है जनगणना।
3: हाँ जनगणना तो चालू हो गया है आज से, तो वो गए कल आए।
0: अच्छा,
3: शाम को गए
0: जी,
3: सभी कुशल मंगल है बे।
0: अच्छा चलिए, बहुत बहुत आभार आपका
3: सभी दोस्तों को, आपको नमस्कार
0: जी। तो ये थे कंचन भाई मंडाली से, आपने भी विषय को अच्छा स्पष्ट किया है। आइए अब यहाँ पर एक कल्पविराम लेकर के पुनः इसी विषय पर चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है। कैसे हम छोटी छोटी बातों को अगर इग्नोर करते हैं, जीवन से निकाल फेंकते हैं, तो हमारे जीवन में खुशियाँ बनी रहती है। और छोटी छोटी बातों में अगर हम उस पर गौर करते हैं तो तनाव में आ जाते हैं। तो कैसे इन छोटी छोटी बातों को आप अपने जीवन से निकालोगे, तो बहुत ही सुंदर विषय है। जीवन में सुख चाहिए तो सुख देना सीखिए। किसी के सुख से जलने या किसी को दुखी करने से सुख नहीं मिलता। हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं। हेलो।
3: हेलो, नमस्ते दीदी, ओम शांति। आपको और सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। सुरेश भाई दानी राशि।
2: हाँ जी, नमस्ते सुरेश भाई, कैसे हैं आप?
3: बस दीदी अच्छे है। बहुत बहुत दिनों से बात हो रही है तो बहुत अच्छा फील हो रहा है दीदी। और प्रोग्राम तो रोज सुनते थे
2: जी,
3: तो लाइव में जुड़ने का कुछ और ही मजा है।
2: ये तो सही कहा आपने जी।
3: अच्छे विषय पर अच्छे विचारों के साथ जो लोग हमें सुने, तो हमें भी अच्छी प्रेरणा और हमारे जीवन में कुछ न कुछ अच्छाई जरूर आएगी।
2: जी बिल्कुल
3: जी जी जी जी। और विषय भी बहुत अच्छा लेके आए हैं, और जो प्रश्न का जवाब तो मैं देने की कोशिश करूंगा मैसेज के जरिए।
2: जी जी जरूर।
3: तो दीदी मैं पहले ये बताओ कि अच्छे विचारों के साथ हम रहना चाहिए दीदी, ताकि हमारे अंदर कोई ऐसा विचार ही न आए कि किसी को दुख पहुंचाना है। और वो अच्छे विचार कहाँ से आए कि हम एक अच्छी तरह से साफ सुथरा जीवन आध्यात्मिक के साथ अच्छे लोगों के साथ और अच्छे माहौल में साथ रहे, तो ना तो हम किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं और ना कोई हमें तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं दीदी।
2: जी बिल्कुल।
3: बात रही दीदी ये कि कोई सुखी इंसान है तो जैसे दोस्तों ने बताया ना कि टांग खींचने की कोशिश करते हैं, अरे टांग नहीं खींचनी, उससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि चलो ये सुखी इंसान है, कोई धनी है या किसी भी चीज से जो सुखी है, तो हम क्यों नहीं हो सकते। हमें भी भगवान ने जो अमूल्य जीवन शरीर सब दिया है, तो हम क्यों उनको गिराने की कोशिश करते हैं, या जितने हम गिराने की कोशिश करें इतने मेहनत क्यों नहीं कर लेते उनके साथ चलने की, या उससे भी आगे बढ़ जाने की कोशिश करते। तो मेरा ख्याल है कि हमारे जीवन में सब जो सुखी धनी व्यक्ति को मिलता है इस संसार में, जो हमें भी मिलता है, नजरिया लोगों का होना चाहिए कि कैसे रहना है और क्या करना है। और कोई फायदा नहीं किसी को दुख पहुंचाने का, सिर्फ सुख हो पहुंचाइए। अगर कोई हम किसी को सुख देते हैं और वो लोग हम दुखी देखना चाहते हैं या दुख देते हैं, तो उसके कर्म पर छोड़ देना चाहिए हमें, और उनके जैसा नहीं बनना चाहिए। अगर उनके जैसे बनेंगे ना, तो ना तो उन देशों में और हमारे में कुछ फर्क ही नहीं रहेगा, तो फिर इंसान और इंसानियत ही नहीं रहेगी दीदी।
2: जी बिल्कुल दीदी। बिल्कुल
3: हाँ। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा सभी रेडियो मधुबन लिसनरों को, और कोई सुन भी रहा है तो और भी ऐसे विषय और इस विषय को बताइए कि दुख देने से बजाय सुख लेने की कोशिश करिए और सुख देने की कोशिश करिए। अगर चलो हमारे जीवन में कलयुग है तो ऊंचा नीचा रहेगा, तो ये कष्ट किसी भी प्रकार का झेलने की ताकत रहनी चाहिए। और सिर्फ एक स्लोगन है कि विचार अच्छे रखो दीदी। जी दीदी
2: जी
3: जी। नमस्ते नमस्ते
2: जी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार सुरेश भाई। तो ये थे सुरेश भाई दानेराव से, आपने भी विषय को बहुत अच्छा स्पष्ट किया है, आपने बताया है कि हमेशा उच्च और श्रेष्ठ विचार रखने चाहिए। बिल्कुल, विचार तो सबसे पहले मन के अंदर उत्पन्न होते हैं, है ना, तो पॉजिटिव सोचेंगे तो खुशियां बनी रहेगी। हेलो,
4: हाँ नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ। शांति।
2: हाँ जी नमस्ते फिरोज भाई, कैसे हो आप?
4: बस एकदम मस्ते हैं
2: जी।
4: रेडियो मधुबन परिवार को आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, और कंचन भाई और ताहिर भाई के जो जन्मदिन है, तो
2: और आपका भी, आपका भी आज जन्मदिन है, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं।
4: थैंक यू।
2: हमेशा खुश रहिए और इसी तरह रेडियो से जुड़ते रहिए। सभी श्रोता बंधुओं के प्रति हम शुभकामना रखते हैं, सभी खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जी
4: नहीं नहीं नहीं सही सही बात है जी। आपका तो पूछो ही मत।
2: अच्छा,
4: सभी के ऊपर मालिक जो राम राम नजर रखता है, ऐसी आपकी भी राम नजर है सभी श्रोता भाइयों पे।
2: जी तो आज के विषय के बारे में क्या कहेंगे आप? आज का विषय है जीवन में सुख चाहिए तो सुख देना सीखिए, किसी के सुख से झलने या किसी को दुखी करने से सुख नहीं मिलता।
4: सही बात है, सही बात है। नहीं नहीं बोली है कि सुख के सब साथी दुख का न कोई, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुख के अंदर भी साथ देना चाहिए और दुख के अंदर भी साथ देना चाहिए, और किसी का सुख देख के अपने को ये नहीं करना कि नहीं मालिक उसको दिया कल अपने को भी देगा, उसको दिया तो अपने को भी मदद करेगा, तो ऐसा होना चाहिए अपने मन में। और किसी को दुख देख के भी, किसी को दुख देते हैं तो फिर भी अपने को पछताना वारा होता है
2: जी।
4: भाई इसको दुख दिया चलो भाई, फिर दूसरे दिन जाके फिर माफी मांगने का आए, ऐसा क्यों बोलने का अपने को
2: जी।
4: हाँ
2: चलिए बहुत सुंदर। और आज के प्रश्न का जवाब देंगे आप?
4: हाँ जी बोलो।
2: 12 महीनों का आपको नाम बताना है हिंदी में।
4: हाँ नाम बताना है के वो कार्तिक कार्तिक कार्तिक महा फागुन चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन और भादो और आसो।
2: जी दो नाम रह गए, 10 बताए आपने। कोशिश करिएगा आ जाएगा, नहीं तो आप मैसेज के द्वारा भी जवाब दे सकते हैं, ठीक है?
4: जी जी जी
2: हाँ जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई, पुनः आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
4: थैंक यू। जल्दी जल्दबाजी में थोड़ा दो नंबर रह गया।
2: जी जी वो आप याद करिए, आ जाएगा, ठीक है?
4: जी जी
2: हाँ जी, वो फिर भी आप जवाब दे सकते हैं।
4: जी जी
2: तो ये थे फिरोज भाई, आपने भी विषय को बहुत अच्छा स्पष्ट किया है। आज हमारे बहुत सारे श्रोता बंधुओं का जन्मदिन भी है, तो बहुत ही खुशी का दिन है, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और आज का विषय यही है कि जीवन में सुख चाहिए तो सुख देना सीखिए, किसी के सुख से झलने या किसी को दुखी करने से सुख नहीं मिलने वाला, ठीक है? तो जो हमें चाहिए उसका क्या करना पड़ेगा, पहले हमें देना पड़ेगा। चाहिए चाहिए की लिस्ट कभी खत्म नहीं होती, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन चाहिए से पहले जो भी चाहिए आप दीजिएगा, दूसरों को दीजिएगा, आपको भी मिल ही जाएगा। वो कहते हैं ना तेरे भाने सबका भला, तो हम किसी को देना सीखेंगे तो वो वाइब्रेशंस वायुमंडल में फैलेंगे और लौट करके हमारे पास ही आएंगे। कहते हैं ना क्रिया की प्रतिक्रिया होती ही है, अच्छा देंगे तो अच्छा मिलेगा भी। इसलिए सुख चाहिए अच्छी बात है, सभी सुखी रहना चाहते हैं, सभी निरोगी रहना चाहते हैं, सभी यही सोचते हैं, लेकिन बस हमें इतना सा ध्यान देना है कि जो हमें चाहिए वो हमको सभी को देना है, ठीक है? तो चेहरा हमेशा खुशनुमा रखिएगा, अच्छे देखिए, जैसे सबसे पहले बताया था कि विचार अच्छे होना चाहिए, है ना, तो विचार अच्छे होंगे तो चेहरे की मुस्कुराहट बनी रहेगी, मुस्कुराहट को देख करके हर कोई खुश होगा कि ये बंदा हमेशा खुश रहता है। चलिए पहले हम अपने श्रोता बंधु से बात करेंगे। हेलो
4: बहन जी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ।
2: हाँ जी फिरोज भाई,
4: एक कार्तक माघसर पोष महा फागुन चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादरो आसो।
2: ठीक है फिरोज भाई, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिरोज भाई ने अच्छी कोशिश की है, और पूरा ही जवाब दिया है, तो आप भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फिरोज भाई ने जवाब दे दिया तो अब हम क्यों देवे। अरे आप भी बोल के बताइए ना, आपको याद है तो बोलिएगा, और अच्छी बात है ना, स्पीड बनी रहेगी, है ना, और भूलेंगे भी नहीं, दोहराने से कभी भूलते नहीं है। तो विषय आज का यही है कि कोई सुखी है तो उससे जलना नहीं है, ईर्ष्या नहीं करनी है। आजकल ज्यादातर ऐसा ही होता है। हेलो,
5: हाँ दीदी नमस्ते, सुरेश भाई बोलता हूँ जटाना से, क्योंकि मैं भी रह गया था हमारे मित्रों का नाम देने के लिए जन्मदिन का
2: जी।
5: तो मैं बताऊँ दीदी, हमारे बहुत पुराने, पहले तो हमारे बहुत पुराने मित्र थे डॉक्टर जय हरदी भाई इकबाल गढ़ वाले
2: जी,
5: तो इसका भी जन्मदिन है। दूसरा हमारे जयराम भाई जोशी, वो धारूसन से थे, उसका भी जन्मदिन किए। और हमारे और मित्र हैं आफिर भाई, बहुत पुराने मित्र, सब शुरुआत हुई तब का, उसको भी हमारे मित्र ताफिर भाई को भी जन्मदिन की शुभकामनाएं। और हमारे मित्र कंचन भाई मंडाली वाले, उसका भी जन्मदिन है। तो ये सभी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। और एक मित्र रह गया हमारे, जो राधनपुर वाले हमारे रमेश भाई था, वो भी, इसका भी जन्मदिन था। और हमारे और एक सीपुर वाले, सीतपुर वाले हमारे भूपत सिंह, उसका भी जन्मदिन है। तो हमारे सभी सारे सभी सारे मित्र को हमारी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। सभी हमारे मित्र खुश रहे, आनंद में रहे और हर दम मुस्कुराते रहे, ऐसी हम शुभकामना देते हैं हमारे सभी मित्र को। दीदी नमस्ते
2: जी, बहुत बहुत आभार। अच्छा है आपने सभी का नाम सुना दिया। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से। आप देखिए पुराने सभी श्रोता बंधुओं का नाम सहित आप जानते हैं, और उनका जन्मदिन है ये भी आपको पता है, कितनी अच्छी बात है। तो इसीलिए हम कह रहे थे कि हमारे बहुत सारे श्रोता बंधुओं का जन्मदिन है, तो हमने आपके लिए गीत भी बनाया जो हम कार्यक्रम के अंत में बोलेंगे। लेकिन अभी विषय की बात चल रही है कि कैसे हम अपने जीवन को खुशनुमा बना सकते हैं और कैसे हम दूसरों को सुखी देख करके जलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के सुख को देख करके जलते हैं, वो कहानी जग जाहिर है। आप सभी जानते हैं कि एक बार एक व्यक्ति बहुत ईश्वर को याद कर रहा था, भगवान ने कहा कि मैं आपसे बहुत खुश हूँ, वरदान मांगो, क्या चाहिए आपको। तो उसने कहा कि भाई मेरे पड़ोसी की एक आंख फूट जाए। भगवान ने कहा अच्छा, लेकिन पहले से ही उन्होंने शर्त रखी थी कि भाई सोच समझ करके मांगना, जो भी मांगो, दूसरों के लिए एक मांगोगे तो डबल आपको मिलेगा। तो फिर बोलो आपको क्या चाहिए, तो बोले पड़ोसी की एक आंख फूट जाए। बोले अच्छा, तो पड़ोसी की एक आंख फूटेगी तो आपकी दोनों ही फूटेगी, है ना। तो दूसरों के सुख से हमें नहीं झलना है। अच्छी बात है ना, कोई सुखी है तो चलो खुश होना चाहिए कि चलो दुनिया में कोई तो सुखी है। तो दूसरों के सुख को देख करके जब हम खुश होते हैं ना, तो ईश्वर उन पर खुश होता है, और जो भी परिस्थितियां आई होती है वो टल जाती, वो चली जाती है, और एक दिन हम भी इसी तरह सुखी हो जाते हैं। इसलिए हमेशा दूसरों को सुख दो। सुख देने में ऐसा नहीं कि अब सुख कैसे दूँ कैसे दूँ, भाई मीठी वाणी से बात करिएगा, किसी से प्रेम से आप व्यवहार रखिएगा, किसी की हेल्प कर लीजिएगा छोटी मोटी, और कम से कम किसी को हम वो कहते हैं ना कि बहुत खुशियां नहीं दे सकते, तो किसी को दुख मत दीजिएगा, किसी की बातें मत करिएगा, निंदा मत करिएगा, कमेंट मत कसिएगा, ईर्ष्या मत रखिएगा और घृणा मत करिएगा, तो भी आप सुखी रहेंगे, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव सारे निकल जाएंगे ना हमारे जीवन से, तो हम सुखी ही है। इसलिए इन बातों को हावी मत होने दीजिए, इन जो नेगेटिव बातें हैं ना, इनका प्रभाव अपने जीवन में मत पड़ने दीजिए, तो हम सुखी ही है और सुखी रहेंगे। अगर पड़ भी गया है तो उनको जल्दी से निकालिए, तो हमारा जीवन सुखी रहेगा, खुशनुमा बन जाएगा। तो यही खुशनुमा जीवन का राज है। और आइए आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, 12 मास का आपको नाम बताना है हिंदी में। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आप आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। आप चाहे तो व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा भी भेज सकते हैं। और अब सभी के जन्मदिन के लिए सुनेंगे एक प्यारा सा बर्थडे सॉन्ग, और उसके बाद पुनः लौटते हैं। तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण मंगल, शूद्र का चरना, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि वेस्ट में से बेस्ट आज आपको सिखाऊंगी और सीजनेबल रेसिपी। ठीक है, तो पधारी आशियाना के किचन में पेन और डायरी लेकर के, ठीक है, सामग्री लिखिएगा। आज मैं आपको गुटली की सब्जी बनाना सिखा रही हूँ। कैरी, जो मीठी पकी हुई कैरी जिसका हम आम भी कहते हैं, ठीक है, तो आम तो हम खाते ही है, ठीक है, छिलका फेंक देते हैं, गुटली फेंक देते हैं और जो अंदर से पल्प निकलता है वो हम सभी खाते हैं, उसका जूस भी बनाते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन गुटली हम फेंक देते हैं, तो वो वाली गुटली फेंकनी नहीं है। कैसे सब्जी बनाई जाती है मैं जरूर सिखाऊंगी, लेकिन हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो
1: रमेश भाई, बोलो राधनपुर से बहन।
0: ओ नमस्ते रमेश भाई, केम छो? रमेश
1: बोलो
0: राधनपुर। हाँ, जन्मदिन ने तमने बहु बहु मुबारकबाद, केम छो?
1: मजा में बहन,
0: तबियत सारी ने? बहु दिवस पछी जोड़ाया तमे,
1: तबियत बिल्कुल सारी,
0: बहु दिवस पछी जोड़ाया। बधा मजा में?
1: बधा मजा में बहनो, आनंद में।
0: ओके,
1: तो तबियत सारा हम सारी।
0: जी जी, बहु सरस। आजे जन्मदिन छे तो सु तमे आजे खास करवाना छो?
1: आजे तो आनंद करू छु ने पेड़ के साये बैठा, लीप का साये।
0: अच्छा, हां हां, सरस ना?
1: करता हूं, कभी कभी करता रहता हूं।
0: अच्छा, चलो बहुत अच्छा है,
1: ठीक है
0: जी। बहुत बहुत आभार आपका और पुनः आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि हम गुटली फेंक देते हैं, तो उन गुटली को फेंके नहीं, ठीक है। आप जूस बनाने के लिए केरी काटते हैं ना, तो काटने के बाद आप क्या करेंगे, जो अंदर से गुटली निकलते ना उसके पल्प सारा निकाल दीजिए, फिर धुलाई करके धूप में सुखा दीजिए। जब ये सूख जाए तो इनको फोड़िएगा, फोड़ने के बाद अंदर से और गुटली निकलेगी। अब वो गुटली जो निकलेगी उनको आप काटिएगा, ठीक है, थोड़ा सा बारीक काटना है, बहुत मोटे मोटे पीसेस नहीं करने हैं, ठीक है, थोड़ा बारीक काटिएगा। काटने के बाद अब आप क्या करेंगे, बहुत जने क्या है उबाल करके सब्जी बनाते हैं इन गुटली को, लेकिन अगर आप बारीक काटते हैं तो उबालने की जरूरत नहीं। और ताजा गुटली है, जैसे आपने आम खा लिया, ठीक है, आम खाने के बाद उसको सुखा दिया और एक दो दिन में ही आप सब्जी बना रहे हैं, तो फिर उसको आपको बॉईल करने की जरूरत नहीं है। तो बारीक काट लिया, सामग्री में आप और ले लीजिए, हरी मिर्च ले लीजिए, राई लेना है, जीरा लेना है, सौंफ लीजिएगा और मेथी लीजिएगा, धनिया पाउडर लेना है, नमक लीजिएगा और हरी मिर्च, मीठा नीम, हरा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ठीक है। तो ये सामग्री है, तो बनाने का तरीका आपको सिखा रही हूँ। आप इन गुटली को बारीक काट लीजिए, कट गई, अब आप क्या करेंगे, कढ़ाई रखिए गैस पर, तेल डालिएगा कढ़ाई में, तेल गर्म हो जाए तो राई जीरे का छोक लगाइएगा। राई जीरे का तड़का लगाने के बाद ये साथ में आप सौंफ भी डाल दीजिएगा और फिर आप मेथी को थोड़ा सा कूट करके डालिएगा, ठीक है, अध कचरी करके डालना है आपको, साबुत मेथी नहीं डालनी है, ठीक है, ये भी डाल दीजिएगा। ये जब थोड़ा सा मसाला पक जाए तो हींग पाउडर डालिए, उसके बाद आप हरी मिर्च डालिए, मीठा नीम डालिए, ठीक है, और अब आप नमक डालिएगा। नमक डालने के बाद हल्दी पाउडर भी डाल दीजिएगा और ये गुटली जो बारीक काट रखी है वो भी डालिएगा। डालने के बाद अच्छी तरह हिला करके अब आप एकदम आँच को आपको स्लो ही रखना है, ठीक है, धीमी आँच पर फिट ढक्कन ढक के इसको थोड़ा सा सीजने दीजिए। जब ये थोड़े से चढ़ जाए उसके बाद ढक्कन हटा करके लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर डाल करके हिला करके फिर से 2 मिनट धीमी आंच पर पकाइए, उसके बाद गैस बंद कर दीजिए, ऊपर से आप हरा धनिया डाल सकते हैं। तो ये बन गई गुटली की सब्जी, बहुत स्वादिष्ट। मसाला थोड़ा सा तेज डालेंगे तो आपको अचार की तरह लगेगा और मसाला थोड़ा कम डालेंगे तो सब्जी की तरह लगेगी। अब वो आप पर छोड़ा है कि आप कैसा खाते हैं, ठीक है, लेकिन इनको वेस्ट नहीं जाने देना है। ये जो गुटली है ना, B12 हमारे जिसके भी B12 की कमी होती है या कमी हुई है तो उनकी पूर्ति करेगा, B12 बढ़ाएगा, ठीक है, और फायदा ही फायदा है, तो जरूर आप इन गुठली की सब्जी को बना करके इसका आनंद जरूर लीजिएगा। और जो भी हम सात्विक चीज बनाते हैं तो अपने इष्ट देव को भोग जरूर लगाइएगा। कहते हैं

भोग लगाने से भोगनाएं भागती है, इसलिए अपने इष्ट देव को भोग लगाने के बाद ही आप भोजन करिएगा। तो इस तरह आप और भी कोई सब्जियां सीखना चाहते हैं, कोई भी रेसिपी सीखना चाहते हैं, तो आप फोन कॉल्स करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, आपको 12 मास का नाम बताना है हिंदी में। ठीक है, जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर आप मैसेज भी भेज सकते हैं। और अब फिर से सुनेंगे एक गीत, उसके बाद पुनः रूबरू होंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: ये ले बहू, इसे पी जा।
1: ये क्या है माँ जी?
0: ये काढ़ा है, इसे पीते ही तेरा गर्भपात हो जाएगा।
1: नहीं माँ जी, अब बस, मैं और गर्भपात नहीं होने दूंगी। इससे पहले भी आपने मेरी बच्ची की जान ली है, इस बार मैं आपको यह पाप नहीं करने दूंगी, और ना ही इस पाप को मैं स्वयं करूंगी।
0: जुबान चलाती है, एक तो पोता दे न सकी, ऊपर से जुबान चलाती है। पोते के आस में बैठी हूँ, न जाने कब मेरी आँख बंद हो जाए।
2: क्या हुआ माँ, क्यों गुस्सा कर रही है, क्या बात है?
0: ये महारानी काढ़ा पीने से इनकार कर रही है।
1: मैं ये काढ़ा पीकर अपनी बच्ची की अब और हत्या नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बच्ची को नहीं मरने दूंगी। लड़का लड़का सुन सुनकर मैं तंग आ गई हूँ, मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए, वो भी जीवित।
2: माँ ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी बहू, बस अब बंद करो ये जानलेवा खेल, मुझे भी बच्ची ही चाहिए। मुझे लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता, आज के दौर में तो लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा सफलता पा रही हैं। बस अब बंद करो ये खेल, सब बराबर ही तो हैं आज।
1: भ्रूण हत्या करना मतलब आप स्वयं अपनी बेटी की हत्या का अपराध कर रहे हैं। क्या आप जल्लादा हैं? आप जल्लादा हैं? आप जल्लादा? नहीं ना।
3: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही है, काफ़ी अच्छे रहे हैं, सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करेंगे, और नुस्खे बहुत ही अच्छे दिए हैं। नवतपा चल रहा है, किस तरह सावधानियां बरतेंगे, कैसे आप किन चीज़ों को आजमाएंगे, वो सब आपने जाना है। फिर खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें हुई, वो भी बहुत ही अच्छी हुई। हमारे बहुत सारे श्रोता बंधु जुड़े हैं, मैं उनका नाम भी सुनाऊँगी अभी। और रेसिपी में जो आपको गुटली की सब्जी बनाना सिखाया है, ज़रूर बना करके खाइएगा, ठीक है। और आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर था, 12 महीनों का नाम हिंदी में आपको बताना है। तो देखिए जवाब दिया है, मैं पहले नाम बताना चाहूँगी। सही जवाब दिया है नीलम राठी आबू रोड से। फिर अलका जी काबरा कपासन से, सुरेश भाई जोटाना से, दयाराम भाई लाखनी से, कंचन भाई मंडाली से, फिरोज भाई पालनपुर से। सुरेश भाई आपने जवाब नहीं दिया है, विषय में जुड़े हैं धानेराव वाले। फिरोज भाई ने सही जवाब दिया है, प्रवीणा जी मुंबई से आपने भी सही जवाब दिया है। तो आप सभी के लिए पहले मैं ढेर सारी तालियां बजाना चाहूँगी। तो आज के प्रश्न का जवाब मैं सुना रही हूँ, 12 महीनों के नाम हिंदी में, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। तो ये नाम आप सभी ने सुनाए हैं जो सही है, और आप सभी विषय में भी जुड़े और विषय को भी स्पष्ट किया, इसके लिए ढेर सारी तालियां। आज का मीठा मोती भी सुनाना चाहूंगी, बहुत ही सुंदर है। किसी भी रिश्ते या इंसान से दुख पूछने का मतलब यही है कि हमारा उस रिश्ते या इंसान से लगाव बहुत गहरा है। अब मैं आपको जन्मदिन के मुबारकबाद गीत के द्वारा देना चाहूंगी। हमारे बहुत सारे श्रोता बंधुओं का जन्मदिन है, तो आप सभी के लिए गीत बनाया है मैंने, तो आप लेंगे गीत का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम हिंसा को नो स्वार्थ संस्थान के सहयोग से। वैसे तो ये कार्यक्रम पहले भी आप सभी ने सुना था, लेकिन इस बार कुछ नए विषय और बदलाव की बातों को लेकर आए हैं हम आपके बीच। दोस्तों, अक्सर हम घर परिवार में लड़का लड़की को लेकर बहुत सारी बातें करते हैं। लड़का ये करे, लड़की वो करे, लड़की हो तो ये पहनेगी, लड़का है तो ये खेलेगा। हमारी सोच और नजरिए के अनुसार हम अपने बच्चे और समाज को भी ढलते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या हमने कभी उनकी आवाज सुनने की कोशिश की? चलिए दोस्तों, आज उन आवाजों को सुनने की कोशिश करते हैं। उन आवाजों में हमारी अपनी आवाज भी कहीं छुपी हुई तो नहीं है?

0: हूँ।
1: ए मीना, जा भाई ने बुला, यो तगारो तो कन छत पे रखन आवे।
2: माँ, भाई की कटे जरूरत है, ला मैं राखे ना हूँ छत पे।
1: अरे तू रेवा दे बेटा, तू छोरी है, अत्रो वजन थारा सु कोनी तो की।
2: अरे माँ, ये छोरा और छोरी काई होवे, देख मैं उठा ली दियो वजन।
1: ध्यान सु बेटा।
3: मजबूत बने बचपन सबका, शक्ति है स्वरूप बेटियों का।
4: दो सखियां आपस में बात कर रही हैं, किस तरह की बातें कर रही हैं, आइए इसी कड़ी में आगे सुनते हैं।

0: गोलमाल है, गोलमाल है।
1: घर का सारा काम महिलाएं करती है, फिर भी बाहर निर्णय की जरूरत पड़ती है, तब कहते हैं तुम घर संभालो,

नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार जांगड़ा, हरियाणा पुलिस सेवा सुरक्षा सहयोग। हरियाणा पुलिस व होमगार्ड आपकी सेवा में हर समय तत्पर है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री। दोस्तों, हर एक एपिसोड में हम स्वास्थ्य के कुछ अलग अलग विषयों पर प्रकाश ले रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम सहजता से स्वस्थ रहने के तरीकों को सीख लें, और बेहतर यही होगा कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा जीवन में हासिल कर सकेंगे। व्यक्ति कुछ भी साधना करना चाहता है, भले वो पढ़ाई हो, नौकरी हो, या कला के क्षेत्र में, या किसी भी क्षेत्र में कुछ भी हासिल करना चाहे, तो शरीर का स्वस्थ रहना, मन का स्वस्थ रहना आवश्यक है। इस स्वास्थ्य के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आइए आज स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए और बेहतर बनाने के लिए क्या करने की जरूरत है, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी। पेशे से एक MBBS डॉक्टर हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में इनका एक लंबा अनुभव है, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं और साथ ही भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां से आज वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जहां पर इनकी अनेकों पीढ़ियां लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिलाती रही हैं, जहां पर परिवार में ही इनके अनेक पुश्ते डॉक्टर्स का काम करते रहे हैं। डॉक्टर साहब, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, हमने इन बातों को समझा कि प्रकृति चिकित्सा के आधार से जब हम ये समझते हैं कि स्वास्थ्य के कई आयामों में हम प्रकृति के तत्वों को सही तरीके से समझकर स्वास्थ्य को सही रखने में उनका इस्तेमाल करते हैं, वहीं प्रकृति चिकित्सा कहते ही लोग ये जो बात कहते हैं कि नहीं, वहां तो भाई आप खान पान में बहुत परहेज करनी पड़ेगी, खान पान आपका बदलना पड़ेगा। कई लोग तो प्रकृति चिकित्सा के नाम से भी लोग कहने लगते हैं नहीं नहीं वहां तो खाने ही नहीं देंगे, ये भी कहने लग जाते हैं। तो इन बातों को समझा जाए कि क्या प्रकृति चिकित्सा में भोजन के प्रति धारणा क्या है, भोजन क्या है, इन चीजों को समझे।
1: प्रकृति चिकित्सा में भोजन बंद नहीं किया जाता है। हम लोग यहां पर खाने को आधा, पानी को दुगना, कसरत को तिगुना और हंसने को चार गुना कर देते हैं, जिससे आपको संपूर्ण स्वास्थ्य मिले। हम कभी भी आपका भोजन बंद नहीं करते हैं, और बंद हम तभी करते हैं जब शरीर को उसकी जरूरत हो। हम आपको पानी, नींबू और शहद देते रहते हैं। आपका शरीर अपने भोजन तंत्र से पूरी शक्ति को निकालने में सक्षम है। आप जो भोजन करते हैं वह आपका शरीर उसमें से अपने लिए जो ताकत का सामान है उसको निकाल के अपने पास रख लेता है, और यदि उसको ज्यादा मिलता है तो वो उसको मोटापे के रूप में पूरे शरीर में इधर उधर डिपॉजिट कर देता है, ये सोच के साथ कि भविष्य में कभी अगर भूखमरी होगी तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर कॉमन टर्मिनोलॉजी में या रोज की भाषाओं में समझें कि हम और आप FD करते हैं, डिपॉजिटी में उसको लॉक करते हैं, यही सोचकर कि ये हम कभी भविष्य में हमें जरूरत होगी तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। एक बड़ी सीधी बात है, आप जितना खा रहे हैं उतना अगर आप पचा रहे हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। यदि आप ज्यादा खा रहे हैं, पचा रहे हैं और ज्यादा अपने शरीर में उसको डिपॉजिट करा रहे हैं तो आप बीमार पड़ जाएंगे। प्राकृतिक चिकित्सालय हमेशा आदर्श आहार की बात करता है। अगर हम इसे एक मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में इसको यूज करें तो हम लोग बैलेंस्ड डाइट के बारे में इस्तेमाल करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सालय हमेशा शाकाहारी भोजन की बात करता है, और वो ये कहता है कि प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है जो हमें पेड़ पौधों से मिल सकता है। अगर हम इस समय मॉडर्न भोजन को देखें तो हम एक तरह से पूरे भोजन को तीन बड़े भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक वेजिटेरियन फूड, दूसरा नॉन वेजिटेरियन फूड, और अब तीसरा जो बहुत जिसका प्रचलन प्रचार प्रसार हो रहा है वो है वीगन, जिसमें वो किसी भी जानवर का दूध और शहद इसका भी प्रयोग नहीं करते, और तीनों भोजन जैसे देश काल परिस्थिति के हिसाब से एकदम ठीक है। हम चिकित्सालय में, आरोग्य मंदिर में या किसी भी प्राकृतिक चिकित्सालय में आप जाइएगा, वहां पर शाकाहारी भोजन या वेजिटेरियन भोजन के बारे में ही बात की जाती है।
0: पहले तो ये बात समझी जाए डॉक्टर साहब, जब प्रकृति चिकित्सा में भी भोजन दिया जाता है, आप ये कहते हैं कि भोजन एक व्यक्ति के स्वास्थ्य में कितनी बड़ी भूमिका अदा करता है, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई रोटी कपड़ा मकान ये तीन बेसिक आवश्यकताएं हैं, तो लोग ये सोच लेते हैं कि भाई जो मिल रहा है उसे खा लेना चाहिए। क्या भोजन का स्वास्थ्य से कोई संबंध है? क्योंकि लोग तो यही समझते हैं कि भाई भोजन तो पेट भरने के लिए है, जो आपने खा लिया सो खा लिया। अब क्या इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम क्या खा रहे हैं?
1: मैं, आप और जितने श्रोतागण हमें सुन रहे हैं, हम सब एक कोशिका थे। हम अपने माँ के गर्भ में एक सिंगल कोशिका थे और उस कोशिका को अपने माँ ने एकदम अच्छा भोजन अपने रक्त से अपनी कोख में रख, सिंगल कोशिका जो एक कोशिका थी उसको डिवाइड करते करते करते करते अच्छा भोजन देते देते उसी से हमारा सिर मुंह नाक दोनों हाथ दोनों पैर हमारा पेट हमारे सारे अंग बने और हम बाहर निकले। तो हमें अच्छे भोजन और स्वस्थ भोजन का जो ज्ञान है वो तो अपनी माँ की कोख से ही मिला। आप देखिए कि एक प्रेग्नेंट लेडी को कितनी चीजें मना की जाती हैं कि ये मत खाओ ये मत खाओ, बच्चे पे बुरा असर होगा। आप सोचिए भैया, वहां एक माता ने 9 महीने अपने भोजन को कंट्रोल किया और वो भोजन किया जो कि उसके बच्चे और उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा था, और उसने वो कोई भी चीज नहीं खाई जो कि उसके बच्चे के और उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं थी, भले ही उसको कितनी भी वो चीज पसंद क्यों ना हो। तो बैलेंस्ड डाइट, आदर्श आहार का जो पौधा है जो बीज है वो एक माँ की कोख में ही डाल दिया गया है, प्रकृति ने उसे माँ की कोख में ही डाला। पर हम बाहर निकले, हमने अपने आप को प्रकृति से ज्यादा कलमन समझा, तो हमको जो मिला हम वो खाते चले गए। एक इंग्लिश का बहुत फेमस प्रोवर्ब है ना, आई लिव टू ईट, सम ईट टू लिव, आई लिव टू ईट, क्योंकि मैं जीवित ही इसीलिए कि मैं अच्छा खा सकूं। तो आप को माँ की कोख में जो आदर्श आहार और जो अच्छे आहार की जो बीज आपके अंदर डाला गया है उसको प्लीज बाहर निकल के भी थोड़ा सा सजा कर संवार कर रखें, उससे आपके और आपके शरीर के लिए दोनों के लिए अच्छा होगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले इंडिया में बहुत कम थी, विद टाइम हमारा न्यूट्रिशन बेटर हुआ, विद टाइम हमारे मेडिकल सर्विसेज बेटर, तो हम अच्छा होते चले गए। हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले 40-45 साल थी वो अब बढ़कर इंडिया में 65-75 ईयर्स हो गई है, जो पहले मैटर्नल मॉर्टेलिटी रेट की बच्चा देते समय माँ की मृत्यु हो जा रही थी, छोटे बच्चे सरवाइव नहीं कर पा रहे थे क्योंकि माँ को पोषण ठीक से नहीं मिला था, वो सब चीजें बेटर हो गई। और वो इसलिए बेटर हो गई क्योंकि हमने अच्छा भोजन और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम जागरूक हुए, हमने उसके ऊपर काम किया और आज हम सब अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बहुत बेटर कर चुके हैं।
0: तो अब बात ये होती है कि जब भोजन अब बेहतर होने लगा है, लोग बेहतर भोजन करने लगे हैं, तो बेहतर भोजन करने की वजह से लोगों का स्वास्थ्य भी बेहतर हो जाना चाहिए। आज मजेदार बात ये, अक्सर लोग देखते हैं कि नई नई बीमारियां हो रही हैं, जिन बीमारियों के बारे में, जैसे मैं अपने दादाजी के जमाने में उन चीजों के बारे में पूछता था तो वो कहते थे कि ये हमारे समय की बीमारियां नहीं है, ये अभी की उपज है, ऐसा वो कहते थे।

0: ये भी बात समझने की है, क्या भोजन के साथ ये बीमारी आई है या हम भोजन के प्रति सही अर्थों में जागरूक नहीं है, या सही अर्थों में स्वास्थ्य के लिए हितकारी भोजन क्या है उसको हम कैसे डिफाइन करें?
1: भैया आपने बोला कि भोजन बेहतर हो गया है, मगर भोजन बेहतर के साथ साथ ज्यादा हो गया है। तो जो जितनी बीमारियों की हमने बात की वो अधिकतर ज्यादा भोजन करने से हुई, और पैक्ड फूड और प्रोसेस्ड फूड ने इसमें चार चांद लगा दिया। तो ज्यादा भोजन, प्रोसेस्ड भोजन, पैक्ड भोजन और इंस्टेंट भोजन, इन चार चीजों ने पूरे के पूरे हमारे पाचन तंत्र का, हमारे स्वास्थ्य का कबाड़ा निकाल दिया। तो बेहतर भोजन करिए, कम भोजन करिए और स्वस्थ भोजन करिए। हमने शुरुआत में बोला अपने भोजन को आधा कर लीजिए। अभी जितने लोग को जो हमारे श्रोतागण सुन रहे हैं, अगर उनको कोई बीमारी हो, प्लीज आप कोई डाइटिशियन, कोई न्यूट्रिशनिस्ट, कोई भोजन के अभी सब कुछ को छोड़ दीजिए, अपने क्वांटिटी ऑफ फूड को 50% कर दीजिए। अपने भोजन में से प्रोसेस्ड एंड पैक्ड फूड को हटा दीजिए, आप देखेंगे 1 से 1.5 महीने में आप मोर देन 80% बेटर हो जाएंगे। सिर्फ इतना करने से। एक पुरानी कहावत भी है, वाणी से व्यवहार, वाणी से व्यापार, कि मतलब आपकी जिह्वा से ही व्यापार हो रहा है कि जिह्वा से व्यापार हो रहा है, और अब तो तीसरी चीज है वाणी से ही स्वास्थ्य, क्योंकि जिह्वा में ही जो चीज है उसको ही शांत करने के लिए, उसी स्वाद को शांत करने के लिए हम लोग भैया खाए चले जा रहे हैं। और इंग्लिश में एक और, मैं एक सबको एक लाइन और बोलता हूं, योर स्टमक इज नॉट अ डस्टबिन, प्लीज डोंट पुट वट एवर यू सी राइट एंड लेफ्ट। प्लीज एक एग्जाम्पल, हमेशा मैं जब अपनी मेडिकल की पढ़ाई खत्म किया था तो डिवाइन लाइफ सोसाइटी ऋषिकेश में मैं पढ़ रहा था, और वहां जब किसी दिन 2 कटोरी मिलती थी तो इसका मतलब था किसी भक्त ने आज खीर का प्रसाद दिया है। तो मैं हमेशा उस दिन करता क्या था कि मैं सब्जी जो कटोरी में लेनी थी उसको प्लेट में लेता था, और खीर पे मैं दोनों बार टिप करता था, दोनों कटोरियों पर टिप करता था, 2 कटोरी खीर खाता था। तो वहां पद्मनाभन जी महाराज जो वहां के डिवाइन सोसाइटी के हेड थे, उन्होंने ये देखा मेरा आचरण, 1 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते, तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोला डॉक्टर टुडे आई विल गिव यू अ फीस्ट ऑफ खीर, और उन्होंने मेरे सामने भैया 8 कटोरी खीर रखी, और कटोरी नहीं वो टेक्निकली कटोरा था। भैया मैंने पहला बड़े चाव से खाया, दूसरा खाया, तीसरा खाया, चौथे में थोड़ा सा अनईजी हुआ, फिफ्थ में मेरा पेट दर्द होने लगा, बोले नो डॉक्टर टू मोर। मैंने कहा स्वामी जी आई विल वॉमिट, बोले दिस आई वॉन्ट टू टेल यू, वट एवर यू ईट इट शुड बी इन अ कंट्रोल्ड क्वांटिटी, देन ओनली यू विल इंजॉय दैट, एक्सेस ऑफ थिंग्स इवन इफ यू लाइक इट विल बी अ प्रॉब्लम। तो उस दिन से भैया मैंने अपने भोजन पे कंट्रोल किया, जो चीज पसंद है उसको मुंह में रख के थोड़ा घुमाता रहता हूं कि उसका स्वाद और मेरे जिह्वा पे जाए, क्योंकि कोई भी चीज गरम, ठंडा, मीठा, नमकीन, जैसे ही आपकी जीभ से पीछे जाता है उसका टेस्ट जीरो, उसका फूड जीरो, वो सिर्फ एक कैलोरी में कन्वर्ट हो जाता है। जब तक वो भोजन का सामान आपके मुंह में है तब तक वो आपको उसके बारे में संकेत, सिग्नल दे रहा है, जैसे ही वो मुंह से नीचे उतरा तुरंत उसका जो टेस्ट है वो जीरो हो गया। तो इसीलिए भैया मिताहार की बात होती है, आदर्श आहार की बात होती है, कम खाने की बात होती है, और जो कोई भी, फिर से मैं बोल रहा हूं, जो कोई भी हमारी बात सुन रहा है, जो भी चीज उसको पसंद है उसकी भी क्वांटिटी आधी कर दे तो उसके लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा।
0: बहुत ही बढ़िया चीज आपने बताई कि दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या से अगर आप गुजर रहे हैं तो पहला परिवर्तन अपने आहार में आप ये कर सकते हैं कि आप अपने भोजन की मात्रा को आधा कर दें। अगर आप चार रोटी खा रहे हैं तो दो पे ले आए, अगर आप दो कटोरी चावल खा रहे हैं तो एक पे ले आए। भोजन को आधा करके देखें और फिर देखें इसके कितने फायदे होते हैं। अनेक कहावतें मिताहार के बारे में या कम खाने के बारे में कही गई हैं डॉक्टर साहब। यहाँ हमारे यहाँ राजस्थान में ये बात कही जाती है कि कम खाओ गम खाओ, यानी अगर आप कम खाते हैं तो आपकी जिंदगी के गम भी आप खा लेते हैं, यानी जो दुख है वो भी कम हो जाते हैं, आप ये चीज सुनने को मिलती है। तो ये बात स्पष्ट होती है कि कम भोजन करने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा भोजन करने की जरूरत नहीं है, और भोजन की मात्रा में कमी लाने से भी शरीर के स्वास्थ्य को हम बेहतर कर सकते हैं। अब इस बात की भी समझ होनी चाहिए कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या आवश्यक है, क्योंकि विज्ञान के इस दौर में हम अक्सर ये शब्द सुनते आए हैं बैलेंस्ड डाइट इत्यादि। स्कूलों में पढ़ाया भी जाता है, इसका एक अच्छा चित्र भी बना के स्टूडेंट्स को स्कूल में समझाया जाता है, बच्चे प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, तो ऐसे में क्या आहार है, क्या बैलेंस डाइट है, ये समझा जाए।
1: भोजन हमारे लिए बहुत जरूरी है, और जैसे आपने अभी कहा कि कम खाओ गम खाओ, इसी तरह एक भैया यहाँ आप मथुरा वृंदावन में जब घूमिएगा तो आपको एक लाइन सुनाई देगी, भूखे पेट न भजन गोपाला, कि मतलब भूखा पेट तो भगवान का भजन भी नहीं कर सकता, ये कहकर वहां लोग भिक्षार्थी आपसे कुछ दान मांगते हैं। तो भोजन हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपने भैया बैलेंस डाइट की बात की, अगर हम बैलेंस डाइट की बात करें तो इट इज कंसिडर्ड एज हेल्दी डाइट, जो भी भोजन हेल्दी है उसको बैलेंस डाइट बोलेंगे, और बैलेंस इसलिए क्योंकि एक तराजू को हम लोग इंग्लिश में बैलेंस बोलते हैं, तो तराजू की तरह कि उसमें राइट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फाइबर वाटर रफेज ऑल इन अप्रोप्रिएट अमाउंट, मतलब जो भी भोजन के डिफरेंट चीजें हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट, वो मतलब एक भरपूर मात्रा में होना चाहिए, माइक्रोफाइबर्स रफेज पानी ये सब भरपूर मात्रा में होना चाहिए, और इनकी मात्रा अप्रोप्रिएट होनी चाहिए कि वो हमारे ऑप्टिमम हेल्थ ग्रोथ डेवलपमेंट को सपोर्ट कर सकें और हमारी बॉडी में डेफिशिएंसीज और डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकें। फिर से बोलूंगा कि सारा भोजन ऐसा होना चाहिए कि हम सशक्त रहें, अच्छे से रहें, हम अपने सारे काम अच्छे से कर सकें, और वो भोजन इतना पौष्टिक होना चाहिए कि हमारे शरीर में कोई कमी ना हो और हम किसी बीमारी से ग्रसित ना हो। ये भोजन एक बैलेंस डाइट की परिभाषा। अब ये एक इंटरनेशनल बात हो गई, एलोपैथी की बात हो गई या न्यूट्रिशनिस्ट की बात हुई, इसको हम अगर भारतीय परिवेश में इसी डेफिनेशन को या इसी चीज को करें तो बैलेंस डाइट आदर्श आहार है। वो कहता है कि भोजन की किस्म अच्छी हो, मतलब अच्छे किस्म का अच्छे क्वालिटी का भोजन करिए, उसकी मात्रा उचित हो, मतलब वो भोजन की मात्रा जो हम ले रहे हैं वो उचित हो, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। और तीसरा वो कहता है कि खाने के बहुत सारे भोजनों में आपस में मेल नहीं कराना चाहिए, तो वो ये कहता है कि आप अच्छे किस्म का भोजन उचित मात्रा में और बेमेल भोजन को ना करके करें। ये भारतीय परिवेश में इसको बोला जाता है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि खट्टे के साथ दही नहीं खानी चाहिए, इसको बेमेल माना जाता है। तो ये लोकली जो भोजन को लोग कहते हैं कि जैसे आप राजस्थान में रह रहे हैं तो शाम के समय ठंडा पीने को मना करते हैं। अच्छा, ये भैया ये तब बना था जिस जमाने में न फ्रिज था न गैस थी न कोई मॉडर्न इक्विपमेंट था, तो उस समय जैसा हम लोग रह रहे थे उस हिसाब से बहुत सारे भोजन के तरीके बने, भोजन को खाने का समय बना, तो वो चीज उस जमाने में अच्छी थी, तो आज भी अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो हमें उससे बहुत लाभ मिलेगा।
0: ये जो बात हम अक्सर बैलेंस डाइट में सुनते हैं कि भाई प्रोटीन की मात्रा इतनी होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होनी चाहिए, इत्यादि चीजें फैट की, ये एक बैलेंस डाइट के चार्ट के रूप में बताया जाता है। मगर प्रायः हम देखते हैं कि जब हम भोजन बनाते हैं या भोजन परोसा जा रहा है उस समय पर इस चार्ट पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो क्या इन सब चीजों का ध्यान रखना जरूरी है कि लोग भाई इतना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, हर दिन इतना प्रोटीन होना चाहिए?
1: इसका ध्यान रखने की भैया कोई जरूरत नहीं है। हम लोग किचन में, घर में भोजन बना रहे हैं, किसी लैब में कोई चीज नहीं बना रहे हैं। और आपकी माताएं, आपकी पत्नी, आपकी बहन, और वो आपके स्वास्थ्य के बारे में पूरे चिंतित हैं। वो कभी ऐसा नहीं करेंगे कि 10 ग्राम रोटी में 50 ग्राम घी डाल देंगे, एकदम नहीं। हाँ, ये राजस्थान में जब दामाद घर में आता है तो सुनते हैं कि उसको बहुत उस डाइट को सुपर इम्बैलेंस डाइट बना दिया जाता है, बट नहीं, एक क्वांटिटी में। भैया आप भोजन के बारे में आप इंडिया की ज्योग्राफी के हिसाब से भी समझिए। अगर हम भारत को एक लंबाई में खींचते हैं और चौड़ाई में खींचते हैं तो हमारे इधर नॉर्थ ईस्ट है पूरा और इधर गुजरात राजस्थान, तो नॉर्थ ईस्ट में पानी ज्यादा है, तो वहां पे चावल आया, वहां पर मेन स्टेपल डाइट चावल आई। फिर धीरे धीरे हम बंगाल से बिहार आते गए तो पानी थोड़ा कम होते गया, तो गेहूं गेहूं गेहूं गेहूं, तो फिर बीच के पोर्शन का आदमी चावल और गेहूं दोनों खा रहा। और फिर हम भैया नीचे जब हम लेफ्ट गए जहां पे राजस्थान और ये गुजरात मिला, तो वहां हम देखिए रोटी रोटी रोटी रोटी खाते चले गए। क्योंकि जैसा हमारा देश, जैसा वहां के वातावरण की व्यवस्था, जैसा वहां का लोकल अन्न, उस हिसाब का भोजन हमने किया और वही भोजन हमारे लिए सबसे अच्छा रहा। अब आपके राजस्थान में, या हम कहें हमारे राजस्थान में भैया, केर सांगरी, गट्टे की सब्जी, चूरमा, देखिए आप सिर्फ ग्रेन है, यहाँ कोई भी फाइबर की बात ही नहीं हो रही है। और अगर हम मेडिकली उस भोजन को देखें तो उस भोजन में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और फैट है। आप प्रोटीन के बारे में उसमें कहीं भी, वेजिटेरियन सोर्स में कोई प्रोटीन नहीं है। हाँ, दाल है, दाल उस प्रोटीन को पूरा कर रही है। अब आप तो लोग कहेंगे अच्छा, अरे कार्बोहाइड्रेट भी आ गया, फैट भी आ गया, प्रोटीन भी आ गया, फिर अरे यार फाइबर ही नहीं है, क्योंकि ग्रीन लीफी वेजिटेबल तो राजस्थान में थी ही नहीं। तो जब ग्रीन्स थे ही नहीं तो भैया वही दाल उसी आटे की ही, गट्टा क्या है भैया, आप जानते हैं, मैं जानता हूं कि वो एक ग्रेन से बनाया हुआ सिलेंड्रिकल चीज है जिसको हम सब्जी में खा रहे हैं। तो हमारा भारत का भोजन, मैं सबको ये बोलता हूँ जो इंटरनेशनल न्यूट्रिशनिस्ट को कोट करते हैं कि ये देखिए ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, मैं सबको बोलता हूँ हमारे भारत का भोजन अपने क्षेत्र के हिसाब से बहुत अच्छा था। जो उसमें थोड़ी बहुत कमी थी अब वो सब पूरी हो सकती है। अब तो राजस्थान में भी सेब मिल रहा है और बंगाल में भी सेब मिल रहा है, जो पहले कहीं हिमाचल और कश्मीर में मिला करता था। तो पूरे देश में अब सब तरह के फल, सब तरह की सब्जियां मिल रही हैं। अपने क्षेत्र के भोजन को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए, हमेशा उसको सर्वोपरि रखना चाहिए, क्योंकि वो भोजन आपके शरीर के हिसाब से, आपके वातावरण के हिसाब से, और उस एरिया की जो इम्यूनिटी है, उस जो वहां के बैक्टीरिया है, जो वहां की बीमारियां, उसके हिसाब से वो भोजन डेवलप हुआ। तो इसीलिए लोकल भोजन को नंबर वन, और उसके बाद अगर कोशिश हो जाए तो थोड़ा सलाद, थोड़ी सब्जी उसमें जोड़ लीजिए, और मात्रा अगर कंट्रोल्ड है तो सारा भोजन ठीक है।
0: ये बहुत ही खूबसूरत सी बात आपने कही कि हम लोकल भोजन पर ध्यान दें, हमारे आसपास के वातावरण के हिसाब से, वहां जो चीजें खाई जाती हैं, वहां के मौसम के हिसाब से जो चीजें उगती हैं, उन चीजों का, उस भोजन शैली पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। और भी प्रश्न है मगर समय इशारा करता है कि यहाँ रुकना होगा। डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ आज की इस बातचीत से हमारे दोस्तों ने दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें समझी हैं। भोजन की मात्रा को कम रखना, मिताहारी बनना, जितना आप भोजन कर रहे हैं उस मात्रा को आधे कर लेने से आपके स्वास्थ्य में बहुत ही ज्यादा इजाफा होगा। दूसरा, जो भी चीजें आपके यहाँ लोकल अवेलेबल हैं उन चीजों पर ध्यान देना है, उस प्रकार के भोजन को जो लोकली मिलता है उनको आप खाने पीने में इस्तेमाल करें तो भी आपके स्वास्थ्य में बेहतरी होती है।

सकते हैं, उनकी प्रामुख्यता को बढ़ाएं। आज की बातचीत में बस इतना ही। सहज स्वास्थ्य कार्यक्रम में कल फिर होगी मुलाकात। रेडियो मधुबन पर कार्यक्रम जारी रहेंगे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: हेलो बच्चों, सपनों की सैर कार्यक्रम शुरू हो गया है क्योंकि 9:30 बज गए हैं और परी और मनी दीदी आ गए हैं।
1: हेलो बच्चों, तो आप सभी का हम दोनों दिल से स्वागत करते हैं। और बच्चों, अभी तो हम नई नई बातों की चर्चा कर रहे हैं और इस बार पता है परी, हम इस बार चर्चा करने वाले हैं हमारी प्यारी प्रकृति।
0: अच्छा मनी दीदी, बच्चों क्या आपने सोचा है कि हमें सांस लेने की हवा, पीने का पानी और खिलखिलाती धूप कौन देता है?
1: हाँ बच्चों, ये देती है हमारी प्यारी प्रकृति। तो आज हम जानेंगे कि प्रकृति क्या है।
0: मनी दीदी, प्रकृति तो यही है ना, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ।
1: हाँ परी, बच्चों को भी ये पता ही होगा, प्रकृति वह सब कुछ है जो हमें बिना पैसे दिए जीवन देती है। हवा, पानी, सूरज, पेड़, पहाड़, नदियाँ और जानवर, ये सब मिलकर प्रकृति कहलाते हैं।
0: और बच्चों, अगर सोचो हवा ना हो तो हम सांस भी नहीं ले पाएंगे, अगर पानी ना हो तो प्यासे ही रह जाएंगे, अगर सूरज ना हो तो

0: पेड़ ना हो तो जीवन मुश्किल हो जाएगा।
1: तो समझा बच्चों, प्रकृति हमें हर पल कुछ न कुछ देती है, और सच कहें तो प्रकृति ही हमारी सच्ची पालनहार है।
0: बिल्कुल बच्चों, तो इसीलिए हमेशा प्रकृति का बहुत सम्मान रखना, उनको वेस्ट मत करना।
1: सही कहा। तो बच्चों, अभी कहीं जाना नहीं, अभी तो आपसे और भी ढेर सारी बातें करनी है। तो अभी हम मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद परी की प्यारी सी कहानी के साथ।
0: तो चलो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

बच्चों चलो बैठो फिर से रेडियो के पास। अब बारी है कहानी की, तो चलो सुनते हैं आज की कहानी। आज परी आपको बैल और मेढक की कहानी सुनाने वाली है, ध्यान से सुनना। एक बार एक तालाब के किनारे छोटे छोटे मेंढक खेल रहे थे, तभी वहाँ एक बैल पानी पीने के लिए आया। उसने पानी पीकर जोर से डकारा। बच्चों सोचो बैल कैसे डकारता होगा। बैल के डकारने की आवाज सुनकर सभी मेंढक तो भयभीत हो गए। वे सरपट भागते हुए अपनी दादी माँ के पास पहुँचे। बच्चों मेंढक की भी दादी माँ थी, सोचो। दादी माँ ने अपने पोतों से पूछा, क्या हुआ, तुम लोग घबराए हुए क्यों हो? छोटे मेंढक ने कहा, अरे दादी, अभी एक बहुत बड़ा जानवर तालाब में पानी पीने आया था। उसकी आवाज बहुत ही तेज और भयंकर थी। बच्चों दादी माँ ने पूछा, कितना बड़ा था वो जानवर? तो नन्हे मेंढक ने कहा, अरे बहुत ही बड़ा था। दादी माँ ने अपने चारों पैर फैलाकर और गाल फुलाकर कहा, वो इतना बड़ा था क्या? बच्चों वो छोटे से मेंढक ने कहा, अरे नहीं दादी, वो तो इससे भी बहुत बड़ा था। दादी माँ ने फिर गाल पेट फुलाकर कहा, इससे बड़ा तो नहीं होगा, है ना? तो नन्हे मेंढक ने जवाब दिया, नहीं दादी, वो तो इससे भी बहुत बहुत बड़ा था। दादी माँ ने अपने शरीर को और फुलाया। इस पर वो अपने शरीर को फुलाती गई। और बच्चों आखिर क्या हुआ सोचो, आखिरकार उसका पेट फट गया और वो मर गई। देखा बच्चों, ये कहानी बताओ तो सही कि हमें क्या सीख देती है। बच्चों थोथा अभिमान विनाश का कारण होता है। दादी माँ को बहुत अभिमान था, इसलिए उसका ये हाल हुआ। तो सोच समझकर पहले जानना चाहिए कि क्या परिस्थिति है, उस अनुसार हमें उसका समाधान ढूंढना चाहिए, बिल्कुल, है ना बच्चों? तो चलो अब सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सपनों की।

करने की इच्छा व्यक्त करता है। कार्यों की निरंतरता ही जीवन की सफलता की कुंजी है। तो महाराज कृष्णदेव राय अपने सभासदों के साथ बैठे हुए थे, दरबार लगा हुआ था। तेनाली राम अपने आसन के पास खड़ा होकर बोल रहा था। उसकी बातें समाप्त होते ही कृष्णदेव राय ने अपने आसन से उठकर तालियां बजाई और तेनाली राम को गले से लगा लिया। उस समय दरबार में जीवन में सफल होने के उपाय विषय पर संभाषण हो रहा था। कई दरबारी आए और बोले, बड़ी बड़ी शास्त्रीय बातें होती रही। अंतिम वक्ता के रूप में तेनाली राम ने बहुत कम शब्दों में अपनी बातें दरबार में रखी और महाराज ने उसे विजेता घोषित कर दिया। तो बच्चों, इस तरीके से तेनाली राम ने अपनी प्रेजेंटेशन दी कि बहुत ही संक्षिप्त में उन्होंने सफलता के रहस्य को बता दिया, तो महाराज ने उन्हें विजेता घोषित कर दिया। तो ये तो आज पता चला हमें कहानी के पहले दिन में कि इस दिन तो तेनाली रामा विजेता घोषित हुआ, लेकिन क्या आगे भी कुछ और चुनौतियां मिलेंगी जिसमें क्या वो विजयी सफल हो पाएगा, क्या वो फिर से विजेता बन पाएगा? तो ये कहानी की कड़ी हम आगे फिर से शुरू करेंगे। उससे पहले चलिए हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सपनों की सैर को।

0: चलो बच्चों आ जाओ फटाफट रेडियो के पास और कर लो रेडियो का वॉल्यूम तेज, क्योंकि अब हम कार्यक्रम के अंतिम कड़ी पर आ चुके हैं। और अब पिछली कड़ी में परी ने जो सवाल पूछा था उसका जवाब भी तो जाना है ना। तो परी, पिछली कड़ी में आपने क्या पूछा था?
1: पिछली कड़ी में बच्चों हमने पूछा था, पढ़ाई का साथी ज्ञान का भंडार, पन्नों में छिपा है संसार।
0: और बच्चों इसका सही जवाब तो आप सभी ने दिया है, तो अपने लिए तो तालियां बजा ही लीजिए। सही जवाब है किताब।
1: हाँ बच्चों,
0: नॉलेज भी तो ऐसे बढ़ जाती है
1: और पढ़ना भी तो जरूरी है। तो बच्चों नोट कर लो आज की पहेली, पंख नहीं पर उड़ता है, देश विदेश में जाता है, लोगों को ले जाता है दूर, बताओ वो है कौन?
0: हाँ बच्चों, पंख के बिना उड़ता है, तो आप तो समझ जाओगे इसका सही जवाब क्या है। देश विदेश में भी सैर कराता है। तो इसका सही जवाब क्या है सोचो सोचो, और हमें 9414151415 पर वॉइस नोट और मैसेज करके भेज दो।
1: और बच्चों भगवान को सॉरी और थैंक यू लिखना नहीं भूलना, वरना भगवान नाराज हो जाएंगे।
0: हाँ तो जल्दी जल्दी लिख लो दिल का हाल।
1: तो हम करते हैं गुड बाय, उसके पहले नींद का सफर अब शुरू हो जाए, सपनों का शहर फिर से बस जाए,
0: जो सोचो वो हकीकत बन जाए, बस ऐसे ही हर रात गुजर जाए।
1: गुड नाइट,
0: स्लीप टाइट, गुड बाय।
1: सुनते रहो,
0: मुस्कुराते रहो,
1: रेडियो मधुबन
0: 107.8 FM पर।

बजरी दुनिया हम सफर दोस्तों अपनो समाज कार्यक्रम रे मायने रेडियो मधुबन ने सुनवा वाला सगला श्रोताओं ने के सीजिन कर रहा गाना गाना राम राम गणी खम्मा ने जय माता दी। आप सुन रहे हो ब्रह्मा कुमारी रो सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन, सुनता रहो मुस्कुराता रहो। श्रोता बंधुओं कार्यक्रम रे मायने आपो अपने समाज रे माय कई कुरुतियों वे है उन्होंने कम करवा वास्ते समाज रे लोगों की बात करो हो अने अलावा अपने समाज में लोगों में जागृति लावा वास्ते रेडियो मधुबन रो एक प्रयास है। और अपने भारत देश में कई जातियों वे है उन्होंने का रीति रिवाज वे है उन्होंने का वेशभूषा परंपरा जो भी उन्होंने रिवाज वे है उन्हें बारा में हर समाज रा लोगों की बात करो हूँ और वे उन्होंने जो रिवाज है आप तक पहुंचावारी कोशिश करो कि कण समाज में का रिवाज है। अन्य अलावा अपने समाज में कई समाज सेवी वे है तो उन्होंने का तजुर्बा वे है उन्होंने का अनुभव वे है वे भी आप तक लावारी कोशिश करो हूँ। उन्होंती भी होबलेन कोई बीजो जो बंधु है वो ही के समाज सेवा रो कार्यक्रम करवा रो या समाज सेवा रा कार्य करे तो अपने अच्छो लागे तो रेडियो मधुबन रो एक प्रयास है। तो श्रोताओं आज अपो हर बार रीतरे एक नवी जाति रे बारे में उन्हें रिवाज है उन्हें बारे में आपो बात करोला। और आज अपो लुनियापुरा में आया हूँ। लुनियापुरा में दीपचंद जी भाटी साहब और उन्होंने पुत्र है एच के भाटी साहब। तो आज वनौती आपो प्रजापति समाज रे बारे में जानकारी लेवला तो सबसे पहला आपो अनोरो परिचय लो हो और रेडियो मधुबन में अनोरो स्वागत करो हो। तो दीपचंद जी भाटी साहब आपरो रेडियो मधुबन में स्वागत है और एच के भाटी साहब आपरो भी रेडियो मधुबन में स्वागत है और रेडियो मधुबन रा सगला श्रोताओं रो भी स्वागत है। तो भाटी साहब मु आपने पूछू की आप लुनियापुरा में कतरा साल ती रहो।

0: ब्रेक रे बाद में अपने समाज कार्यक्रम रे मायने रेडियो मधुबन रा सगला श्रोताओं रो स्वागत है अने अपने मेहमान एस के पाटी साहब और दीपचंद जी पाटी साहब रो भी स्वागत है। तो प्रजापति समाज रे बारे में रीति रिवाज रे बारे में बात कर रहा था, बताया कि ढूंढ किकन मनावी जे है और बच्चा रा जन्म वेदक का रिवाज वे है। अन्य अलावा हमें आपको एस के पाटी साहब ने पूछू हूँ कि भाई के आपने समाज में रिश्ता वे तो वन्ने थोड़ी का प्रक्रिया है वन्ने बारे में बताओ किकन आपने समाज में रिश्ता विकार।
1: मोरे प्रजापति समाज में
0: जी
1: मैं कुमार मोरे
0: क्या कुमार हो?
1: मैं बोड़ा कुमार हो।
0: बोड़ा
1: एक तो मारू कुमार वे, एक बोरा कुमार वे, एक पूर्विया कुमार वे।
0: अच्छा, तो मारू कुमार बोड़ा में अंतर का तीनों में?
1: मारू कुमार तो ए अपने कड़िया कौम में ने ज्यादा करे।
0: अच्छा,
1: ने मैं लोग बोड़ा कुमार माटी रो धंधो करो।
0: अच्छा, माटी रो मतलब मटका बनावा?
1: मटका ने ईट ने
0: अच्छा
1: नलिया ने ऐस बनावता।
0: हाँ,
1: साक माते।
0: ठीक है,
1: साक वे तो मोरे
0: चाक मतलब
1: गोल चाक कुमार रो।
0: अच्छा,
1: वन माते नाल उतारता।
0: ठीक है,
1: कोड़ाइया उतारता।
0: नाल मतलब का वे?
1: नाल अपने नलिया आवता पहला।
0: अच्छा, गोल नाल
1: गोल नाल बना
0: काटे ना आधा करता
1: काटे ने पसे तीन भाड़ फाड़ी बदी बननी।
0: अच्छा,
1: ने पसे वाद नाल जमावता ऊपर।
0: अच्छा,
1: वन में एक बूंद पानी नहीं टपक तो वा नाल तो हमें बंद हुई है। मैं आरसीसी में ढुका मैं अंकल।
0: ठीक है,
1: नाल वोंदरा बीजा फोड़े वाने गणे नुकसान वेणी साहब ती नाल कोई बनावतो नहीं। हमें ईटो धंधम पड़िया है।
0: मु होबले आपने समाज में बोड़ा कुमार वे नाक नी और तो विदा ना
1: मोरे नी विदावता मारू कुमार विदावे।
0: अच्छा,
1: मोरे नाक नी विदावता।
0: कारण का
1: आ एक शुरुति प्रथा है।
0: अच्छा,
1: मतलब नाक विदाई हो तो मतलब बोड़ा कुमार नी कहवी जाए।
0: अच्छा,
1: नाक नी विदाई हो तो मतलब बोड़ा।
0: ठीक है,
1: ओई सो है ना नाक विदावे के।
0: हाँ,
1: वे मारू कुबार के भी है।
0: अच्छा,
1: तो आप शुरुति प्रथा है मोरे समाज में नाक नहीं विदावती। अच्छा, लेडीज लोग कोई नाक नहीं।
0: तो मतलब कोई एरी परंपरा मतलब कोई एरो अन्नो कारण
1: पहचान है। एक तरह की
0: पहचान है।
1: पहचान है
0: शुरुति बड़ाई है तो बोड़ा।
1: हाँ,
0: अच्छा,
1: शुरुति एक पहचान बनी हो रही है कि भाई एक मोरे कातरी हुए।
0: कातरी यार मतलब कब है?
1: कातरी हुए पहचान हुए के ए बड़ा कुबार है। कातरी पीतल हुए।
0: अच्छा, मतलब पीतल लोग
1: पीतल पहचान है। कड़ो
0: चूड़ी है।
1: कड़ो।
0: अच्छा,
1: चूड़ी से
0: पाटलो टाइप
1: वे।
0: हाँ,
1: वो पीतल रूवे।
0: वो हर नारी
1: हर नारी पहनू पड़े। मोरे हर नारी पहनू पड़े बारे जाए तो वंदिश था पड़े क्या कुबार बड़ा कुबार है।
0: अच्छा, वो
1: वह पहचान
0: हाथ में वो कड़ो पेरे
1: बड़ा
0: कुमार में खास पहचान।
1: खास पहचान है भाई।
0: अच्छा,
1: बीजू नहीं पहनते
0: जी। तो मैं पूछूंगा आपने हमें समाज रिश्ता के बारे में आपने पूछी है तो वन बारे में समाज में रिश्ता किकन वे?
1: समाज में रिश्ता मोरे एक बहुत कुरीति कुरिवाज है
0: जी।
1: आटा साटा पड़ता मोरे घनी है।
0: आटा हाटा बारा मतलब मतलब बताओ।
1: आटा हाटा मतलब है होमे वाली घर की लड़की लावो
0: जी
1: ने वटा दी मोरे घर की लड़की वणन दियो
0: जी
1: और सोरो वटे वे।
0: हाँ,
1: तो वणन दी दी ने वणा हटा दी लाई।
0: अच्छा,
1: तो वण में का है के अत्री आ कुरीति है के मान लो एक घर में गड़बड़ वे
0: तो
1: बड़ा घर टूटे।
0: एक घर में परेशानी आवे तो भी
1: घर टूटे तो आटा हाटा दी मुंह तो पड़ियो लिखियो हूं आज
0: जी है
1: तो मुंह ने बिल्कुल
0: जी
1: मे लोग पसंद ही नहीं करता
0: जी।
1: मोरे घर में कोई आटू आटू में है ही नहीं आज।
0: अच्छा, मतलब आज आप रो के बारे मतलब आज थोड़ा जो शिक्षित हुआ मन।
1: हाँ,
0: तो थोड़ा अन चीज ने फूटन होकर रिया है।
1: हाँ,
0: और अन तरफ कम ध्यान दे रिया
1: मतलब
0: और पहला जो मनकता है अन प्रथा ना ज्यादा मानता और अन्न बगैर अपना रिश्ता वेता ही नहीं
1: है। हमें जन्ने बाबड़े चार लड़की हो वे
0: जी जी
1: वो रिश्ता कटे सोरो नहीं वे तो रिश्ता की कटवे।
0: अच्छा,
1: चार लड़का वे
0: लड़की देनी जरूरी
1: है। जरूरी है कोई भाई बंद आजकल कोई देता नहीं
0: जी।
1: आ जो प्रथा है वनने कारण आज समाज रे माए
0: जी
1: कई लड़का मोरा जे कुवारा फर रिया।
0: अच्छा,
1: आप गलत है
0: या अटा कोई आपनो की
1: मोर परगनो है? परगनो है अटा
0: आपरो पटारो एरिया कतरो है?
1: मोरे 24 परगनो 24 परगना आज परगना
0: 24
1: परगना केवी जे परगना तो 28 32 परगना हुआ पाए।
0: अच्छा,
1: पण 24 परगना इस केवी जे।
0: अच्छा,
1: वो जो एरिया मरे भीतरोड परनो के
0: भीतरोड। हाँ, भीतरोड रो मतलब अन्नो का मतलब बोर सी ठकोण मु हर समाज में देखियो।
1: ओ भीतरोड मतलब वो एरिया ठेडा दी थाबियोड़ो है।
0: अच्छा,
1: हैंग पे ओ एरिया है जो सिरो।
0: अच्छा,
1: रोड आबू रोड रो एरिया है।
0: हां,
1: अन एरिया ने भीतरोड के।
0: अच्छा,
1: पसे कोई के रोई दगे हालत रोई
0: रोई भी होगली
1: रोई है।
0: हां,
1: कोई पालमपुर दाय पालमपुर परगनु है। कोई अटे अटे गया तो वहाँ पर है सिरोही प्रगण है रोड़ा प्रगण है ये यू करण प्रगना है
2: समाज
1: 32 प्रगना है आज आज की तारीख में
2: बिल्कुल
1: पहला 24 था हमें इनका जीव जीव वधिया गया
0: एरिया वाइज
1: जीव जीव एरिया वाइज 32 प्रगना हुआ है
0: ठीक है अच्छी बात है मैं जो रिश्ता करो आप तो कोई लेन देन वे आप रे की
1: अरे लेन देन कोई नहीं वे तू
0: अच्छा
1: एक सीधा जाए ने पिया हाथ में दीदा
0: अच्छा मतलब
1: रुपया दीदा या 11 रुपया दीदा पिया हाथ में दीदा मतलब वो पक्कू
0: अच्छा
1: बीजे जा रहे तीजे जा रहे जो भी अच्छो दारो देगा गोल बाटी खाओ
0: गोल
1: बाटी जिंदा खा दी ने बच्ची रे हाथ में वे लेन आवे बच्चा वाला तो वन्ने कपड़ा पा दिए
0: सिंपल रिवाज
1: सिंपल रिवाज ने 111 या भी हो 1 रुपया जो भी उन्होंने इच्छा वे जो मैडम आपने बच्चन दिए
0: तो करवा अपने घर आया तो उन्होंने पास कपड़ा कपड़ा देवना पड़े अपने
1: ना उन्होंने कपड़ा दे पसे वहाँ बच्ची रह लेना आवे बच्ची रह कपड़ा लाइया वरने बाद में पसे थोड़ा दारा पुटी मैं लोग जाओ
0: जी
1: तो मैं वन बच्चा रे कपड़ा लेन जाओ या कोई अच्छा। घड़ी लेन जाओ या कोई ये रुपये लेन जाओ
0: ठीक
1: तो
0: आप सब जाओ जरा आपने तो बता दी कोई मतलब पेरोनी पेरा
1: ना ना ना पेरोनी पेरा एरो रिवाज अपने नहीं है
0: बिल्कुल मतलब सिंपल रिवाज
1: सिंपल रिवाज है और मैं एरो नहीं है वो बजा वो पक्कू हुई
0: ठीक है
1: वो बड़े विटनेस वे आती पाती मन करी
0: हाँ।
1: भाई वही आवे वो घरती भाई आवे
0: अच्छा
1: वो घरती भाई आवे मोरे घरती हेटा दी भाइयों लेन जाओ तो ओ भाइयों भाई विटनेस वे भाई हेटे अगाई की दी ने एक बे कोई पाक दीरा समाज रहा आदमी वे आई से वॉइस प्रूफ है
0: अन्य अलावा हम आपने पूछू आपने जो समाज रे माए शिक्षा रो कतरो महत्व है मतलब शिक्षा कतरी है मतलब कोने बारे में बताओ
1: शिक्षा में यू देखो है शिक्षा री बात की थी आप तो मुँह आपने कहू के पूरा 24 प्रगण रे माए
0: जी
1: 24 प्रगना के विस्तार वर्ण माए पूरु शिक्षित में हेमती पहलू घर मोरु साम हेमती पहलू मोरु घर तू मोरे दादो सा था वे फॉरमैन था अंग्रेजों का टाइम अंग्रेजों हर टाइम में
0: अच्छा
1: लोकोमोटिव में फॉरमैन था स्मिथ था
0: कण साल में था
1: ये तो घने साल की बात है मो तो मारो तो जन्म ही नहीं तू ये तो मैं दादा बन देखी ही नहीं दादी ने देखी ये तो मैं बाबा पढ़ता गए वन टाइम वो दादो सा अर्ली एज में एक्सपायर हुआ पता कोई तकलीफ ये बात ने वो रे हाथ में मतलब स्मिथ इतना तगड़ा था हादरी मोरे घरे कई चीजों कई पार्ट मतलब अच्छा, रहा,
0: जी,
1: एरा एरा आज ही हल रही है बहुत अच्छा स्मित था बनने बाद में मोरे ताऊजी था वे पढ़िया ताऊजी वे पढ़िया था वे स्टेशन मास्टर स्टेशन सुप्रिंटेंडेंट थी रिटायर हुआ
0: अच्छा,
1: तारा चंद जी भाटी
0: तो आप
1: ने बनने बाद में BSc ब्यावर्ती की थी
0: अच्छा,
1: सेकंड ग्रेड टीचर बनिया
0: अच्छा मतलब आप लोग पूरा परिवार
1: शिक्षित है वन्ने बाद में मैं फादर जो को है
0: जी
1: वन्ने मोरा काकोसन पढ़ाया
0: अच्छा
1: ने बीटेक कराई
0: बीटेक तो बीटेक
1: वन टाइम बीटेक कराई
0: वन टाइम बीटेक तो पहली
1: 1965 बीटेक जो है के भर्ती कराया था ने
0: फीस
1: लागी हुई वन टाइम तो फीस भाई
3: वन टाइम फीस तो मतलब का है 2000 तो वन टाइम पहला दीदा था तो अंदाज नहीं है
0: अच्छा ठीक है
1: कम इस फीस थी पर मुंह पढ़तो गए जरा मो बाबा मन 250 रुपया मिलता
0: 250 रुपया आपने
1: हाथ खर्ची मिलता मीना रा
0: कण वास्ते मतलब फीस रहा या हाथ खर्ची
1: सब पूरा
0: रेणो कण
1: सब वरना खानो तो मारे हवा बे रुपये में डाइट वे थी
0: अच्छा
1: हवा बे हवा हवा और रुपया 150 रुपया खाना लगता हॉस्टल में
0: सही बात है
1: हॉस्टल में
0: जी
1: ने हॉस्टल में खानो खाता
0: जी जी
1: हवा बे ने 250 रुपया डाइट आती
0: जी बहुत सस्ती बात है
1: 1984-85 वन टाइम हॉस्टल में रहता मैं लोग
0: अन्य अलावा आप रहे जो समाज में बच्चा और बच्चियों ने कितनी शिक्षा दे और
1: बच्चियों ने मोरे मो बहन है एक तो
0: जी
1: वहाँ अभी एन है मैं नर्सिंग पढ़ी है
0: पोस्टिंग है
1: वहाँ पोस्टिंग है अटे वासड़ा
0: अच्छी
1: वासड़ा में पोस्टिंग है
0: ठीक है
1: कांता कांता है ना उन्होंने हस्बैंड है जो प्रभु राम जी वे अटे पोस्ट ऑफिस में है BSc है भाई
0: अच्छा
1: ने बाकी जो सिस्टर है वह ट्वेल्थ पढ़ी है ट्वेल्थ ने पढ़े ने मतलब पढ़ी है बाकी जो शिक्षा है आती पाक शिक्षा में एक तो अपने सोनपुर में है छगन जी मार साहब
0: अच्छा
1: वने वे एचएमटी रिटायर हुआ है
0: ठीक है
1: बड़ा थी आगरा पट्टा थी
0: हमें जो ने मोरे बच्चों ने बढ़ावे दिया कि नहीं बढ़ावे दिया
1: बच्चों ने बढ़ावे दिया हमें तो
0: हाँ
1: ने अच्छी शिक्षा दे रही है
0: मोरे पूरा में
1: परगना में कोशिश कर रही है हमें लोग
0: अच्छा।
1: प्रतिभावान सम्मान समारोह ही करो।
0: अच्छा,
1: बच्चों ने प्रोत्साहन दियो,
0: बच्चों
1: प्रशस्ति पत्र दियो, बच्चों ने मोटिवेट करवा दाते
0: जी
1: वास्ते ने बच्चा ज्यादा से ज्यादा पढ़े, बच्चियों ज्यादा से ज्यादा पढ़े,
0: बच्चियों ने
1: एक बच्ची पढ़ी गए
0: जी,
1: एक बच्ची पढ़े तो वह बे घर तारे।
0: बिल्कुल सही बात है,
1: बे घर तारे, एक नहीं बे घर तारे
0: जी,
1: एक तो अपने पीर तारे ने हावड़ा में तारे,
0: हावड़ा में तारे
1: एक बच्ची, तो बच्ची ने पढ़ावनो बहुत जरूरी है। मारो कहनो वही से समाज रे हैं बंधु अति के बच्ची ने पढ़ाओ, बालिका शिक्षा बहुत जरूरी है आज की तारीख में, बालिका इंडिपेंडेंट वेणी साइज है।
0: श्रोताओं, एस के भाटी साहब अपन बताया कि भाई बालिका शिक्षा न महत्व ज्यादा देना है और अनोर समाज रे में ज्यादातर परिवार में है, सब शिक्षित लोग है और सबसे पहला अनोर परगना में पहलो परिवार तो जो पूरा परिवार शिक्षित हुआ। अन्य अलावा समाज में ये भी कुछ कार्यक्रम रखे है जिनमें बच्चा अच्छा अंक लावे है तो उन्होंने प्रशस्ति पत्र दे है, इनाम देन उन्होंने मोटिवेट करे है जनती बच्चा और आगे बढ़वा की कोशिश करे और समाज रो नाम रोशन करे। ठीक है, तो श्रोताओं आपो एक छोटो सो ब्रेक लो हूँ और अन्य बाद में फिर वरे आपो अनर समाज के बारे में कुछ और जानकारी लेवला। तो अपने समाज कार्यक्रम हलेरियो है और आप एक गीत रो आनंद लो और गीत रे बाद में फिर आपो प्रजापति समाज के बारे में जानकारी लेवला। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन, सुनता रहो मुस्कुराता रहो।

ये हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए। रेडियो मधुबन 90.4।

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

शांति। आज 2 जून 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली में बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुम अभी यात्रा पर हो, और जब यात्रा पर जाते हैं तो पवित्र रहते हैं। तो बाबा कहते, तुम बच्चे भी ये रूहानी यात्रा पर हो तो कमल फूल समान पवित्र बनना है। तुम्हें यात्रा खुद करनी भी है और करानी भी है। यात्रा कराने वाले को कहेंगे पंडा। वैसे कोई स्थान को देखने के लिए जाता है मनुष्य तो वहां गाइड मिलता है, लेकिन जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो यात्रा कराने के लिए पंडा मिलता है, जो पंडा यात्रा भी कराएगा, पूजा पाठ आदि भी कराएगा, कथा भी सुनाएगा, सब कुछ करता है। तो बाबा कहते, तुम भी ऐसे रूहानी पंडे हो जो अनेक आत्माओं को इस रूहानी यात्रा पर ले चलते हो, ज्ञान सुनाते हो, बाप का परिचय देते हो और ये सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की बातें बताते हो। साथ ही साथ बाबा कहते, तुम घर के लिए रूहानी गाइड भी बनते हो, अर्थात घर का रास्ता भी बताते हो। बाबा हमारा है सुप्रीम गाइड, सुप्रीम पंडा। दूसरी बात जो महत्व की आज बाबा ने धारणा की सिखाई है, तो बाबा कहते, बच्चे ये कलियुगी दुनिया है और इस कलियुगी दुनिया के अंदर तुम्हें कोई फैशन आदि नहीं करना है। जितना हो सके सिंपल रहो। वनवा में रहने के लिए दिखाते हैं, तो बाबा कहते हैं, इस कलियुगी दुनिया में अगर फैशन करेंगे तो ये कलियुगी मनुष्य जो है पीछे पड़ेंगे, फैशन उन्हें कशिश करेगी, वो पंजा मारेंगे। इसलिए बच्चों को बहुत सिंपल रहना है, कोई बाह्य रूप का श्रृंगार नहीं करना है। बाबा आए हैं हम बच्चों को रूहानी श्रृंगार कराने, आत्मा को श्रृंगारते हैं। बाबा ने अपना अनुभव सुनाया कि बाबा जब बॉम्बे जाते हैं तो देखते हैं वहां पर मायावी नगरी है, तो उस मायावी नगरी में बाह्य श्रृंगार करने वाले बहुत होते हैं। बाबा के पास भी आते हैं तो बाबा उनको कहते हैं कि बच्चे कल से ये जिस्मानी श्रृंगार नहीं करके आना, बाबा तुम्हें रूहानी श्रृंगार करा के परी बना देगा, तो ऐसे परी बनना है तुम्हें। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए कमल फूल समान बन याद की यात्रा करनी और करानी है। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते हैं, किस श्रृंगार के लिए मना करते हैं? उत्तर, बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हारा रूहानी श्रृंगार करने आया हूं। तुम कभी भी जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना। तुम बेगर हो, तुम्हें फैशन का शौक नहीं होना चाहिए। दुनिया बहुत खराब है, इतना बाबा संभालते हैं हम कि दुनिया बहुत खराब है, इसलिए जरा भी शरीर का फैशन नहीं करो। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं, बेहद माना कोई हद नहीं। कितने ढेर बच्चे हैं, इतने बेशुमार बच्चों का एक ही बाप है जिसको रचयिता कहा जाता है। वह है हद के बाबाएं, यह है बेहद के रूहों का बाप।
वह है हद के जिस्मानी बाप, यह है बेहद के रूहों का एक ही बाप, जिसको भक्ति मार्ग में सब रूहें याद करती है। तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग भी है, साथ साथ रावण राज्य भी है। अब मनुष्य पुकारते हैं कि हमको रावण राज्य से राम राज्य में ले जाओ। बाप समझाते हैं, देखो देवी देवता जो भारत के मालिक थे अब नहीं है। वह कौन थे यह भी अब तुम जानते हो। हम ही सतयुगी सूर्यवंशी घराने के मालिक थे, राजा रानी तो होते हैं ना। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है, बाबा आया हुआ है हम बच्चों को राज्य भाग्य का वर्षा देने, विश्व का मालिक बनाने। बाप कहते हैं अब सब भक्ति मार्ग में है, भक्ति मार्ग को ही रावण राज्य कहा जाता है। ज्ञान मार्ग सिर्फ एक बाप ही सिखाते हैं तुम बच्चों को। ज्ञान मार्ग सिखाने वाला एक बाप है और भक्ति मार्ग में बहुत सारे लोग हैं जो अनेक रूप से भक्ति सिखाते। ज्ञान मार्ग सिर्फ एक बाप ही सिखाते हैं तुम बच्चों को। उस बेहद के बाप को भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। अभी तुमको 21 जन्म के लिए ज्ञान की राजधानी मिलती है, फिर आधा कल्प तुम पुकारेंगे ही नहीं। हाय राम हाय प्रभु कहने की दरकारी नहीं रहेगी। हाय राम तब कहते हैं जब दुखी होते हैं, तुमको वहां दुख होता नहीं। सत्य त्रेता में कोई दुखी नहीं। अभी तुम जानते हो यह भी खेल बना हुआ है। आधा कल्प है ज्ञान का दिन, आधा कल्प है भक्ति की रात। भक्ति हमको करते करते सीढ़ी नीचे उतरती है। तुम बच्चों की बुद्धि में सीढ़ी का नॉलेज जरूर चाहिए। बाप समझाते हैं ये 84 जन्म का चक्र है। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसीलिए बाबा चित्र भी बनवा रहे हैं, जिससे सिद्ध हो कि हम इस चक्र को जानने से 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य लेते हैं। अभी तुम बहुत हो गए हो, बहुत बच्चे हो गए हैं, बड़ी रूहानी शक्ति सेना बनी है। बाबा के समय भी काफी सेंटर्स हो गए थे, तो इसीलिए बाबा कहते बड़ी रूहानी शक्ति सेना बनी है। तुम सब पंडे हो, बाबा भी पंडा है। उनको कहा जाता है गाइड, जो पुराने चीजों को दिखाने वाले होते उनको कहा जाता है गाइड। पंडा अक्षर शुभ है, यात्रा पर ले जाने वाले पंडे होते हैं। यात्री जाते हैं तो उनको एक गाइड मिलता है। पौराणिक चीजों को देखने के लिए जो जाते हैं उनको गाइड कहा जाता है, तो उनको गाइड मिलता है कि इनको ये सब दिखाओ। तीर्थ यात्रा पर भी पंडे मिलते हैं। बाप कहते हैं जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्रा करते आए हो, अमरनाथ पर जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, वहां जाने समय फिर वही याद रहता है, बुद्धि वही रहती है, घर बार धंधे धोरी सब से दिल हट जाती है। यहां तुमको समझाया जाता है। क्या समझाया जाता है? अपने घर गृहस्थ में रहते हुए धंधा धोरी भी करते रहो और फिर गुप्त यात्रा पर भी रहो। ये कितना अच्छा है, जितना बड़ा धंधा करना है उतना करो, जितना बड़ा धंधा करना है करो। बाबा कभी किसी को मना नहीं करते थे कि धंधा आदि ना करो, किसी को मना भी नहीं है। भल अपनी राजाई भी संभालो, राजा जनक को भी सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, तुमको कोई बाहर की यात्रा आदि तरफ
धक्के खाने की दरकार नहीं, अपने घर बार की भी पूरी संभाल करनी चाहिए। बाबा कितना हम बच्चों को जिम्मेदार बनाते हैं कि अपने घर बार की भी पूरी संभाल करनी चाहिए। जो सेंसिबल अच्छे बच्चे हैं वो समझते हैं हमको घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना है, गृहस्थ व्यवहार में तंग नहीं होना चाहिए। कुमार कुमारियां तो जैसे सन्यासी है, उनमें विकार है नहीं, पांच विकार से दूर है। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारा श्रृंगार ही और प्रकार का है। बाबा आकर के हमारा श्रृंगार ही और प्रकार का करते, उनका और है, उनका है तमो प्रधान श्रृंगार, तुम्हारा है सतो प्रधान श्रृंगार, जिससे तुमको सतो प्रधान सूर्यवंशी राजाई में जाना है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं तमो प्रधान जिस्मानी श्रृंगार जरा भी नहीं करो, दुनिया बहुत खराब है, गृहस्थ व्यवहार में रहते फैशनेबल मत बनो, फैशन कशिश करती है, आकर्षण करती है, इस समय खूबसूरती अच्छी नहीं है, काले हो तो अच्छा है, कोई पंजा नहीं मारेगा, खूबसूरत पिछाड़ी तो फिरते रहते हैं, श्री कृष्ण को भी सांवरा दिखाते हैं, तुमको गोरा बनना है शिव बाबा से, वह गोरे बनते हैं पाउडर आदि से। बाबा कहते तुमको बाबा गोरा बनाता है इसको, शरीर को नहीं आत्मा को, वह गोरे बनते हैं पाउडर से। कितना फैशन है बात मत पूछो, शाहूकारी की तो सत्यानाश है, गरीब अच्छे हैं, गांवड़े में जाकर गरीबों का कल्याण करना है, परंतु आवाज करने वाले बड़े आदमी भी चाहिए। तुम सब गरीब हो ना, कोई शाहूकार है क्या? तुम देखो कैसे साधारण बैठे हो, बंबई में फैशन देखो तो क्या लगा पड़ा है। ब्रह्मा बाबा कई बार बॉम्बे जाते थे तो बाबा देखते थे, तो बाबा कहते बंबई में तो फैशन देखो क्या लगा पड़ा है। बाबा पास मिलने आते हैं तो कहता हूं ब्रह्मा बाबा के पास मिलने आते हैं तो ब्रह्मा बाबा कहते मैं कहता हूं तुमने ये जिस्मानी श्रृंगार किया है, अब आओ तो तुमको ज्ञान श्रृंगार कराए, जिससे तुम स्वर्ग की परी 21 जन्मों के लिए बन जाएंगी, सदा सुखी बन जाएंगी, ना कभी रोएंगे ना दुख होगा। अभी ये जिस्मानी श्रृंगार तुम छोड़ दो, तुमको हम ज्ञान रत्नों से ऐसा फर्स्ट क्लास श्रृंगार कराएंगे जो बात मत पूछो। अगर मेरी मत पर चलेंगे तो तुमको पटरानी बनाऊंगा। बाबा कहते अगर मेरी मत पर चलेंगे तो तुमको पटरानी बनाऊंगा, ये तो अच्छा है ना। तुम सब भारतवासियों को इस तमो प्रधान आसुरी दुनिया नरक से भगाए स्वर्ग की महारानी बनाता हूं। तुम बच्चे समझते हो, आज हम सफेद पोश में है, आज हम सिंपल सफेद पोश में है, दूसरे जन्म में स्वर्ग में सोने के चम्मच से दूध पिएंगे। ये तो बहुत छीछी दुनिया है, स्वर्ग तो स्वर्ग है बात मत पूछो, यहां तुम बेगर हो, भारत बेगर है, बेगर टू प्रिंस गाया हुआ है, इस भारत में ही फिर जन्म लेंगे। बाप ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, रात दिन का फर्क है, महान गरीब जिनको खाने के लिए कुछ नहीं होता है उनको ही दान दिया जाता है, भारत ही महान गरीब है। बिचारों को ये पता ही नहीं है कि इस समय सब तमो प्रधान है, दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे ही उतरते रहते हैं, अभी कोई सीढ़ी चढ़ नहीं सकते, बिना बाबा के कोई सीढ़ी चढ़ नहीं सकते। 16 कला से 14 कला, फिर 12 कला, नीचे उतरते ही आते हैं।
ये लक्ष्मी नारायण भी पहले 16 कला संपूर्ण थे, फिर 14 कला में उतरते हैं ना, यह भी अच्छी रीति याद करना है। सीढ़ी उतरते उतरते बिल्कुल ही पतित बने हैं, फिर स्वर्ग के मालिक कौन बनाए? यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, यह भी सब कहते हैं, परंतु अब कौन सी हिस्ट्री रिपीट होगी ये कोई नहीं जानते। शास्त्र में तो लिख दिया है सतयुग की आयु लाखों करोड़ों वर्ष है, पूछो सतयुग कब आएगा, कहेंगे अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। तुम सिद्ध कर बतलाते हो कल्प की आयु ही 5,000 वर्ष है, वह फिर सिर्फ सतयुग को ही लाखों वर्ष दे देते हैं। घोर अंधियारा है ना, तो मनुष्य कैसे माने भगवान आया होगा? इतना घोर अंधियारा है तो कैसे माने भगवान आया होगा? वह समझते हैं भगवान तब आएंगे जब कलयुग का अंत होगा। अभी तुम बच्चे इन सब बातों को समझते हो, विनाश सामने खड़ा है। बच्चों को समझाया जाता है कि विनाश के पहले बाप से वर्षा ले लो, परंतु कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं तो बेचारे हाय हाय कर मरेंगे, तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी। विनाश में होती ही है हाय हाय, विनाश के समय सब हाय हाय करेंगे, विपरीत बुद्धि हाय हाय ही करेंगे। अभी तुम हो सच्चे की औलाद सच्चे, नरक का विनाश होने बिगर स्वर्ग कैसे बनेगा? तुम कहेंगे यह तो महाभारत लड़ाई है, उनसे ही स्वर्ग के द्वार खुलने हैं, मनुष्य तो कुछ नहीं जानते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हमको अभी दैवी स्वराज्य का मक्खन मिलता है, वह आपस में लड़ते रहेंगे, है वह भी मनुष्य तुम भी मनुष्य, परंतु वह है आसुरी संप्रदाय और तुम हो दैवी संप्रदाय, हाँ ईश्वरीय संप्रदाय या दैवी संप्रदाय। बाप बच्चों को सन्मुख समझाते हैं, तुम बच्चों के अंदर में खुशी रहती है, अनेक बार तुमने ऐसी राजधानी ली है जैसे अभी तुम ले रहे हो, वह आपस में दो बिल्ले लड़ते हैं, माखन तुमको मिलता है, सारे विश्व की बादशाही का। तुम यहां आते ही हो इसलिए

बाबा के पास आते हैं विश्व का मालिक बनने। तुम जानते हो हम बाबा से योग लगाए कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। वह आपस में लड़ेंगे, हम विश्व की बादशाही पा ही लेंगे। यह तो कॉमन बात है। वह बाहुबल वाले विश्व की बादशाही ले ना सके। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा है ही अहिंसा परमो दैवी धर्म। दोनों हिंसाएं वहां होती नहीं। काम कटारी की हिंसा सबसे खराब है, जो तुमको आदि मध्यंत दुख देती है। ये किसको पता नहीं रावण राज्य कब होता है। अभी पुकारते हैं आकर हमको पावन बनाओ, तो जरूर कभी पावन थे ना। भारतवासी बच्चे ही पुकारते हैं, दुख से लिबरेट करो, शांति धाम ले जाओ, दुख हर कर सुख दो। श्री कृष्ण को हरि भी कहते हैं, बाबा हमको हरि के द्वार ले चलो। कहते हमको हरि के द्वार ले चलो। हरि का द्वार है कृष्णपुरी, यह है कंसपुरी। यह कंसपुरी हमको पसंद नहीं है। हम बाबा से रूरिहान में कहते, बाबा हमको ये कंसपुरी पसंद नहीं है। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं। यह तो तुम जानते हो रावण का राज्य द्वापर से शुरू होता है। देवताएं जो पावन थे वह पतित होने शुरू होते हैं। इसकी भी निशानियां जगन्नाथपुरी में है। दुनिया में बड़ा गंध लगा हुआ है। अब हम तो उन सब बातों से निकल परिस्थान में जाते हैं। इसमें बड़ी हिम्मत महावीर पना चाहिए। बाबा का बनकर पति थोड़ी बनना है। वह समझते हैं स्त्री पुरुष इकट्ठे रहे और आग न लगे, ये हो नहीं सकता। इसलिए ही हंगामा करते हैं कि यहां स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाया जाता है। ऐसा तो कहां लिखा हुआ नहीं है। बाबा कहते हैं ऐसा तो कहां लिखा हुआ नहीं है, कोई मुरली में नहीं है। पता नहीं यहां कौन सा जादू है। दूसरी बात क्या कहते, पता नहीं यहां कौन सा जादू है। अरे तुम ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे और बस तुमको वहां बांध रखेंगे। ऐसे भी कहते हैं, ऐसे ऐसे वहां बहकाते रहते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है, इनका पार्ट होगा वह कैसे भी आ जाएंगे। इसमें डरने की बात ही नहीं है। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर, पति पावन, सर्व का सदगति दाता है। ब्रह्मा द्वारा पतित से पावन बनाते हैं। ये अक्षर ऐसे बड़े लिखो जो कोई भी आकर पढ़े। बाबा कहे ये बातें बड़े बड़े अक्षर में लिखो जो कोई भी आकर पढ़े। पवित्रता पर ही कितने विघ्न डालते हैं। बस ये बड़े बड़े अक्षरों में लिखो कि पतित पावन सर्व का सदगति दाता। ब्रह्मा द्वारा पतित से पावन बनाते हैं। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, तो ये बड़े बड़े अक्षरों में लिखो जो कोई भी आकर पढ़े। पवित्रता पर ही कितने विघ्न डालते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे किसी भी देहधारी में मोह की रग नहीं होनी चाहिए। अगर कहां मोह की रग होगी तो फंस पड़ोगे। यहां तो अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। बाबा सामने बिठाकर पूछते हैं, कल तुम्हारा कोई मर जाए तो रोएंगे तो नहीं। आंसू आया तो फेल हुए। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, इसमें रोने की क्या बात है। दूसरा कोई सुने तो कहे, मुख से अच्छा तो बोलो। कहते मुख से अच्छा तो बोलो। तो बाबा ने कहा अगर तुम्हारा कोई मर जाए तो रोएंगे तो नहीं, तो कोई सुनेगा तो कहेंगे अच्छा मुख से अच्छा तो बोलो। अरे अच्छा ही बोलते हैं, सत्युग में रोना होता ही नहीं। ये जीवन तुम्हारा उनसे भी ऊंच है। तुम हो सबको रोने से बचाने वाले, फिर तुम कैसे रोएंगे। हमको पतियों का पति मिला है जो हमको स्वर्ग में ले जाते हैं, फिर नरक में गिराने वाले के लिए हम क्यों रोए।
बाबा कितनी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। वर्षा लेने के लिए इस समय भारत का कितना अकल्याण हुआ पड़ा है, बाप आकर कल्याण करते हैं। भारत को मगध देश कहते हैं, सिंध जैसे फैशनेबल कोई होते नहीं। बाबा कहते सिंध जैसे फैशनेबल कोई होते नहीं। विलायत से फैशन सीख कराते हैं, बाल बनाने पर आजकल लड़कियां कितना खर्चा करती है, उनको कहा जाता है नर्क की परियां। बाप तुमको स्वर्ग की परियां बनाते हैं, कहते हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, यह सुख तो ले ले वे। क्या कहते मनुष्य, हमारे लिए तो यही स्वर्ग है, यहाँ का सुख तो ले ले वे, कल क्या होगा हम क्या जाने। ऐसे अनेक विचार वाले आते हैं, ऐसे अनेक विचार वाले आते हैं, उसका जैसा भाग्य। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सच्चा सच्चा रूहानी पंडा बन, सबको घर का रास्ता बताना है। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा करते याद की यात्रा में रहना है, कार्य व्यवहार में तंग नहीं होना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान श्रृंगार कर स्वयं को स्वर्ग की परी बनाना है। इस तमो प्रधान दुनिया में जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना है, कलयुगी फैशन को छोड़ देना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भव। बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भव। जितना हो सके सर्विस के संबंध में बालकपन, अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन। सर्विस के संबंध में बालकपन, अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन। संपर्क और सर्विस में बालकपन, याद की यात्रा और मंथन करने में मालिकपन। साथियों और संगठन में बालकपन और व्यक्तिगत में मालिकपन। इस बैलेंस से चलना ही युक्ति युक्त चलना है। इससे सहज ही हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है, स्थिति एक रस रहती है और सहज ही सर्व के स्नेही बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। आज का व्यक्ति इशारा है, सदा हर्षित रहने के लिए अपने नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते हैं हर्षित रहने का गुण पुरुषार्थ में बहुत मददगार बन सकता है, लेकिन जैसे सूरत हर्षित रहती है वैसे आत्मा भी सदैव हर्षित रहे। इस नेचुरल गुण को आत्मा में लाना है, सदा हर्षित रहेंगे तो फिर माया की कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करेगी। ये बाप की गारंटी है। लेकिन सदा हर्षित रहने के लिए अपनी रूहानी शान में रहना और सहनशील बन साक्षी दृष्टा हो माया के खेल को देखना। हर्षित रहने के लिए अपनी रूहानी शान में रहना और सहनशील बन साक्षी दृष्टा हो माया का खेल को देखना। अच्छा, ओम शांति।